मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप, वेब्स ओटीटी पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 43 सेकेंड हो रहे हैं। आरंभ हो रही है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। आज मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों लोगों के वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वीं दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनू राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टारपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा है कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर

0: देश वैभव, देश विभोर और सन्मार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। खेती की बातें कार्यक्रम में आइए सुनते हैं। सामयिक कृषि कार्य विषय पर दिनेश कुमार सिंह से ये जानकारी।
2: किसान भाइयों, आज हम सामयिक कृषि कार्य की चर्चा करेंगे। दलहनी फसलों में इस समय उड़द और मूंग की खेती आप किए हुए हैं। इसमें ध्यान ये रखना है कि पहली सिंचाई 25 से 30 दिन बाद करें। अगर पहली सिंचाई बहुत जल्दी कर देते हैं तो इसमें जड़ों तथा ग्रंथियों के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः पहली सिंचाई जो है 25 से 30 दिन बाद करें और बाद की सिंचाइयाँ आवश्यकता अनुसार 10-15 दिन के अंतराल पर करते रहें। इस फसल में कुछ खरपतवार भी आ जाते हैं जिनको निकाई करके नष्ट कर देना चाहिए। उड़द और मूंग की फसल में पीला चित्तवर्ण रोग, जिसे कि मोज़ेक रोग कहते हैं, इसका प्रकोप काफ़ी होता है, जिसमें पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। यह रोग प्रायः सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलता है, अतः इसके नियंत्रण के लिए उस सफ़ेद कीट का ही नियंत्रण करना चाहिए। इसके लिए मिथाइल ओ डेमेटान दवा प्रयोग करते हैं, जो कि 25 EC के रूप में आती है। अगर 5 से 10 प्रौढ़ मक्खी प्रति पौध की दर से दिखाई पड़े तो इस दवा का छिड़काव करना चाहिए। इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव किया जाता है। अगर यह दवा उपलब्ध ना हो तो डाइमेथुएट दवा प्रयोग कर सकते हैं, जो कि 30 EC के रूप में आती है। इसकी भी 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव किया जाता है। कहने का मतलब ये कि अगर 1 हेक्टेयर खेत है तो 1 लीटर दवा की आवश्यकता होगी और लगभग 600 से 700 लीटर पानी की। इस तरह से आवश्यक दवा की मात्रा लेकर के और आवश्यक पानी में घोल बना करके छिड़काव करना चाहिए। उड़द और मूंग की फसल में थ्रिप्स कीट का भी प्रकोप होता है। इस कीट के शिशु एवं प्रौढ़ दोनों पत्तियों से रस चूसते हैं तथा पत्तियां जो हैं सिकुड़ जाती हैं और पैदावार प्रभावित होती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए भी मिथाइल ओ डेमेटान दवा का प्रयोग करते हैं। इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। कुछ किसान भाई सूरजमुखी की भी खेती किए रहते हैं, तो ध्यान रहे कि सूरजमुखी की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। अब हम थोड़ी सी चर्चा गन्ना की खेती की करेंगे। इसमें कुल 180 किलोग्राम नत्रजन की आवश्यकता होती है। 60 किलोग्राम नत्रजन यानी कि लगभग 120 किलोग्राम यूरिया बेसल ड्रेसिंग के रूप में बुआई के समय ही खेत में प्रयोग कर लिया जाता है। बाकी जो मात्रा बचती है उसको 2 भार में प्रयोग करते हैं, 60 किलोग्राम और 60 किलोग्राम। तो इसे जो है जून माह के पहले प्रयोग कर लेना चाहिए। कहने का मतलब, अगर आखिरी मात्रा आपके पास बची है तो 60 किलोग्राम नत्रजन यानी कि लगभग 120 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव खेत में करें। ध्यान रहे कि जब आप यूरिया का प्रयोग करें तो खेत में नमी अवश्य हो। इसके अलावा गन्ने की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। चूँकि इस समय खेत खाली रहते हैं, अतः यह मिट्टी की जांच का सर्वोत्तम समय है। पहले मिट्टी का नमूना लेते हैं और फिर उसको जांच के लिए जो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है वहां पर भेजा जाता है। इसलिए सावधानी पूर्वक मिट्टी का नमूना लेकर के उस

0: में अपना नाम, पिता का नाम, खेत का नंबर और बोई जाने वाली फसल आदि का विवरण दर्ज करके और फिर उसे जांच हेतु भेजा जाता है। अभी अगर मिट्टी की जांच कराते हैं तो आपको समय से उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी, फिर उस हिसाब से उर्वरकों का प्रयोग करके आप खरीफ की खेती आसानी से कर सकते हैं। हरी खाद के लिए समय ढांचा की भी खेती अवश्य करें, इससे जो है जो खेती में लागत आती है उसको भी आप कम कर सकते हैं। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर सामयिक कृषि कार्य करना चाहिए।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में आप सुन रहे थे सामयिक कृषि कार्य विषय पर दिनेश कुमार सिंह से ये जानकारी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आराधना कार्यक्रम की आइए शुरुआत करते हैं भगवान सूर्यदेव की आराधना से, जो प्रकाश के सर्वोच्च देव हैं, संसार को ऊर्जा के साथ जीवन देते हैं। भगवान सूर्यदेव की आराधना से हम सभी के जीवन में स्वास्थ्य, तेज और आत्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है।

श्रद्धा के साथ प्रभु की सच्ची भक्ति से ही सच्चा सुख मिलता है। इस संसार में प्रभु का ही अस्तित्व है। जब हम समर्पित भक्ति भाव से उस परम शक्ति से जुड़ते हैं तो भक्त आनंदित होकर उसमें रमते हैं, मगन हो जाते हैं, जीवन सुखमय हो जाता है और तर जाते हैं।

0: आराधना कार्यक्रम में आप सुन रहे थे हरिहरण, कैलाश अनुज और महेंद्र कपूर के गाए भजन। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6:30 हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल में आयोजित विशेष कार्यक्रम का प्रसारण, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: को रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल ही चलते हैं, जहां से आप 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं नीलम बलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। आमंत्रित विशेषज्ञ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आइए आपको योग दिवस कार्यक्रम में ले चलते हैं।
2: नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी खेल प्रेमियों को, स्वास्थ्य प्रेमियों को और योग प्रेमियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत। आज पूरा विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरी मानवता आज एक सुर, एक ताल और एक श्वास में बंधी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में रेड रोड पर विशेष आयोजन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में यहां सामूहिक योग प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं योगाभ्यास कर पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में अपने दो विशेषज्ञों का भी स्वागत कर रही हूं। हमारे साथ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
3: सभी
4: श्रोताओं को नमस्कार।
3: थैंक यू, नमस्ते। एंड वी कैन सी दैट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री रविंद्र नारायण रवि एंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी have arrived at the iconic Red Road, and the Honorable Prime Minister will be leading the nation today, and he will personally be performing asanas at the iconic Red Road on the occasion of the 12th International Day of Yoga. And the Red Road is chock-a-block with people from all walks of life, and it is indeed, Neelam, a very momentous day for all the people who have assembled here at Red Road to be performing asanas to be led by the Honorable Prime Minister. And there's a huge crowd we can see from the one end of Red Road till the Eden Gardens. It is chock-a-block with people. And the theme of this year's International Day of Yoga is healthy aging, and we can see that everyone is assembled here and they're looking forward to join the Honorable Prime Minister and perform asanas.
2: 21 जून 2026 की इस सुहानी और अलौकिक सुबह में कोलकाता की इस ऐतिहासिक भूमि पर हुगली नदी के पावन तटों की गवाही में भव्य तैयारियां की गई हैं आज के आयोजन के लिए। यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी इस वैश्विक उत्सव का नेतृत्व करेंगे। इस बार की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग। बढ़ती उम्र में भी ऊर्जावान और गतिशील बने रह सकते हैं हम, योग के साथ स्वस्थ रह सकते हैं। और आपको बताएं कि बहुत विशाल मंच एक यहां पर

0: बनाया गया है, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ ही अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति है। पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, साथ ही माननीय गवर्नर साहब हैं और यहाँ पर अब संबोधन हो रहा है।
1: श्री प्रताप राव जाधव, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष,
0: विशाल जनसमूह इस संबोधन को सुनता हुआ।
2: जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया, ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री आर्यन रवि जी, पश्चिम बंगाल के ओजस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे दुनिया से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया, वह अब 180 से अधिक देशों में मनाए जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हमने योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित करता है। इस वर्ष के योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए आयुष मंत्रालय ने काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें हमने YouTube पर योग लाइव स्ट्रीम करके सबसे अधिक लोगों की सहभागिता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। हवाई यात्रा में योग के लिए एक नया प्रोटोकॉल विकसित किया गया। 13 जून से 20 जून तक माँ गंगा के तट पर गंगोत्री से गंगा सागर तक 8 अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास करके योग श्रृंखला का आयोजन किया गया। कोलकाता में दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया। आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय भारत की प्राचीन विरासत वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की घोषणा भी शामिल है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस वर्ष के योग दिवस के अभूतपूर्व आयोजन के लिए अपने नेतृत्व में प्रशासन के साथ अपना पूरा योगदान दिया। अंत में मैं यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी व्यक्तित्व और उनके गतिशील नेतृत्व में योग और आयुष की पताका पूरी दुनिया में लहराएगा तथा भारत को विश्व गुरु बनाने में योग और आयुष की महत्वपूर्ण भूमिका भी सिद्ध हो सकेंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे योग।
0: माननीय केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रताप राव गणपत राव जाधव ने अभी सभी का यहां पर स्वागत किया और साथ ही आयुष मंत्रालय ने योग को बढ़ावा देने के लिए जो पहल की है उनके बारे में बताया। हम आपको बताएं कि माननीय राज्यपाल पश्चिम बंगाल श्री आर.एन. रवि, माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी और प्रधानमंत्री जी स्वयं आज

0: ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী, শত কোটি প্রণাম জানিয়ে আমার কথা শেষ করলাম। ভারত মাতা কি?
1: That was the Honourable Chief Minister of West Bengal, Sri Shubhendu Adhikari, addressing the gathering on the occasion of the International Day of Yoga. And every yoga enthusiast, and we can see that the Honourable Minister for Municipal Affairs, Srimati Agnimitra Paul of the Government of West Bengal, is also among the lakhs of yoga enthusiasts who have assembled at the iconic Red Road. And the Honourable Chief Minister of West Bengal mentioned that more than 2,57,000 registrations have taken place for today's main ceremony here at the Red Road, and more than a crore yoga enthusiasts will join, especially in the state of West Bengal, from Darjeeling to Digha and from Kuchbihar to Kagdweep. And now we can see that the Honourable Prime Minister, Sri Narendra Modi, is walking towards the dais where he will be performing the asanas and leading the nation today in performing yoga. And as we know that yoga for healthy aging is the theme of
2: Rajpal R.N. Ravi ji, Urjavan Mukhyamantri Shubhendu Adhikari ji, केंद्र में मेरे सहयोगी प्रताप राव जाधव जी, अन्य सभी महानुभाव, यहां कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी, देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही है। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है,

नागरिक कर्तव्य निभाया गया है वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है, योग इसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव जीवन के जीवन का चेतना के साथ ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मींस दैट वी कैन वर्क टू एंश्योर दैट एज डज नॉट रिड्यूस ह्यूमन पोटेंशियल। योग कैन हेल्प ह्यूमन लाइफ टू एस्पायर फॉर कॉन्स्टेंट ग्रोथ। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर फ्लेक्सिबल एट 40 देन वी वेर एट 20। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर एनर्जेटिक एट 50 देन वी वेर एट 30। Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us.

It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly. साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं, तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है। इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है, इतना ही नहीं है। योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं। लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें योग को केवल

0: एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे। योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे, हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365, योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That was the Honourable Prime Minister Sri Narendra Modi addressing the gathering at Red Road, Calcutta, on the occasion of the International Day of Yoga 2026. And lakhs of yoga enthusiasts have assembled here at the Red Road, Neelam, and everyone is looking forward to the Honourable Prime Minister, who will lead in the day's yoga आसनास सेलिब्रेशंस हियर टुडे।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी विशाल जन समूह को संबोधित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता से स्वागत का उल्लेख किया, साथ ही महर्षि अरविंद को भी याद किया। और महर्षि अरविंद ने कहा था, हमारा पूरा जीवन योग है, हमें इसका बोध हो या ना हो, ये हमें फिर से याद दिलाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग से हम ऊर्जावान रह सकते हैं, योग सबको जोड़ता है और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता है। योग से विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। हम आपको बताएं, ये जो विशाल जन समूह है, जहां जहां तक रेड रोड पर नजर जा रही है वहां योग साधक बैठे हैं और योग के प्रिंट वाली टी शर्ट्स पहनकर पूरी तरह से तैयार हैं, रंग बिरंगे मैट्स पर बैठे हैं अनुशासित रूप से। माननीय प्रधानमंत्री जी अब स्वयं योग कर पूरे देश का और इस वैश्विक आयोजन का नेतृत्व करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी योग वाली टी शर्ट पहनी है और साथ ही आपने बाटिक प्रिंट वाला एक स्टोल भी धारण किया है, जिस पर कमल का फूल दमक रहा है। और योग साधक बेहद उत्साहित इस समय नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को वो योगाभ्यास करते हुए देखेंगे और सामूहिक योगाभ्यास का क्रम यहां पर शुरू होगा। एक एक कर आसन किए जाएंगे और हम सभी जानते हैं कि योग के जो आसन है वो न केवल शारीरिक रूप से हमें लाभ पहुंचाते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी हमें बेहद शांत करते हैं, संतुलित करते हैं और आत्मिक रूप से भी हमें प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। योग यानी शरीर का मन से जुड़ना और मन का आत्मा से, फिर आत्मा का प्रकृति से जुड़ना।
1: Yes, and the Honorable Prime Minister will be shortly arriving at the venue where he will be leading the countrymen in performing the yoga asanas here at the iconic Red Road. And as you rightly mentioned, Neelam, that the Honorable Prime Minister today made us all remember about the uniqueness of yoga.
2: Ji, aur is samay यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना की जा रही है। ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रार्थना के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इस वक्त जितने भी योग साधक हैं सभी अपने अपने स्थान पर

0: सुखासन में बैठे हुए हैं, नमस्कार मुद्रा में सभी के हाथ जुड़े हुए हैं और प्रार्थना इस समय यहाँ पर की जा रही है। हमारी संस्कृति जिसमें विश्व शांति की कामना है, साथ ही हम जड़ चेतन की शांति की कामना भी करते हैं, प्राकृतिक तत्वों की शांति की कामना करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम सब एक ही हैं।
1: धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए, आस्ते आस्ते दोनों चौके खुलून, दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, दोनों हाथ के स्वाभाविक अवस्था ले आसुन, जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए, निजर जाएगा
0: मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं
1: हम सब,
0: और योग साधक उन निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने स्थान पर योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं। पंक्तिबद्ध तरीके से मैट्स बिछाए गए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अब हो रहा है। योग साधकों के बीच
2: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट अराइव्ड एंड ही विल बी गोइंग टू द डेजिग्नेटेड एरिया एंड ही हैज जस्ट अराइव्ड देयर एंड ही विल बी परफॉर्मिंग द आसनास फ्रॉम हियर and he is flanked by ordinary people from all walks of life here at the Red Road, and we can see that the officials are now ready for the International Day of Yoga 2026 main celebrations at Red Road, Kolkata.
0: माँ काली का आशीर्वाद लिए स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसी विभूतियों का दर्शन इस भूमि में है। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत है ये हमारे योगियों की, हमारे मुनियों की। विशेष तैयारियों के साथ आज यहाँ योगाभ्यास किया जा रहा है और इस समय ग्रीवा चालन का अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है। और जब हमारे यहाँ पर योग साधक सभी इस कॉमन प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, तो मैं प्रतिमा जी आपसे जानना चाहूंगी, ग्रीवा चालन इस समय हो रहा है, आप हमें इसका लाभ बताएं।
3: जी, ग्रीवा चालन जो है वो मानसिक लाभ भी देता है और साथ ही शारीरिक लाभ भी देता है। मानसिक लाभों की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो तनाव से सभी लोग गुजर रहे हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है
0: जी।
3: साथ ही जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसको भी प्रिवेंट करता है और साथ में इसको के थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी हैं। और जितने भी ये आसन ग्रीवा संचालन में किए जा रहे हैं ये सभी के सभी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करते हैं
0: जी।
3: और इसके अलावा जो और भी बेनिफिट्स हैं वो हमारे पूरे संपूर्ण जो नर्वस संस्थान है, नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि सारी जो भी क्रियाकलाप है हमारे दैनिक वो हम अपने ब्रेन के कारण ही संपन्न कर पाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही हमारे जो हेड का, सिर का वेट है उससे रिलेटेड जो हमारी मसल्स, आपने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी गर्दन हिलना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी ये प्रिवेंट करता है, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है
0: जी। यानी हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हुए जिसे एक हल्का फुल्का वार्म अप मानते हैं उसके बहुत सारे लाभ है, ये हमें आपने अभी बताया। हम श्रोताओं को बताएं कि गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं करना, ऊपर नीचे करना, ये ग्रीवा संचालन में आता है। ग्रीवा चालन इस आसन का नाम है और सूक्ष्म व्यायाम इन्हें कहा जाता है,
3: सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों में से
0: जी। और यहाँ पर सभी निर्देशों का पालन करते हुए हम देख पा रहे हैं कि जो योग साधक हैं उनके बीच माननीय मंत्रीगण तो है ही, गणमान्य अतिथि हैं, और साथ ही भारत में इस समय जो विदेशी मौजूद हैं हमारे वो अतिथि भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हैं।
2: Guruji, Manish Naje, we'd also like to know from you about the importance of the beginning of this asana.
4: Yes, actually asan ko hum is tarah se samjhe ki seat of awareness. हमारी चेतना हमारे शरीर को फॉलो करती है, हम चित्त से काया की तरफ बढ़ते हैं, तो ये जो ग्रीवासन है इसमें हम क्या होता है कि हमारी जो चेतना है, हमारी जो शरीर को चलाती है सूक्ष्म रूप से, ये जागृत होती है और उसकी आसन वहां पे अवेलेबल हो जाती है, मतलब उसकी इंटेंशन, उसकी पहुंच, उसकी

0: सेंसेशन आत्मा की और चेतना की, ये यहां से शुरू होती है और ये बहुत ही रियली बहुत ही फायदेमंद है जब हम आसन शुरू करते हैं तो।
1: जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी मुनेश सिन्हा जी कि एक आध्यात्मिक गुरु के दृष्टिकोण से आप हमें बताएं योग का वास्तविक और गहरा अर्थ क्या है अध्यात्म में।
0: योग पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्म, पूरा विश्व, पूरा जगत एक यौगिक स्थिति को जी रहा होता है, बस जानता नहीं है, है ना। अगर हम कहते हैं जब हम अपने अंदर के असूक्ष्म, जो हमारी जो अव्यक्त स्वरूप है, उससे जब हम जुड़ जाते हैं तो हम व्यक्त हो जाते हैं, इसीलिए व्यक्ति कहा जाता है, है ना। जितने लोग हैं उनको व्यक्ति कहा जाता है, इसलिए व्यक्ति कहा जाता है कि वो अव्यक्त को व्यक्त कर रहे हैं। तो अव्यक्त को व्यक्त करने की जो प्रोसेस है, आप जब भी हम योग करते हैं अपने स्वयं से जुड़ते हैं, किससे जुड़ रहे होते हैं, जोड़ कौन रहा होता है, हमारी चेतना। हमारी चेतना हमारी तीनों शरीर को अलाइन कर रहा होता है, हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर। जब हम इन तीनों को अलाइन करते हैं, जब हम तीनों के साथ जुड़ जाते हैं, तो अवेयरर ऑफ द अवेयरनेस, एक्सपीरियंसर ऑफ द एक्सपीरियंस, ये हमें जो हमारी अव्यक्त स्वरूप है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है। फिर उसका प्रेजेंस हमारे टोटालिटी पे रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। आप चलते फिरते उठते बैठते आप यौगिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, इससे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस रेज होती है, प्रकृति की जागृति होती है। और आज इस पूरे विश्व में जिस भी हम संघर्ष से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हम योग से बहुत दूर हो गए हैं, हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हमसे बहुत दूर हो गई है। आज इस पूरे समाज को, इस पूरी जगत को, इस पूरे वातावरण को योग की बहुत बहुत बहुत जरूरत है।
1: जी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आज विश्व की आवश्यकता है योग, तो इस समय यहाँ पर स्कंध चालन का अभ्यास किया जा रहा है। प्रतिमा जी, आपसे जानना चाहेंगे इसके लाभ क्या हैं?
2: स्कंध चालन जो है ये पूरा थोरेसिक कैविटी पर काम करता है, और थोरेसिक कैविटी जो है उसके अंदर हम सभी को पता है कि लंग्स सिचुएटेड होते हैं, और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं उधर काम हो रहा होता है, और लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी काम करता है, और बहुत सारे अन्य बेनिफिट्स भी इसके होते हैं।
1: जी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर उम्र के योग साधक उपस्थित हैं, युवा भी हैं तो प्रौढ़ भी नजर आ रहे हैं इस विशाल जनसमूह में। और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कि योग को एक विषय के रूप में पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि योग जो है अगर हम कहते हैं कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए, तो योग में करियर भी है। और ये हम प्रतिमा जी को देखकर यहाँ समझ सकते हैं कि आपने अलग अलग संस्थानों में कार्य किया है, योग को बढ़ाया है, विभिन्न पदों पर आप रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रतिमा जी, योग में जो करियर है उसके क्या ऑप्शंस हैं हमारे युवाओं के लिए, आप बताएं।
2: योग में करियर के ऐसा जो ऑप्शंस हैं वो डिग्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। जिसमें कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो हमारे यहाँ से भी चलाए जाते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, एमएससी है, एमए है और पीएचडी है।
1: जी,
2: तो इसमें जिस तरह की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उस तरह से आपका करियर आप डिसाइड कर सकते हैं। वेलनेस इंस्ट्रक्टर के रूप में और योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, योगा थेरेपिस्ट के रूप में, वेलनेस कोच के रूप में, योगासन कोच के रूप में आदि।
1: जी, मैं गुरु मुनेश सिन्हा जी आपसे जानना चाहूंगी, युवाओं में आजकल तनाव, अवसाद और अकेलापन बहुत बढ़ गया है, जीवन शैली का हिस्सा होता जा रहा है अकेले रहना, योग और ध्यान उनके इस आंतरिक खालीपन को भरने में कैसे मदद कर सकता है?
0: बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे हम सत्य से दूर हो जाते हैं
1: जी,
0: तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे कि आप अपने घर से जब दूर हो जाते हैं तो आप घर वापस आने की सोचते हैं, जितने हम घर से दूर चले जाएंगे हम उतने स्ट्रेस में रहना शुरू करेंगे। तो आज पूरी दुनिया की ये जो हालत है, हम अपने ही मूल स्वरूप से, अपने ही सोर्स से, अपने ही घर से, अपने ही कहते हैं अस्तित्व से इतने दूर चले आए हैं कि अब हमें वापस आने के लिए भी एक लंबी दूरी की तय करनी पड़ेगी। कहते हैं जब यू टर्न होता है, यू टर्न आप लेना चाहते हैं, आपकी जीवन की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि आप यू टर्न लेते लेते भी कई किलोमीटर आगे

0: बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज के युवा को खास करके ये मानना होगा, जानना होगा कि उसकी सच्चाई क्या है, उसके व्यक्तित्व की सच्चाई क्या है, उसके अस्तित्व की सच्चाई क्या है। जब हम अपने सत्य से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे सोल की तरफ, हमारे टोटालिटी की तरफ जुड़ जाता है। आज देखना कि सत्य और सत्य में फर्क है। सत्य सबके अलग अलग होते हैं लेकिन पूरे विश्व का सत्य एक ही होता है
1: जी। yes, and... और इस समय यहाँ पर ताड़ासन का अभ्यास किया जा रहा है। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर ऊपर की ओर दोनों हाथ उठाए गए और अपने पंजों पर सभी सीधे खड़े हुए। संतुलन में तो ये आसन मदद करता ही है लेकिन साथ ही हमारी जो मेरुदंड है उसे भी एकदम सीधा कर देता है। और ताड़ के पेड़ की तरह हम सीधे खड़े हो तो ताड़ासन कहा जाता है और बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए ये बेहद फायदेमंद है। प्रतिमा जी सही कहा मैंने?
2: बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं। एडोलेसेंट स्टेज वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये आसन
1: जी।
3: एंड एज यू वर मेंशनिंग नीलम दैट टुडे इज द International Day of Yoga, and the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for Healthy Aging. And the Honorable Prime Minister also mentioned in his speech that in the 1920s, Paramhamsa Yogananda set up the yoga center in Kolkata and also at other places. And today, the popularity of yoga has spread far and wide. In the 132nd episode of Mann Ki Baat, the Honorable Prime Minister has said that the attraction of yoga is rising across the world. And he also highlighted the work of Mr. Almis in popularizing yoga in Djibouti, Africa through his Arvind Yoga Center. Similarly, there are many such yoga centers now even in South America. So the popularity of this gift of India, this gift of healthy life for everyone is indeed a gift for humanity by India to the world.
1: जी, यहाँ पर अभी पादहस्तासन का अभ्यास किया गया और उसके बाद अर्धचक्रासन का अभ्यास अभी किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जमीन पर जब पीठ के बल लेटकर हम पैर और हाथों के बल अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाते हैं तो चक्रासन होता है, लेकिन जब खड़े होकर हम केवल थोड़ा सा झुकते हैं पीछे की तरफ तो अर्धचक्रासन है, हमारे मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए। और जैसा कि अभी कौशिक जी ने कहा कि ये भारत का एक अनुपम उपहार है विश्व को। हम अब तक गर्व करते हैं कि हमने दुनिया को शून्य दिया है, हमारा दर्शन विश्व में अलग अलग देशों को आगे बढ़ने में प्रेरणा देता रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, उनके नेतृत्व से और उनकी प्रेरणा से अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने दुनिया को योग भी दिया है और अब ये कागजों में भी दर्ज हो चुका है जिसे कि यूनेस्को और यूएन ने भी माना है। यहां पर अभी त्रिकोणासन का अभ्यास होता हुआ त्रिकोण जैसी आकृति बनाई जा रही है शरीर से। प्रतिमा जी, त्रिकोणासन के लाभ क्या क्या हैं?
2: ये खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों में शामिल है। ये घुटने और थाई मसल्स और साइड का जो फैट होता है और मसल्स होते हैं वहाँ काम करता है, साइड फैट को भी रिड्यूस करता है। साथ में जो स्पाइन है, स्पाइन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है और जो गर्दन की नर्व्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है, मसल्स को भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है। और ये इवन आईज के लिए भी बेनिफिशियल आसन कहा जाता है।
1: ये मेरे लिए भी चौंकने वाली बात है कि त्रिकोणासन से आंखों को लाभ होता है, क्योंकि मैं भी बचपन से योगाभ्यास करती आ रही हूँ लेकिन नई जानकारी ये मुझे आपसे मिली है।
2: और ये साइटिका वाले लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल आसन होता है
1: जी। और हम यहाँ देख रहे हैं कि बेहद मनोयोग से सभी योग साधक जो हैं वो निर्देशों का पालन करते हुए एक के बाद एक आसन कर रहे हैं। यहाँ मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इन योग साधकों के बीच है, सबसे बड़ी प्रेरणा यही है। और गुरु मुनेश जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो साधक माननीय प्रधानमंत्री जी के नजदीक बैठकर योग कर रहे हैं, जीवन भर की एक सुखद स्मृति उनके पास है, और अब भला कोई योग से दूर कैसे हो सकता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रेरित करें। और इस समय सभी योग साधकों के बीच आत्मीय भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी चलते हुए

0: और सभी के नजदीक से होकर गुजर रहे हैं, सबको देख रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं, और अभ्यर्थी भी हम देख रहे हैं कि बेहद उत्साहित दंडासन में इस समय सभी बैठे हैं। मेरुदंड को एकदम सीधा करके और अब दंडासन से भद्रासन में सभी योग साधक।
1: And we can also see Neelam and the Honorable

0: The Honourable Prime Minister is going to many enthusiasts and volunteers who have come here, and he is interacting with them, and he is just pepping them up. This shows that how much he cares for the well-being of the common people of this country. And this is, as you rightly mentioned, indeed a moment that everyone will cherish, and every person with whom the Honourable Prime Minister is interacting will carry this memory with him or with her forever in their lifetime.
1: जी बिल्कुल. और ये जो आसन है इनके अगर हम लाभ की बात करें तो हर आसन का विशेष लाभ है. वैसे तो कहा जाता है कि योग में अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो सर से लेकर पांव तक हमें लाभ उसके प्राप्त होते हैं. लेकिन फिर भी शरीर के विभिन्न अंगों के लिए अलग अलग आसन हैं, और यहाँ हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत से भी प्रतिनिधि उपस्थित हैं, आमंत्रित अतिथि उपस्थित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए, और सभी अपने अपने स्थान पर, निर्दिष्ट स्थान पर बैठकर योग कर रहे हैं निर्देशों का पालन करते हुए. अब धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति में सभी आए हैं, एक ऐसा आसन जो हमारे पाचन तंत्र को बेहद तेज कर देता है, और कहा जाता है कि हमारे पेट को वज्र के समान मजबूत कर देता है, यानी हम जो भी खाएं वो पच जाए. और प्रतिमा जी, जहां तक मेरी जानकारी है, ये एक इकलौता आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं.
2: बिल्कुल 100% ये ही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद करते हैं, और ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एब्डोमिनल रीजन में इंक्रीज करता है, इसलिए वो डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है. और जो हमारी पंचवायु कही गई है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इन वायुओं में से जो समान वायु है उस पर विशेष रूप से काम करता है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेटली इंप्रूव होता है. साथ में हमारी जो स्पाइन है वो स्पाइन अलाइंड होती है जी. और अब वज्रासन के बाद अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास यहां पर किया जा रहा है. माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी अभ्यर्थियों के बीच से वो जा भी रहे हैं, और अभी हमने देखा कि किस प्रकार से एक योग साधक की उन्होंने मदद की है, उसकी जो स्थिति है उसे ठीक किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हाथों की स्थिति को ठीक किया है, और सभी को प्रेरित करते हुए स्वयं उनके बीच में यहाँ पर ये बोलना गलत नहीं होगा कि जैसे हम अपने गुरु के निर्देश का पालन करते हैं, उनके सामने योगाभ्यास करते हैं, जैसे हमारे ट्रेनर्स होते हैं या हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हमें कुछ सिखाते हैं, उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे परिजनों की तरह एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और सभी को वो सही तरीके से कैसे हमें आसन करना है ये भी बताते हुए, बेहद सुंदर ये भाव, बेहद सुंदर ये दृश्य. कौशिक जी,
0: यस एब्सोल्युटली, एंड एज वी मेंशनड अर्लियर आल्सो, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टेकिंग कीन इंटरेस्ट स्पेशली अमंग द teenagers and youngsters who are present here, and just guiding them how to do the asanas in the correct manner. And this is just, as you rightly mentioned, how an elder of the family takes care of the youngsters. The Honorable Prime Minister is doing absolutely just that.
1: जी, और अब यहाँ अभ्यास किया जा रहा है शशक आसन का. खरगोश की स्थिति में हम आते हैं जब हम शशकासन करते हैं, और यहाँ पर जब भी बैक बेंडिंग के आसन किए जाते हैं उसके बाद शशकासन करने के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करके तुरंत बैलेंस किया जाता है, और यही है योग की बेहद सुंदर अनुभूति कि हमें वो संतुलन सिखाता है. और अब यहाँ पर उत्तान मंडुकासन का अभ्यास किया जाएगा सभी इस आसन की मुद्रा में आते हुए. उत्तान मंडुकासन, प्रतिमा जी इस आसन के बारे में आप हमें बताएं.
2: जैसे कि अभी आपने कहा कि शशांक आसन जो किया जाता है, शशांक आसन भी बोलते हैं उसको, उसके बाद उत्तान मंडुकासन. शशांक आसन जो है वो स्ट्रेस को रिमूव करने का काम करता है, और इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं. उसके जस्ट बाद जो काउंटर पोस्चर किया जाता है वो बैठकर किया जाने वाला उत्तान मंडुकासन, ये स्पेशली लेडीज के लिए, फीमेल्स के लोअर बॉडी पार्ट्स के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बेनिफिशियल होता है. साथ में आप देख रहे हैं कि जो बॉडी अलाइनमेंट है वो ऊपर की तरफ एल्बोज का डायरेक्शन रहता है, तो ये थोरेसिक कैविटी पर भी काम करता है, साथ में मन को भी शांत करता है, और हमारे घुटनों के लिए

0: बटक्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है. एंड नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, साथ में मन को भी शांत करने वाला आसन है ये.
1: जी, और अगर हम अपने शरीर को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी तनाव होता है, हम किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं जो हमारे लिए जटिल है, हमारे लिए कठिन है, तो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्ट्रेस जो है वो इकट्ठा हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, और बाद में किसी ना किसी बीमारी के रूप में वो सामने आता है. तो योग एक ऐसी स्थिति जिसमें पूरे शरीर का तनाव जो है वो दूर किया जाता है और साथ ही मानसिक तनाव भी दूर किया जाता.
2: And now I think the enthusiasts are performing Vakrasan.
1: So जी बिल्कुल, वक्र यानी तिरछा. तो थोड़े टेढ़े होकर हम ये आसन करते हैं जो हमें बिल्कुल सीधा कर देता है. प्रतिमा जी
0: बिल्कुल सही है कि हमें सीधा कर देता है, क्योंकि इस आसन को जो हमारा डायबिटीज है, शुगर जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल आसन है. ये मोड़ कर किए जाने वाले आसनों में से आप देखेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से किया जाता है ये, और हमारे जो पैंक्रियाज है और लीवर दोनों के लिए पर प्रेशर क्रिएट करता है. तो ये पूरे हमारे जितने भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद है, इसीलिए इसको डायबिटीज वालों के लिए रामबाण कहा जाता है. साथ में ये आंखों के लिए भी बेनिफिशियल है, गर्दन भी इसमें ट्विस्ट होती है तो पूरी स्पाइन की ट्विस्टिंग करता है ये आसन. और महिलाओं का बहुत इसमें इंटरेस्ट रहता है कि हमारा कटी प्रदेश जो है, हाँ, कमर वाला हिस्सा जो है वो लचीला रहे, पतला रहे, तो ये आसन उसमें बेहद लाभदायक होता है आसन, क्योंकि हमें कॉलेज में बहुत करवाया गया ये आसन
1: और साइड फैट को भी रिड्यूस करता है
0: जी. और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हमने कहा कि एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और परखते हुए यहाँ पर एक अभ्यर्थी जो है, योग साधक जो है, उनसे जब ठीक से आसन नहीं हुआ तो
2: जस्ट गाइडिंग देम टू डू द आसन,
0: उन्हें बिल्कुल गाइड कर रहे हैं
2: परफेक्ट मैनर. एंड नाउ प्रतिमा जी, अबाउट दिस पर्टिकुलर आसना, इफ यू कैन शेयर विद आवर लिसनर्स.
0: मकरासन, ये पेट कर किए जाने वाले आसनों का शिथिलीकरण आसन है, और ये इसमें देखेंगे आप जब हम जनरली फीट के बल लेटते हैं, इसमें पेट के बल लेटना होता है, और ये हमारी पूरी जो स्पाइन, अभी तक किए जाने वाले आसनों में जो स्ट्रेच हुई है उसके बेनिफिट को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला आसन है. और साथ में जो हमारा लेफ्ट और राइट बॉडी जो पार्ट्स हैं, और लोअर लिम और अपर लिम है, इसमें आप देखेंगे हील्स अंदर की तरफ हैं, टोज बाहर की तरफ हैं, तो ये पूरी बॉडी को एक तरह से ट्विस्ट भी कर रहा है और अलाइन भी कर रहा है
1: जी.
0: तो इस आसन के और भी बहुत बेनिफिट्स हैं. साथ में ये जो सर्वाइकल जिन लोगों को होता है उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद होता है, साथ में जो तनाव मुक्त है वो भी करता है ये
1: जी.
0: और बेहद खूबसूरत बात यह है कि हम जिन आसनों के नाम ले रहे हैं, अर्ध उष्ट्रासन हो या मकर आसन हो जो अभी हो रहा है, ये हम अपने जीव जंतुओं से प्रेरणा लेते हुए ये आसन हमने अपनाए हैं. अगर हम वज्रासन की बात करें तो हमने पत्थर से भी प्रेरणा ली है. हम बात कर रहे हैं वृक्षासन की, ताड़ासन की, तो प्रकृति से प्रेरणा ली है. तो किस तरह से योग ने समाहित किया है अपने आप में पूरे ब्रह्मांड को और प्रेरित किया है हमें कि हम जिसमें जो अच्छाई है उसे लेकर उसका अनुसरण करके स्वयं को बेहतर करते चले. मकर आसन, मकर यानी मगरमच्छ जिस तरह स्थिति में होता है बिल्कुल सीधा, उस तरह की स्थिति में रहते हुए हम आसन का अभ्यास करते हैं. और अब हम वो आसन कर रहे हैं जिसका नाम है भुजंगासन. यहां पर योग साधक भुजंगासन कर रहे हैं. भुजंग यानी सर्प से तो वैसे ही डरा जाता है, लेकिन हमने उससे भी सीख लिया है कि स्वयं को किस तरह से लचीला रखना है. इसके लाभ डॉक्टर प्रतिमा,
1: भुजंगासन और सर्पासन दो नाम सुने होंगे. ये भुजंगासन, भुजंग मतलब कोबरा पोज, और ये हमारे स्पेशली जो स्पाइन है उस पर काम करता है, और ये कुंडलिनी जागरण से संबंधित आसन है जो ग्रंथों में कहा गया है. साथ ही जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल आसन है. स्पाइन भी फ्लेक्सिबल करता है, शोल्डर को भी स्ट्रेंथन करता है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स को पर भी काम होता है. ये कहा जाए कि ये पूरे शरीर पर काम करता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं. सर्वाइकल वालों के लिए भी ये आसन बेनिफिशियल कहा जाता है. और सर्पासन अलग है, भुजंगासन अलग है. यहाँ पर भुजंग

0: भुजंगासन किया गया है, क्योंकि भुजंगासन के बहुत सारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ हैं।
1: जी गुरु मुनेश सिन्हा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम योग के लाभों के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि इस तरह के आसन है जिन्हें हर उम्र के साधक आसानी से कर रहे हैं, आपका क्या विचार है? क्या योग को हमारी स्कूली शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए जिसमें आध्यात्मिक पक्ष भी शामिल हो?
2: जरूर जरूर। एक्चुअली जब तक हम अपने रूट से नहीं जुड़ेंगे ना, तब तक हमारी पूर्ण विकास नहीं हो सकती। अगर हम बच्चे से ही, बहुत छोटे कॉन्शियसनेस से ही जब हम योग बताना शुरू करते हैं, योग से उनको जोड़ते हैं, तो हम पूरी पृथ्वी पे एक अच्छे नागरिक को पाते हैं, एक अच्छे इंसान को बनाते हैं, और इससे बहुत पूरी पृथ्वी का भला होने वाला है, पूरी जगत का भला होने वाला है। और मैं तो ये बहुत खुश हूँ कि अपने प्रधानमंत्री जी की जो वो आज एक इंस्ट्रक्टर की तरह हर रो में घूम घूम के सबके पॉस्चर्स ठीक कर रहे हैं, इससे यही योग की जो नेचर है, योग का जो नेचर लव है, यही दिखाता है, जॉय ऑफ गिविंग है, यही दिखाता है। आज वो अपने व्यवहार से, अपने एक्शन से जॉय ऑफ गिविंग, सेल्फ लव और लव फॉर ऑल वो दिखा रहे हैं। तो ये मतलब इतनी रोमांचक जगह है, इतनी इतनी अच्छी हो रही है, मतलब कह नहीं सकता हूं मैं, बहुत ही सुंदर।
1: जी,
2: बहुत ही
1: और यहाँ पर हम अद्भुत अनुशासन भी देख रहे हैं जो कि योग भी हमें सिखाता है, प्राणों के साथ जुड़ना। और सेतु बंध आसन का यहाँ पर अभ्यास किया जा रहा है, सेतु यानी पुल, तो शरीर से पुल जैसी आकृति बनाना सेतु बंध आसन, इसके लाभ हमें डॉक्टर प्रतिमा बताएंगी।
0: ये आसन जो है वो जैसा कि नाम है वैसा काम,
1: जी,
0: बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। साथ में ये जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है, आप देख रहे हैं इसमें स्पाइन ऊपर की तरफ जाती है और पेट ऊपर की तरफ जाता है, तो स्पाइन पर भी काम करता है, एब्डोमेन पर भी काम करता है, शोल्डर्स पर भी काम करता है, थाई मसल्स पर भी काम करता है।
1: जी।
0: और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आसन है हमारे थेरेपी एस्पेक्ट से, और इसको जब किया जाता है तो हमारी काफ मसल्स पर भी, जो गैस्ट्रोनियस मसल्स होती हैं उनके उन पर भी काम होता है सेतु बंधासन।
1: जी, सेतु बंधासन। और हम यहाँ देख रहे हैं कि लगातार अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आसन सभी कर रहे हैं। योग के बारे में एक अच्छी बात यह भी है कि जितनी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, बढ़ती उम्र के साथ हमें कहा जाता है कि या तो वो कम कर दीजिए या ध्यान सी कीजिए, लेकिन योग एक इस तरह की क्रिया है शारीरिक कि अगर हम लगातार करते रहते हैं तो बढ़ती उम्र, एक तो उसका बढ़ना धीमा हो जाता है यानी एजिंग के जो असर हैं वो धीरे धीरे आते हैं, और दूसरा ये भी होता है कि हम सहज भाव से वो आसन कर पाते हैं। और यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं अर्ध हल आसन शायद यहाँ पर किया जा रहा है, और हल जैसी आकृति शरीर से बनाते हैं तो पांव पीछे की तरफ ले जाकर, सर के पीछे की तरफ ले जाकर जमीन को छूते हैं, लेकिन ये उसका आधा हिस्सा ही किया जा रहा है सभी, ताकि सहज भाव से कर सके। अर्ध हल आसन, पांव सीधे किए गए जमीन पर लेटकर, और अब पवन मुक्त आसन का अभ्यास सभी कर रहे हैं। शरीर की वो वायु जो हमें कष्ट दे सकती है उससे शरीर को मुक्ति देना, पवन मुक्त आसन। डॉक्टर प्रतिमा,
0: पवन मुक्त आसन जो है आप देख रहे हैं कि लेटकर सुपाइन पोस्चर है ये
1: जी।
0: और पवन मुक्त जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये पवन मुक्त आसन समूह के आसनों में से किया जाने वाला आसन है। और क्यों? क्योंकि शरीर में 80 प्रकार के जो रोग हैं वो वायु विकार के कारण होते हैं, वायु विकार से संबंधित होते हैं, तो ये हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की वायु है उन सभी पर काम करता है, इसीलिए इसको पवन मुक्तासन नाम दिया गया है। वायु विकार के कारण हमारा हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन सारे जितने भी हमारे सिस्टम हैं उन सभी सिस्टम से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वायु के कारण होती हैं। तो ये पवन मुक्तासन ग्रुप का किए जाने वाला आसन है पवन मुक्तासन, जिसके की वायु को व्यवस्थित करने का काम ये हमारे शरीर में करता है।
1: जी गुरु मुनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका क्योंकि ऐसा अनुभव रहा है कि आप हमारे सशस्त्र बलों को भी और अर्धसैन्य बलों को भी योगाभ्यास करवाते रहे हैं, मेडिटेशन की क्लासेस आप लेते हैं, मुझे आप ये बताएं कि किस प्रकार से हमारा मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, वो मदद करता है हमारी।
2: एक्चुअली क्या है योगा में

0: इसकी जो डेफिनेशन है, योगा चित्त वृत्ति निरोध है।
1: जी
0: हमारी चित्त की वृत्तियां अगर जब तक कंट्रोल नहीं होती हैं, तब तक हम अपने जीवन को ढंग से जी नहीं पाते हैं। आप कितना भी सशक्त हो जाएं, अगर आपकी वृत्तियां ही आपके अंडर कंट्रोल नहीं है, आपकी वृत्तियां ही आपको हर वक्त ऐसे कार्यों में लगाती हैं जो नहीं करना चाहिए, आपकी वृत्तियों से आपका जीवन पूरा चारों तरफ बिखर जाता है। तो सबसे बड़ी जरूरत है कि आज योग करके अपनी वृत्तियों को कंट्रोल करें। इसीलिए आसन को सीट ऑफ अवेयरनेस कहा गया है, हमारी वृत्तियों को कैसे कंट्रोल किया जाए। और खास करके मेडिटेशन और खास करके योग और ये सारी चीजें उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, वो दुनिया के लिए अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। हमारे जितने सैनिक हैं, हमारे भारत के जितने फोर्स हैं, जितने भी आर्म फोर्स में काम कर रहे हैं, उनकी जीवन में एक बहुत स्ट्रेस होता है, वो घर से बाहर होते हैं, तो उनके लिए योग करना, ध्यान करना, अपनी वृत्तियों पे काम करना, सो दैट अपने देश की रक्षा, अपनी देश की सुरक्षा उनका 100% वो डाल पाएं, ये बहुत जरूरी है कि ध्यान करके अपनी चित्त को कंट्रोल किया जाए, उसमें समाया जाए और उसको उसी की जिंदगी जिया जाए, है ना। योग योग में सबसे पहली बात मैंने देखा है जीवन में, जिनकी चित्त की कंट्रोल नहीं है, जो जो अपने कॉन्शसनेस से कनेक्टेड नहीं है, तो उनकी प्रॉब्लम।
2: डॉक्टर प्रतिमा, नाउ आई थिंक वी आर सीइंग द कपालभाति, सो यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट।
1: कपालभाति षट क्रियाओं में से एक क्रिया है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कपालभाति। कपाल मतलब मस्तिष्क प्रदेश, ब्रेन रीजन, और भाति मतलब वो जो आपने लोहार देखा होगा उसको जो धोपनी चलाता है, उस तरह से हमें फोर्सफुली एक्टिव एक्सेलेशन और पैसिव इनहेलेशन कपालभाति में करना होता है। और जो हमारे ग्रंथ हैं वो इसको विशेष रूप से ये कहते हैं कि कफ दोष नाशनी, हमारे शरीर में जो कफ विकार है वो इसको करने से संतुलित होता है। और योग एज सच जितने भी हमारे विकार हैं, बात विकार हो, कफ से संबंधित हो, पित्त से संबंधित हो, जो बीमारियां हैं वो इन्हीं के असंतुलन के कारण होती हैं, और उन्हीं को संतुलन करने का काम योग करता है। तो कपालभाति मस्तिष्क को चमकाने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो आपके सभी काम अच्छे होंगे। और यहां मैं एक बात कहना नहीं भूलूंगी कि जो योग है अपने आप में, वो मैंने जो समझा वो यूथफुलनेस ऑर्गेनाइजिंग ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी, गारंटी फॉर हेल्थ, हैप्पीनेस एंड हार्मोनी, ए स्टैंड फॉर एनालिसिस फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो योग करने से हमारा जो मस्तिष्क है वो तो अच्छे से काम करेगा ही, जब वो अच्छे से काम करेगा तो आपका एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा, और जब एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा तो सोसाइटी में हम इंटरेक्ट पॉजिटिव वे में करेंगे। जी, और अब यहाँ पर नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है। योग साधक जो हैं वो पद्मासन में बैठे हैं, ज्ञान मुद्रा में हाथ हैं, एक हाथ से नाड़ी शोधन प्रक्रिया आप कर रहे हैं, और कुछ साधक जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सहज आसन में, सुखासन में बैठे हैं और नाड़ी शोधन किया जा रहा है। तो नाड़ियों की शुद्धि इससे होती है, डॉक्टर प्रतिमा? हाँ, 72,000 नाड़ियों के विषय में योग ग्रंथों में कहा गया है, उन सभी नाड़ियों की शुद्धि इससे प्राणायाम से होती है। प्राण और आयाम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम प्राण ऊर्जा के कारण ही संपूर्ण जीवन के क्रियाकलाप संपन्न कर पाते हैं। तो ये प्राणों को भी लंबा करता है, आयामी लॉन्ग करना, लंबा करना। और ऐसा कहते हैं कि हम गिनी चुनी श्वासें ईश्वर से लेकर आए हैं, तो हम कॉन्शियसली अपनी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसा कि ग्रंथ कहते हैं, प्राणायामीन युक्तिन सर्व रोग क्षयो भवित, अयुक्ताभ्यास योगिन सर्व रोग समुद्भवा। मतलब इसका यह है कि प्राणायाम अगर सही ढंग से किया जाए तो सभी रोगों का नाश करता है, लेकिन यहाँ पर योग शब्द है, अयुक्ताभ्यास योगिन सर्वरोग समुद्भवा, मतलब यदि गलत ढंग से योग अभ्यास या प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो सभी प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसीलिए प्राणायाम को हमें या योग अभ्यास को हमें बहुत सावधानी पूर्वक कहा गया है। ये भी कहा गया है, युक्तम युक्तम त्यजेद वायु, युक्तम युक्तम च पूरयेद, मतलब धीरे धीरे श्वास को

0: लेना है, धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। और प्राणायाम जैसे कि कई प्रकार के हैं
1: जी,
0: और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर अब शीतली प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है, गर्मी में भी शीतलता का आभास देने वाला, जो कि कहा जाता है कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन को ग्लोइंग कर देता है। और चेहरे पर अगर किसी भी प्रकार के, किशोर अवस्था में आमतौर पर किशोर जो है वो मुहासे और पिंपल्स का सामना करते हैं, तो उन्हें भी ठीक करता है। डॉक्टर प्रतिमा,
2: जैसा कि आपने कहा कि शीतलता देने वाला प्राणायाम है, निश्चित रूप से ये हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है, साथ ही भूख और प्यास पर भी नियंत्रण लाता है ये। और जो हमारी अग्नि है, वात सॉरी पित्त जो है हमारा, उसको व्यवस्थित करने का काम करता है। और अगर पित्त सही होगा, आग सही जल रही होगी, तो निश्चित रूप से चमक आएगी ही।
0: जी, जठराग्नि को पूरी तरह से व्यवस्थित कर देता है
2: जी।
0: और अब भ्रामरी प्राणायाम किया जा रहा है, भ्रामरी प्राणायाम के तो इतने फायदे हैं जिसकी की कोई हद।
2: क्यों? क्योंकि ये हमिंग बी जैसे आवाज निकालना होता है इसमें, और षण्मुखी मुद्रा में किया जाने वाला अभ्यास है। डिफरेंट वे में भी किया जा सकता है ये
0: जी।
2: और इसमें आप देख रहे हैं कि आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, और बाकी की जो फिंगर्स हैं वो अलग अलग मर्म स्थानों पर रखी हुई हैं। इसमें सांस लेते हैं और आवाज के साथ सांस को छोड़ते हैं। उस समय हमारे जो आवाज निकलती है वो गले से निकलती है, और जो वाइब्रेशंस जो होते हैं वो हमारे ब्रेन से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, चाहे वो सेरोटोनिन हो, डोपामाइन हो, इनका सीक्रेशन प्रॉपर करता है, ऑक्सीटोसिन हो, तो ये ब्रेन और ब्रेन की फंक्शनिंग को बहुत फायदा करता है। और जैसा कि योग है वो पेट और पीठ दोनों पर काम करके ब्रेन पर अल्टीमेटली काम करता है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन हाँ, इसको किसे नहीं करना चाहिए या लाउडर पिच में इसको नहीं करना चाहिए, वो हार्मफुल हो सकता है। जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत लाउडर पिच पर नहीं करना चाहिए।
0: यानी शरीर के जो अंदर सॉफ्ट टिश्यूज है, कंपन से हम उन्हें एक्टिव करते हैं और इस तरह से उन्हें मजबूत करते हैं। और ये हाथ इसलिए रखे जाते हैं द्वार पर कि जो कंपन से जो हवा है वो बाहर नहीं निकले, शरीर के अंदर जब वो रहेगी तो हमारे टिश्यूज को हेल्दी करेगी जी। भ्रमर जैसी आवाज हम
2: और बाहर कनेक्शन कट भी करना होता है, ताकि हम अपने आप में, योग अपने आप में जुड़ना सिखाता है, तो हम अपने आप से जुड़ पाए,
0: स्वयं से ही हम जुड़ते हैं, अपने भीतर हम जाते हैं जी।
3: And now the most important of the asanas, that is dhyan or meditation, which is a time for our self-assessment and becoming one with the universe.
2: मेडिटेशन इज नॉट जस्ट मेडिटेशन, इट इज मेडिकेशन ऑफ बॉडी एज वेल एज माइंड। क्योंकि मैंने कुछ ध्यान के जो लोग हैं उनको से जुड़ी हुई हूँ, देखा है मैंने कि ध्यान से उन्होंने अपनी बीमारियों को ठीक कर लिया। तो मेडिटेशन केवल मेडिटेशन नहीं है, बैठ गए आंख बंद करके और मन कहीं और भटक रहा है, वो नहीं है। मेडिटेशन है श्वास को देखना, जो प्राण का आवागमन है हमारे शरीर में जो हो रहा है उसको देखना, उससे अलाइन होना। तो इसीलिए ये कई प्रकार के रोगों को भी ठीक करता है
0: जी। और गुरु मुनेश सेना जी, आप तो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हैं, आप ध्यान करवाते हैं और स्वयं भी ध्यान में रहे हैं, तो अपना अनुभव आप हमारे साथ साझा करें, किस प्रकार की दिव्य अनुभूति ध्यान से हमें हो सकती है।
3: मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर आपके जीवन में कुछ काम नहीं बन रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है आप कहां जाना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ अगर स्टक हो गई है, आप बिल्कुल जैसे मानो कि अंधेरी कोठरी में आपकी जीवन बिल्कुल सिमट गई है, आपको लग रहा पता नहीं चल रहा आप क्या करें, आप ध्यान करना शुरू करें। मैंने अपने जीवन में न जाने हजारों लोगों को ध्यान करवाया है, और कई लोग ध्यान की सिर्फ वो शरीर में ही नहीं, आपके पूरे जीवन के हर क्षेत्र के रास्ते को खोल देता है। सारी अपॉर्चुनिटी इंफॉर्मेशन जो भी वेव्स में अभी तरंगित है, द मोमेंट आप ध्यान करते हो, द मोमेंट आप साइलेंस में जाते हो, द मोमेंट आप अव्यक्त स्वरूप में जाते हो, इमीडिएटली आपका सोर्स बहुत पावरफुल होना शुरू हो जाता है, और आपके लिए बनी जो भी इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटीज पूरी दुनिया में है, आप स्वयं उसको अट्रैक्ट करने लगते हो। सारी चीजें, मैंने मेरी खुद की मैंने लाइफ बताऊं कि मेरी स्पाइन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, वो मैं किसी की हील कर रहा था और वो एम्स के डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि बिना ऑपरेशन के आप ठीक नहीं हो सकते, आपको ऑपरेशन कराना ही कराना होगा। मैंने सिर्फ ध्यान करके उस स्पॉट पे एक प्रकाशित सूर्य को देखा, प्रकाशित शिवलिंग को देखा और विद इन 3 मंथ्स मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं ध्यान के जैसा कि

0: भी मैम कह रही थी कि ध्यान से आप अपने पूरे जीवन का उत्तर पा सकते हो, आंसर पा सकते हो। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए ना, आप सिर्फ ध्यान करना शुरू करो, आपकी पूरे जीवन की क्वालिटी बदल जाएगी, आपका सोचने का ढंग चेंज हो जाएगा, आप रिएक्टिव कम हो जाओगे, आप रिस्पॉन्सिव ज्यादा हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि ध्यान आपके परम स्वरूप से जोड़ता है, और जो परम स्वरूप है ना, वही आदि स्वरूप है, वही शिव है, वही अनंत है, वही चैतन्य है
1: जी। आदि योगी से हमें जोड़ता है हमारा ध्यान। और यहाँ पर अब प्रार्थना
2: शांति
1: मंत्र का पाठ किया जा रहा है।
2: दोनों हथेलियों को घर्षण कीजिए, कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे और आंखों पर।
1: जैसा कि हमने कहा कि हमारी संस्कृति जो है,
2: और धीरे धीरे
1: ये अद्भुत बात है, ये विशेषता है कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रकृति की शांति की कामना करते हैं। और मैं गुरुजी आपकी बात जब सुन रही थी तो ये भाव मन में आया कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, हम नेचर के साथ अलाइनमेंट की बात करते हैं, हम पंच तत्वों की बात करते हैं, और साथ ही हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात भी करते हैं। तो आपने जैसा कि बताया कि ध्यान हमें खुद से जोड़ता है, और कहीं ना कहीं ध्यान में मैं ये सब पा रही हूँ जो आपने कहा कि हमारे बहुत सारे जो अनसुलझे सवाल होते हैं उनके जवाब हमें अपने आप मिलने लगते हैं, और आप एक नेट की तरह हो जाते हैं। आपने कहा कि विश्व में जो कुछ भी हमारे लिए निर्धारित है वो स्वयं हम तक पहुंचने लगता है। तो बहुत ही अद्भुत बात आपने ये कही ध्यान से जुड़ी हुई।
0: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज नाउ मेकिंग हिज वे टुवर्ड्स द एग्जिट ऑफ द रेड रोड, एंड एवरीवन हु वर प्रेजेंट हियर एंड हु वर लेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन द ओकेजन ऑफ द 12th International Day of Yoga really felt touched when the Prime Minister himself went to every enthusiast and guided them in doing the asanas in the correct manner. This was indeed a great celebration at the iconic Red Road in Kolkata, where more than 3 lakh people had assembled to perform the yoga asanas and were led by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.
1: जी, जल थल नभ सभी योग में होंगे। हम जानते हैं कि भारत में तो सूर्योदय जब हो रहा है तो हमने नमस्कार किया है और साथ ही योग अभ्यास किया है। दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनमें जहां जहां भारतीय दूतावास हैं उनकी ओर से विशेष आयोजन होंगे, और अब क्योंकि बहुत सारे देश दुनिया के योग को अपना चुके हैं, पहले से योग प्रचलित रहा है, कभी हम इसे जिम में होता देखते हैं, कभी वेलनेस सेंटर में देखते हैं, और इंजर्ड होने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट हमें जिस तरह की एक्सरसाइज बताता है वो हमारे योगासनों से ही प्रेरित होती है। तो योग हमारे जीवन का हिस्सा रहा है, लेकिन अब ये पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत ने दुनिया को योग दिया है, और आधिकारिक तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए प्रयास किए और यूएन यूनेस्को ने इसे माना कि भारत का ये उपहार विश्व के लिए अनूठा है और आज संघर्षों से भरी हुई इस दुनिया में बेहद जरूरी भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि योग को हम केवल एक दिन का उत्सव ना बनाएं बल्कि इसे अपनी दिनचर्या के साथ जोड़ें।
0: योगा 365, that is what the honorable prime minister had mentioned, and we would also like to inform our listeners that as the honorable prime minister has mentioned that the gift of India was just not only Lord Buddha or peace, but also yoga. And this yoga has been practiced by Indians since times immemorial. It is as old as our civilization, which is more than 5,000 years old. And today, as Neelam rightly mentioned, that the entire world has accepted yoga, has embraced yoga, as it promotes not only healthy lifestyle but also healthy mental lifestyle. It brings about a total balance in healthy living. And Guru Munesh Sinhaji, you were mentioning about the importance of meditation. So how do a layperson begin to meditate, if you can inform our ऑडियंस?
3: यस, सबसे पहले मैं जो लोग ध्यान

0: करना चाहते हैं या ध्यान की दुनिया में आना चाहते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में वो ना जाएं, सिर्फ स्टैचू बनके 10 मिनट रोज एक महीने की प्रैक्टिस करें। एक समय चुने 10 मिनट या 15 मिनट, वो सिर्फ स्टैचू हो जाए, जैसे बच्चे में हम लोग स्टैचू गेम खेलते थे, चलते चलते अचानक कोई स्टैचू चिल्लाता था और हम जिस पोजीशन में होते थे उसी पोजीशन में रुक जाते थे। अपने जीवन में भी आप अपनी किसी एक फेवरेट जगह पे, घर के किसी कोने में आप बैठे और 15 मिनट के लिए सिर्फ स्टैचू हो जाए, और स्टैचू होने के बाद आपके मन की मन, आपकी आंखों की आंख जो आपके अंदर है, वो बहुत सारी वृत्तियों को देखेंगी। कई सारे आप पिक्चर्स देख रहे हैं, इमेजिनेशन देख रहे हैं, आप कपड़े देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं, ये सारी आपके मनस्पटल के इसमें चलती चली जाती हैं। आपको सिर्फ उसको देखते रहना है और ये कहना है कि आई एम ओनली द ऑब्जर्वर ऑफ दिस, मैं एक विटनेसर हूं जो हमारे मन के पटल पे चल रहे सारे पिक्चर्स को मात्र देखने वाला हूं। मैं एक दृष्टा हूं। द मोमेंट आप दृष्टा के भाव में जाते हैं तो आपका आपके मन से कनेक्शन दूर हो जाता है, आप शरीर और मन से अलग एक प्योर कॉन्शसनेस हो जाते हैं, जहां पे आपका शरीर और मन जन्म लेता है, पलता है और फिर उसी कॉन्शसनेस में विलय हो जाता है। जैसे ही आप इस अस्तित्व में जाते हैं तो समझने वाला और समझ एक हो जाता है। फिर पता चला शरीर और मन जो अभी विचार देख रहे थे, विचार को देखने वाला, ये सारी चीज एक हो जाती है। फिर थोड़े ही टाइम में आपके विचार आने खत्म होने शुरू हो जाते हैं और सिर्फ बचता है तो एक प्योर कॉन्शसनेस, जो सिर्फ कहते हैं बीइंग होने का एहसास, इसीलिए ह्यूमन बीइंग कहते हैं, ह्यूमन डूइंग नहीं कहते। ह्यूमन जितने भी इस पूरी पृथ्वी पे, जगत पे जितनी भी सृष्टि में लोग हैं, उनको ह्यूमन बीइंग कहा गया है, इसीलिए कि वो अपने अस्तित्व के उस सोर्स से कनेक्ट हो जाएं। द मोमेंट उस सोर्स से वो कनेक्ट होते हैं तो वो जाने अनजाने में इस पूरी ब्रह्मांड के अनंत के एक पार्ट बन जाते हैं और वो अनंत फिर उनके पूरे अस्तित्व में डोमिनेट करने लगता है। शरीर की जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो वर्ल्डली लाइफ को सिर्फ और सिर्फ 25% ऑपरेट करने के लिए वो रहता है, बाकी उसके पूरे अस्तित्व में 75% उस प्योर कॉन्शसनेस की रेडिएशन, उस प्योर कॉन्शसनेस की लाइट रेडिएट हो जाती है। इसलिए ध्यान तो मैं कहूंगा कि हर आदमी को, हर इंसान को, अगर वो इस पूरी जगत का भला चाहते हैं, इस पूरे विश्व का भला चाहते हैं, तो ध्यान करें, इससे हमारा कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होगा और कलेक्टिव कॉन्शसनेस से हमारी प्रकृति रेज होंगी। हमारा जो आज ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म और ये सारी चीजें हम विश्व में देख रहे हैं, ये सारी चीज हो ही रही है कि हम अपने से दूर चले गए हैं। अगर इस प्रयास पे, जो आज प्रधानमंत्री जी ने 21 जून का ये दिन इतना सुंदर चुना है कि पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस एक हो रही है, और ये पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस जब एक होती है तो प्रकृति की भी कॉन्शसनेस एक होती है, क्योंकि हम और प्रकृति अलग नहीं है, जो हम है वही प्रकृति है, जो प्रकृति है वही हम है।
1: जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। और ध्यान के बारे में हमने सुना है कि जब ध्यान करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ एक यंत्र मात्र हैं और प्रकृति प्राण के रूप में हमें बह रही है, हमारे थ्रू बह रही है। और ये भी हमने कहीं पढ़ा कि हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड से चलते हैं, लेकिन ध्यान हमारे सबकॉन्शियस को भी जागृत करता है, और असीम जो ताकत हमारी है किसी भी कार्य को करने की, समझने की, वो हमें देता है। कुछ पंक्तियां यहाँ पर मुझे याद आ रही हैं। स्वयं से स्वयं की मुलाकात है योग, बिखरे हुए अंतस की नई शुरुआत है योग, तन को जो साधे मन को जो शांत करे, मानवता के कल्याण की पावन सौगात है योग, ऋषियों की वो खोज जो वेदों से आई है, आज विश्व ने इसकी शक्ति मानी, अपनी श्रद्धा दिखाई है।
2: Yes, and as Guru Munish Sinha ji mentioned, and as you also mentioned, Neelam ji, that today we saw the Honorable Prime Minister lead the nation in performing yogasana at the Red Road, Kolkata. But at the same time also, yoga was just not restricted onto the land. The Indian Navy, the Indian Coast Guard and other units also performed yogasanas aboard the naval ships and Coast Guard ships, and also adjacent

0: Red Road, and there flows the River Ganga, which is also known as Hooghly, and on 500 boats, yoga enthusiasts performed yogasanas there, and in the wonderful mangrove of Sundarbans also, people performed yogasanas on board their boats and yachts, and in the mighty Himalayas, the men who guard us are vanguards of the borders. The Indian Army personnel, the ITBP personnel and others also performed yogasanas there. And also our Border Security Force personnel performed yogasana on the Thar Desert. So this is what the uniqueness of International Day of Yoga is all about, that brings together all Indians across all walks of life to perform this particular yogasana, which is our mantra for healthy aging and to stay fit both physically and mentally.
1: जी, जैसा कि हमने कहा कि जल थल नभ सभी आज योग में होंगे और अलग अलग जगह पर विभिन्न विद्यालयों में कार्यालयों में संस्थानों में योग के विशेष आयोजन होते रहे हैं इन दिनों. माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग 365 का उल्लेख किया, योग पार्क जो है वो डेडिकेटेड किए गए हैं, योग को समर्पित किए गए हैं. 100 दिनों के लिए ऑनलाइन माध्यम से योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें दुनिया भर से लोग जुड़े. माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि 130 देशों से प्रतिभागी इसमें शामिल हुए. और हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि 14 जून को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है. देशव्यापी योग सत्र में एक साथ 4 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है और ये ताकत है हमारी संस्कृति की, हमारी इस सभ्यता की, हमारे देश की, कम कि हम एक साथ एक भाव से जहां खड़े हो जाते हैं. हमारे पास संख्या बल भी इतना है, जनमानस का जो आत्मिक बल है वो भी इतना है कि जब हम एक साथ खड़े हो जाते हैं तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड उस समय बना लेते हैं. और हम अक्सर देखते रहे हैं कि अलग अलग जो आयोजन है उनकी जो स्मृति है वो संजो कर रखी जाती है. तो इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किए गए हैं और कोलकाता तो आज एक विशेष रंग में रंगा हुआ है. स्थान स्थान पर योगाभ्यास वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, स्टैंडीज लगे हैं. आज मेट्रो ने भी सुबह 4 बजे से पूरी रफ्तार से दौड़ लगाकर योग साधकों की सेवा की है. और जैसा कि आपने कहा कौशिक जी कि हमारी नदियां जो हैं उन पर जो नाव सजती रहती हैं उन्होंने भी आज एक अलग रूप दर्शाया है कि उन पर योगाभ्यास किया गया है. और पूरे देश में विशिष्ट 100 स्थानों पर बड़ी संख्या में सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा. मैं आपको बताऊं कि जब मैं ऑफिस आ रही थी तो इंडिया गेट पर मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर योग साधक जुटे थे और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने एरियाज में विभिन्न माध्यमों से योग से जुड़ रहे हैं. और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा है क्योंकि योग जो है वो कोई आयोजन नहीं है, सभी का ये एक आत्मिक पल बन गया है. सभी की एक निजी उपलब्धि है आज के इस आयोजन में शामिल होना. विश्व भर में 2500 से ज्यादा स्थानों पर उत्सव के रूप में आज योग किया जाएगा और हम उन सभी विदेशियों को भी नमन करते हैं जो हमारे इस गर्व में शामिल हैं. आज पश्चिम बंगाल में कोलकाता में रेड रोड पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया. इस बार की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग. आपने आकाशवाणी दिल्ली के माध्यम से ये प्रसारण सुना. मार्गदर्शन रहा मनीषा जैन का, प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार वत्स. मैं नीलम मलकानी अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ और साथ ही हमारे दो विशेषज्ञ जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, डॉक्टर प्रतिमा योग मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से आप वहां पर सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ और परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं. सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस विशेष प्रसारण से अब अनुमति लेती हूँ. नमस्कार.
2: नमस्कार.
3: अभी आप रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित हुए सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन रहे

0: थे। विरल दे रहे थे नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ थे परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई, राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है, सुबह के 8 बजने वाले हैं।

0: और अब मुख्य समाचार। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के तीन स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और आग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे तीन टैंकरों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत मेयलिन स्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुईं। ब्रह्मकुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया।

0: आज उत्तर प्रदेश में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की। आज गुजरात में भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: ओडिशा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग

0: दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के साथ ही एक हफ्ते तक चल योग महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
3: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
1: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रह तटीय रक्षा के लिए टॉरपीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
5: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों,

0: समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2 लाख से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेलाड। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिफ 2026 का आज समापन होगा। मिफ के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा। आज शाम मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर। इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
3: धन्यवाद फरहत। NTA ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट UG पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान लिखता है अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं नीट का शुद्ध योग, छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इसराइल के हमले, हार्मूज फिर बंद, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमरीका को घेरा, इसराइल अपनी सुरक्षा पर अड़ा। मानसून की 2 हफ्ते की सुस्ती टूटेगी, 23 से फिर आगे बढ़ेगा, दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, दुनिया में योग का बिजनेस 12 लाख करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार, लोकसत्व की सुर्खी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग। 7 सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है दुनिया के सभी महाद्वीपों के 7 शिखरों में से 6 पर फतेह की, अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद, प्रतिमाओं में स्मृतियां, हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
1: धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे

टैंकरों ने हुरमुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: बात कर रही है। दिल्ली में योग तकरीबात कई अहम मुकामात पर मुनक्किद हो रही हैं। नींव योग तकरीबात शांति पथ, कर्तव्य पथ, न्यू मोती बाग, कनॉट प्लेस में, सेंट्रल पार्क, तालकटोरा गार्डन और यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हो रही हैं। दिल्ली से रोहन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में रियासती सतह के योग के आलमी दिन के प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। ये तकरीब सादर में गैरिसन ग्राउंड में मुनक्किद हुई थी। योग के दिन की तकरीब के बाद सदर जमहूरिया रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी पहुंचेंगी, जहां वो मेहमान खुसूसी की हैसियत से यूनिवर्सिटी के 36वें तकसीम असनाद की तकरीब में शिरकत करेंगी। गवर्नर मंगूभाई पटेल भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। बाद में सदर जमहूरिया कूनो नेशनल पार्क जाएंगी, जहाँ वो सहरिया कबायली बिरादरी, चीता ट्रैकर्स और पार्क की फील्ड टीम के अरकान से मुलाकात करेंगी। योग का 12वां सालाना बैन अलाक्वामी दिन मनाने के लिए कौमी राजधानी खत्ते में बहुत से मरकजी वजरा और तंजीमें योग सेशंस में शिरकत कर रही हैं। सेहत के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने आज शांति पथ में योग के दिन की तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर एक इज्तमा से खिताब करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने योग को आलमी सतह पर ले जाकर जबरदस्त खिदमात अंजाम दी हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज योग के 12वें सालाना बैन अलाक्वामी दिन के मौके पर नई दिल्ली के नेहरू पार्क में योग तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब में भारत में नॉर्वे के सफीर मे एलन स्टेनर भी शामिल हुए। खेलों के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में योग के आलमी दिन की तकरीबात में हिस्सा लिया। अदाकार अक्षय कुमार योग सेशन खेलों के वजीर के साथ शामिल हुए। ब्रह्मा कुमारी तंजीम ने भी नई दिल्ली में लाल किले पर योग के आलमी दिन की तकरीब मनाई। उत्तर प्रदेश में आज योग के आलमी दिन के मौके पर खुसूसी योग प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। तो गवर्नर, वजीर आला, नायब वजीर आला, कानून साज असेंबली के स्पीकर, कानून साज काउंसिल के चेयरमैन और रियासत के सभी वजरा ने मुख्तलिफ जिलों में मुनक्किद योग तकरीबात में शिरकत की। सऊदी अरब के रियाद शहर में 500 से ज्यादा शुरका ने कल योग के आलमी दिन के मौके पर मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की, जिससे मुल्क में योग की बढ़ती मकबूलियत और लोगों की जिंदगी में सेहत और तंदुरुस्ती को फरोग देने में इसके रोल की अक्कासी होती है। आज योग के आलमी दिन से पहले कल मगरबी ममालिक में योग से दिलचस्पी रखने वाले अफराद ने बड़े ग्रुपों में योग की वर्जिश की। कनाडा के टोरंटो में ओंटारियो कानून साज असेंबली में सरकारी नुमाइंदों, सिफारती तंजीमों, योग की मश्क करने वालों और तंदुरुस्ती से मुतालिक इदारों और कम्युनिटी रहनुमाओं ने योग के एक पुरजोश मश्क में हिस्सा लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में भारतीय बहरिया के प्लेटफॉर्म्स में देसी टेक्नोलॉजी से तैयार किए गए 3 बहरी जंगी जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रह को पानी में उतारकर बहरिया में शामिल करने की रस्म अंजाम देंगे। बहरिया के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के जरिए डिजाइन किया गया और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के जरिए तैयार किए गए ये तीनों बहरी जहाज लड़ने की कार्रवाइयों की सलाहियतों को मुस्तहकम करेंगे। इसके अलावा ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे और बहरी आबदोज शिकन जंगी सलाहियत को भी मुस्तहकम करेंगे। INS दुनागिरी एक प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट है, जिसका मकसद ब्रह्मोस मिसाइल्स और दरमियानी दूरी की फिजाई दिफाई निजाम से लैस किया गया है। INS संशोधक एक निगरानी करने वाला जहाज है, जो साहिली और गहरे पानी में हाइड्रोग्राफिक ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि INS अग्रह एक आबदोज शिकन जंगी बहरी जहाज है, जिसे टॉरपेडोज, रॉकेट लॉन्चर्स और सुनार निजाम से लैस किया गया है। ये साहिली दिफा के लिए तैयार किया गया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कौमी अहलियत और दाखिले का टेस्ट नीट यूजी 2026 का दोबारा इम्तिहान आज कराया जाएगा। नीट यूजी 2026 का दोबारा इम्तिहान भारत में 551 शहरों और बैरून मुल्कों के 14 शहरों में मुनक्किद होगा, जिसमें 22,79,000 से ज्यादा उम्मीदवार इम्तिहान में बैठेंगे। इम्तिहान अंग्रेजी और 12 भारतीय जबानों में मुनक्किद कराए जा रहे हैं। इम्तिहान से कबल इम्तिहान कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने सभी निजाम, जैमर्स, CCTV, तलाशी लेने वाले अमले और बायोमेट्रिक की तस्दीक करने के लिए कल कौमी पैमाने पर मॉक ड्रिल का इनेकाद किया था। NTA ने कहा है कि वो साफ, शफाफ और खुशुसलूबी से इम्तिहान मुनक्किद कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
0: नीट के इम्तिहान को साफ व शफाफ और खुश उसलूबी से कराने के लिए मुशाहिदे

0: कोऑर्डिनेटर्स, पुलिस फोर्सेज और मुंतजमीन समेत 2 लाख से ज्यादा अमले को तैनात किया गया है। साफ शफाफ और मुनसिफाना इम्तहान को यकीनी बनाने के लिए एक कसीर सतही सिक्योरिटी फ्रेमवर्क भी तैनात किया गया है। इसमें CCTV, निगरानी कैमरे, आधार पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीक, सील बंद प्रोटोकॉल के तहत मखसूस मकाम पर खुफिया इम्तहान से मुतालिक साजो सामान को महफूज तरीके से हवाले करने और इम्तहान से मुतालिक साजो सामान की नकल व हमल के लिए GPS से लैस गाड़ियां शामिल हैं। NTA गलत मालूमात को रोकने, बेजाबतगी खत्म करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से निगरानी भी कर रही है। नीट के इम्तहान आज 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक मुनक़िद होंगे। दिल्ली से तकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि 8.6 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा की खेप के साथ भारतीय परचम बरदार खाम तेल के 3 टैंकर्स ने कल आबनाए हुरमुज को कामयाबी के साथ पार कर लिया है और अब वो भारत आ रहे हैं। इन टैंकरों में भारतीय अमले के 94 अफराद सवार हैं। इन टैंकरों के नाम में देश वैभव, देश विभोर और सेमर हेराल्ड हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सोनोवाल ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की फैसला कुन कयादत में हुकूमत भारतीय बहरी मफादात के तहफ्फुज़ को सबसे ज्यादा तरजीह देने पर काम कर रही है। जनाब सोनोवाल ने कहा कि उनकी वजारत भारतीय मल्लाहों और तवानाई की लाइफ लाइन्स को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने की जमानत के लिए तमाम मुतल्लिका एजेंसियों के साथ सरगर्म तरीके से तालमेल कायम कर रही है। 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल MIFF आज इख्तिताम पजीर हो जाएगा। 10 आवेजी फिल्मों, शॉर्ट फिक्शन, एनिमेशन और AI सिनेमा का ये 2 साला फेस्टिवल 15 जून को शुरू हुआ था और आज रात एक शानदार इख्तितामी तकरीर के साथ खत्म होगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: सिनेमा के शानदार रंगों से भरे 5 दिनों के बाद मिर 2026 आज इख्तिताम पजीर होगा। ताहम इख्तितामी तकरीब से पहले फिल्म शायकीन के पास मुख्तलिफ सेक्शंस में प्रिज्म, बेस्ट ऑफ फेस्ट, नेशनल कंपटीशन, मोजेक और इंडिया लाइव्स एंड लैंडस्केप्स के तहत गैर फिक्शन कहानियों की ताकत का तजर्बा करने का एक और दिन होगा। मिर के आखिरी दिन की अहम तरीन पेशकश में से एक वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट की स्क्रीनिंग होगी, जो इस लेजेंडरी फिल्म साज की 125वीं सालगिरह के मौके पर दिखाई जा रही है। आशा मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में मुनाकिद होने वाली इख्तितामी तकरीब में बैनर अक्वामी और कौमी मुकाबलों के जुमर में बेहतरीन फिल्मों को 18 अवार्ड दिए जाएंगे। मुंबई से अंकित आपके की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: भारतीय महकमा मौसमियात ने आज जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में और बहुत तेज बारिश के सबब रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने जुमेरात तक असम मेघालय में इक्का दुक्का मकामात पर भी तेज बारिश की पेशगोई की है। क्रिकेट में आज जम्बूला में खेली जाने वाली 3 मुल्कों की सीरीज के फाइनल में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। अपने साबिका मैच में शिकस्त को भुलाते हुए इंडिया ए श्रीलंका ए को हराने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
0: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात में आज योग के आलमी दिन से मुतल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रसाद की सिलसिले में शह सुर्खी है, आयोग के बैन अक्वामी दिन के मौके पर आयुष की वजारत ने लोगों से बड़ी तादाद में हिस्सा लेने की अपील की। अखबार इंकलाब की सुर्खी है, सख्त सिक्योरिटी के दरमियान नीट इम्तहान, शफाफ और नकल से पाक, इम्तहान के लिए मरकज और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बड़ी तैयारियां। अखबारात ने उड़ीसा में वजीर आजम के हाथों 47,600 करोड़ रुपए के मंसूबे का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखे जाने से मुतल्लिक खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है।
1: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। आज दुनिया भर में योग का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में तारीखी रेड रूट से मुश्तरका योग प्रोटोकॉल अपनाने में मुल्क की कयादत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में 3 बहरी जंगी जहाजों INS दुनागरी, INS संशोधक और INS अग्रह को पानी में उतारकर बहरिया में शामिल करने की रस्म भी अंजाम देंगे। इम्तहान मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी आज से पहले भारत और बैरून मुल्क में नीट UG के दोबारा इम्तहान मुनाकिद कराएगी। भारतीय परचम बरदार 3 ऑयल टैंकर्स ने कामयाबी के साथ आबनाए हुरमुज पार कर लिया है, जिसमें 8.6 लाख से ज्यादा मैट्रिक टन तेल लदा है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
3: थोड़ी ही देर में सुनेंगे आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। पूरी दुनिया में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में देश का किया नेतृत्व। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में लिया हिस्सा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और ब्रजेश पाठक लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त। प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान हुए लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। और आज देश के 551 शहरों में आयोजित होगी नीट UG पुनर्परीक्षा। सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम।

0: योगाभ्यास के। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश ही नहीं दुनिया भर में योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य समारोह से देश का नेतृत्व किया। वहां उन्होंने योगाभ्यास कर योग को दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाने का संदेश दिया। प्रदेश में भी योग दिवस के अवसर पर सभी जनपदों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और योगाभ्यास कर निरोगी रहने का संदेश देते हुए प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं और आप सभी का मैं बुंदेलखंड वासियों का प्रदेशवासियों का इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के लोगों को, 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सब के लिए एक विजन प्रस्तुत किया है।
0: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और ब्रजेश पाठक लखनऊ में योग दिवस पर होने वाले

0: कार्यक्रमों में शामिल हुए। वहीं लखनऊ स्थित जन भवन में इस अवसर पर महिला आयोग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व में महिलाओं ने योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। इसी तरह विभिन्न जनपदों में प्रदेश सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल हुए। योग दिवस पर विद्यालयों में सामूहिक योगाभ्यास और योग से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां विद्यार्थियों को योग के शारीरिक और आध्यात्मिक लाभों के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पश्चिम बंगाल के हुगली में तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। इनमें उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं, जिनके खातों में 4,352 करोड़ रुपए की राशि पहुंची है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देशभर के किसानों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया।
1: पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
0: प्रदेश भर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री योगी ने प्रदेश के किसानों की ओर से इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि अन्नदाता के परिश्रम, सम्मान और समृद्धि के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक है। प्रदेश के किसानों ने खुशी व्यक्त करते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। जौनपुर के एक लाभार्थी ने कहा,
2: किसानों को बहुत फायदा मिलता है। बीज लेने के लिए, खाद लेने के लिए, जुताई देने के लिए काम आ जाता है। उसके लिए हम प्रधानमंत्री के आभारी हैं। जैसे छोटे मोटे किसान हैं, उनको फायदा हो जाता है, इससे किसानों को आसान हो जाता है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ललितपुर में 1,766 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 221 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड विकास का एक मॉडल बन रहा है। उन्होंने कहा कि हर घर नल योजना बुंदेलखंड में साकार हो रही है। शुद्ध पेयजल लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है।
3: अब मुझे अच्छा लगता है कि हमारी बहन और बेटियां, हमारी माताएं सिर में घड़ा लेकर के नहीं, हर घर नल की योजना साकार हो रही है। बुंदेलखंड के अंदर शुद्ध पेयजल उनके घर तक पहुंचाने का काम हो रहा है, तो बुंदेलखंड अब एक मॉडल बन रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी अगर हम कहीं बसाने जा रहे हैं, तो वह भी बुंदेलखंड में बसाने जा रहे हैं।
0: श्री योगी ने कहा कि ललितपुर में प्रदेश का पहला फार्मा पार्क विकसित किया जा रहा है।
3: आज ललितपुर बदल चुका है। अब ललितपुर के पास अपना मेडिकल कॉलेज भी है, अटल आवासीय विद्यालय भी है, और अभी 1,500 एकड़ क्षेत्रफल में हम उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क आपके ललितपुर जनपद में बनाने जा रहे हैं।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और XHandle AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट UG की पुनर्परीक्षा आज देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में 22,69,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को इस बार परीक्षा में 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। इससे पहले 3 मई को हुई नीट की परीक्षा कथित पेपर लीक विवाद के कारण रद्द कर दी गई थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और नकलविहीन ढंग से कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। सभी केंद्रों पर CCTV कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। केंद्रों पर मजिस्ट्रेटों की तैनाती के साथ पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। प्रदेश में 59 जिलों में नीट की पुनर्परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल

0: विशेष अनारक्षित स्पेशल रेलगाड़ियां चला रहा है। वहीं प्रवेश पत्र दिखाने पर अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% की छूट भी दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इसी कड़ी में आज हम सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों की जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकान जनगणना का काम कल 100% पूरा कर लिया गया। पहले चरण में निर्धारित 22 मई से 20 जून 2026 तक घरों की गणना का कार्य संपन्न हुआ। राज्य के जनगणना कार्य निदेशालय के अनुसार जनगणना का दूसरा चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की गणना होगी। इसी चरण में जाति गणना भी की जाएगी। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पूरी दुनिया में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में देश का किया नेतृत्व। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में लिया हिस्सा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और ब्रजेश पाठक लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त। प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान हुए लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। और आज देश के 551 शहरों में आयोजित होगी नीट यूजी पुनर्परीक्षा। सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
4: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम मधुरिमा।
5: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
6: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
7: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
9: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
8: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
9: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
8: बुकिंग हेतु

0: संपर्क करें
1: 0542227658
2: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: मधुरिमा कार्यक्रम सुनने वालों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ज्योति स्वरूप का नमस्कार। दोस्तों, इस वर्ष की थीम है स्वस्थ बढ़ती आयु के लिए योग। उत्तम स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु जीवन और निरोगी काया के लिए योग को हम सभी को अपनाना चाहिए। जीवन में ऊर्जा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए योग करना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य, एकता, शांति और समग्र स्वास्थ्य का प्रतीक है। मन और शरीर के बीच सांसों का पूर्ण संतुलन योग से ही संभव है। योग भारत की प्राचीन परंपरा, प्राकृतिक विज्ञान है जो शरीर, मन, आत्मा को जोड़ता है।

0: कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटवा ढूंढ रहे? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? RBI कहता है कि
1: डिजिटल पेमेंट अपनाओ,
2: औरों को भी सिखाओ।
3: आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मधुरिमा। साथियों, योग दिवस शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के प्रति सभी को जागरूक करना है। योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है। 21 जून से सूर्य दक्षिणायन होने लगता है। भारतीय संस्कृति और योग विज्ञान में सूर्य के दक्षिणायन के समय को आध्यात्मिक सिद्धियों, सकारात्मक ऊर्जा और ध्यान के लिए बेहद उपयुक्त है। स्वस्थ जीवन के लिए बड़े मनोयोग से योग करें, योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।

योग के साथ साथ संगीत से शांति का एहसास होता है। संगीत दिलों को जोड़ने का काम करता है, आत्मा को सुकून देता है, इंसान की भावनाओं को उजागर करता है। संगीत हर रूप में जीवन को रंग, लय, भावनाओं से भर देता है।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:15 हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सामयिक चर्चा हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों के दौरान शिक्षा क्षेत्र में हुए नवाचारों और विद्यार्थियों के समग्र विकास पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल से खास बातचीत। वार्ताकार है आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार ने बीते 12 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। सरकार ने नई शिक्षा नीति, रोजगार परक कोर्सेज, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने जैसी पहलों के जरिए उच्च शिक्षा को विद्यार्थियों के समग्र विकास का जरिया बनाया है। बीते 12 वर्षों की इस यात्रा पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति राजकुमार मित्तल जी। राजकुमार जी, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर मित्तल, आप खुद एक शिक्षाविद हैं और एक बहुत ही अहम केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर भी विराजमान हैं, और आपने जो एक लंबा वक्त शिक्षा के क्षेत्र में बिताया है, अपने अनुभव से बताएं कि बीते 12 वर्षों में एनडीए की सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें आप कैसे देखते हैं?
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के जो 12 साल का कार्यकाल रहा वो बहुत ही हम सबके लिए प्रेरणादायक, उत्साही और अनेक तरह के सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी परिवर्तन हुए, और मुझे लगता है कि इन सब परिवर्तनों को करने का जो पीछे आधार रहता है वो शिक्षा ही रहती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी शिक्षा पे बहुत महत्व देते हैं और हम देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसकी प्रगति के रूप में देख सकते हैं, और इसमें शिक्षा नीति में एक ट्रांसफॉर्मेटिव का पोटेंशियल है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके समक्ष विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, क्रिटिकल एरिया में टेक्नोलॉजी के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, मेड इन इंडिया का जो कंसेप्ट दिया, ये सारे के सारे एक बड़े ही इनोवेटिव, रिफॉर्मेटिव टाइप के कंसेप्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए, और इन सबके पीछे जो आधार है वो शिक्षा नीति ही है। शिक्षा में बहुत सारे परिवर्तन आज हम देखते हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की बात हो। भारत आज विश्व का तीसरा स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा हुआ है, और आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि बाहर से भी लोग जो पहले अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़कर IIT IIM से बाहर जाते थे, अब लोग भारत में ही अनेक तरह की संभावनाएं खुली हैं, उसमें आप काम देख रहे हैं, बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, स्टार्टअप लगा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन मुझे लगता है हुआ है। स्वदेशी इंडियनाइजेशन बहुत बड़े स्केल पर, चाहे वो डिफेंस हो, एनर्जी सेक्टर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र हो या और अन्य क्षेत्र, कृषि वगैरह में, इन सब में भी स्वदेशीकरण बहुत बड़े पैमाने पर और जो नवाचार है वो हुआ है। इसके पीछे भी जो मुझे लगता है कि वो शिक्षा ही आधार के रूप में कार्य करता है।
4: जी प्रोफेसर मित्तल, जैसे कि हम लगातार देखते रहे हैं कि प्रधानमंत्री युवा शक्ति को बहुत महत्व देते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि युवा शक्ति ही है वो आगे लीड करेगी और भारत को ग्लोबल लेवल पर एक पहचान देने में अहम भूमिका निभाएगी। तो शिक्षा नीति की जहां आप बात कर रहे थे, बहुत लंबे समय के बाद ये परिवर्तन आया और नई शिक्षा नीति लाई गई, कितनी जरूरत थी इसकी?
3: देखिए, भारत हम सब जानते हैं कि विश्व की जो 20% के करीब लगभग युवा शक्ति वो भारत में रहती है। भारत युवाओं का देश है और पॉपुलेशन डिविडेंड जो एक हमें एक यूनिक सिचुएशन हमें दिखती है, उसका सदुपयोग करना उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने युवाओं को स्किल करें, उसकी इम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाएं, उनमें व्यवहारिक ज्ञान दें और उनके लिए अर्थव्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए नए अपॉर्चुनिटी खोलें। और सरकार आज जो आवश्यकता है, मुझे तो ये लगता है कि जो भारत का विकास है वो उद्यमिता के रास्ते होगा, यानी उनका जॉब सीकिंग बिहेवियर की बजाय जॉब प्रोवाइडर उनका जो बिहेवियर होगा, माइंडसेट, वो बहुत आगे भारत को लेके जाएगा। भारत ऐसा ही देश था जहां पर उद्यमशीलता पाई जाती थी और पूरे विश्व का लगभग एक तिहाई

0: जो ट्रेड था, उत्पादन था, वो यहीं से होता था, और बेरोजगारी और ये इस तरह की जो दूसरी समस्याएं थी वो उस समय नहीं दिखती थी। तो आज मुझे लगता है कि बहुत युवाओं को उनका जो पोटेंशियल हमारे पास एक अवेलेबल है, ये विश्व में कहीं और इतनी बड़ी संख्या नहीं है, इसका सदुपयोग करना और इसको सही रास्ते पर, इसकी इम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना, इनके पोटेंशियल को रियलाइज करना, इनकी कैपेबिलिटी को इनहांस करना, ये हम सबके लिए आवश्यक है। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो इसी की तरफ ले जाती है।
1: जी, जैसा कि आपने कहा कि नई शिक्षा नीति ने बिल्कुल नया आयाम दे दिया है शिक्षा को, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग की हम बात करें या खेलों की बात करें, खेलों को भी बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे वो छोटे लेवल पे हो, बड़े लेवल पे हो। तो नई शिक्षा नीति के तहत अगर हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की बात करें, आपकी विश्वविद्यालय

0: करना, इनकी कैपेबिलिटी को इन्हांस करना, ये हम सबके लिए आवश्यक है और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो इसी की तरफ ले जाती है।
1: जी, जैसा कि आपने कहा कि नई शिक्षा नीति ने बिल्कुल नया आयाम दे दिया है शिक्षा को, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग की हम बात करें या खेलों की बात करें, खेलों को भी बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे वो छोटे लेवल पे हो, बड़े लेवल पे हो। तो नई शिक्षा नीति के तहत अगर हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की बात करें, आपकी विश्वविद्यालय ने कौन कौन से अहम कदम उठाए हैं?
0: देखिए सर, जैसे मैंने बताया कि शिक्षा नीति का एक जो स्तंभ है वो है उद्यमशीलता को प्रेरित करना। उसके लिए हमने अपने विश्वविद्यालय में नव कल्पना के नाम से एक सेक्शन 8 कंपनी खोली है, और आपको मैं बताते हुए मैंने बड़े खुशी का अनुभव हो रहा है कि लगभग 25-26 हमारे पास विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने इस कंपनी के अंतर्गत अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराया और वो नए नए आइडिया पे काम कर रहे हैं ताकि अल्टीमेटली वो एक स्टार्टअप कर सकें अपना। हम उसके लिए एक हमारा बोर्ड है, इंडस्ट्री के साथ अपना जुड़ाव हम बढ़ा रहे हैं और हमारा कोशिश होगा कि जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं उनको भी इस सुविधा का लाभ दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा उद्यमशीलता की जो भावना है उनमें भी वो जाए, इसकी तरफ हम नव कल्पना के माध्यम से लगे हुए हैं। एक तो ये एक बहुत बड़ा कदम हमने उठाया।
1: जी
0: दूसरा जो कदम महत्वपूर्ण है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के को आप ध्यान से देखें तो वो ये बात कहती है कि विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास होना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने विश्वविद्यालय में 12 अभी हॉबी क्लब्स खोले हैं, जैसे कि डांस, ड्रामा, अर्बन गार्डनिंग, खाने पीने का, कुजीन, एंटरप्रेन्योरशिप, एनवायरमेंट के ऊपर सेंसिटिविटी और ऐसे ऐसे कुछ फोटोग्राफी, ये खोले हैं। हम ये मानते हैं कि बच्चे को इनमें रुचि लेनी चाहिए अपने स्वभाव और अपनी सोच के मुताबिक। दूसरा, तीसरा यदि आप देखें तो हमारे विश्वविद्यालय में 250 एकड़ की उसमें भूमि पर ये एक बहुत हरा भरा कैंपस है जिसमें ग्रीनरी के ऊपर बहुत फोकस है। 1.5 लाख से ज्यादा इसमें प्लांट्स लगे हुए हैं। अभी हमने पिछले साल ही इसमें रिकॉर्ड किया था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, एक साथ सबसे ज्यादा प्लांट एक समय में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ मिलकर लगाए थे और अब हमारा फोकस यहाँ पर जो फ्रूट बेस्ड प्लांट है वो लगे। हमने एक उत्तर प्रदेश सरकार की मदद से एक हर्बल गार्डन भी विकसित किया है। चौथा पॉइंट हम योगा का देते हैं, योगा, मेडिटेशन और उनका जो मेंटल स्ट्रेस लेवल के माध्यम से एक हमने उम्मीद नाम से एक प्लेटफॉर्म किया है। उस प्लेटफॉर्म में हमारे पास योगा के टीचर हैं, मेडिटेशन के हैं, आयुर्वेद के टीचर हैं, हॉस्पिटल हमारा है और भी जो अलग अलग साइकोलॉजी का एक काउंसलर लगा हुआ है। ये सारे के सारे बच्चों में बच्चों की गाइडेंस, उनकी काउंसलिंग, इसी तरीके से हमारे और भी बहुत सारे इसमें प्लेटफॉर्म है, NCC, NSS, जो विद्यार्थियों के फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग और इंटेलेक्चुअल लेवल को सामूहिक रूप से देखते हैं ताकि उनका विकास समग्रता से बन सके और वो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी और समाज के भी काम आ सके। तो ये भी एक बार हमारी सोच इस दिशा में भी निरंतर चलती रहती है।
1: जी सर, एक अहम पहलू आजकल जिस पर सरकार फोकस कर रही है वो है डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रही है, और दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये दोनों जो चीजें हैं, आपको क्या लगता है कि हायर स्टडीज को किस तरह से और बेहतर बनाएंगी या इसका क्या फ्यूचर है आने वाले समय में?
0: देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं मानता हूँ कि एक टेक्नोलॉजी है जिसका दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं और मैं तो ये मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी जब आती है वो एक नदी में जो जल है उसके प्रवाह की तरह होती है, वो आएगी और नीचे बहेगी जैसे नदी बहती है, इसी तरह टेक्नोलॉजी आएगी और उसका इंडस्ट्री में, समाज में और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का प्रयोग भी होगा। उसका हमें सिर्फ ये देखना है कि हम उसके साथ एडजस्टमेंट कैसे करें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो दो तीन करेक्टरिस्टिक जो मनुष्य में जो टेक्नोलॉजी से अलग उसको पहचान देते हैं वो है जजमेंट करने का कि कोई काम करना है नहीं करना, ये जजमेंट टेक्नोलॉजी नहीं देगी। मगर हम व्यक्ति को अपना दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा, अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये जो विवेक का प्रयोग है ये शायद अभी तक प्रकृति ने मनुष्य के पास ही रखा है। लीडरशिप है कि कोई काम कब कर, टेक्नोलॉजी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको यूज करोगे जब आप कहोगे तो तब हो जाएगी, नहीं करोगे तो वो अपने आप तो कुछ नहीं करेगी। वो तो लीडरशिप का जो है इनिशिएटिव लेना, रिस्क लेना, काम करना, लोगों के साथ बातचीत करना, गाइडेंस देना, नर्चरिंग करना, ये और

0: ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होते हैं लीडरशिप के, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं उनको रिप्लेस कर सकती। और मेरा ये मानना है कि जो क्रिएशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ क्रिएशन, क्रिएशन कैन नॉट रिप्लेस द क्रिएटर इन ए वे। क्रिएटर से बड़ा नहीं हो सकती वो क्रिएशन। कोई पेंटिंग बनाता है तो पेंटिंग बड़ी नहीं हो सकती, जो पेंटर है वही बड़ा रहेगा, और आगे वो इससे भी बेहतर बना सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, इससे ऊपर भी कोई अभी होगी, तो पहले जो भी टेक्नोलॉजी आती है हम मानते हैं यही अल्टीमेट है, मगर इसमें इम्प्रूवमेंट आदमी करता रहता है, व्यक्ति मानव। तो इसलिए तो मानव को तो रिप्लेस नहीं कर सकती, मगर इसमें पोटेंशियल बहुत लाभ का है, क्योंकि जो आज स्कोप है इसका, प्रोडक्टिविटी उत्पादकता ये बढ़ाती है, स्पीड पे ये काम करती है, और उसको और बेहतर स्टोरी टेलिंग के तरीके से भी चीजों को प्रेजेंट कर दिया जाता है। तो इसका मतलब, इसका प्रयोग लाभ बहुत है शिक्षा में, और हमारा विश्वविद्यालय ये है कि हमने एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है। हमारी सोच है कि जो सभी विद्यार्थी हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया जाए, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, उसकी इम्पोर्टेंस को और उसके रेलेवेंस को और उसके लाभ को सब बच्चों तक ले जाया जाए।
1: जी सर, अगर रिसर्च की बात करें, जैसे रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो अंबेडकर विश्वविद्यालय में इस तरह के कौन से कदम उठाए जा रहे हैं जिससे जो छात्र हैं वो रिसर्च और इनोवेशन को और अधिक अच्छे तरीके से परस्यू कर सकें?
0: हमारे पहला तो प्रयत्न यही रहता है कि अच्छे विद्यार्थियों को इसमें रिसर्च में लाया जाए, और जो हमारा जो लाइब्रेरी है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, इसके माध्यम से आज सब जो बेस्ट जर्नल्स हैं वो बच्चों को अवेलेबल कराए जाते हैं। बच्चों के साथ उनकी काउंसलिंग और गाइडेंस और उनके साथ ओरिएंटेशन वो किया जाता है। एक हमारा एमिनेंट लेक्चर सीरीज प्रोग्राम होता है, जिसमें जो भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में जिसने काम किया हो उनके साथ लेक्चर होता है, उनके साथ बच्चे इंटरेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो रिसर्च है हम उसको प्रमोट करते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को, और ज्यादातर बच्चों को फेलोशिप दी जाती है, चाहे वो यूजीसी की फेलोशिप हो, जेआरएफ हो या कोई और फेलोशिप हो, ताकि उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और अब हमारा जो प्रयत्न लगातार जारी है वो हम थोड़े थोड़े रिफॉर्म करके पीएसडी ऑर्डिनेंसेज में और बच्चों के साथ संवाद करके हम चाहते हैं कि बच्चों का एक आउटकम बेस्ड रिसर्च हो, यानी रिसर्च फोकस्ड वे में, कि क्या उसका इकोनॉमिक वैल्यू होगी, क्या उसकी सोशल वैल्यू होगी, इस पर हम शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि जो क्वालिटी और जो रिसर्च निकले उसका उपयोग हो कोई, इसकी तरफ हम लगातार कोशिश कर रहे हैं।
1: सर, आपने बताया कि आपके यहाँ स्कॉलरशिप्स, फेलोशिप्स ये सब दी जा रही है छात्रों को बढ़ावा देने के लिए। सरकार ने जो कदम उठाए उनमें एक अहम कदम है कि जो स्कॉलरशिप्स और जो फेलोशिप्स हैं इनको भी बढ़ाया है, तो इससे आपको लग रहा है कि कितना परिवर्तन आ रहा है?
0: देखिए, विद्यार्थियों को एक बहुत बड़ा है कि आप यूजीसी की जो जेआरएफ है उसमें लगभग 40-42 हजार पे बच्चों को मिल जाते हैं, इतना एक फेलोशिप 5 साल तक बच्चा कोई भी किसी टॉपिक के ऊपर बड़े आराम से बिना किसी तनाव के अच्छे तरीके से रिसर्च कर सकता है, बाहर रह सकता है। तो ये सारी ऐसी बातें हैं जो सरकार ने की हैं, और इसके माध्यम से एक उनके आत्मबल को भी बढ़ावा मिलता है कि उनको इस टाइम में कोई नौकरी नहीं ढूंढनी, ये बहुत कॉन्फिडेंस देता है उसमें।
1: सर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में इस वक्त एडमिशन की प्रक्रिया भी चल रही है, तो जो छात्र आपके यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं उनको क्या करना होगा, उसकी क्या प्रक्रिया है?
0: बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो मुख्य कैंपस है और जो अमेठी सैटेलाइट कैंपस है, उसमें पीजी एडमिशन की प्रक्रिया अभी जारी है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी चला हुआ है सीयूटी के माध्यम से, कोई भी उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है और ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। इसके साथ साथ यदि जो बच्चे दूर दराज में या किसी कारणों से नहीं भर पाते और सीटें जो बच जाती हैं उनके लिए नॉन सीयूटी का भी प्रावधान किया हुआ है, अभी थोड़े दिन के बाद जो यूजी लेवल का है वो भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और मैं तो यही कहूंगा कि विश्वविद्यालय ने एक अपनी प्रतिष्ठा बनाई है, हमारा विश्वविद्यालय नैक A++ रेट यूनिवर्सिटी है, जो कि हाईएस्ट ग्रेड नैक से मिलता है। अभी NIRF में भी हमारा 69th रैंक है, और अभी जो IIRF इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, उसमें हमारा 19वां नंबर है। तो सारे पैरामीटर के जो ग्रेडिंग और रेटिंग के पैरामीटर है, उसमें हम काफी ऊपर, हमारे रिकॉग्निशन मिलती है हमें। और हमारा प्रयत्न भी है कि विद्यार्थियों की जो बदलते समय में जो जरूरतें हैं, उनके साथ संवेदनशीलता से उनको पूरा कर उनमें योग्यताएं कैपेबिलिटी का विकास किया जाए। तो मैं

0: सभी विद्यार्थियों से ये आश्वासन देता हूँ कि उनको शिक्षा की जो क्वालिटी एजुकेशन से संबंधित जो बातें हैं ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उनको पूरा करता है।
1: हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।
0: धन्यवाद आपका।
2: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों के दौरान शिक्षा क्षेत्र में हुए नवाचारों और विद्यार्थियों के समग्र विकास पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल से खास बातचीत। वार्ताकार थी आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।
3: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाश हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। पेश है उर्दू कार्यक्रम। पेशकश आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज की है।
4: सामईन आदाब, उर्दू प्रोग्राम के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में आपका मेज़बान मोहम्मद फर्रुख जमाल। आज 21 जून है और आज के दिन को आलमी योम योगा के तौर पर मनाया जाता है। इस हवाले से आप समाअत फरमाएंगे। पहले एक मुख्तसर तकरीर। योगा सिर्फ वर्जिश नहीं बेहतर जिंदगी जीने का फन भी है। इसके बाद हम आलमी योम योगा के हवाले से आपके एक उभी रिपोर्ट सुनवाएंगे और प्रोग्राम के आखिर में आप समाअत फरमाएंगे जनाबे राज आजमी से उनका कलाम। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस मुख्तसर तकरीर से। उन्वान है योगा सिर्फ वर्जिश ही नहीं बेहतर जिंदगी के जीने का फन भी है। आलमी योम योगा हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का खास मकसद यह है कि हिंदुस्तान की कदीम सकाफत के जरिए जिस्मानी, जहनी और रूहानी मशक्कतों के साथ सेहत और तंदुरुस्ती के फवायद को आलमी सतह पर उजागर किया जा सके। योगा करने के बहुत से फायदे हैं। योगा करने से बहुत सी बीमारियों से हम निजात हासिल कर सकते हैं, खुद को चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं, साथ ही योगा करने से रूहानी सुकून भी मिलता है। अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा वक्त निकाल कर योगा को एक मामूल बना लें तो यकीनन आपके जिस्मानी और जहनी तौर पर फवायद सामने नजर आएंगे। वजीर आजम ने हिंदुस्तानी अवाम को सेहत के तई बेदार रखने के लिए योगा को न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक नई शिनाख्त अता कराई है और पूरी दुनिया को योगा की अफादियत से मुतारिफ कराया है। 2014 में अक्वामे मुत्तहदा की जनरल असेंबली में इस दिन को आलमी सतह पर मनाने की तजवीज पेश की थी। 11 दिसंबर सन 2014 को इस तजवीज को मंजूरी मिल गई और पहला आलमी योम योगा 21 जून सन 2015 को मनाया गया। इस साल 12वां योम योगा हम मना रहे हैं। इस मौके पर सरकारी महकमों, स्कूलों, कॉलेजों और दीगर इदारों में योगा के हवाले से खुसूसी प्रोग्रामों का इनेकाद भी किया जा रहा है। बैनुल अक्वामी योम योगा के मौके पर हमें योगा की अफादियत को समझना होगा। योगा के बहुत से फायदे हैं। हमें अपनी जिंदगी में इसे दाखिल करना होगा ताकि सेहत के साथ साथ हमारा जहन भी तरोताजा रहे। योगा सिर्फ वर्जिश ही नहीं बेहतर जिंदगी जीने का फन भी है। सामईन, अभी आप आलमी योम योगा के मौके पर ये मुख्तसर तकरीर समाअत फरमा रहे थे और अब समाअत फरमाइए एक ओबी रिपोर्ट आलमी योम योगा के हवाले से जिसे पेश कर रहे हैं शफकत अली खान।
5: सामईन, आलमी योगा डे पूरी दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है, लेकिन इसकी तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो जाया करती हैं। हमने बातचीत की है कुछ ऐसी शख्सियतों से जो आलमी योगा डे के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद कर रही हैं। इस मौके पर हमने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर पूनम टंडन से बातचीत की तो उन्होंने हमें बताया कि
6: अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर आपको मैं सब बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, योग जो है भारत से निकली हुई एक विधा है और इसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज वैश्विक स्तर पर इसको पहचान दिलाई। इसको वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है हर देश में। मैंने कई जगह देखा। एक बार मैं कनाडा में थी, एक महीने पहले से उस समुद्र के किनारे योगा दिवस की बहुत बड़ी रूप से तैयारियां चल रही थी और भारत में हम लोग लगा

0: लगातार इसका मना रहे हैं और गोरखपुर का महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि हठ योग का ओरिजिन यहाँ से हुआ है और हमारी गोरखपीठ से हठ योग का ओरिजिन हुआ है। तो योगा का एक बड़ा एक सेंटर भी है गोरखपुर। और गोरखपुर विश्वविद्यालय की अगर बात करें, हम लोगों ने 5 जून से योगा दिवस का लगातार कार्यक्रम करा रहे हैं।
1: यूनिवर्सिटी के अलावा भी क्या आप लोग योगा के प्रोग्राम और भी कहीं मुनाकिद कर रहे हैं?
0: योग का कार्यक्रम जो जेल में महिला बंदी हैं उनके लिए योग का कार्यक्रम कराया, उसके बाद बाल गृह में हमने कराया, कैंसर रोगियों के लिए हमने कराया, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए हमने अवेयरनेस प्रोग्राम कराया। योगा के ऐसे आसन हैं जो उनकी प्रेगनेंसी में उनको हेल्प कर सकता है और प्रेगनेंसी के पीरियड उनको बेहतर बना सकता है और शायद बच्चे के विकास में भी बेहतर हेल्प कर सकता है इसके लिए।
1: ये बताइए कि आपकी यूनिवर्सिटी में योग बंधन का प्रोग्राम मुनाकिद किया गया था, आखिर इसका मकसद क्या था?
0: हम लोगों ने योग बंधन का एक कार्यक्रम कराया, वो जो अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय थे 5 देशों के साथ में, उसमें मलेशिया और उसके बाद हमारा बैंकॉक थाईलैंड के साथ हमने करा और फिजी के साथ हमने करा और इस तरह विश्व के अलग अलग देशों के साथ में हमने योगा की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज करी, योगा के लिए अवेयरनेस करी और उसमें बहुत उत्साह दिखाई दिया हमारे अंतरराष्ट्रीय पार्टिसिपेंट का, बहुत उत्साह दिखाई दिया।
1: क्या गोरखपुर यूनिवर्सिटी में ऐसा मुकाम भी है जहाँ योगा करने की सहूलियत दस्तियाब है?
0: हमारे यहाँ एक योग वाटिका की स्थापना करी है हम लोगों ने कैंपस में, उस योग वाटिका में हमने बच्चों के लिए शिविर लगाए अपने छात्र छात्राओं के लिए, एनएसएस ने कराया। एक चौरी चौरा स्मारक है हमारे विश्वविद्यालय में, वहां पे हमने योग का कार्यक्रम कराया अपने बच्चों के लिए। उसके अलावा आज हमारे यहाँ 5 दिन का प्रशिक्षण शिविर चल रहा था, गोरखनाथ शोधपीठ हमारे यहाँ उसमें चल रहा था, तो आज उसका समापन था। उसके बाद अभी और कार्यक्रम बचे हैं हमारे, हम लोग यहाँ से योगा को लेकर एक रैली निकालेंगे अवेयरनेस के लिए। यहाँ से जो चंपा देवी पार्क है वहां तक हम लोग जाएंगे, योग के अवेयरनेस को एक मैसेज देंगे, पूरे प्रदेश को एक मैसेज देंगे और बल्कि विश्व को एक मैसेज देंगे योगा के लिए।
1: आलमी यौम योगा के बारे में बताते हुए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोरखपुर के आयुष विंग के डॉक्टर संतोष गुप्ता,
2: यहाँ पर योग के द्वारा किस चीज का निदान किया जाता है उसके बारे में बताया जाता है और कैसे योग करें जिससे प्रत्येक जो बीमार व्यक्ति हैं, जिनकी हड्डियां कमजोर हैं या जिनको सर्वाइकल है, जिनको बैक पेन है, उस सब चीजों का यहाँ पर उपचार किया जाता है। वज्रासन एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो आप खाना खाने के बाद ही कर सकते हैं, इससे आपकी जो गैस है, एसिडिटी है, बनी रहती है बार बार जो महसूस करते हैं लोग, उसकी समस्या से निदान मिलेगा। केवल मात्र 15-20 मिनट खाना खाने के बाद आप वज्रासन की अवस्था में बैठिए, आपकी गैस की समस्या का समाधान हमेशा के लिए हो जाएगा। योग का महत्व जो है, ऋषि मुनियों ने हमारे बहुत ही विस्तृत योगा के बारे में बताया है। जो महर्षि पतंजलि है, इन्होंने योग का पूरा विश्व पर एक अलग पहचान बनाई है और उन्होंने योग का एक ऐसा वरदान दिया है कि जिससे मनुष्य जाति स्वस्थ रह सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको विश्वव्यापी बनाया है, इसलिए कि सभी व्यक्ति, जो पृथ्वी पर सभी व्यक्ति जितने भी लोग हैं, वो स्वस्थ रह सके और ये स्वस्थ रहने का एक ही उपाय है योग। योग अगर आप अपने दिनचर्या में उतार लेते हैं तो किसी भी तरह की आप बीमारी से ग्रसित होने से बच जाएंगे और हमेशा पूरे जीवन आप स्वस्थ रहेंगे।
1: इस मौके पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की प्रोफेसर अनुभूति दुबे ने हमें बताया कि
3: हमारे विश्वविद्यालय में हर वर्ष लगभग 1 महीने का कार्यक्रम किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में। इस वर्ष भी 1 जून से 21 जून तक लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हैं। जैसे कुछ कार्यक्रम हमने एक 4 दिन की योग प्रशिक्षण वर्कशॉप की थी, जो शहर के बच्चे बड़े कोई भी आकर के उस वर्कशॉप को अटेंड कर सकते थे, वो फ्री था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे विश्वविद्यालय के जो तमाम सारे जगहों से MOUs हैं कई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से, जैसे मलेशिया से, फिजी से, तो उनके साथ हम लोगों ने ऑनलाइन कार्यक्रम किए। अभी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से चंपा देवी पार्क तक योग जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो हर वर्ष हम लोग कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से।
1: क्या आलमी योगा डे के मौके पर यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म भी हिस्सा ले रहे हैं?
3: हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं, जो भी यहाँ पर शहर में उपलब्ध हैं छात्र छात्राएं, उनको आमंत्रित किया है, अपने अलुमनाई के साथ एक नेटवर्क बना रहे हैं। हाँ, तो उनके साथ योग का कार्यक्रम है। 21 तारीख को हर वर्ष हमारे वहाँ विश्वविद्यालय परिसर में, जो हमारा स्टेडियम है, उस स्टेडियम में एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें विश्वविद्यालय के शिक्षक, छात्र छात्राएं, कर्मचारी और शहर के जो भी लोग आना चाहें वो वहाँ पर आकर के उस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर सकते हैं, जहाँ पर योग प्रशिक्षक होते हैं और

0: योग का कार्यक्रम किया जाता है।
1: आलमी योम योगा के मौके पर 45 एनसीसी बटालियन गोरखपुर के एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर कैप्टन डॉक्टर वाहिद अली ने हमें बताया कि
2: योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका मतलब है जोड़ना। व्यवहारिक स्तर पर यह शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने का साधन है, अर्थात यह निरोगी जीवन जीने की एक अचूक कला है। हम सब जानते हैं कि 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस साल 12वां योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसका थीम है योगा फॉर हेल्थी एजिंग, मतलब योगा बराए सेहतमंद बुढ़ापा। इस साल का योग दिवस कई मायनों में खास माना जा रहा है। बदलती लाइफ स्टाइल, बढ़ती उम्र के साथ होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स और मानसिक तनाव जैसी चुनौतियों के बीच इस बार की थीम लोगों को स्वस्थ और सक्रिय जीवन की दिशा में प्रेरित करने का संदेश देती है। साथियों, योग केवल फिटनेस का जरिया नहीं है, बल्कि बढ़ती उम्र में फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को बनाए रखने का इफेक्टिव मेथड है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग स्ट्रेस, डिप्रेशन, नींद न आने की दिक्कत और लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। यही कारण है कि योग अब केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के सैकड़ों मुल्कों में अपनाया जा रहा है।
1: डॉक्टर वाही साहब, योगा के आसन के बारे में कुछ और बताइए।
2: ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन, वज्रासन, श्वासन जैसे योगासन संतुलन, लचीलापन और ऊर्जा बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा प्राणायाम और ध्यान मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने, स्ट्रेस और डिप्रेशन को कम करने का एक अच्छा जरिया है। योग दिवस 2026 की थीम लोगों को यह संदेश देती है कि उम्र चाहे कोई भी हो, नियमित योग के जरिए इंसान अपने शरीर और मन को लंबे समय तक हेल्दी और एक्टिव रख सकता है। जय हिंद, जय भारत।
1: अभी आप आलमी योम योगा पर ये रेडियो समाज फरमा रहे थे। रिकॉर्डिंग रोआवाज थी शफकत अली खान की व पेशकश नूर मोहम्मद की।
3: समय नबी आप आलमी योम योगा के मौके पर ये ओबी रिपोर्ट समाप्त फरमा रहे थे और एक मरतबा फिर हम आपको लिए चलते हैं अदब की दुनिया में। समय योगा से जहां जिस्म को नई तवानाई और कुवत मिलती है, वहीं शायरी से हमें जहनी आसूदगी में असर आती है। शायर हमारे ख्वाबीदा जहनों को बेदार करता है और हमारे इर्द गिर्द के माहौल से हमें रोशनास भी करता है। दबिस्तान गोरखपुर की वो बावकार शख्सियतें जो रफ्ता रफ्ता हमसे जुदा होती जा रही हैं, जिनके दम से दबिस्तान गोरखपुर की महफिलें सरसब्जो शादाब थीं, इनमें एक मुअद्दबर नाम जनाब राज आज़मी का था। अब वो हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन उनका कलाम आज भी महफूज है। समाअत फरमाइए कलाम शायर के तहत जनाब राज आज़मी से उनका कलाम।
4: गजल का मतला पेश खिदमत है।

बात है। बाहर तौर नुमाया होना अपनी फितरत है, बाहर तौर नुमाया होना। शेर मुलाजा फरमाइए कि चंद लम्हे ये गनी मत है बचा कर रख लो, चंद लम्हे ये गनी मत है बचा कर रख लो।

0: सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
2: 0542227658।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।
4: लोक संगीत के कार्यक्रम में आज के हमारे कलाकार हैं श्रीराम और साथी। सबसे पहले आइए सुनते हैं ये देवी गीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं श्रीराम और साथियों की आवाज़ में ये लोकगीत। आइए सुनते हैं कहरवा।

0: आप सुन रहे थे लोक संगीत, कलाकार थे श्रीराम और साथी। ये प्रसारण आप आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से सुन रहे थे। प्रस्तुत है सामुदायिक गान शिक्षा पाठ कन्नड़ भाषा में।
1: हम सीख रहे हैं कन्नड़ भाषा में एक गीत। गीतकार श्री दोड्डरंगी गौड़ा, संगीत निर्देशिका श्रीमती इंदु विश्वनाथ।

0: थोड़ी सी दिला।
1: बच्चों आराम से गाइए, दौड़ना मत। और ये है तीसरा और अंतिम चरण। इसमें पहला और तीसरा चरण एक तरह के हैं।

0: अब हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। वाद्यों के साथ गाने में बड़ा मजा आएगा, है ना?
1: हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: सितार बजाने के लिए यहाँ आए हैं जयंत कुमार दास, कीबोर्ड पी मोहनराज, गिटार बी ए जय सिंह, श्रुति सहकार दे रहे हैं सी वी रामकृष्णा, तबला बजाकर भाई रविंद्र यावगल आपके दोस्त बन गए हैं ना? चलो अब तबले पर संगति दे रहे हैं रविंद्र यावगल।

0: 12 वर्षों के कार्यकाल में वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी को भागीदार बनाकर राष्ट्र विकास का जो मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास, उसके तहत उन्होंने जो एक लक्ष्य रखा है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का भारत को, उसमें उन्होंने चार जो स्तंभ है उनकी पहचान की है, जिसे ज्ञान भी कहा जाता है, गरीब, युवा और अन्नदाता यानी कि हमारे किसान और नारियां। तो इन चारों जो वर्ग है उनके सशक्तिकरण पर सरकार ने लगातार बल दिया है। अगर हम हर बजट में देखें, जो भी प्रमुख संबोधन होता है प्रधानमंत्री जी का, उसमें इन वर्गों को सशक्त करने की बात की जाती है। और आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सर्जना शर्मा जी और नीलू रंजन जी जुड़े हैं। इनसे हम समझना चाहेंगे कि इन 12 वर्षों में जो ये चार वर्ग है इनको सशक्त करके कैसे जो देश को समृद्ध करने का सपना है उसको साकार करने की तरफ हम बढ़े हैं। सो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम।
1: थैंक यू सोनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सर्जना जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, लेडीज फर्स्ट कहा जाता है। सो आपसे मैं महिलाओं की ही बात करना चाहूंगी। जिस तरह का विकास महिलाओं का हुआ है और जो सरकार का मूल मंत्र रहा है कि विमेन्स डेवलपमेंट से आगे बढ़कर हमें विमेन्स लेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास जो है उसकी ओर बढ़ना है, हमें बताएं कि इन 12 वर्षों में कौन से ऐसे परिवर्तनकारी रिफॉर्म्स हैं जो महिलाओं के लिए लाए गए हैं जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण मानती हैं।
1: सोनू जी देखिए, महिला जो है वो कोई भी परिवार है, परिवार की धुरी महिला है, और जो एक अच्छा परिवार है वो एक अच्छे समाज का और एक अच्छा समाज अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। अगर महिला सशक्त है, अगर महिला समृद्ध, मेरा मतलब खाली पैसे से नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसको समावेशी विकास कहते हैं, अगर महिला उस तरह की है तो वो पूरे अपने परिवार को बढ़िया करेगी, समाज को अच्छा बनाएगी और फिर राष्ट्र को। तो इसका मतलब धुरी जो है परिवार से लेकर राष्ट्र तक महिला के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता। भले ही आज से कुछ साल पहले तक महिलाएं बहुत घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन घर में रहते हुए भी जो उनकी अर्थव्यवस्था है, जो उनका मनी मैनेजमेंट है, जो उनका रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, पुरुषों को तो शायद बहुत चीजें घर की पता भी नहीं होती जितना वो खुद सब मैनेज कर लेती हैं। आपने देखा होगा कि कोविड में पूरी दुनिया की इकोनॉमी ध्वस्त हुई, लेकिन भारतीय महिलाओं को जिस तरह की ट्रेनिंग है पैसे को जोड़ने की और आत्मनिर्भरता का जो उनका मूल मंत्र है, तो उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही, क्योंकि सेविंग की बहुत आदत है हमारी महिलाओं को। तो मोदी जी ने जो ये सोचा तो उसमें देखिए दो तीन चीजें तो मैं कहूंगी कि जो सबसे अच्छी रही, एक है उज्ज्वला योजना और एक है हर घर नल हर घर जल। तो ये जो दो चीजें सुलभ हुई हैं महिलाओं को, उससे उनकी जो फिजिकल लेबर है वो कम हुई है, उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई है। आपको लकड़ियां बिनने जंगल में नहीं जाना और धुएं में काम नहीं करना। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको सब्सिडाइज सिलेंडर मिल रहा है, तो आप सोचिए उसकी कितनी मेहनत कम हुई, खाना अच्छा बनेगा, वो भी खुद भी रिलैक्स रहेगी। दूसरा है, अगर हम देखें कि हमारे भारत में बहुत सी ऐसी जगहें थी जहां पे महिलाओं की आधे से ज्यादा एनर्जी पानी लाने में भी लगती थी
0: जी,
1: तो ये जल मंत्रालय ने जो काम किया है, हर घर नल जो पहुंचाया है, हर घर जल पहुंचाया है, उसका भी बहुत लाभ हुआ है। फिर आपने इनको कहा है कि जरूरी नहीं कि आप 10 से 5 की जॉब करने जाओ, अगर आपके घर के आसपास या अपने घर में बैठे आप क्रोशिया भी बुनते हैं, आप स्वेटर भी बुनते हैं, आपको सिलाई भी आती है, या आपके आसपास जैसे कि मखाना की खेती में आपने देखा होगा मशरूम खेती, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो लखपति दीदी बनी है उन्हीं चीजों से। जरूरी नहीं कि आपके पास बीए एमए की डिग्री हो, ऐसा भी नहीं है। तो जो इस तरह की योजनाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाए जिसमें कि लगभग 91 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है और 10 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं
0: जी,
1: तो इस तरह की जो योजना है। और दूसरा मुद्रा योजना जो है कि अगर अपने घर में मुझे कोई काम शुरू करना है, मुझे लगा कि मुझे एक सिलाई स्कूल खोलना है, मुझे लगा कि मुझे क्रोशिया सेंटर बनाना है अपने घर में, मुझे लगा कि मेरे पास जो स्किल है जो मुझे किसी स्कूल से नहीं अपनी फैमिली से ट्रेडिशनल मिली है, अगर मैं उसी को आगे विकसित कर, कौशल हुनर जो कि परंपरागत हमारे यहाँ आपने देखा कि कोई साड़ी बनाता है तो कोई लकड़ी का सामान बनाता है, तरह तरह की चीजें हैं, मतलब गिनाना मुश्किल है क्योंकि भारत में इतनी विविधता है। अब कुछ तो महिलाएं जैसे हल्दी उगा रही हैं, कोई मशरूम उगा रहे हैं, तो उनको जो लोन मिल रहा है सस्ती किस्तों पर, मतलब कि उनको बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी और मुद्रा लोन जो मिल रहा है इससे भी उनका जो लाइफ है वो बहुत आसान हुई है। दूसरा है शिक्षा को लेकर भी बहुत काम हुए हैं।

0: आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे थे सामुदायिक गान शिक्षा पाठ कन्नड़ भाषा में। अब आइए सुनते हैं सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला की 20वीं कड़ी।
1: बारह साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।

0: केजी टू पीजी जो है कि आप केजी से लेके पीजी तक बच्चियां जो हैं वो पढ़ेंगी। और फिर ये है कि सुरक्षा का वातावरण, आप देखेंगे कि कई राज्यों में तो ऐसा था कि 6 बजे के बाद लड़कियां घर से नहीं निकलते। उत्तर प्रदेश का मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे कि तो अब देखिए वहां बेखौफ लड़कियां रात को 2-2.5 बजे तक भी आराम से घूम सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा इतनी ज्यादा। जब तक माँ और बेटी को नहीं लगेगा कि वो सुरक्षित है तो बेटी बाहर काम करने उसको कोई जाने नहीं देगा।
1: बहुत इम्पोर्टेंट ये सशक्तिकरण,
0: ये बहुत सुरक्षा की भावना, वो जो इस सरकार ने सुरक्षा की भावना दी, महिला थाने खोले, महिला हेल्पलाइन खोली कि आप तुरंत फोन कीजिए आपको मदद मिलेगी। और एक और देखिए कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव में डबल किया है, 3 महीने से 6 महीने किया, ये भी एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण है महिला का।
1: बिल्कुल,
0: मातृत्व सुरक्षा योजना है, शिशु योजना है, इन सब योजनाओं ने महिलाओं के जीवन को आसान किया है, सुविधा दी है। मैं बात कर रही हूँ उन महिलाओं की जो की अभी तक बहुत बाहर निकल के काम नहीं करते। अब हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो पढ़ लिख के आगे, जैसे कि आपने सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए खोल दिया गया, जैसे कि NDA खोल दिया गया लड़कियों के लिए, लड़कियां फाइटर पायलट हैं। तो ये जो इस तरह की चीजें भी आई है ना, उससे पूरे देश में बाकी लड़कियों को भी एक प्रेरणा मिली। 26 जनवरी परेड का आपने जो स्वरूप बदलते हुए देखा होगा, आप देखिए कैसे स्वरूप बदला है। पहले आप देखिए किसी भी कंटिजेंट में लेडी नहीं लीड करते,
1: एकदम गर्व से सर ऊंचा हो जाता।
0: अब आप देखिए अब 26 जनवरी परेड का रूप बदल गया है। तो मुझे लगता है बहुत सारे, और इसका सबका कारण मैं एक समझती हूँ, क्योंकि इस सरकार का जो है अंत्योदय, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, शुरू से ही भाजपा का ये मूल नियम रहा है अंत्योदय, अंत से उदय करना है। तो ये बहुत सी योजनाएं जो है जो सबसे वंचित वर्ग है वहां से शुरू होती है, और जैसे कि जो अफोर्ड कर सकते हैं LPG तो उनको अब आप देखिए सबका हटा दिया, हमने भी सरेंडर किया, और वो उन वर्गों तक पहुंचा जिनको उसकी आवश्यकता थी।
1: सो बिल्कुल टारगेटेड जो है फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है रिफॉर्म्स की। नीलू जी, अगर हम एक बहुत बड़ी जो शक्ति मानी जाती है भारत की, कि भारत एक युवा देश है, यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो जिस तरह से जो युवा पीढ़ी है उस पर जो ध्यान दिया है सरकार ने और जिस तरह से उनका सशक्तिकरण हुआ है, आप किन पहलुओं को इन 12 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? अगर आप टॉप 2-3 हमें बताएं कि कौन सी आपको पॉलिसी डिसीजन जो है वो सबसे आपको लगता है कि परिवर्तनकारी सिद्ध हुए हैं या हो सकते हैं।
2: देखिए, सबसे बड़ी बात है युवाओं के लिए कि युवाओं में अपनी ऊर्जा बहुत होती है, शक्ति उनकी अपनी बहुत है
1: जी।
2: उस ऊर्जा को अवसर देने की जरूरत है, उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको
1: जी।
2: ये पहली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और समस्या ये थी कि युवाओं को अवसर नहीं मिलता था, और वो जीवन के हर फील्ड में, चाहे वो अर्थव्यवस्था के किसी भी फील्ड में चले जाएं, शिक्षा में चले जाएं, खेल में चले जाएं, हर फील्ड में वो काम कर सकते हैं, उनकी एनर्जी है और सबके अपने अपनी खासियत है। तो जो उनकी रुचि है, जो वो कर सकते हैं, उसमें अवसर कैसे दिए जाएं, तो मैं ये कह सकता हूं कि युवाओं के लिए अवसर के ऐसी अनंत संभावनाओं के दरवाजे खुल गए हैं कि हर युवा जो है वो अपने अपने कौशल के विकास में, अपने अपने क्षेत्र में जिसमें करना चाहता है वो कर रहा है। और इसलिए आप देखें, खेल हो, शिक्षा हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे वो साइंटिफिक चीजें डेवलपमेंट हो, नई टेक्नोलॉजी हो, जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, IT से रिलेटेड है, आप युवाओं को देखेंगे पूरी दुनिया में छा रहे हैं भारत के युवा। इसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है जो देखने की बात है कि जैसे युवाओं के लिए अवसर की जब मैं बात करता हूं, तो पहले मेडिकल की सीटें जो थी, अगर MBBS के देख लें तो 55,000-56,000 की होती थी। 140 करोड़ के देश में केवल 56,000 MBBS आप बना रहे थे, आज वो 1,25,000 की सीटें हो गई हैं, डबल से भी ज्यादा हो गई हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट थी वो लगभग 30-32,000 के आसपास थी, वो लगभग 65-70,000 हो गई, डबल से ज्यादा वहां भी हुई हैं। ये यूथ पहले बाहर जाता था, यूक्रेन से कर रहा है, चीन से कर रहा है, नेपाल से कर रहा है, वहां जो यूक्रेन की आपदा में कैसे फंस गए थे सब देख रहे हैं, MBBS कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। वैसे यूनिवर्सिटीज जो है, मेडिकल कॉलेजों की संख्या जो है, सीटें बढ़ी है, तो मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है, वो लगभग 380 के आसपास की आजादी के बाद 2014 तक खोली गई थी, वो लगभग 750 के आसपास हो गई है। 50-60 और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जो सिटी जो है MBBS की वो 50,000 और बढ़ने वाली है। ये युवाओं को अवसर दिया देश के भीतर कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपके लिए है। ऐसे यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आप देखते थे कितना मारामारी है, एडमिशन नहीं मिलता था, लोग जो है वो ओपन स्कूलिंग करते थे। ओपन स्कूलिंग अभी भी खुला है और वो एक बढ़िया विकल्प है कि उसमें हम कैसे कर सकते हैं, क्या हम और कोई काम करते हुए भी हम ओपन स्कूलिंग से कोई शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज की संख्या लगभग 800 से बढ़ करके और 1300-1400 हो गई है, वो डबल हो गई है। ये तो उन्हीं के लिए हुआ है। और खेल

0: में प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार ने पैसे दिए हैं, जो स्कीमें लाई हैं, जो युवा खेल जो प्रतिभाएं हैं उनको कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है, तो आप देखें कि ओलंपिक खेल हो, चाहे एशियाड खेल हो, चाहे कोई भी खेल हो, जो भारतीय युवा जो कहा जाता था कि खेलों के लिए भारत में युवाओं का जो शारीरिक संरचना है वो ऐसे खेलों में कम्पिटिशन के लिए नहीं है, वो कहीं ना कहीं कम है, वो गलत थी बात, वो कहा जाता था।
1: और ये अपॉर्चुनिटी दी खेलो इंडिया जैसे आयोजनों,
0: खेलो इंडिया वही मैं कह रहा हूँ, खेलो इंडिया आयोजन वो तो एक आयोजन है, लेकिन आप जो साई के सेंटर्स हैं, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सेंटर्स हैं, वहां पे युवाओं पे जो इन्वेस्ट किया जा रहा है, उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उनपे जो खर्च हो रहे हैं, इंटरनेशनल कोचेज अगर युवा को अच्छा कर रहा है, ओलंपिक के और एशियाड के लायक कर रहा हो, तो जर्मनी हो चाहे कहीं, वो सरकार के खर्चे पे ट्रेनिंग हो रही है। तो ये एक बड़ा अवसर जो है युवाओं के लिए है। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि सारे युवाओं को जो है वो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, सारी युवा इस तरफ नहीं जाएंगे, तो वोकेशनल स्टडीज का जो है एक बड़ा उन्होंने किया है ट्रेनिंग, और जो आईटीआई हमारा जो ट्रेनिंग का जो था उसका मॉड्यूल को पूरा चेंज किया है। पहले युवाओं को होता था कि वहीं पे है आईटीआई करो, जो कोर्सेज है वही करो, वो सब पुराने कोर्सेज हो गए, अब उसको रीडिजाइन किया जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर आईटीआई है तो उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से उद्योग है, वहां कहां प्रशिक्षित युवाओं की मांग है, तो ऐसे वहां पे उसी लेवल पे उनको ट्रेनिंग दें, वहां फैसिलिटीज दें। अब कितने ट्रेनर हैं, किस किस फील्ड में हैं, ये नहीं पता था, अब सरकार एक नया बना रही है डायरेक्टरी जिसमें कि किस फील्ड के कितने अच्छे ट्रेनर हमारे कहां कहां हैं, कहां कहां गैप है, कहां क्या डिमांड है, दे सकते हैं, तो एक बड़ा चीज है। और सबसे बड़ी चीज जो है वो सबसे बड़ी चीज जो सबसे ऊपर जाती है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो तो बिल्कुल विशुद्ध युवाओं के लिए है
1: और बदलते परिवेश के अनुसार जो जरूरतें हैं उसके अनुकूल है।
0: उसने जो 10+2+3+2 का जो पूरा का पूरा शिक्षा मॉडल था उसका शिकंजे से युवाओं को मुक्त कर दिया है कि आपको 12th करना है, फिर 3 साल जो है आपको बीए करना है, फिर 2 साल पीजी करना है, फिर एमफिल करना है, ये करना है, उसके बाद कम्पिटेटिव एग्जाम देना है, अगर बीच में आपकी पढ़ाई छूट गई तो छूट गई, आपकी सारी मेहनत खत्म। अब उसमें बिल्कुल फ्लेक्सी कर दिया है कि क्रेडिट सिस्टम होगा, आपने 1 साल पढ़ा, 1 साल के बाद आपकी जरूरत पड़ गई, घर में कोई समस्या हो गई, कुछ कहीं नौकरी आपको करनी पड़ रही है, या आपको कहीं कोई अच्छी नौकरी मिल गई, आप वहां चले गए, आपको लगा कि वो पढ़ लेते तो मेरा हो जाता, तो जो आपने 1 साल पढ़ा हो, 2 साल पढ़ा हो, वो आपके क्रेडिट में है, वो आप कर सकते हैं। जो सिलेबस चुनने में जो था, जो समस्याएं थी कि बच्चा क्या करेगा, साइंस लेगा तो बायोलॉजी लेगा, केमिस्ट्री लेगा, जब वो कहो तो मैथमेटिक्स लेगा, फिजिक्स लेगा, मतलब एक था कि आप सेट हैं उसी में हैं। अब कोई बच्चा जो है वो हिस्ट्री में पढ़ना चाहता है और मैथमेटिक्स में अच्छा हो, वो क्यों नहीं ले।
1: तो युवाओं के लिए बहुत सारे जो
0: मतलब जितने शिकंजे थे, जो अनंत संभावनाएं, जो अवसर उसके युवाओं के लिए है, वो अवसर के दरवाजे सरकार ने खोले हैं।
1: बिल्कुल,
0: कि आप जो करना चाहे करो, युवाओं में इतनी ऊर्जा है कि वो बाकी सब कुछ कर लेंगे, उनको करने के लिए आपको कुछ सपोर्ट की जरूरत नहीं है, केवल अवसर देने की जरूरत है। और पिछले 12 सालों में वो अवसर मैंने इतने गिनाए आपको कि जो जो करना चाहे, जहां करना चाहे, इस देश में अवसर है, आपको देश छोड़ के जाने की जरूरत
1: तो नहीं। सरकार का जो ये एक सोच है कि आप जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बने, आत्मनिर्भर उद्यमी, जिस तरह से अगर हम स्टार्टअप्स की अगर हम जब स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब वो बढ़कर जो संख्या है 2.2 लाख हो गई है, आपको लगता है कि ये जो एक इनोवेशन की स्पिरिट, एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट, इसको बहुत बढ़ावा दिया गया है इन 12 वर्षों में?
0: बिल्कुल निश्चित रूप से। स्टार्टअप्स जब शुरू शुरू आया था तो लोग कह रहे थे कि भाई युवाओं को नौकरी चाहिए, स्टार्टअप में क्या कर लेंगे, कैसे कर लेंगे। अब आप देखें कि उसमें जो स्टार्टअप्स हैं वो अब बड़ी बड़ी बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के रूप में हो रहे हैं, 8,000-10,000 करोड़ का उनका टर्नओवर वो तत्काल हो रहा है, 150-200 स्टार्टअप ऐसे हो गए हैं जिनका टर्नओवर जो आप देखें तो अच्छी अच्छी कंपनियों से बेहतर है वो, तो वो एक अवसर। और स्टार्टअप में सरकार का जो मदद है
1: स्टार्टअप इंडिया द्वारा,
0: कि उसमें आपको ये टैक्स में छूट है इसमें। और इसमें आपके जो पुराने इंस्टीट्यूट हैं, IIT हैं, IIM, उन्होंने जिस ढंग से उनको आगे बढ़ाया है, वहां उनके टीचर जो मेंटोर हैं, वहां पे एक इकोसिस्टम बन रहा है। रहा है वो चल रहा है। और अगर स्टार्टअप में देखेंगे तो टेक के क्षेत्र में जो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में ज्यादातर वो काम कर रहे हैं, बाकी तो नए नए जो वेंचर्स उसमें भी आ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि पेटेंट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी, यानी कि जो हमारे यूथ जो कहीं रिसर्च में लगे हुए हैं, कुछ नई चीज ढूंढ रहे हैं, पहले पेटेंट नहीं होता था, पूरा पेटेंट के जो रजिस्ट्री जो पूरे मैकेनिज्म है वो चेंज किया जा रहा है, लाखों यूथ जो है वो

0: नए नए पेटेंट के लिए हर साल लाखों अप्लाई हो रहे हैं और पेटेंट मिल रहा है। पेटेंट मिलने का मतलब यह है कि बिल्कुल नई चीज, नए इनोवेशन करके आप दे रहे हैं। तो ये हर क्षेत्र में यूथ के लिए उन्होंने, चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, अगर आप रोजगार देने वाला स्टार्टअप जैसा अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो वो अवसर भी है जो पहले नहीं मिलता था।
1: बिल्कुल। और अगर हम तीसरे स्तंभ की बात करें किसानों की, तो किसानों के सशक्तिकरण का रंजन जी जो एक क्रांतिकारी हमने बदलाव देखा है प्रोडक्शन फिगर्स में, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम टॉप 10 एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड में अब शामिल हो गए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, और जिस तरह से नई मिनिस्ट्रीज का गठन हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, एलाइड सेक्टर्स के लिए एक अलग मिनिस्ट्री, किसानों के सशक्तिकरण को आप कैसे देखते हैं पिछले 12 सालों में, और इसका आधुनिकीकरण जो हुआ है उसके प्रमुख पहलू आप क्या मानते हैं?
0: देखिए, उसमें पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब खेती में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक तो होता है इनपुट कॉस्ट कि आप जब खेती करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या उसमें लगाना पड़ेगा, और अगर खराब हो गई फसल, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया, आपदा आ गई, तो आपका क्या होगा। पहले जो समस्या थी कि इनपुट कॉस्ट की तुलना में जो हम मिनिमम जो गारंटी सरकार देती भी थी कि हम खरीदेंगे तो कुछ फसलों पे थी, चावल था, गेहूं था, एक दो फसलें और थी, वो नहीं थी कि ये हम आपको खरीदेंगे। अगर आप देखेंगे 12 सालों में तो जो उर्वरक है, जो फर्टिलाइजर है, कीमत उसकी लगभग सेम है, 12 साल में नहीं बढ़ा है, सरकार को सब्सिडी बढ़ रही है, लेकिन वो लगभग 250-300 रुपए की बोरी जो 45 किलो की जो यूरिया की थी आज भी वही है।
1: हाँ, बड़ा समर्थन है।
0: इसका मतलब कि जो कॉस्ट आपका है वो उर्वरक वाला वो नहीं बढ़ा है, वो सेम है। दूसरा कि पूरे देश में बिजली जो है वो 24 घंटे उपलब्ध है, लगभग मतलब ग्रामीण इलाकों में कहते हैं कि एवरेज 22-23 घंटे बिजली आज है, पहले नहीं होती। या और किसान अधिकांश जो राज्य है उसमें किसानों की बिजली फ्री है, तो सिंचाई के लिए आपको अलग से कोई कॉस्ट नहीं आ रहा है, और आपके खाद्यान्न की कीमत अगर आप देखेंगे तो कुछ बढ़ा ही है। दूसरी इससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार जो सहायता दे रही है 2,000 रुपए का,
1: 6,000 प्रति वर्ष, तीन इंस्टॉलमेंट
0: में, 2,000 के, 6,000 के हैं, तो वो उसका अगर आप समय देखेंगे कि वो उस वक्त दिया जाता है, और छोटे किसान, आपके अधिकांश जो देश में किसान हैं 12 करोड़ छोटे किसान हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, जिस वक्त उनको बुआई करनी होती है, जो खेत लगाना होता है, कुछ करना होता है, बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उनके लिए उस वक्त उनको पैसे दिए जाते हैं, वो मदद उनको दी जा रही है, किसान क्रेडिट कार्ड उनको दिया जा रहा है कि लाख रुपए तक अगर आपका खर्च कोई करना हो तो बहुत सस्ते में, कुछ नहीं देना है आपको, आप उसमें खर्च कर सकते हैं। जो फिशरीज का जो अलग से मिनिस्ट्री बना करके उनका जो ब्लू रेवोल्यूशन जो उनका किया है और जो एक्सपोर्ट बढ़ा है, वो आप देखिए हॉर्टिकल्चर में जो भारत का एक्सपोर्ट जो मेनली जो आपको दिख रहा है एक्सपोर्ट जो कृषि क्षेत्र में, वो उसमें दिख रहा है, क्योंकि उसमें 10-12% का ग्रोथ है, वो एक बड़ी ताकत के रूप में भारत उभर रहा है। तो किसान एज ए होल कह लें आप, बड़ा परिवर्तन हुआ है, और किसान अगर आप कहते हैं ना सिर्फ, तो किसान नहीं होता है सिर्फ, उसी घर में महिलाएं भी, महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहा है,
1: जैसे अभी सर्जना जी बता रही हैं,
0: तो वो भी तो वहीं बन रही हैं, जो 10 करोड़ महिलाएं हैं वो भी तो किसान परिवारों से ही आती हैं, वो किसान परिवार सशक्त हो रहा है। जो मार्केट का डेवलपमेंट, जो आपकी सड़कें बन रही हैं, तो उन सड़कों के बनने से किसान का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक आसानी से पहुंच रहा है, और आपने आज 20-25 फसलें ऐसी हो गई हैं जिनकी गारंटी सरकार दे रही है खरीदने के लिए कि हम उसको खरीदेंगे, है ना, आप उपजाओ और गारंटी है इस कीमत पे हम करेंगे। कई राज्य सरकारों ने इधर भावांतरण योजना शुरू कर दी है कि अगर आपको मार्केट से कम कीमत आपको बेचना पड़ रहा है, मार्केट नहीं बेच रहे हैं, तो वो उस कीमत का पैसा हम आपको देंगे, यानी किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो अन्नदाता है उसके लिए उन्होंने खोला है, सारी चीजें व्यवस्था हो रही है, जो मतलब जो सीधे से कहां से नहीं जुड़ा है, किसान से लगता है कि जुड़ा हुआ नहीं है। अब मान लिए कि जो सरोवर बनाने का था कि जीर्णोद्धार करना है, तमाम तालाबों का सब भर गया है, सब कुछ है, वो किसका पानी का लेवल बढ़ रहा है, वहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, किसको जा रहा है फायदा, ये कई चीजें सीधे उनसे जुड़ी भी नहीं है। जो ग्रामीण इलाकों में जो गरीब परिवार हैं उनका जो फ्री में इलाज जो 5 लाख का हो रहा है, उसमें बहुत सारे परिवार ऐसे गरीब हैं जो आयुष्मान भारत योजना के तहत, वो किसान परिवार से आते हैं, जो 55-60 करोड़ लोग हैं वो कहां से 55-60 करोड़ लोग हैं, बहुत सारे वहां से भी हैं। इसीलिए किसानों पे जो इनपुट कॉस्ट है, उनके जो जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं, जो खर्चे हैं, सरकार ने उसे कम किया है, उनकी उत्पादक

0: बढ़ाई है और अब कोऑपरेशन मिनिस्ट्री अलग से बना करके उनका कैसे वो जो फार्मर का जो प्राथमिक जो है वो संघ बने कोऑपरेटिव बने उसकी 1 लाख के आसपास हो गया है। उसमें है कि 2-3 लाख कोऑपरेटिव बनाने हैं, कोऑपरेटिव बना करके सिर्फ कोऑपरेटिव नहीं करना है, इंटरनेशनल कैसे उनका ऑर्गेनिक खेती करे, कैसे वो विदेश में एक्सपोर्ट हो, इसके लिए अलग से कोऑपरेटिव बना दिया है।
1: बिल्कुल,
0: तो हर तरफ से किसानों को सशक्त, किसान सशक्त मतलब देश सशक्त।
1: बिल्कुल सर्जना जी, अगर आपके पास आए, जैसा कि अभी नीलू जी कह रहे थे कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, जो सारे चारों स्तंभ हैं ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, अगर हम खासतौर से वंचितों की बात करें, जो इन्हें मार्जिनलाइज्ड कहते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इनके जैसे जो जनजातीय समूह के लिए जो स्टेप्स उठाए गए हैं या जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं, ये मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए आप हमें बताएं कि किस तरह के परिवर्तनकारी उपाय हैं।
2: वर्ग में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, वो ऐसे आया है कि एक तो सबसे पहले उस वर्ग में आत्मसम्मान, आत्म गौरव की भावना पैदा करना, जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जिनको पहले आदिवासी बोला जाता है, अभी वनवास जनजाति जैसे हैं, तो इनके लिए आप देखें कि जो उनके हीरो रहे हैं, बिरसा मुंडा हैं और बहुत सारे, उन सबको इन्होंने निकाला और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी के नाम से। फिर आदि मेले लगने शुरू हुए और एकलव्य स्कूल बनाए गए हैं इन बच्चों के लिए, उसका नाम है एकलव्य स्कूल, कि इतने ट्राइबल बच्चे हैं, क्योंकि अगर वो रेगुलर स्कूल में नहीं जा पा रहे तो आप उनको, बोर्डिंग स्कूल है ये, उसमें आप उनको पूरी तरह से एक आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं, आप उनको शिक्षा से जोड़ रहे हैं। दूसरा, जो ट्राइबल्स हैं वो हमारे जल वन के रक्षक और संस्कृति के रक्षक सबसे ज्यादा वो हैं। हम जो पढ़े लिखे शहरी हैं, हम पर्यावरण की उतनी रक्षा नहीं कर सकते जितना वो लोग करते हैं, तो उनके लिए जो वन धन योजना है उससे बहुत लाभ है। उनको कहीं नहीं जाना, नौकरी के लिए एप्लीकेशन नहीं देना, क्योंकि उन लोगों को ये भी मालूम है कि कौन सी जड़ी बूटी का क्या असर है। उन पत्तों को हम नीलू जी या आप जंगल में जाके नहीं पहचान सकते, उनको पता है कि कौन सा फूल जब खिलेगा तो उसके बाद कब बारिश होगी, कब आंधी आएगी, तो वो लोग प्रकृति के साथ सहचर हैं प्रकृति के। ये जो मंत्रालय है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, तो ये भी आप देखिए कि वैसे तो अटल जी के समय में बना था, लेकिन अब इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं और ये खेलने में बहुत अच्छे हैं, ये हॉकी में है, स्पेशली तीरंदाजी में, कुश्ती में, तो उस पर भी ध्यान दिया गया है। इनके लिए बोर्डिंग्स खोले गए, इनके लिए कोचेस दिए गए हैं, इनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। और जिस एरिया में जो चीज ज्यादा जो पैदावार हो रही है, अब देखिए कि जैसे मखाना बोर्ड बिहार में बनाया गया, पहले तो नहीं था। दूसरी बात, खाली मखाना बोर्ड बना देने से काम नहीं होगा, ट्रेनिंग है उनकी, फिर उनकी प्रोडक्ट की कीमत है, फिर उनकी प्रोडक्ट को देश में और विदेश में सब जगह पे उनको मंच मिले, ई कॉमर्स जिसको वो भी चला रहे। अभी जब मोदी जी यात्रा पर गए हमारे प्रधानमंत्री जी फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 में, तो मैं जो लिस्ट देख रही थी, आप सोचिए, उसमें वो पिछली बार मखाने लेके गए थे, इस बार वो ठेकुआ भी लेके गए। ठेकुआ भी आप मतलब,
1: हाँ, उन्होंने सम्मान दिलाया है पूरे
2: श्री अन्न उसको नाम दिया, जिसको मोटा अनाज सब बोलते थे, अब उसको देखिए मान श्री अन्न, और सब चीजों की कीमतें भी बढ़ गई उसकी वजह से, और उसका किसान को लाभ हो रहा है। आज मखाने का आप रेट देखिए बाजार में, तो वो सारा आप सोचिए कि वो लाभ किसान को जा रहा है। और दूसरा, जैसा अभी नीलू जी ने कहा कि खाली विकास समग्र होना चाहिए, अगर मेरे पास प्रोडक्ट है और मैं मंडी तक ही नहीं पहुंच पाऊं, तो मेरे पास मंडी तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, साधन नहीं है, तो मेरी प्रोडक्ट का क्या होगा, क्योंकि ये तो पेरिशेबल आइटम जो होती है, तो उनको तुरंत बाजार चाहिए, तो ये भी बहुत सुविधा हुई है उसके लिए
1: जी।
2: और जब ये MSP की बात होती है, तो MSP अब कहा कि आप जाके किसान अपनी फसल, जरूरी नहीं कि किसी को, भाई जिसको जो कीमत दे रहा है किसान को, जितनी दे रहा है, और जिसके पास वो खरीद लीजिए जाके जितना रेट है। तो ये विपक्ष जो कहता रहा, जो किसान आंदोलन हुआ, उन्होंने MSP की बात की, तो वो उससे 4 कदम आगे चले। तो वंचित वर्ग में फिर है कि पढ़ाई है उनकी, पहले लोगों को लगता था कि अगर बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा, अब किसी को नहीं लगता। सुकन्या समृद्धि योजना है, लड़कियों को वर्दी है, लड़कियों को सब कुछ। और दूसरा, अगर मान लीजिए अब जो असंगठित क्षेत्र था जहां पर ये वंचित वर्ग जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई स्किल कोई एजुकेशन कुछ नहीं था या उसके पास अपना पारंपरिक हुनर भी कौशल भी नहीं है कोई भी, तो खैर कौशल विकास मंत्रालय भी खोला गया और कौशल विकसित किया जा रहा है। तो अगर उसके पास कुछ भी नहीं तो वो किसी मान लो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो ये भी सरकार ने सुनिश्चित किया जो नए 4 लेबर कोड

0: हैं कि अगर कोई असंगठित क्षेत्र में है और काम कर रहा है, स्पेशली महिलाएं हैं, तो उनका वेजेस तय कर दिए गए हैं कि आप इससे कब वेज पे बिल्कुल काम नहीं करवाओगे
1: जी।
0: तो ये आप देखिए कितनी अच्छी बात है।
1: हाँ।
0: फिर दूसरा, अगर महिला आपके यहाँ काम कर रही है तो आप उसको घर पहुंचाने की व्यवस्था भी करेंगे, फैक्ट्री आपकी करेगी, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब सैनिटरी पैड पर देखिए, लड़कियों की जो सबसे बड़ी एक समस्या होती है कि वैसे इसको कहा गया था कि ये बातचीत करने के, लेकिन ये भी एक रुपए में जन औषधि केंद्र में सैनिटरी नैपकिन मिल रहा है लड़कियों को, किशोरियों को, तो आप सोचिए महिलाओं को, तो ये भी
1: बहुत बड़ी,
0: हम इसको एक अगर देखें तो एक तरह से ये भी एक सशक्तिकरण की ओर एक बड़ा कदम है। पिंक टॉयलेट्स हैं, महिलाओं के लिए अलग से अच्छे शौचालय बनाए गए हैं, तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको अगर हम किसी मैनेजमेंट स्कूल की बुक देखें तो उसमें ये चीजें नहीं दिखेंगी, लेकिन पिछले 12 साल में जो इतनी छोटी छोटी चीजों को सोच के समझ के जिनके ऊपर काम किया गया, पिछले 12 साल में जनधन खाते खोले गए, डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनका कौशल विकसित किया गया,
1: और एक तरह से जो हमारी ट्रेडिशन है हमारे देश की, वो भी अलाइव,
0: मतलब कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो मैकॉले ने जो लाया था उसने व्हाइट कॉलर जॉब को बहुत प्रेफरेंस दिया था, पर ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो सरकार की औद्योगिक नीतियां हैं, जो एमएसएमई आप देखिए ना, एमएसएमई सेक्टर में कितनी चीजें हैं जो महिलाएं घर में बैठे बैठे शौक शौक में बना लेती हैं, जिनको ये शौक है, जिनके पास स्किल है, अपनी दादी नानी माँ से सीखा है, तो उसके लिए भी सरकार लोन दे रही है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बहुत महिलाओं का सशक्तिकरण। दूसरा मैं आपसे कहूंगी कि जैसे मातृत्व वंदन है, वो योजना कितनी अच्छी है, जो मातृ शिशु रक्षा योजना है, तो ऐसी योजनाएं पहले था कि हाँ,
1: और एक्चुअली वो फिगर्स में दिखाई दे रहा है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो अस्पतालों में अब हो रही हैं, उनका संख्या इतनी बढ़ गई है, 98% पे पहुंच गई है, और भी जो मॉर्टेलिटी रेट
0: जो
1: है,
0: बेसिक मेरी जरूरत है वंचित वर्ग की, अगर हम बात करते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान
1: जी,
0: उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिया जा रहा है
1: जी,
0: ठीक है, उनको जो राशन दिया जाता है एक बीपीएल जो है उससे बिलो में जो राशन मिलता है, ठीक है, वो आज नहीं तो कल कमाने लगेगा, वो भी बाकी समाज के साथ पेस मिलेगा, लेकिन जब उसको अपनी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं तो उसको उसके लिए नहीं स्ट्रगल करना, इसलिए उसका जीवन स्तर आगे बढ़ा, और कितने करोड़ लोग नीलू जी गरीबी रेखा से ऊपर उठे,
2: 25 करोड़
0: गरीबी रेखा से ऊपर उठे, और डिजिटल पेमेंट देखिए आप, सारी दुनिया आज हमसे सीखना चाहती है भारत,
1: और ये जो डिजिटलाइजेशन की आप बात कर रही हैं वो पूरे देश में है,
0: सब्जी वाला भी कहता है जी यहाँ पे पेमेंट कर दो, जो फूल बेच रहा है वो भी कहता है, गोलगप्पे वाला
1: जी,
0: टिक्की वाला,
1: व्यापक सशक्तिकरण है। अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें, समावेशी विकास की बात करें, तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 71% बेनिफिशियरीज जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी फार्मर्स हैं, और मुद्रा योजना की अगर हम बात करें या जनधन योजना की बात करें तो 70% से अधिक जो अकाउंट्स हैं वो महिलाओं के हैं। सो आपको लगता है कि जो स्कीम्स हैं वो अच्छी भी हैं, लेकिन वो ज्यादा जरूरी है कि वो इम्प्लीमेंट बहुत कहें कि सिंसियरिटी से हुई है।
2: निश्चित रूप से मैं ये अनुभव अपना बताता हूँ, जहां मैं अभी गया था, पिछले दिनों जगदलपुर गया था, जगदलपुर का नाम सुनते ही बस्तर सोचते हैं लोग, नक्सली प्रभावित था, नक्सली इलाके में कोई सरकारी कर्मचारी जा ही नहीं सकता था, स्कूल गिरा दिए थे, जो जंगल में जो लोग थे उनको सारी चीजें नहीं मिलती थी। अब वहां के जो प्रोडक्ट हैं, जो वहां ट्रेनिंग दी जा रही थी, और बिल्कुल एक संस्थागत रूप में सब कुछ लाया जा रहा है वहां पे, कि जो कैंप लगे थे, नक्सल समस्या खत्म हो गई, तो जो सुरक्षा बलों के कैंप थे उसको सेवा केंद्र में बदला जा रहा है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो खुद हमारे साथ थे, उनके साथ मैं भी था, वहां मैंने देखा कि जो जंगल के प्रोडक्ट हैं, जैसे इमली बहुत होती है, अब इमली वहां पे जो तोड़ा अब वो बिचौलिए सब खाते थे और जैसे थे जाता था, अब वो मशीनें लगी हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि इमली को कैसे आप पैकेजिंग करो, 500-500 ग्राम के, 1 किलो के छोटे पैकेजिंग बिल्कुल एकदम उसको, और उसके बीज हटने चाहिए, उसका ये होना चाहिए, और बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक बिना किसी केमिकल के, और उसकी बहुत डिमांड है। एक वहां महुआ बहुत होता है, फ्री में चुनते हैं, अब महुआ और बाकी जो श्री अन्न है मिला करके इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके, तो मार्केटिंग की एक सोच का अंतर आया है,
1: एक अवेयरनेस क्रिएट हुई,
2: अवेयरनेस नहीं, सोच का अंतर ये है कि जब देश आजाद हुआ था तो हमने ये मान लिया था कि ये तो ट्राइब्स हैं, ये जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, इनमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, इनको हमारे डेवलपमेंट जो है, इनको हमारे स्कूल नहीं चाहिए, इनको

0: हमारी बिल्डिंग नहीं चाहिए, इनको गाड़ी नहीं चाहिए, इनको जहाज नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको ये जंगल में ही खुश है। अब आपने उनको छोड़ दिया तो उस जंगल में नक्सली घुस गए। अब जो चेंज आया है कि सारी सुविधाएं वो जंगल में रहें, जहां है जैसे जी रहे हैं रहें, लेकिन सारी सुविधाएं हम पहुंचाएं और उनके जो चीजें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक भी जाए, बाकी जगह भी जाए,
1: विकास
2: और उनके बच्चे पढ़े भी, अगर वो चाहे शिक्षा वहां पे पहुंचे।
0: एकलव्य स्कूल का उन्होंने नाम लिया कि आदिवासी बच्चे।
2: अच्छा, आप जो सोच की बात कर रहे हैं नीलू जी, यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो टर्मिनोलॉजी भी यूज की गई है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, कितनी खूबसूरत है कि रिकग्नाइज कर रही है सरकार की एस्पिरेशन है उन लोगों की और उनको पूरा करने के लिए ये पॉलिसी मेजर्स उठाए जा रहे हैं।
0: वो यही है कि जब आप सिंसियरली देखते हो कि जिले हैं तो कौन कौन से जिले देश में जो है वो पिछड़े, पहले होता था पिछड़े राज्य की बात, लेकिन अगर आप देखोगे केरल में भी तो केरल कहें कि वहां बहुत साक्षरता है, वहां महिलाओं का सशक्तिकरण है, ये है, तमाम चीजें हैं, लेकिन वहां भी कुछ जिले जो है पीछे रह जाते हैं। और जब बिल्कुल आप पिछले जो कहोगे छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ के कुछ जिले बहुत अच्छे हैं। तो जो जिले पीछे छूट गए हैं वो किन किन मापदंडों में छूटे हैं, वहां क्या करने की जरूरत है। अब वो जब हो गया तो जिले के भीतर ब्लॉक हैं, तो अब 500 ब्लॉक्स के अलग चल पड़ी है वहां पे। यानी कि जब समग्र और समेकित विकास की आप बात सोचते हो कि अंत्योदय जो उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी का था कि कोई छूटे न पीछे, ये जब आपकी सोच होती है तो जितने लोग छूटे हुए हैं सबको आप चुनते हो, क्यों छूट गया, क्या कमी है, क्या हम लगाएं कि यहाँ पे आ जाए, वो चीजें हो रही है।
2: सर्जना जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगी?
1: देखिए, मुझे जो सबसे अच्छा दो तीन चीजें लगती हैं, एक है विरासत के साथ विकास
2: जी,
1: जो स्लोगन है वो बहुत बढ़िया लगता है मुझे, कि हम अपनी परंपराओं को, अपनी ट्रेडिशंस को बचाते हुए विकास की राह पर चलें। ऐसा विकास ना हो जो हमें हमारी जड़ों से अलग कर दे। तो हमारी जड़ों से जोड़ने का जो विकास है वो ये सोच बहुत अच्छी है। अगर मैं अपनी जड़ से उखड़ कर कहीं बहुत उन्नति करती हूँ, अपने समाज से, अपने रीति रिवाज से, अपनी परंपराओं से, तो वो विकास एक दिन जाकर मुझे दिल को बहुत दुखी करेगा। लेकिन मैं अपनी जड़ों से भी जुड़ी हूँ, अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, और उसके साथ मेरा विकास होगा। अब एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि यूनेस्को धरोहर में अब हमारी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कितनी सारी चीजें आ गई। आप सोचिए, हमारा गरबा, हमारी दुर्गा पूजा, हमारी दिवाली, हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो अब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो गई। और एक और सोचिए, पर्यावरण की दृष्टि में रामासर जो आर्द्र भूमि जिनको हम बोलते हैं, अब वो 100 होने वाली है। 99 तो हो ही चुकी, हो गई, शायद 100 हो गई।
2: और ये सब चीजें युवाओं को भी प्रेरित करती है।
1: रामासर लेक जो है पहले हमारे पास 13 या 14 थी, अब आप देखिए कितनी हो गई। तो ये समग्र विकास जो है ना विद मेरे विरासत के साथ, तो ये एक बहुत 12 साल की उपलब्धि है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर्जना जी, नीलू जी, आप आए और आपने हमें इतनी खूबसूरती से समझाया कि जो 4 स्तंभ जो माने गए हैं वर्तमान सरकार द्वारा विकास के, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया गया है पिछले 12 सालों में और आगे भी क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद
1: सोनू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला की 20वीं कड़ी सुन रहे थे। इस कार्यक्रम का प्रसारण आप आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से सुन रहे थे। अब बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम बाल संघ।

हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियारा फैलाएंगे। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई।

0: स्वच्छता ही सेवा ध्येय वाक्य को अमल में लाएं, कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाएं, अपना जीवन अमूल्य बनाएं। स्वच्छता अपनाएं, कार्यालय की गरिमा बढ़ाएं, अपना जीवन सफल बनाएं। स्वच्छ होगा जब वातावरण, तभी होगा नवजागरण। आइए आज से ही स्वच्छता ही सेवा की मूल भावना को अपनाएं, जीवन में नव ऊर्जा का संचार करें। स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही संस्कृति है। स्वच्छता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। स्वच्छ रहेगा भारत तो समृद्ध रहेगा भारत। नदियों को रखो साफ, ये है हमारी सभ्यता की पहचान। स्वच्छता को आदत बनाएं, रोज सफाई करना भूल न जाएं। गांधी जी के सपनों का भारत हमें बनाना है। पूरा भारत स्वच्छ रहे, यही हमारा नारा है। स्वस्थ भविष्य के लिए आज से ही स्वच्छता अपनाएं। हर नागरिक का हो ये सपना, स्वच्छ हो संपूर्ण भारत अपना। जब हमारा भारत स्वच्छ होगा, तभी तो हर सपना सच होगा। देश तभी साफ होगा जब स्वच्छता में सबका हाथ होगा। मन में रखो एक ही सपना, स्वच्छ बनाना है भारत अपना। जब देश का कोना कोना स्वच्छ रहेगा, तब देश का हर एक बच्चा स्वस्थ रहेगा। अविरल गंगा, अविरल यमुना, स्वच्छ भारत संकल्प है अपना। न फैलाएंगे कूड़ा कचरा, स्वच्छ बनाएंगे भारत अपना।
1: स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा।
0: हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा। सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियारा फैलाएंगे। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई।

0: नन्हे साथियों, जय हिंद। जय हिंद निशा दीदी,
1: जय हिंद कंचन दीदी, और बच्चों जय हिंद।
2: जय हिंद
0: दीदी।
1: हाँ,
0: कैसी हैं आप?
1: मैं तो अच्छी हूँ दीदी। और दीदी, हमारे साथ जो ये बच्चे हैं, ये काफी जोश से भरे हुए दिख रहे हैं।
0: भाई, ये नन्हे जो कलाकार हैं, नन्हे जो बच्चे हैं, इन्हें देख करके स्टूडियो में तो आज बहुत ही अच्छा लग रहा है।
1: बहुत अच्छा लग रहा है दीदी।
0: तो आइए इन बच्चों से जानते हैं कि इनके क्या नाम हैं और ये किस क्लास में पढ़ते हैं।
3: मेरा नाम सिद्धार्थ नारायण शुक्ला है और मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ।
4: मेरा नाम वैष्णवी शुक्ला है, मैं भी क्लास 7 में पढ़ती हूँ।
5: मेरा नाम आराध्य शुक्ला है, मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ।
0: भाई, सिद्धार्थ, वैष्णवी, आराध्या, ये तीनों बच्चे आज हमारे साथ हैं, जिनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो हमें क्या कुछ सुनाने वाले हैं, है ना दीदी?
1: और सिद्धार्थ, आप किस क्लास में पढ़ते हैं?
3: क्लास 7।
1: और शुभी, आप?
6: क्लास 7।
1: अरे, आप क्लास 6 में? अच्छा, आप लोग में से कोई भी क्लास में कभी मॉनिटर रहा है? हाँ, अच्छा लगता है ना मॉनिटर बनने में?
6: हाँ।
0: दीदी, अब तो अलग अलग विषय के भी मॉनिटर बनाए जाते हैं। मुझे लगता है जब हम पढ़ते थे क्लास 6 में, 7 में, तो उस समय क्लास का सिर्फ एक ही मॉनिटर होता था।
1: हाँ।
0: और वो हर चीज की मॉनिटरिंग करता था।
1: हाँ।
0: मतलब ड्रेस की, बाल कैसे हैं, नाखून कटे हैं कि नहीं, और कॉपी में काम कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन शोर कर रहा है, हर चीज की मॉनिटरिंग एक ही मॉनिटर करता था। लेकिन अब तो क्लास में विषय से जुड़े हुए मॉनिटर भी होते हैं।
1: और दीदी, पता है, उनसे ना दोस्ती करके भी रखनी पड़ती थी कि कहीं वो हमारा नाम ना लिख दें
0: और हमारी कोई गलती हो जाए तो वो कहीं हमें मतलब हमसे बताए बिना जाके मैम से शिकायत ना कर दे, है ना? नन्ही साथियों, आपको भी ऐसा कभी लगता है कि मॉनिटर आपकी शिकायत कर देगा, आपने गलती करी है?
6: हाँ, लगता है।
0: कभी करी है शिकायत? और बताइए, स्कूल जाने के लिए, अब जैसे कि अब स्कूल खुलने वाले हैं, छुट्टियों के दिन तो खत्म हो गए, छुट्टियों में तो आपने बहुत मस्ती की होगी ना?
6: हाँ, की है।
0: तो वापस से स्कूल जाना है, कैसा लग रहा है आप लोगों को?
2: अच्छा
6: लग रहा है।
0: दीदी, लगता है बच्चों को स्कूल जाना काफी पसंद है ना?
1: हाँ दीदी, अच्छा भी लगता है ना, नई नई किताबें होती हैं, नए नए दोस्त भी बनते हैं।
0: बहुत सारे बच्चों के नए एडमिशन भी होते हैं, तो ऐसे नए नए दोस्त भी बनते हैं। नए दोस्त बनाना कैसा लगता है?
2: अच्छा लगता है।
0: आप बताइए सिद्धार्थ, आपके कितने दोस्त हैं?
3: बहुत सारे।
0: और क्या आप अपने दोस्तों की मदद करते हैं?
3: हाँ।
0: कैसे मदद करते हैं?
3: जैसे किसी की तबीयत खराब हो जाए तो फिर मैं उसे कभी कभार घर छोड़ के आता हूँ।
0: और
3: मैं अपने फ्रेंड की बहुत सारी मदद करता हूँ, जैसे वो कभी टिफिन ना लाए तो फिर मैं उसे टिफिन दे सकता हूँ अपना।
0: यानी कि शेयर करके खाते हैं।
3: हाँ।
0: और आर्या, आप?
5: मेरी पूरी क्लासमेट फ्रेंड है।
0: अच्छा।
5: हाँ।
0: क्लास में आप मॉनिटर आप हो या कोई और है?
5: अभी तो कोई और है।
0: अच्छा, तो आपके मन में भी होता है ना कि मैं भी मॉनिटर बनूं?
5: हाँ।
0: जो क्लास में मॉनिटर है उसमें क्या कुछ अच्छे गुण हैं? किस लिए वो मॉनिटर बनाया गया?
5: वो मतलब वो क्लास में वो एक्टिव रहता था।
0: और पढ़ने में
5: अच्छा था।
0: तो आपको भी लगता है ना कि आपको भी खूब अच्छी सी पढ़ाई करनी है, खूब मेहनत करना है और मॉनिटर बनना है, लगता है कभी? हाँ। ऐसा तो अब ये जो नया सेशन शुरू हो रहा है, इसमें आप मेहनत करके मॉनिटर बनेंगी?
5: हाँ।
0: और वैष्णवी, आपके क्लास में भी क्या कोई और मॉनिटर है या आप मॉनिटर हैं?
6: हमारी क्लास में दो मॉनिटर है, एक मैं हूँ, एक मेरी फ्रेंड है।
0: अरे वाह भाई, वैष्णवी तो मॉनिटर है। निशा दीदी,
1: हाँ।
0: लग रहा है कि वैष्णवी पढ़ने में भी बहुत अच्छी है, है ना?
1: और देखिए दीदी, मॉनिटर बनने के लिए या कहीं भी नेतृत्व करने के लिए उनमें कुछ गुण होने जरूरी है, और हमें लगता है कि हमारे बच्चों में वो गुण हैं।
0: भाई, गुण भी हैं, और अगर कहीं से भी बच्चे थोड़े पीछे भी हैं तो वो मेहनती हैं। मेहनत करके वो आगे आने वाले समय में बहुत तरक्की करेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। दीदी, नेतृत्व के गुण तो हर बच्चे में मेहनत करने से और धीरे धीरे पनप ही जाते हैं।
1: कंचन दीदी।
0: हाँ दीदी।
1: बच्चों से अब कुछ सुन भी लिया जाए, क्योंकि ये लोग बहुत सारी चीजें तैयार करके भी आए हैं।
0: तो जानते हैं कि वैष्णवी हमें क्या सुनाना चाहती हैं। वैष्णवी बताइए।
6: मेरा नाम वैष्णवी है, मैं आज आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। कविता के लेखक का नाम है श्याम नारायण पांडे। कविता के विषय है चेतक की वीरता।

0: बर बर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाघ हिले लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में उड़ गया भयानक बालों में। निर्भीक गया वह ढालों में सरपट दौड़ा करवालों में। है यहीं रहा अब यहीं नहीं वह वहीं रहा अब वहां नहीं। थी जगह न ऐसी जहां नहीं किसी अरिमस्तक पर कहां नहीं। निर्भीक चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था।
1: वाह भाई, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और आराध्या, आप भी कुछ सुनाना चाहती हैं? भाई वैष्णवी को देख के आपके मन में भी हो रहा होगा ना कि मैं भी कुछ सुनाऊं।
2: हाँ,
1: क्या सुनाना चाहती हैं आप?
2: मैं कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी का शीर्षक है चालाक बंदर। यह कहानी एक बंदर और एक जंगल की है। एक बार एक चतुर चालाक बंदर था जो शहर के पास एक सर्कस से निकल कर भाग गया था और पास के जंगल में आकर छुप गया था। तब बंदर की मुलाकात एक चूहे से हुई। बंदर की चूहे से दोस्ती हो गई। चूहे ने बंदर को पूरा जंगल दिखाया, यहाँ तक शेर की गुफा भी बंदर को दिखा दी। लेकिन उस जंगल में एक नदी बहती थी। उस नदी के पास कोई भी जानवर नहीं जाता था। सभी जानवर उस नदी से डरते थे और उस नदी को खूनी नदी भी कहते थे। इसीलिए चूहे से बंदर और उस नदी के बारे में ना कुछ बताया नहीं और ना ही कुछ उसे नदी दिखाई। काफी समय बीत गया। एक दिन बंदर जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते बंदर को प्यास लगी और उसे कुछ दूर चलने के बाद एक नदी दिखाई दी। यह वही नदी थी जिससे जंगल के सभी जानवर डरते थे और खूनी नदी मानते थे। लेकिन बंदर को इसके बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था। इसीलिए बंदर ने सोचा कि इतनी बड़ी नदी है, मैं इससे पानी पी लेता हूँ। जैसे ही बंदर पानी पीने के लिए नदी के पास गया, उसने अपना हाथ नदी में डाला तो नदी के अंदर से एकदम एक मगरमच्छ बाहर आने लगा। मगरमच्छ ने बंदर पर हमला करने की कोशिश करी लेकिन बंदर बच गया और वहां से भाग गया। भागते भागते बंदर की मुलाकात एक खरगोश से हुई और बंदर ने खरगोश को उसके साथ हुई सारी बात बताई। फिर खरगोश बंदर को शेर के पास लेकर चला गया। बंदर की पूरी बात सुनने के बाद शेर भी हैरान हो गए क्योंकि उस नदी के पास तो कोई भी नहीं जाता था। इसीलिए इस बात पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था कि बंदर वहां गया होगा और वह कोई मगरमच्छ होगा। लेकिन बंदर सच बोल रहा था, इसीलिए अपनी बात को सही साबित करने के लिए बंदर ने कहा कि हम कल फिर से नदी के पास जाएंगे, तुम लोग झाड़ी के पीछे छुप जाना। जैसे ही मैं पानी पीने के लिए फिर से नदी में हाथ डालूंगा, मगरमच्छ मुझ पर फिर से हमला करेगा। अगले दिन हुआ, सभी जानवर झाड़ी के पीछे छुप गए। जैसे ही बंदर पानी पीने के लिए नदी के पास गया, उसने पानी के अंदर हाथ डाला तो उधर से मगरमच्छ ने दूसरे सभी जानवरों को नदी के पास झाड़ी के पीछे छुपा हुआ देख लिया था। इसीलिए मगरमच्छ ने बंदर पर हमला नहीं करा बल्कि वह वही पत्थर के आकार में छुपा रहा। तब सभी जानवरों ने देखा कि यहाँ पर तो कोई भी मगरमच्छ नहीं है, यह तो एक बड़ा सा पत्थर है। और इस प्रकार कोई भी बंदर की बात पर विश्वास नहीं कर रहा था और वह सभी लोग वहां से चले गए। लेकिन बंदर को मालूम था कि यह मगरमच्छ सभी जानवरों को मूर्ख बना रहा है। तब बंदर ने शेर को कहा कि मुझे अपनी बात

0: साबित करने के लिए एक और मौका दीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तब शेर बंदर को एक मौका देने के लिए सहमत हो गया। अगला दिन हुआ, बंदर ने एक बड़ी सी रस्सी ली जिसका एक सिरा पेड़ के बांध के साथ बांध दिया और दूसरे सिरे से जाल बनाकर नदी के अंदर फेंक दिया। जैसे ही बंदर पानी पीने के लिए नदी के पास गया, मगरमच्छ ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उस जाल में मगरमच्छ का मुंह फंस गया। यह देखकर सभी जानवर बहुत खुश हुए और इस प्रकार मगरमच्छ को बंदी बना लिया गया। अब सभी जानवर उस नदी में जाते और पानी पीते और नहाते। इस प्रकार बंदर ने अपनी चालाकी दिखाते हुए सभी जानवरों के इस डर को बाहर निकाल दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे बुद्धिमत्ता से समझने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।
1: अरे वाह आराध्या, आपने तो बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई। और कहानी का जो मोरल होता है, यानी उससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है, ये भी आपने बताया, है ना दीदी?
2: और दीदी सच में कहानी तो सच में सबको अच्छी लगती ही है, और जब वो सीख देती है तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो अब चलिए सिद्धार्थ से कुछ सुन लेते हैं।
1: सिद्धार्थ, आप क्या सुनाना चाहते हैं हमें?
2: मैं एक कविता सुनाने वाला हूँ जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, और कविता का विषय है कृष्ण का दूत कर्म।
1: सुनाइए।
2: वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विगतियों को चूम चूम स धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। मैत्री का राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को भीषण विघंती बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। देव नाए अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे 80 न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष, समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भी भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बांध कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा।
1: बहुत अच्छा भाई, ये कृष्ण का दूत कर्म तो बहुत ही अच्छा सुनाया आपने दीदी।
2: हाँ कंचन
1: भाई, सिद्धार्थ ने तो बहुत ही अच्छी कविता हम लोगों को सुनाई है। नन्ही साथियों, आज योग दिवस है और योग दिवस पर हमारी स्टूडियो में हमारे नन्हे साथियों से बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर संध्या दुबे, BHU से योग दर्शन से। डॉक्टर संध्या दुबे, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमें यहाँ अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए और बच्चों के साथ बात करने के लिए।
1: दीदी, हम ये चाहते हैं कि आप हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करें ताकि वो भी योगासन के बारे में जान सके और सीख सके कि उन्हें किस तरह से क्या करना चाहिए। नन्हे साथियों, आपको बता दें कि इस वर्ष की जो थीम है, यानी इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम है वो ये है कि स्वस्थ आयु के लिए योग।
3: बिल्कुल।
1: तो सबसे पहले सिद्धार्थ, आप कुछ बात करना चाहेंगे दीदी से?
2: दीदी, PT क्या योग का हिस्सा है?
3: हाँ डेफिनेटली। पहले तो देखिए, आप लोग योग के बारे में, जो 21 जून है, इंटरनेशनल योग डे है आज, है ना, इसको जानिए पहले कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये पूरे विश्व में योग करने के लिए सबको प्रेरित किया और इसको जन जागरण में, जनमानस में लाने के लिए इसको सबको प्रेरणा दी। और योग से हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम किसी भी एज के हैं, है ना, आयु हम बच्चे हैं, फिर उसके ऊपर वाले एज के हैं, फिर उससे ऊपर वाले एज के हैं, तो मतलब हर एज में हम योग अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन हम अंडर 15 क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर में क्या कर सकते हैं, और वृद्ध लोग भी योग अभ्यास कर सकते हैं, उनके लिए भी योग बहुत जरूरी है, है ना। योग आप लोगों ने, क्योंकि संस्कृत पढ़ते होंगे आप लोग, तो संस्कृत में भी योग, गीता में योग के बारे में बताया गया है, और हम बच्चों को जरूर गीता का अध्ययन करना चाहिए। इसमें पहले

0: हम योग अभ्यास करते हैं तो उसके पहले हम प्रार्थना करते हैं, है ना, प्रार्थना करते हैं और ओम का वाचन करते हैं। ओम हमारा प्रणव का वाचक है ना।
1: हाँ
0: प्रणव क्या होता है? ओंकार होता है,
1: हाँ
0: जिसमें हम पूजा करते हैं वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो जाता है, क्योंकि योग विद्या हमारी स्थिर विद्या है और आध्यात्मिक विद्या भी है। हम इसको सुबह में स्नान करके शुरू करते हैं, तो उसमें क्या है, ओम जब वाचन करते हैं तो अ उ म, ये पूरा अकार उकार मकार तीन चीजों से बना है। और अनहद, ये तो बहुत बच्चे, क्योंकि आप लोग बच्चे हैं लेकिन फिर भी ओम का वाचन करते हैं, आप करते हैं ना,
1: हाँ
0: इसमें जो सारे, जब हम ओम का वाचन करते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है,
1: हाँ
0: हम उस योग के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। फिर इसके बाद हम प्रार्थनाएं करते हैं, और प्रार्थनाएं हम क्यों करते हैं, विवेकानंद जी कहते हैं कि हम जो प्रार्थना करते हैं तो जो हमारे जो मन के विकार होते हैं,
1: हाँ
0: जो हमारे मन में

0: वाचन करते हैं तो अ उ म, ये पूरा अकार उकार मकार तीन चीजों से बना है। और अनहद, ये तो बहुत बच्चे, क्योंकि आप लोग बच्चे हैं लेकिन फिर भी ओम का वाचन करते हैं, आप करते हैं ना?
1: हाँ
0: इसमें जो सारे, जब हम ओम का वाचन करते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है,
1: हाँ
0: हम उस योग के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। फिर इसके बाद हम प्रार्थनाएं करते हैं। और प्रार्थनाएं हम क्यों करते हैं? विवेकानंद जी कहते हैं कि हम जो प्रार्थना करते हैं तो जो हमारे जो मन के विकार होते हैं,
1: हाँ
0: जो हमारे मन में अननेसेसरी क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, वो शांत होते हैं जब प्रार्थना करते हैं। जैसे आप कहीं खेलने जाते हैं तो आपके खेल के भाव आते हैं,
1: हाँ
0: आप मंदिर जाते हैं तो आपके अंदर मंदिर वाले पूजा वाले भाव आते हैं।
1: हाँ
0: ऐसे जब हम योग में बैठते हैं, योग के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम शरीर को, अपनी बॉडी को योग के लिए तैयार करते हैं, है ना? जो आपने हमसे पूछा ना कि क्या पीटी क्या योग का हिस्सा है, तो पीटी जो स्कूल वगैरह में कराई जाती है सुबह, यो ये योगिक क्रियाएं होती हैं। जैसे हम सूर्य नमस्कार करते हैं ना,
1: हाँ
0: तो सूर्य नमस्कार से पहले, या आप लोग अगर, क्योंकि योग को व्यायाम से नहीं जोड़ सकते हम, है ना? ये एक तरीके का पीटी क्या है, व्यायाम है। बट अगर योग के हिसाब से हम देखेंगे तो ये क्या है, हमारी योगिक क्रियाएं हैं, है ना? अपने
1: हाँ
0: शरीर को एक्टिवेट करते हैं, एक्टिव करते हैं योग करने के लिए,
1: हाँ
0: है ना?
1: तो दीदी आपने तो सिद्धार्थ को बताया कि हमें योग करना चाहिए, इससे हमारी बॉडी एकदम फुल एनर्जेटिक रहती है। तो सिद्धार्थ क्या आप योग करते हैं,
2: हाँ
1: रोज सुबह करते हैं,
2: हाँ
1: और आपके घर में कौन कौन करता है?
2: मेरे बाबा, मेरे दादी और
1: अच्छा, बाबा करते हैं।
2: हाँ
1: तो दीदी ने जैसा बताया कि ओम का उच्चारण करते हैं, तो बाबा ओम का उच्चारण करते हैं ना,
2: हाँ
1: और क्या क्या करते हैं?
2: ताली बजाते हैं और अनुलोम विलोम करते हैं।
3: दीदी, योग करने से क्या खेल में फायदा है?
0: बिल्कुल। क्या खेलते हैं आप?
2: बैडमिंटन।
0: बैडमिंटन खेलते हैं। विवेकानंद जी फुटबॉल खेलते थे मालूम है, और वो योगी भी थे, बहुत बड़े योगी थे वो। तो अगर आप योग करते हैं ना तो खेल में कंसंट्रेशन अच्छा बनता है। और आप आई थिंक 12 ईयर्स की है ना, 13 ईयर्स की है, तो आपको सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए। सूर्य नमस्कार में 12 आसन आते हैं, और जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी, जैसे आपने अपनी बॉडी बना रखी है, तो आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, आपको भूख भी अच्छी लगेगी। तो आपके लिए सूर्य नमस्कार जो है ना, आपके लिए बहुत जरूरी है। उससे आप खेल में अच्छा मन लगा पाएंगे और अच्छे से आप खेल पाएंगे।
1: दीदी, जैसा हम देख रहे हैं कि वैष्णवी बहुत दुबली पतली हैं, तो इनको ये योग तो जरूर करना चाहिए, है ना वैष्णवी?
0: हाँ,
1: हाँ
0: इनको भूख भी लगेगी। योग ऐसा नहीं है कि बहुत जो दुबले लोग होते हैं वो और दुबले हो जाते हैं, लोगों में मानसिकता ही है ना, इस तरह से भी कहते हैं कि नहीं छोड़ो जाने दो, लेकिन ऐसा नहीं है। योग हमें फिट रखता है ना? अगर आप बहुत दुबले हैं, अगर बहुत एकदम भूख नहीं लगती, आप नाड़ी संचालन वगैरह करते हैं तो आपको भूख भी लगने लगती है, आपका वेट भी गेन होता है। जिनका वेट ज्यादा है वो, मतलब योग हमें फिट रखता है,
1: उनका वजन भी कम होता है, वो
0: उनका
1: फिट
0: वजन
1: हो जाते
0: डेफिनेटली
1: हैं।
0: कम होता है।
2: दीदी, जैसे हम लोग बच्चे हैं तो हमें कौन कौन से योग करना चाहिए?
0: आपको, क्योंकि आप बच्चे हैं तो आपको लंबाई के लिए भी चाहिए, एक्टिव रहने के लिए भी चाहिए, तो आपको सूर्य नमस्कार भी करना चाहिए, आपको ताड़ासन का भी अभ्यास करना चाहिए। ताड़ासन, जब बच्चे जो लंबाई के प्रोसेस में होते हैं उनकी लंबाई बढ़ती है, सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य नमस्कार का अभ्यास अगर मंत्रों के साथ आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना? आप प्रसन्न रहेंगे पूरा दिन, खुशी खुशी रहेंगे, पढ़ाई में मन भी लगेगा आपका, और आपको भूख भी लगेगी। कितना करना चाहिए सूर्य नमस्कार? आप 3 राउंड करिए, क्योंकि आप बच्चे हैं छोटे छोटे, तो आपको 3 राउंड आपको करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे बॉडी हमारी हार्ड हो जाती है। जैसे छोटे होते हैं, जैसे छोटे में बच्चों की बॉडी में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो आप उनको स्विमिंग में भी छोड़ देते हैं, जल्दी जल्दी सीख जाएंगे। आप योग अभ्यास में भी, क्योंकि योग अभ्यास में बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं है तो आप कोई अभ्यास नहीं कर सकते। तो बच्चों को उस
1: इसीलिए
0: दिशा में ले जाना चाहिए,
1: हाँ
0: इससे बच्चे आध्यात्मिक भी होते हैं, क्योंकि इस समय कॉम्पिटिशन का एज है, और बच्चों के लिए योग बहुत जरूरी है। योग हमें किसी भी धर्म वर्ग संप्रदाय जाति में नहीं बांधता, इसलिए बच्चों के लिए, बच्चे जब शुरू से योग करेंगे तो इन चीजों में बड़े स्मार्ट हो जाएंगे वो।
2: दीदी, क्या हमें रोज योग करने चाहिए?
0: बिल्कुल करना चाहिए। हम जब योग अभ्यास करते हैं ना, तो पहले हम योग की तरफ मन लगाते हैं, फिर योग में इतनी ताकत है कि रोज आपसे योग करवाएगा। पहले हम योग साधते हैं, बाद में योग हमें साधता है। जब तक आप योग नहीं कर लेंगे तब तक आप सोचेंगे समथिंग इज मिसिंग, कुछ मिसिंग है अभी,
1: एक आदत
0: कुछ
1: बन जाती
0: एक
1: है।
0: बिल्कुल आदत बन जाती है। और कुछ बच्चों को तो पहले उस दिशा में ले जाना पड़ेगा। आप अगर महीने 2 महीने आपने मेहनत कर ली, तो फिर आपको मेहनत करने की, फिर वो हमेशा आपको हेल्प करेंगे और अपने आप को भी हेल्प करेंगे। तो इसमें कहते हैं ना, योगस्थः कुरुकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, ये गीता

0: है, श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है,
1: हम्म,
0: और इसका मतलब ये होता है कि हर परिस्थिति में हम खेल रहे हैं, बच्चे बहुत बड़े स्ट्रेस में चले जाते हैं। आजकल बच्चे सोचते हैं कि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लेके आए, बहुत कंपटीशन है, हम ब्यूटी का कंपटीशन है, सोचते हैं ना बहुत सारे, इतने आजकल तो बहुत सारे फील्ड्स हैं जाने के लिए, बच्चों को ग्रो करने के लिए। तो इसका मतलब ये होता है कि हर परिस्थिति में, अगर रात दिन है, गर्मी सर्दी है, बच्चे कुछ बोलते हैं ना कि बहुत अब एसी नहीं चलेगा तो हम सोएंगे ही नहीं, कुछ ये चीज मिलेगा नहीं तो हम रहेंगे ही नहीं, ऐसी इन चीजों में हमें एकदम बैलेंस करना सिखाता है। समत्वम योग उच्चते, सम की भावना आती है, एडजस्ट करने की भावना आती है, और जब योग अभ्यास करेंगे तो आपको गुस्सा आएगा ही नहीं, आप ये फील करेंगे जब लगातार अभ्यास करेंगे, तो आप धीरे धीरे धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगेंगे।
1: दीदी किस
0: हाँ,
1: समय योग करना उचित है?
0: सुबह में देखो तुम कितने बजे उठते हो,
1: सुबह 8 बजे।
0: देखो समय के हिसाब से, जैसे सर्दी के जानना चाहिए ना आपको कि
1: इसका
0: सर्दी
1: मतलब है
0: और
1: दीदी कि सिद्धार्थ देर से उठते हैं।
0: सर्दी गर्मी में, ठंड में सूरज निकलने का समय अलग होता है। सुबह में देखो तुम 8 बजे उठते हो ना, तो स्कूल भी, अभी तो छुट्टियां चल रही है इसलिए 8 बजे उठते हो,
1: हाँ
0: लेकिन जब स्कूल चलेगा तो तुम्हारी मम्मी 6 बजे तुमको उठा देती होगी, 5 बजे जल्दी उठो, जल्दी
1: हाँ
0: नहाओ। तो सुबह में योग करते, सुबह में, जैसे स्कूल में तो योग आसन कराया जाता होगा तुम्हारे, है ना, सुबह में, अगर क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे हैं तो आपको उतने देर, 8 घंटे की नींद भी चाहिए आपको, तो उसके बाद 7 बजे के लगभग आप उठ के, और आप 20 मिनट भी योग अभ्यास कर लीजिए तो बहुत है, सूर्य नमस्कार कर लीजिए आप, ताड़ासन, क्योंकि आपको आगे लंबा भी, स्मार्ट भी होना होगा ना।
1: दीदी वैष्णवी भी कुछ पूछ रही है।
2: दीदी बीमारियों से भी आराम मिलता है योगासन करने से?
0: बिल्कुल, योग आसन अगर आप करेंगे तो आप बीमार नहीं होंगे, क्योंकि जब बीमार होंगे तो बीमारी में योगासन आप नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कहते हैं ना कि रेगुलर अभ्यास करना चाहिए, तो आप बीमार जल्दी से नहीं पड़ेंगे, जिससे क्या होता है ना, हमें हमारी बीमार बॉडी में ये अटैक नहीं करने पाता, इसलिए मैंने कहा ना कि सूर्य नमस्कार करना चाहिए, उससे हमारी बॉडी क्या होगी, एनर्जेटिक रहती है।
2: दीदी हम कौन कौन से योग करें जिससे हमारे में पढ़ाई में लगे?
0: मैंने आपको बताया कि आप सूर्य नमस्कार कीजिए, दूसरा आप वृक्षासन है, एक पैर के बल खड़े होते हैं ना, एक पैर मोड़ लेते हैं, और तीसरा, क्योंकि क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे हैं तो ध्यान करना थोड़ा थोड़ा शुरू करिए, है ना, कैसे हम बैठ जाएंगे सीधा स्पाइन करके, ये जो आपकी स्पाइनल है आप सीधा करके उसको बैठ जाइए, आपका मन नहीं लगेगा ध्यान में, है ना, तो आप आंख बंद कर लीजिए, और फिर एक कुछ नहीं है तो आप 100:1 में आइए, 119, तो कंसंट्रेशन बनेगा आपका, फिर धीरे धीरे आप समझने लगेंगे, आपको अच्छा लगने लगेगा कि ध्यान क्या होता है, क्योंकि पहले पहले तुरंत तो आप उस दुनिया में अभी जा नहीं सकते, आप छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप पहले बैठना सीखिए थोड़ी देर, कि हम 5 मिनट्स 10 मिनट्स आंख बंद करके बैठे, जब बैठेंगे तो जितने भी दुनिया भर में आपके विचार होंगे ना, तो उसको रोकने के लिए आप 100:1 में आइए, उल्टा उल्टा आएंगे ना, तो आपका पूरा ध्यान उसमें जाएगा, काउंटिंग में, फिर ऐसे धीरे धीरे धीरे धीरे करके आप
1: वो दिमाग
0: बैठने
1: में रहेगा
0: लगेंगे।
1: कि एक भी नंबर हमसे
0: हाँ,
1: मिसिंग नहीं
0: एक
1: हो।
0: भी मिसिंग नहीं हो तो
1: हाँ
0: आप उसमें फिर आप बैठने लगेंगे, है ना, अगर
1: हाँ
0: अगर आप 5 मिनट्स भी बैठेंगे तो फिर आपका मन थोड़ा स्थिर होने लगेगा, फिर आपको अच्छा लगने लगेगा, फिर आप धीरे धीरे ध्यान की तरफ आप आएंगे, फिर उसके आगे जब आप काउंटिंग आप कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, उसके आगे एक है, आप अपने नेत्रों को बंद रखेंगे, टंग को सपोर्ट नहीं देंगे, बीच में रखेंगे, तो क्या होगा, आपका ध्यान थोड़ा लगने लगेगा, फिर आपका पढ़ाई में धीरे धीरे, जब आप दोनों स्टेप कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपको लगेगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ मुझे याद हो रहा है ना, पढ़ाई में मन धीरे धीरे लगने लगेगा, समझ आया कि नहीं आपको।
2: दीदी क्या फायदा है योग करने से?
0: देखिए जब आप योग करते हैं तो एकदम अच्छे हो जाते हैं, मन से अच्छे हो जाते हैं, क्रोध नहीं आता आपके, जैसे योग योग करने से आपकी स्किन अच्छी होती है, आपके बाल अच्छे होते हैं, आप देखिए कुछ अभ्यास ऐसे हैं योगासनों में कि आपके बाल बड़े अच्छे हो जाते हैं, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, आप जैसे इतनी दुबली।
1: तो दीदी आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपने नन्हे दोस्तों से और करेंगे खूब सारी बातें। तब तक के लिए
2: अनुमति दीजिए अपनी निशा दीदी को।
1: और कंचन दीदी को
2: जय हिंद।
3: बच्चे सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम बाल संग। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र

0: से बोल रहे हैं। 11:31 और 46 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य संबंधी साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। इस कार्यक्रम में आज का विषय है योग द्वारा रोगों का इलाज। डॉक्टर अंजना त्रिपाठी से बातचीत की है शिखा श्रीवास्तव ने।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आशा योग साधना केंद्र लहरतारा वाराणसी।

0: में अपनी सेहत के साथ समझौता तो नहीं कर रहे? क्या आप बढ़ते तनाव से परेशान हैं? क्या बढ़ती बीमारियां आपकी बेहतर जिंदगी में हलचल बढ़ा रही हैं? यदि हाँ, तो समाधान सिर्फ हमारे ही पास है। सिर्फ कुछ मिनटों का योग आपको दे सकता है बेहतर स्वास्थ्य, मानसिक शांति और नई ऊर्जा। तो देर किस बात की, आशा योग साधना केंद्र के साथ जुड़कर स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ाएं अपना कदम। आशा योग साधना केंद्र, करें योग, रहे निरोग। आशा योग साधना केंद्र, स्वस्थ जीवन का विश्वसनीय साथी। आशा योग साधना केंद्र में अनुभवी प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में योगासन, प्राणायाम, ध्यान और जीवन शैली में सुधार की कक्षाएं भी उपलब्ध हैं। आशा योग साधना केंद्र, लहरतारा, वाराणसी। आरोग्यम के श्रोताओं को रेडियो सखी शिखा श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और आज योग के द्वारा रोगों का इलाज कैसे किया जा सकता है, इस विषय से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे डॉक्टर अंजना त्रिपाठी जी के साथ, जो कि एक योगाचार्य हैं। ये आपको बताएंगे कि योग के द्वारा हम किस तरह से रोगों का इलाज कर सकते हैं, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी देंगी। तो डॉक्टर साहिबा, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: डॉक्टर साहिबा, आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि योग द्वारा रोगों का इलाज कैसे किया जा सकता है।
1: जी, नमस्कार सभी लोगों को और 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी लोगों को। और जैसा कि हमारे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शीर्षक है, योग फॉर हेल्दी एजिंग, वृद्धावस्था के लिए योग, तो बच्चों से लेकर, वयस्क से लेकर, जो हमारे वृद्ध जन हैं, उन सभी लोगों को एक रूपता से रखते हुए भारत सरकार ने इस आयोजन का ऐलान कर दिया है। तो आप सभी लोगों को उसमें सहभागिता करनी चाहिए और उसकी ढेर सारे लाभ को प्राप्त करना चाहिए। देखिए, योग हमारी जो है बहुत पुरातन पद्धति है और योग के द्वारा हम अपने पूरे जीवन काया को पलट सकते हैं, अपने जीवन के हर एक मुकाम को पा सकते हैं। कहते हैं ना, समत्वम योग उच्यते, हर स्थिति में अपने को एक संभाव में रखना चाहिए। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी ने कहा है कि अगर आप अच्छे से अगर अपने जीवन को चलाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो अपने जीवन में अथ योग अनुशासनम, अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरे श्लोक में उन्होंने कहा है, चित्त के वृत्तियों का निरोध योग के द्वारा ही होता है। चित्त अब क्या है, वृत्ति क्या है, ये दोनों हमारे ही अंदर है। तो योग का जो है दो शब्द ही नहीं है, केवल आसन प्राणायाम ही नहीं है। ये अष्टांग योग जो इसमें कहा गया है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, तो ये सारे जितने भी है, आसन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 स्तंभ है योग के। यम नियम में जो हमें सामाजिक अनुशासन, व्यक्तिगत अनुशासन बताया गया है, तो हम अपने जीवन में अगर संयमित ढंग से चले तो हमें हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम ही ना आए, कोई समस्या ही ना आए, कोई रोग ही ना बने।
0: डॉक्टर साहिबा, हम आगे बात करेंगे लेकिन श्रोताओं के फोन लगातार आ रहे हैं, तो पहले श्रोताओं से जुड़ते हैं फिर अपनी बातें करते हैं। हेलो, आरोग्य में आपने फोन किया है, कौन बोल रहे हैं?
2: हम ओम प्रकाश दुबे जौनपुर से बोल रहे हैं।
0: अच्छा, ओम प्रकाश दुबे जी, आरोग्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग योग विषय पर बात कर रहे हैं कि योग के द्वारा रोगों का इलाज कैसे किया जा सकता है।
2: हाई ब्लड प्रेशर का क्या इलाज है?
1: जी, हाई ब्लड प्रेशर, आपकी एज क्या होगी?
2: हमारी एज इस समय 80 साल।
1: और आपका वेट कितना होगा, वजन कितना होगा आपका?
2: वजन 65-70 करता है।

0: और आप खाने में क्या लेते हैं?
1: शाकाहारी है। मैं
0: शाकाहारी है, तो आप ज्यादा से ज्यादा किन चीजों का सेवन करते हैं?
1: ज्यादा से ज्यादा दाल रोटी और यही, दाल कम है तो शाम के खाते हैं चम्मच से। कौन सा योग कर रहे हैं?
0: मैं बता रही हूँ, आप इस चिंता करते हैं, किसी चीज को लेकर बहुत सोचते हैं,
1: अब वो तो भाई परिवार है, सोचना पड़ेगा।
0: लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता है, वो आपके स्वास्थ्य को और ही ज्यादा खराब करता है। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर पहले अपने खान पान को अच्छा कीजिए, और दूसरा आप प्राणायाम करना है, आप हाई ब्लड,
1: प्राणायाम,
0: हाँ प्राणायाम करना है, हाई ब्लड प्रेशर में आपको सबसे अच्छा प्राणायाम इस समय शीतकारी और शीतली प्राणायाम है,
1: अच्छा।
0: और नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम, शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम, ये तीन प्राणायाम आपको करना है। सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे अनुलोम विलोम कहा जाता है, ठीक है?
1: अच्छा
0: हाँ, इसको कैसे किया जाता है? श्वास प्रश्वास की क्रिया से किया जाता है। सबसे पहले हम बाएं नासिका छिद्र से हम श्वास को अंदर लेते हैं, फिर दोनों नासिका छिद्र को बंद करते हैं 2 सेकेंड के लिए, फिर दाहिने नासिका छिद्र को खोलते हैं और ब्रीदिंग जो लिए रहते हैं उसको बाहर छोड़ते हैं। फिर से हम उसी नासिका मार्ग से, मतलब दाहिने से, फिर से हम ब्रीदिंग को वापस से भरेंगे, फिर दोनों नॉस्ट्रिल को हम क्लोज कर लेंगे 2 सेकेंड के लिए, फिर हम क्या करेंगे, बाएं नॉस्ट्रिल से हम ब्रीदिंग को बाहर छोड़ेंगे। लेकिन
1: अच्छा
0: आपको क्या करना है, अपने ब्रीदिंग को रोकना नहीं है, क्योंकि आपके साथ आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, ठीक है? तो आप ब्रीदिंग को रोकेंगे नहीं, आप क्या करेंगे, श्वास को लेना है, छोड़ना है, फिर से लेना है, छोड़ना, ये एक क्रिया है, इसको 10 से 20 बार आपको करना है, ठीक है?
1: अच्छा
0: हाँ, और शीतली प्राणायाम जिह्वा से लिया जाता है। पहले आप सम स्थिति में बैठ जाइएगा, पालथी मारकर, सुखासन जिसे बोलते हैं, आपका कमर गर्दन बिल्कुल सीधा करके बैठिएगा। आपको अर्थराइटिस नहीं है ना पैर में?
1: नहीं, गठिया है पैर का।
0: हाँ, तो पैर को फैला के बैठना है, आप
1: हाँ
0: पैर को बिल्कुल दंडासन में बैठना है आपको, ठीक है? हाँ, उस
1: अच्छा
0: स्थिति में बैठ करके आपको ये प्राणायाम का अभ्यास करना है, ठीक है? हाँ, शीतली प्राणायाम कैसे करना है आपको, आपको जिह्वा को बाहर की साइड निकालना है, उसको पाइप का शेप देकर अपने श्वास को उसके द्वारा अंदर नाभि तक भरना है, फिर मुख को बंद कर लेना है, फिर नासिका मार्ग से उस लिए गए भरे गए श्वास को बाहर की तरफ एक्सहेल करना है, मतलब छोड़ना है। इसको भी आप 5 से 10 बार करना है, ठीक है? अब शीतकारी प्राणायाम कैसे होता है, शीतकारी प्राणायाम आपके मुख को खोलना है और आपके दोनों दांत सटे रहेंगे, और जिह्वा को तालू में लगाना है, और श्वास को उस दांत के बीच में जो स्थान है उसी से उसको अंदर भरना है, जो हाँ, फिर मुख को बंद करना है, फिर नासिका मार्ग से उसको बाहर की तरफ एक्सहेल करना है, मतलब छोड़ना है। इसको भी 5 से 10 बार करना है, ठीक है? और आप फिर रेस्ट करिएगा, मतलब फिर शवासन में आ जाइएगा, 5 से 10 मिनट उसमें रेस्ट कीजिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत ज्यादा। धन्यवाद।
2: धन्यवाद ओम प्रकाश भैया। एक फोन और आ रहा है मैडम, ले लेते हैं फिर आगे की बातें करते हैं। हेलो,
3: हेलो।
2: हाँ कौन बोल रही हैं, नाम बताइए।
3: रोशनी यादव।
2: रोशनी यादव जी, आरोग्यम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज योग पर बात हो रही है और डॉक्टर अंजना त्रिपाठी जी हमारे बीच में हैं, तो आप जो भी जानना चाहती हैं पूछ लें।
0: जी बताएं।
3: हाँ, तो हमारी आंटी जी है ना,
0: जी
3: बहुत ज्यादा मतलब पेट में गैस बनती है और
0: हाँ?
3: डकार आती है,
0: अच्छा।
3: बहुत ज्यादा परेशान रहती है।
0: उनका एज क्या होगा?
3: 40।
0: अच्छा, उनका वेट कितना होगा?
3: वेट तो नहीं बता सकते मैम।
2: अच्छा, वजन कभी नहीं कराया है?
0: ये एज के अकॉर्डिंग, वेट और हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट होना चाहिए, तो ये आप देखिएगा, अगर वेट बढ़ा हुआ है तो वेट को पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। और दूसरा कि उनको जो गैस की प्रॉब्लम है ना, तो मॉर्निंग में उन्हें, हाँ, खाली पेट उन्हें गिलोय का काढ़ा दीजिए, खाली पेट, हाँ गिलोय का। और उसके बाद, हाँ उसके बाद उन्हें कुछ सूक्ष्म व्यायाम करना है, और वज्रासन में बैठ करके प्राणायाम का अभ्यास करना है। प्राणायाम में उन्हें नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे अनुलोम विलोम आप लोग जानते हैं साधारण भाषा में, जो 72,000 नाड़ियों की शुद्धि करता है, जिसे नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं योग की भाषा में। और उसके बाद उन्हें शीतली प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम को करना है, ठीक है? इतना उनको करवाइए, बहुत रिलैक्स उन्हें मिलेगा, और उन्हें ये बताइए कि स्ट्रेस ना ले,
2: चिंता कम करें, ठीक है?
3: मैम एक और प्रश्न है मैम, हमारी एज 20 ईयर्स है
0: जी,
3: और हमारा वजन बहुत कम है,
0: वजन कम है, अच्छा।
3: हाइट और उम्र

0: के हिसाब से हमारा वजन कम है।
1: हाइट कितनी है?
0: हाइट 5 फीट है।
1: अच्छा, 5 फीट है। तो आपको समस्या क्या है, अपनी परेशानी बताएं।
0: हमारा वजन बहुत कम है। वही
1: खान पान में क्या लेती हैं?
0: सुबह मतलब उसका गुनगुना पानी पीते हैं खाली पेट।
1: आपको गुनगुना पानी नहीं पीना है। आपको सुबह में स्प्राउट का सेवन करना है। स्प्राउट समझ रही हैं? स्प्राउट चने, मूंग और मूंगफली को भिगो कर एक साथ उसको अंकुरित करके आपको खाना है। और उसमें, हाँ, और उसमें आपको गाजर है, चुकंदर है, इसको भी छोटे छोटे बारीक करके काट कर उसमें मिलाना है। और उसके साथ आपको एक सेब का सेवन करना है। और आपको केवल सूर्य नमस्कार करना है।
2: धन्यवाद आरोग्य में फोन करने के लिए।
0: थैंक यू मैम।
2: हाँ मैडम, एक फोन और आ रहा है, बातें कर लेते हैं।
1: जी,
2: हेलो,
3: नमस्कार। बढ़िया,
2: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं सर?
3: वाराणसी उत्तर प्रदेश, अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 से श्रोता दंपति अनिल और रमा गुप्ता गोन।
2: अच्छा अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आरोग्यम में। और आज तो योग पर बात हो रही है, डॉक्टर अंजना त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। तो आप योग द्वारा रोगों का इलाज कैसे किया जाए, इस विषय पर कुछ जानना चाहते हो तो डॉक्टर साहिबा लाइन पे हैं, बात कर लें।
3: जी, डॉक्टर साहिबा को प्रणाम है।
1: जी, प्रणाम, बताएं अपने प्रश्न को रखें।
3: जी, मेरी उम्र जो है लगभग 70 साल के आसपास है डॉक्टर साहब।
1: जी,
3: तो एक्चुअल में प्रोस्टेट के लिए कौन सा योग जो है बेहतर होगा?
1: जी, आपको ये प्रॉब्लम कब से है?
3: ये मुझको तो 2014 से है, प्रोस्टेट 2014 से ये क्लियरी हुआ था जब अल्ट्रासाउंड हुआ था।
1: जी,
3: तो उसके बाद से दवाइयां तो मैं खा रहा हूँ, लोग बोले थे ऑपरेट करवाने के लिए, मैं करवाया नहीं। मैं
1: जी,
3: और मैं योग करता रहता हूँ, जैसे वीरभद्र आसन है चाहे कुछ है, बाकी आप क्लियर जरा बताएं किससे लाभ होगा ज्यादा।
1: अच्छा, आपका हाइट कितना है, वेट कितना है?
3: मेरा 71-72 के आसपास है केजी, और हाइट जो है 5'7" है, 5'7".
1: नहीं, ठीक है। और क्या चिकनी चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं खान पान में?
3: अब ऐसा है डॉक्टर साहिबा कि बच्चों के साथ रहते हैं तो थोड़ा बहुत चिकनी चीजें मिल जाती है, नहीं तो जैसे ज्यादातर तो वसा रहित ही खाता हूँ। बीपी भी है और मुझे शुगर भी।
1: वो बीपी, शुगर और
2: प्रोस्टेट,
1: प्रोस्टेट
3: प्रोस्टेट
1: तीनों है। हाँ,
3: प्रोस्टेट
1: देखिए, एक व्याधि होता है तो वो सब व्याधियों का जड़ पकड़ लेता है, एक चीज होने से सब कुछ घेरने लगता है।
3: जी,
1: आपको अपने आहार में सबसे पहले बहुत बदलाव करना होगा। केवल सादा खाइए, हरे सब्जियों का प्रयोग करिए, दाल आपको बहुत कम लेना है, अरहर की दाल नहीं लेनी है,
3: जी,
1: मूंग का दाल आप खाना है, ठीक
3: छिलके
1: है?
3: वाली की बिना छिलके वाली?
1: आप जो आपको पसंद हो, दोनों में से कोई भी आप खा सकते हैं।
3: जी,
1: और आपको जो आसनों का जो आप बता रहे हैं, क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन तो नहीं है?
3: मतलब कंट्रोल रहता है, ऐसे तो बीपी जनरली 135
1: नहीं,
3: और
1: मैं बीपी भी आपको अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो भी आपको व्याधि जल्दी ही आपको पकड़ेगा, क्योंकि जो चीजें आप बता रहे हैं वो आपका एक जगह पे कई सारी चीजों का एक गढ़ बन गया है। तो
3: जी,
1: इसको इसको आपको सही करने के लिए सबसे अपने उठने और सोने का टाइम आपका क्या है?
3: सोने का टाइम मान लीजिए 10:30-11 बजे और उठने का टाइम जो है 6 बजे से पहले, सुबह 6 बजे पहले।
1: 4:30 और 5 सूर्य उदय होने से पहले उठ जाना चाहिए।
3: जी,
1: सूर्य उदय होने से पहले उठने से ब्रह्म मुहूर्त का हमें, हाँ, लाभ मिलता है शारीरिक और मानसिक तौर से। तो आपको जो आपका आहार अच्छा होना चाहिए, मौसम के अनुरूप होना चाहिए, और दूसरा आप अपने सुबह के समय में आप खाली पेट आपको गिलोय का काढ़ा पीना है, ठीक
3: अच्छा
1: है?
3: गिलोय
1: हाँ
3: का?
1: हाँ गिलोय का, उससे
3: जी,
1: आपका बहुत चीज कंट्रोल होगा।
3: मेरी बात।
1: काढ़ा पीने के बाद आप सूक्ष्म व्यायाम करेंगे और प्राणायाम करेंगे, उसमें मैं आसन बता रही हूँ आपको। वीरभद्र आसन नहीं करना है
3: जी, ठीक
1: आपको, मल आसन करना है,
3: ठीक
1: ठीक है? और आपको उत्तान पादासन करना है, लिख लीजिए आप।
3: मलासन वही ना है जो बैठते हैं हम लोग
1: हाँ,
3: को
1: पैरों को
3: इंडियन
1: खोल
3: वाले में?
1: के, पैरों को खोल करके और बैठते हैं, फिर उठते हैं, कुछ देर बैठते हैं। आपको अगर अर्थराइटिस है तो आपको ये नहीं करना है।
3: अच्छा, मतलब बैठना है कितने देर तक बैठ के फिर उठना है डॉक्टर साहब?
1: आप अपने अकॉर्डिंग, आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग वहां पे बैठना है, फिर उठ जाना है।
3: क्या संकुचित भी करना है, गुदा द्वार को संकुचित ऐसा कुछ नहीं ना करना है?
1: संकुचित वो उस समय नहीं करना है, आपको बैठ के करना है गुदा
3: अच्छा,
1: मार्ग को। हाँ, मैं बता रही हूँ अभी आपको। वो आपको कब करना है, आप जब लेट जाएंगे, जब
3: जी
1: साइकिलिंग करेंगे, साइकिलिंग समझ रहे हैं, पैरों
3: जी जी
1: को,
3: हाँ जी
1: हाँ,
3: जी

0: फॉरवर्ड और बैकवर्ड, मतलब
1: जी
0: आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 20
1: बहुत
0: टाइम,
1: अच्छा।
0: हाँ ये करना है। उसी समय आपको आपके गुदा मार्ग को संकुचित मतलब अंदर की तरफ खींचना है, बाहर की तरफ छोड़ना है, ठीक
1: जी
0: है।
1: जी जी
0: दूसरा आपको भद्रासन करना है बैठकर, भद्रासन करते टाइम भी आपको यही क्रिया करनी है।
1: भद्रासन का थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दीजिए संक्षेप में।
0: भद्रासन कैसे करना है आपको, देखिए भद्रासन तितली आसन दोनों में अंतर है।
1: जी।
0: भद्रासन आपको पैर को, दोनों दंडासन में आ जाएंगे, दोनों पैर के तलवे को आपस में जोड़ लेंगे, सामने की साइड
1: जी
0: सटा लेंगे,
1: जी बिल्कुल
0: हाँ ठीक है। और एकदम स्पाइन आपका, देखिए ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आसनों को करते समय आपका कमर गर्दन एकदम सीधा होना चाहिए,
1: अच्छा जी
0: स्पाइन सीधा रखिएगा, ठीक है।
1: जी बहुत अच्छा
0: तभी आपके जो श्वास प्रश्वास की जो क्रिया है वो आपके मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक वो पूरा कार्य करता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। और उसमें आपको क्या करना है, अपने दोनों थाई को, दोनों पैर का जो आप मुड़ा रहेगा उसको क्या
1: जी
0: करना है कि ऊपर नीचे मतलब बहुत स्लो मोशन में ऊपर और नीचे लेके जाना है।
1: अच्छा ठीक।
0: पहले
1: हाँ
0: आपको उस स्थिति में बैठना है और अपने दोनों पैर को अप डाउन मतलब स्लो मोशन में करना है,
1: अच्छा ठीक।
0: तेज नहीं करना है। और उस स्थिति में बैठने का अभ्यास करिएगा, ये करिएगा, और नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम ये आप करिएगा।
1: नारी शोधन वही अनुलोम विलोम हो गया रोक के जो है धीरे धीरे जो है करना।
0: हाँ, जो आपको मधुमेह का भी प्रॉब्लम है, शुगर है,
1: जी।
0: हाँ, तो उसके लिए आपको भुजंग आसन करना है, ठीक है, मंडूक आसन करना है,
1: बहुत अच्छा
0: ठीक है, ये दो
1: जी
0: करिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा और स्ट्रेस मत लीजिएगा।
1: बहुत अच्छा जानकारी आपने दिया आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर।
0: जी बताइए।
1: डॉक्टर साहिबा को और साथ में आपको लाली बहन को, अग्नैया वाली लाली बहन के बहुत बहुत धन्यवाद।
2: चलिए,
0: आपको
2: बहुत-बहुत
0: भी बहुत
2: धन्यवाद,
0: बहुत धन्यवाद,
2: स्वस्थ
0: हाँ,
2: रहिए,
1: और
2: खुश रहिए।
1: डॉक्टर साहिबा के भी प्रणाम योग दिवस के अवसर पर।
0: जी आपको भी प्रणाम, और
1: प्रणाम
2: इसी तरह फोन
0: जी,
2: करते
1: प्रणाम।
2: रहिए आरोग्य में।
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: जी
1: आपके लाली बहन के हम भूलो, बहुत बढ़िया चला था आपके प्रोग्राम।
2: धन्यवाद, आप लोगों का प्रेम है जो ये कार्यक्रम
1: अरे
2: इतना
1: बिल्कुल
2: अच्छे से चल रहा है।
1: एकदम बहुत सही चल रहा है, बहुत पसंद आता है। ठीक
2: जी
1: है जी धन्यवाद
2: जी
1: प्रणाम।
2: प्रणाम
0: प्रणाम।
2: हाँ मैडम, एक और फोन आ रहा है, श्रोता से जुड़ते हैं। हेलो,
3: नमस्कार जी।
2: आप कहाँ से बोल रहे हैं सर?
3: हाँ अंता श्रीवास्तव जी, आपको 90 साल आकाशवाणी को होने में शुभकामनाएं।
2: बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, और आज तो आपने आरोग्यम में फोन किया है सर, अपना नाम और पता बताएं।
3: रमेश कुमार पासवान बोल रहे हैं।
2: अच्छा रमेश जी, आज योग पर बात हो रही है।
3: जी। हाँ डॉक्टर साहब से बात करेंगे।
2: हाँ बताएं, नमस्ते आप।
3: हाँ डॉक्टर साहब, ये घुटना में जो दर्द होता है इसके लिए कौन सा योग करना है?
0: आपकी अवस्था क्या है, ये एज क्या है आपका?
3: 8 5 72।
0: अच्छा, और आपका वेट कितना है?
3: 45। घुटना दर्द करता है
0: घुटने में,
3: जैसे
0: जैसे
3: खट
0: जैसे,
3: खट खट खट की आवाज करती है।
0: अच्छा खट, ये कब से है, ये मतलब अभी हुआ है या बहुत पहले से है ये?
3: ये को लगता है कि 5 महीना हुआ है।
0: और क्या पैर को मोड़ने में दिक्कत होती है, पैर को
3: जी
0: जब?
3: जी हाँ पैर मुड़ने में दिक्कत होती है, बैठ जाएंगे तो जैसे कुर्सी पर जाएंगे तो उठ जाएंगे, नीचे पर जाएंगे तो नहीं उठ पाएंगे।
0: अच्छा, नीचे बैठने पे नहीं उठ पाते हैं। दूध दूध पीते हैं, दही वही खाते हैं?
3: हाँ दही दूध तो खाते हैं, खीरा वगैरह खाते हैं, चावल दाल।
0: अच्छा, आपके पैर के अलावा और भी कोई प्रॉब्लम है आपको?
3: नहीं यार कोई तो प्रॉब्लम नहीं।
0: आप अपने आहार में कैल्शियम को प्राथमिकता दें और हरे फल फूल सब्जियों को प्राथमिकता दें, वो खाएं। चावल को कम से कम, रोटी को महत्व दें। और दूसरा आपको क्या करना है कि मोड़ के पैर को नहीं बैठना है, हाँ वॉक करना है तो कम करना है आपको। चेयर पे बैठ करके क्या करना है, अपने पैरों को दोनों सीधा कर, ठीक है, अपने जो पैर की उंगलियां हैं उसको आपको अंदर की तरफ खींचना है, छोड़ना है पैर के। फिर उसको क्या करना है, अपने पूरे पंजे को, पैर के जो पंजे उसको आगे की तरफ खींचना है और फिर पीछे की तरफ लाना है, एंटी क्लॉक क्लॉक और एंटी क्लॉक करना है, ठीक है। उसको फिर आपको सर्कल में करना है, राउंड सर्कल में करना है। इतना करने के बाद अपने दोनों पैर को दंडासन में कर लेंगे, मतलब अब आपको किसी नीचे जमीन पे नहीं बैठना है, बेड पे, जैसे चौकी नहीं होता है एकदम समतल स्थान पे, हाँ वहां पे बैठ जाना है आराम से। उसके बाद क्या करना है, अपने घुटने को संकुचन करना है, उसको क्या करना है, अपने दोनों घुटने को अंदर की तरफ संकुचित करना है और खींचना है और छोड़ना है। आपके घुटने का जो स्थान है, जो बीच का जो बाउल है, जो कटोरी नुमा आपका जो स्थान है घुटने का, को हाँ उसको खींचना है छोड़ना है। और एक चीज और, आपको एक हड़जोड़, हाँ हड़जोड़ आता है वो आपको

0: तुलसी अच्छे, लेकिन शुद्ध होना चाहिए, सरसों का या तिल के तेल में उसको बढ़िया सा पका लेना है। पकाने के बाद आपके पैर के घुटने, मतलब आपको थाई से लेकर के पूरे आपके पंजे तक उसकी मालिश करनी है, दोनों पैर की मालिश करनी है। और आपको लेट करके आसनों का अभ्यास करना है, कौन कौन सा, साइकिलिंग करनी है सामने की तरफ, क्लॉक और एंटी क्लॉक, ठीक है। और दोनों पैरों को फैला करके ही आपको स्ट्रेचिंग करनी है, मतलब पीछे के हाथ को पीछे खींचना है, अब आगे को पैर को आगे खींचना है, फिर उसको छोड़ देना है, फिर शवासन लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद आप उठकर बैठ जाएंगे, फिर उसके बाद आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है। बैठने का मतलब पैर को नहीं मोड़ना है, आपको दंडासन में ही बैठना है, और आपको किसी जमीन पे नहीं बैठना है, चौकी पे बैठ के करना है ताकि आपको उठने में आसानी हो, ठीक है। इतना आप करिए और आपको बहुत लाभ मिलेगा। प्राणायाम में आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है और भ्रामरी प्राणायाम करना है। जब आप कुर्सी पर बैठकर करेंगे तो उस समय भी आपके जो पंजे का जो मूवमेंट है केवल वही करना है, ठीक है, उसी को करना है।
1: धन्यवाद रमेश जी फोन करने के लिए।
2: थैंक यू डॉक्टर साहब।
0: धन्यवाद।
1: हाँ डॉक्टर साहिबा, एक फोन आ रहा है, ले लेते हैं। हेलो,
3: हाँ मैडम नमस्ते
1: नमस्ते सर, कहाँ से बोल रहे हैं?
3: जी मैं चंदौली से बोल रहा हूँ, चंदौली काटा से ईश्वर चंद मौर्या।
1: अच्छा ईश्वर चंद मौर्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आरोग्यम में आपका। और आज योग पर बात हो रही है तो डॉक्टर अंजना त्रिपाठी जी हमारे बीच में हैं। आप जो जानना चाहते हैं डॉक्टर साहिबा से बात करें, डॉक्टर साहिबा लाइन पे हैं।
3: डॉक्टर साहब नमस्ते।
0: जी नमस्कार, बताएं।
3: जैसे मैडम मेरे कमर उमर में दर्द हो रहा था तो एक बार मैं आरोग्य में फोन किया था, कोई डॉक्टर थे वहाँ तो बताए कि आप अर्ध चंद्राकार आसन करिए, पीछे से मतलब कमर पे हाथ रख करके और पीछे जाइए सीधे 30 सेकंड होल्ड रखिए फिर आगे आइए। तो मैडम उससे मुझको मतलब फायदा बहुत बहुत बढ़िया फायदा, मैं 1.5 महीने से कर रहा और दर्द वगैरह सही है थोड़ा। फिर एक और मैं यूट्यूब पे चेक वगैरह किया तो देखा तो पैर और दर्द उर्द कर रहा था, तो 35-40 मिनट में 35 मिनट समय देता हूँ तो फिलहाल तो सही, लेकिन समस्या ये सर्वाइकल वाला है थोड़ा, अभी ये राहत नहीं हो रहा है।
0: सर्वाइकल भी है और कमर में प्रॉब्लम है, क्या आपके स्पाइन में प्रॉब्लम है कि केवल कमर में प्रॉब्लम है?
3: नहीं कमर दर्द तो डॉक्टर साहब सही है, इस समय जब से मैं कर रहा हूँ 1 महीने से लगभग तो अब कमर एकदम दर्द नहीं करता।
0: ईश्वर चंद्र जी आपका एज कितना होगा?
3: डॉक्टर साहब एज 52 साल है, 53वां शुरू होने वाला है।
0: अच्छा, और आपका वेट कितना है?
3: वेट तो 90 होगा लगभग।
0: आपका वेट पहले कम कीजिए आप।
3: जी
0: बहुत ज्यादा आपका वेट है।
3: हाइट जैसा 6 फुट है, हाइट 6 फुट है।
0: हाँ 6 फुट है, फिर भी आपका 70-75 के अंडर में होना चाहिए।
3: जी
0: आपका जो हाइट है उस हाइट के अकॉर्डिंग 75-70 के बीच में आपका वेट होना चाहिए।
3: जी
0: उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप अपने पहले वेट को मेंटेन कीजिए। और दूसरा चीज ये है, अगर आपको योग का प्रशिक्षण लेना है तो कभी यूट्यूब से, कभी ऐसे किसी का देख कर नहीं, किसी अच्छे प्रशिक्षक के अंडर में ही प्रशिक्षण लीजिएगा। क्योंकि योग का प्रभाव बहुत अच्छा होता है, दुष्प्रभाव भी पड़ता है अगर आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो। आपकी जो समस्या है उसको आप नजरअंदाज ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि शुरू में जो चीजें आप कंट्रोल कर लेंगे ना, वो ज्यादा होने के बाद फिर कंट्रोल नहीं होता, फिर वो बढ़ना शुरू हो जाता है ना। अगल बगल भी कोई है तो वहां पे कोई अच्छे प्रशिक्षक को आप बात करके वहां आप सीख सकते हैं। दूसरा चीज है, फॉरवर्ड बेंडिंग आपको नहीं करना है।
3: जी।
0: सामने की तरफ आपको झुकने वाला कोई कार्य कुछ भी नहीं करना है जो आपकी प्रॉब्लम है, नहीं तो आपका प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ेगा। और आपको तकिया नहीं लगाना है, पिलो को नहीं लगाना है।
3: तकिया तो सब मैं नहीं लगाता हूँ, 4-5 साल से छोड़ दिया, एकदम नहीं लगा।
0: हाँ अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना तो बेड शीट को ऐसे फोल्ड करके पतला करके ना वो अपने गर्दन के पास आप रख सकते हैं।
1: हाँ मैडम, एक और फोन आ रहा है, श्रोताओं के लगातार फोन आ रहे हैं और बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे कार्यक्रम को लोग इतना पसंद कर रहे हैं। से बात करते हैं, देखें क्या कहते हैं ये। हेलो
4: हेलो,
1: हाँ जी कौन बोल रहे हैं?
4: राधे श्याम चौहान लखिया, आरोग्य।
1: हाँ हाँ राधे श्याम चौहान जी, आरोग्य में बहुत बहुत स्वागत है आपका। योग के विषय में आप जो जानकारी लेना चाहते हैं तो डॉक्टर साहिबा लाइन पे हैं, आप बात कर लें।
4: ठीक है। नमस्कार डॉक्टर साहब।
0: जी नमस्कार, बताएं।
4: हमारा है ना, हाँ तो जैसे कि योग जैसे कि करने से क्या शरीर में प्रभाव पड़ता है? वही
0: नहीं, प्रभाव योग का बहुत पड़ता है। आप नॉर्मल

0: ऐसा अपने स्वास्थ्य के लिए आप कॉल किए हैं या अपनी समस्या के लिए?
1: कौन सा बढ़िया होता है?
2: ये जानना चाहते हैं कि योग किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, हम किस तरह का योग
0: आपका
2: करें।
0: एज कितना होगा?
1: एज है 65।
0: तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम है?
1: जैसे जब तो शुगर बढ़ जाता है, घट जाता है, बस
0: आपको शुगर भी है और आपको बीपी भी है और क्या है?
1: दो ही है।
0: अच्छा
1: अब आँख के लिए ग्लूकोमा है।
0: अच्छा ग्लूकोमा भी। और ये बताइए कि ये कब से है आपको, या अभी हुआ है या बहुत पहले से है?
1: आँख तो हुआ है करीब पहले से, और ये सब है शुगर, ये सब है 2-3 साल से।
0: अच्छा शुगर 2-3 साल से है। और आपको ये जो बीपी की समस्या है ये कब से हुआ है? ये शुगर के बाद हुआ होगा।
1: हाँ
0: क्योंकि एक व्याधि पकड़ता है तो उसके साथ एक और लेके आता है। अभी तो दो ही है ना, अभी अगर आप ध्यान नहीं देंगे अपने स्वास्थ्य का तो आपको बहुत सारे रोगों का गढ़ बना देगा वो। ठीक
1: अच्छा
0: है? हाँ, तो अपने आहार में आपके पैर में प्रॉब्लम नहीं है?
1: नहीं
0: हाँ, आप
1: नहीं
0: सबसे पहले, हाँ सबसे पहले आप सुबह में, रात को आप जो छाछ होता है जानते हैं,
1: हाँ
0: माठा माठा होता है ना, उसको रात में, हाँ उसको रात में क्या करना है, उसको आप रख लीजिएगा।
1: अच्छा
0: सुबह में उसको कुछ नहीं करना है, उसको रख लीजिएगा। उसको भोजन के समय आपको यूज करना है, भोजन
1: अच्छा
0: के समय आपको छाछ यूज करना है। और जो आपको करना क्या है, सुबह में गिलोय का काढ़ा पीना है।
1: अच्छा
0: हाँ, खाली पेट।
1: खाली पेट।
0: हाँ, गिलोय का काढ़ा पियेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि सूक्ष्म व्यायाम करना है।
1: अच्छा
0: सूक्ष्म व्यायाम करना है और आपको केवल 2 से 3 प्राणायाम करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, शीतली प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम।
1: अच्छा
0: ठीक है? और
1: ठीक
0: मंडूक आसन करिएगा।
1: है
0: इतना करने के बाद शवासन ले लीजिएगा और ये आप नित्य में शामिल करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा।
1: ठीक है डॉक्टर साहब, नमस्कार
2: नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने बात की योग द्वारा रोगों का इलाज इस विषय पर, और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए डॉक्टर अंजना त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैम, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। ये आरोग्यम का ऐसा ही ये कार्यक्रम चलता रहे, और जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, जो आरोग्यम से जुड़े हुए लोग हैं, वो स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने जीवन में खूब सफलता को प्राप्त करें और नए नए चीज़ों की जानकारियों को प्राप्त करते रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।
2: इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और श्रोताओं से कहते हैं कि जागरूक रहें, स्वस्थ रहें और सदैव सुनते रहें आरोग्यम और आकाशवाणी वाराणसी। कहीं आप अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपनी सेहत के साथ समझौता तो नहीं कर रहे? क्या आप बढ़ते तनाव से परेशान हैं? क्या बढ़ती बीमारियां आपकी बेहतर जिंदगी में हलचल बढ़ा रही हैं? यदि हाँ, तो समाधान सिर्फ हमारे ही पास है। सिर्फ कुछ मिनटों का योग आपको दे सकता है बेहतर स्वास्थ्य, मानसिक शांति और नई ऊर्जा। तो देर किस बात की, आशा योग साधना केंद्र के साथ जुड़कर स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ाएं अपना कदम। आशा योग साधना केंद्र, करें योग, रहें निरोग। आशा योग साधना केंद्र, स्वस्थ जीवन का विश्वसनीय साथी। आशा योग साधना केंद्र में अनुभवी प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में योगासन, प्राणायाम, ध्यान और जीवन शैली में सुधार की कक्षाएं भी उपलब्ध हैं। आशा योग साधना केंद्र, लहरतारा, वाराणसी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आशा योग साधना केंद्र लहरतारा वाराणसी।
1: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य संबंधी साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। कार्यक्रम में आज का विषय था योग द्वारा रोगों का इलाज। विशेषज्ञ थी डॉक्टर अंजना त्रिपाठी, इनसे बातचीत की शिखा श्रीवास्तव ने। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश, प्रस्तुति अरुण पांडेय की।

0: इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का।
1: एक्सक्यूज मी।
2: हाँ बोलना।
3: क्यूट है ना?
0: और श्रोताओ, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार।
4: सलाम।
5: आपकी कॉल
0: आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222-10-52 यानी 222-1052 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
6: सर जी को राधे राधे।
0: राधे राधे।
6: केसरी सिंह राजपूत, बैरसिया, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश से।
0: स्वागत है केसरी जी। और कैसे हैं आप, और योग दिवस के संदर्भ में क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मौका है, जीवन में योग की क्या महत्ता है? कुछ योगासन वगैरह आप भी करते हैं?
6: हाँ सर, हम बहुत बढ़िया हैं। और दूसरी बात, योग की कहते हैं कि करो योग रहो निरोग।
0: हाँ, ये मूल मंत्र है।
6: ये मूल मंत्र है सर। और योग के तो बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन मैं ज्यादा नहीं करता।
0: ये है कि आजकल जीवन बहुत जो है मसरूफ हो गया है और हर कोई थोड़ा सा दफ्तर टाइप के काम में व्यस्त है, लेकिन सुबह शाम या दिन में कभी भी मौका मिले तो जरूर प्रकृति के नजदीक और योगासन वगैरह का अभ्यास थोड़ा बहुत अवश्य हर किसी को करना चाहिए।
6: बिल्कुल करना चाहिए सर। मेरा तो एक ही उसूल है कि सर मॉर्निंग में सूर्योदय पहले उठकर और 10-15 मिनट हो जाए या 20 मिनट हो जाए, बस घूमने जाते हैं।
0: जी बिल्कुल, वो सुबह शाम अगर आप खुले में अच्छे वातावरण में टहलते हैं तो उसके भी बहुत लाभ हैं।
6: और बिल्कुल, बिल्कुल।
0: जी अब गीत कौन सा सुनवा दें आपको?
6: गीत आप सुनवा दीजिएगा सर, मूवी का नाम है रूप तेरा मस्ताना। वो गाने के बोल हैं बड़े बेवफा हैं ये हुस्न वाले,
0: मोहम्मद रफी की आवाज है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
6: जी, काफी अंतराल बाद आपसे बात करने का आज मौका मिला।
0: बहुत स्वागत, हमें भी अच्छा लगा आपसे बातें करके। और आनंद बख्शी के बोल हैं, गीत आपको सुनवा रहे हैं रूप तेरा मस्ताना फिल्म से।
6: ओके सर, थैंक यू।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: जी नमस्कार सर।
0: नमस्कार
1: जी सर, बालेंद्र कुमार पाल बोल रहा हूँ सर मैं।
0: कौन सी जगह से बालेंद्र पाल जी, स्वागत है प्रोग्राम में आपका।
1: जी ग्राम मुड़वारा तहसील लोकस नगर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश।
0: और थोड़ा सा आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर हरा भरा है, वन का इलाका है, तो आपके यहाँ गर्मियों का असर कैसा है?
1: गर्मी तो सर इस समय वही 45 डिग्री चल रहा सर अभी।
0: हाँ, यानी बहुत तेज धूप जैसे इस इलाके में वैसी आपके यहाँ भी है। और कारोबार कामकाज किस चीज का है आपका?
1: सर अपना तो ये खेती है और पशुपालन का पूरा काम है।
0: हाँ, तब आपको हम लोग अलग से योग करने को नहीं कह सकते, हालांकि जीवन में योग का बड़ा महत्व है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो
1: जी
0: इस
1: सर, जी सर।
0: संदर्भ में यह कि खेती बाड़ी पशुपालन से जो लोग जुड़े रहते हैं वो स्वयं इतना शारीरिक श्रम करते हैं
1: जी सर,
0: कि
1: हमारा तो यही काम है, मालूम सुबह से अपना खेती का काम करना, तो व्यायाम बराबर होता रहता है।
0: बिल्कुल आपका तो सारा काम ही

0: फिजिकल है, सुबह से लेकर जितनी देर आप जगे रहते हैं कुछ ना कुछ करते रहना होता है।
1: जी सर, जी
0: और खासतौर से खेती के साथ आप पशुपालन भी करते हैं।
1: जी सर, तो ऐसे व्यवस्था है सब।
0: और हमारे प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के, कैसे लगते हैं आपको?
1: हाँ जी सर, ऐप के जरिए सर आपको प्रोग्राम बराबर सुन रहे हैं।
0: आज कौन सा गीत सुनाए?
1: आज इसके है तुमसे सर गाना, इसके है जिंदगी ये वाला गाना।
0: हाँ, और ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर।
1: हमारे दोस्त से बहुत परेशान हो रहे थे
0: जी,
1: अपने भाई हैं नीरज पाल, तो कह रहे थे मेरा भी नाम बोल देना।
0: जी बिल्कुल, तो आप दो और भी दोस्त हैं तो उनके नाम दो चार क्या आप बता सकते हैं अगर चाहें तो?
1: नहीं बहुत है, वही वो प्रयास कर रहा था।
0: उदित नारायण, अलका याग्निक और विनोद राठौड़ की आवाजें हैं, समीर के बोल, हिमेश रेशमिया का संगीत है, गीत आपको सुनवा रहे हैं। नमस्कार।

0: कार्यक्रम। हेलो, फोन इन, फरमाइश।
1: हाँ भैया जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका।
1: योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: योगेश जी, और आज बड़ा परिश्रम करना पड़ा आपको।
1: नहीं भैया, तो मैं 4-5 बार ट्राई किया हूँ, फोन लग गया है।
0: जी जी यही आत्मविश्वास और भरोसा और खुशी हर श्रोता में होनी चाहिए।
1: जी
0: और जीवन में योग का क्या महत्व है, इस विषय पर क्या कहेंगे आप? और कामकाज अगर आपका खेती बारी से संबंधित है तब तो आप यूं ही परिश्रम करते होंगे।
1: बिल्कुल भैया, मूल काम हमारा खेती बाड़ी का ही है और योग भी जीवन का एक अहम हिस्सा है। बिना योग के आज के समय में हम एक स्वस्थ जीवन की कामना नहीं कर सकते।
0: हाँ, और जब खेती बाड़ी में आप हैं तब तो निश्चित रूप से आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता होगा और काम पर निकल जाना होता होगा।
1: सुबह शुरू से भैया, जब से पढ़ाई कर रहे हैं तब से 5 बजे उठने की आदत है।
0: जी
1: उसके बाद थोड़ा बहुत कसरत करते हैं और उसके बाद अभी तो गर्मी में 2 महीने आराम किए हैं भैया, और अभी जैसे बारिश होगा धान लगाएंगे तो खेती बाड़ी का काम फिर से रफ्तार पकड़ लेगा।
0: बहुत बढ़िया। और आज किस गाने की फरमाइश है आपकी?
1: फिल्म प्यासा सावन से सुनवा देंगे, मेघा रे मेघा रे मत
0: बिल्कुल,
1: पर देश जा रे।
0: इसी बारिश का इंतजार है और मेघों से यही आग्रह, परदेश न जाएं और ख्याल रखें हम सबका। और मौसम जल्दी मानसून का है, बारिश का है। गीत पहुंच रहा है आप तक, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजें, संतोष आनंद के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। शुक्रिया, नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश सर, नमस्कार।
0: नमस्कार
1: सर, मैं रामबाबू मालवी बोल रहा था, कोलार रोड भोपाल से।
0: बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और जीवन में योग की अहमियत पर क्या कहेंगे आप, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है।
1: जी जी जी बिल्कुल, योग करना बहुत जरूरी है अपने स्वास्थ्य के लिए, बिल्कुल फायदेमंद है सर। वो हम तो करते हैं और सुबह सुबह थोड़ा सा हम घूमने फिरने भी जाते हैं और अच्छा लगता है, योग भी करते हैं पूरी तरह से।
0: बिल्कुल, जब भी मौका मिले और अपनी दिनचर्या के बीच योग का समावेश करना चाहिए और हम सबको इसका ख्याल रखना चाहिए। स्वस्थ रहता है तन मन दोनों, जैसा हमारे श्रोता भी कहते हैं कि करें योग और रहें निरोग।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही
0: और
1: बात है
0: इससे
1: सर।
0: योग में संगीत का भी बड़ा योगदान है और गीत संगीत
1: हाँ
0: हमारे
1: जी बिल्कुल
0: कार्यक्रमों का अभिन्न हिस्सा है। कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं, सुन रहे हैं आप?
1: जी, बिल्कुल बराबर सुन रहे हैं सर। आपके व्हाट्सएप फरमाइश हो या ईमेल फरमाइश हो, पत्र के लिए धन्यवाद प्रोग्राम भी सुनते हैं
0: जी जी
1: और ये जो फरमाइश है ये भी सुनते हैं। और
0: बिल्कुल,
1: एक
0: आपको
1: जो
0: बता दें
1: संडे
0: कि इन
1: के,
0: दिनों जब
1: हाँ
0: 5 जुलाई तक अभी क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है, जिसका प्रसारण शाम को होता है, तो ऐसे में ये कार्यक्रम हमारे यहाँ जो लोग ऐप DTH वगैरह पे सुन रहे हैं, यानी सजीव सुनते हैं, तो ये प्रोग्राम 1:15 बजे से प्रसारित होगा रविवार को, जब तक वो शाम को क्रिकेट मैच चलेगा, महिला
1: अच्छा,
0: टी
1: ये
0: ट्वेंटी मैचों
1: फोन इन
0: का।
1: प्रोग्राम सर।
0: नहीं, फोन इन तो अपने समय पे है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो महिला विश्व कप हो रहा है T20 का,
1: हाँ जी।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: जी सर नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: और सर क्या हाल चाल है?
0: हम अच्छे से हैं, अपना नाम बता दीजिए आप।
1: हम अहमदनगर भैया अख्तर बात कर रहा हूँ सर।
0: जी शमीम अख्तर।
1: काफी दिनों बाद सर बात हो रहा है, काफी मेहनत कर रहे हैं हम लोग।
0: जी जी मेहनत आप कर रहे हैं, थोड़ी सी लाइनों में दिक्कत आती है, उसके लिए अफसोस हमें भी होता है, और हम लोग तो प्रयास करते हैं कि रिकॉर्डिंग अच्छी हो, और एक समेकित प्रयास है, और हमारी भी कोशिश होती है कि टेलीफोन लाइन ठीक रहे, लेकिन अक्सर थोड़ा सा गड़बड़ी तो आ रही है कभी कभी।
1: जी जी सर कुछ गड़बड़ी ज्यादा ही आ रही है,
0: और आवाज भी पहले जैसी नहीं रही, तो थोड़ा सा संबंधित जो अनुभाग हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं इस लाइन के, उनसे भी हम लोग यही गुजारिश करते हैं कि ठीक ठाक रहे।
1: जी जी सर।
0: अब बताएं क्या हाल चाल है, गर्मी का लुत्फ ले रहे हैं या फिर मानसून का इंतजार कर रहे हैं?
1: मानसून का इंतजार तो सर जिसको बोले हैं, और अभी थोड़ा गर्मी ज्यादा पड़ रहा है, तापमान ज्यादा है।
0: जी बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में क्या कहेंगे आप, जीवन में योग का कुछ स्थान है आपके और उसकी महत्ता क्या है?
1: हाँ जी ठीक है, लेकिन समय नहीं मिल पाता है।
0: हाँ आप लोग जैसे साड़ियों की बुनकारी का काम करते हैं।
1: जी जी हमारे लोग तो वही एक्सरसाइज हो जाता है।
0: हाँ हाँ ये कि हाथ पांव तो चलते रहते हैं उसमें आपके।
1: जी जी हाथ पांव तो दिन भर चलते हैं।
0: हाँ तो चलिए ये भी अभ्यास ही है, व्यायाम का एक रूप है। और कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं?
1: जी सर गीत तो बताएंगे, लेकिन बहुत दिन बाद आप बात हो रहे हैं, अरुण
0: जी,
1: सर बोल रहे हैं।
0: जी बिल्कुल
1: काफी मुझे लगता है डेढ़ दो साल बाद आपको जान रहे
0: हैं। आप जैसे श्रोताओं के नाम हमें याद रहते हैं, वर्षों हो गए आपका साथ हमारे साथ बना हुआ है।
1: जी जी सर तकरीबन हमें लगता है साल भर हो गया है। और चढ़ाई तो हर हफ्ते मारते हैं हम लोग, किस्मत की बात है।
0: जी जी जी बिल्कुल। इसमें तो देखिए हम लोग का भी देखिए कोई वर्ष नहीं चलता है।
1: जी जी सर हम जान रहे थे, कोई तो वो नहीं है, जिसका किस्मत है उसी का बात होगा।
0: हाँ और बीच में क्या होता है कि कभी लाइन और टेलीफोन में भी खराबी होते रहती है, मौसम का असर और कभी व्यवधान आ जाता है इस वजह से।
1: सर हम कह रहे हैं लोकल चालू हो जाता है।
0: जी जी
1: लोकल चालू हो जाता है, हफ्ता में एक ही दिन प्रोग्राम बजे, चाहे शनिवार को या रविवार को, हम लोग तो पुलाए यही है।
0: जी जी यानी एफएम पर।
1: एफएम पर।
0: देखिए जल्दी हो सकता है शुरू हो, हमने तो कई बार कहा है, बाकी तो भाई एक व्यवस्था है उसके अनुसार से चीजें चल रही हैं।
1: जी सर हम समझ गए, आप लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें 90% हम लोग सुन पा रहे हैं।
0: हाँ हाँ हाँ
1: 90% हमें लग रहा नहीं सुन पा रहे हैं।
0: जी बिल्कुल।

0: गीत कौन सा सुनवा दें आपको अब?
1: गीत है, फिल्म का नाम है ये नसीब। गाने को बोलो रंग जमाते, यही तेरे गाना जो है।
0: हाँ, रंग जमाने आए हैं, रंग जमा के जाएंगे।
1: जाएंगे हम, मोहम्मद रफीक लता।
0: आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाजें हैं। रंग जमा के जाएंगे ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: कटी पतंग है,
1: और जिस
0: ना
1: तरह जी
0: कोई उमंग है। हेलो सर, नमस्कार।
1: ये अच्छा है कि जिस तरह से कटी पतंगे किधर गिर जाएं पता नहीं चलता, वैसे कब फोन लग जाए आप जैसे उस्ताद जो गायक हैं उनका, ये भी बड़ी मुश्किल से होता है। तो बहुत शुक्रिया हम आपको कहेंगे कि आपने इतना प्रयास किया और आपकी जो मधुर आवाज है बड़ी शानदार है, आपके आमद के लिए बहुत शुक्रिया। नाम बता दें अपना खुद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर, जरा नवाजिश के लिए। मैं तकिया मड़िया हूँ, जिला जौनपुर से, जमील अहमद शाह बोल रहा हूँ सर।
1: और जैसे बहुत से लोग हमारी आवाज या इंतजार करते हैं, हमें लगता है कि जब आपका फोन आता है तो आप बोलते रहे, हमें बड़ा अच्छा लगता
0: बिल्कुल सर, ये बात आपने बहुत सही की, क्योंकि मैं शुरू से दो दो मोबाइल से लगा रहा हूँ, अब जाके मेरी बात
1: है।
0: हो
1: जी
0: पा रही
1: जी
0: है।
1: और
0: मैंने आपको
1: बड़ा गैप
0: जर्मनी
1: हुआ
0: के
1: इस बार,
0: भाग्यशाली
1: और
0: समझा।
1: बहुत से श्रोता हैं जो आपको हमेशा याद रखते हैं।
0: जी जी
1: इधर
0: बिल्कुल
1: थोड़ा
0: सर,
1: जमील
0: बिल्कुल
1: जी ये भी हो रहा है कि थोड़ी लाइन में कभी खराबी कभी आवाज में खराबी, हालांकि आज
0: जी।
1: अभी रिकॉर्डिंग तो आपकी ठीक ठाक हो रही है। तो और कामकाज ठीक चल रहा है, प्रोग्राम
0: तो
1: सुन रहे हैं आप?
0: हाँ बिल्कुल सर, आवाज अभी
1: हाँ
0: मिल
1: तो
0: रही है,
1: आप
0: कर
1: बता
0: रही
1: दें
0: बिल्कुल
1: कौन से गाने की फरमाइश है, क्योंकि इस लाइन का भरोसा नहीं
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो
1: है।
0: मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गाना है,
1: जी
0: और गाने के बोले इसको मैं थोड़ा सा गुनगुना दे रहा हूँ
1: पिक्चर
0: सर।
1: का नाम हमें बता दीजिए तब तक।
0: जी, मैं बता दूंगा फिल्म का नाम,
1: ठीक है
0: भरोसा
1: बताए।
0: फिल्म का गाना है। और देखिए मैं गाना गाने के बोल भी भूल रहा हूँ सर।
1: नहीं हम आपको बता
0: नहीं
1: रहे हैं, ये झुके झुके और
0: ना,
1: ये,
0: बिल्कुल यही
1: हाँ
0: यही गाना, यही गाना। बहुत दिन हो गया ये गाना अभी तक चला नहीं है रेडियो पर। जी, तो आप सुनवा दीजिए।
1: जी नहीं आप सुना दे, देखिए मूड मिजाज बन जाए तो उसमें फिर कब मौका मिले।
0: नहीं सर, कुछ थोड़ा से मेहमान भी आए हुए हैं,
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल।
0: मैं बिल्कुल अलग अलग थोड़ा सा हटा हूँ, तो आप सुनवा दीजिए, आज फिर इसके बाद मैं सुना दूंगा।
1: जी जी अच्छा लगा आपसे बात हुई, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
0: बहुत
1: और
0: बहुत
1: गीत हम
0: शुक्रिया
1: आपको सुनवा रहे हैं, राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा है और रवि का संगीत है।

0: जी कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: नमस्ते
2: जी, मौनी बाबा धाम चोचकपुर बाजार जिला गाजीपुर से राम सकल चौधरी बोल रहा हूँ सर जी।
0: स्वागत है राम सकल जी। चलिए, जाते जाते आपका फोन लग गया, हमें भी खुशी हुई क्योंकि बिल्कुल आखिरी वक्त है प्रोग्राम का।
2: आखिरी वक्त लाइन खराब है सर, कई बार गई थी घंटी।
0: हाँ, बहुत दफे थोड़ी सी एक दो हफ्ते से दिक्कतें आ रही हैं। अब बहुत सी चीजें हैं, आप भी समझते हैं, जिसपे हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं और दुश्वारियां तो होती हैं। हमें भी परेशानी होती है जब लाइन खराब होती है, टेलीफोन कॉल की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ पाती है। तो
2: और बताइए आप लोग कैसे, आकाशवाणी परिवार के लोग कैसे हैं?
0: बिल्कुल, हम लोग अच्छे से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में क्या कहेंगे, आपका कामकाज कैसा है?

0: बताए वो तो अगले हफ्ते तो लगा रहे थे, फोन नहीं लगा
1: जी।
0: जो उस क्या एक रेडियो नहीं दिया है 90 वर्ष पूरे होने पर, और
1: हाँ
0: मिठाई
1: हाँ हाँ
0: उठाई लेकर आए
1: जी,
0: परिवार में बांट उठ कर खाए सब
1: बहुत बढ़िया। देखिए, आपने
0: सब।
1: अपने घर में ही आकाशवाणी के 90 वर्ष जो है उसका उत्सव मना लिया।
0: जी, आकाशवाणी इसमें तो गर्मी पड़े घर को नहीं लगा
1: जी।
0: जो उस क्या एक रेडियो नहीं दिया है 90 वर्ष पूरे होने पर, और
1: हाँ हाँ
0: मिठाई
1: हाँ
0: उठाई लेकर आए
1: जी,
0: परिवार में बांट उठ कर खाए सब
1: बहुत बढ़िया। देखिए, आपने
0: सब।
1: अपने घर में ही आकाशवाणी के 90 वर्ष जो है उसका उत्सव मना लिया।
0: जी, आकाशवाणी इसमें तो गर्मी पड़े घर पर ही है, और रेडियो आपका प्रोग्राम सुनते रहते हैं। गर्मी हो रही है तो नहा लेते हैं ताजा पानी से।
1: मैं बिल्कुल, आप तो प्रकृति के उसमें हैं। जो लोग भी गांव शहर से दूर, थोड़ा सा उन्हें राहत होगी। तो आपने 90 वर्ष का उत्सव मिठाई बांट करके मनाया, ये जानकर हमें
0: हाँ
1: बहुत
0: सर,
1: खुशी हुई।
0: मनाए बहुत। आकाशवाणी सर रेडियो के बहुत बड़ा फैन है सर, हम
1: जी जी बिल्कुल, क्या
0: रेडियो
1: कहने।
0: सुना बिना नहीं रह सकते हैं। बहुत दो तीन चार पांच रेडियो रखे हैं, सुनते रहते हैं, दुकान पर रहते हैं, दुकान पर घर पर रहते हैं, सुनते रहते हैं
1: क्या कहने, आप तो
0: आपका
1: हम लोग के लिए
0: प्रोग्राम।
1: प्रेरणा स्रोत हैं।
0: जी सर,
1: अब बता दें
0: धन्यवाद
1: कौन सा
0: आपका सर।
1: गीत हम आपको सुनवा दें।
0: फिल्म है सर नाइट इन लंदन है फिल्म ना सर जी, उसका महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज है ना सर।
1: हाँ, ये वाला
0: गाने के
1: गाना
0: बोल है
1: है
0: सुन
1: सुन
0: रे
1: ए बहारे
0: बहार
1: हुस्न।
0: जी, कुछ सर दोस्तों का नाम लेते हैं सर।
1: बताएं।
0: हमारे खास चाचा लगते हैं भास्कर दुबे जी हैं, और चंदौली जिले के हैं भोला यादव जी हैं, और बहुत ही नेक और अच्छे इंसान है सब लोग। और सुकांत कामबोन जी,
1: जी, देहरादून वाले।
0: और जी, और यहाँ पे हमारे अच्छे लाल बिंद हैं बागी के नंदगंज के जी
1: जी जी बिल्कुल, वो प्रयागराज से हमें
0: जी
1: फोन करते हैं। जी, तो अब आपको
0: जी
1: और आपके इन तमाम मित्रों को सुनवा रहे हैं गीत। फिल्म है नाइट इन लंदन। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

और ये प्रोग्राम प्रसारित होता है शनिवार को 11 से 12 बजे के बीच और रविवार को 12 से 1 बजे तक। तो अब आज का ये प्रोग्राम समाप्त करने की अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आप बुधवार को फोन कर सकते हैं सुबह में 10:10 से 11 बजे के बीच। फोन नंबर हमारा है 2221052 यानी 222-1052। एसटीडी कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1 बजने को है, अब समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के 3 पोत दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नौसेना के अनुसार इन 3 पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये 3 पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है।

0: वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योग अभ्यास में भाग लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने अपनी पत्नी के साथ बीच रोड पर एक कार्यक्रम में योग किया। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ करेंगे। श्रीलंका के डांबुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 41 ओवर में 5 विकेट पर 288 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले सूचनाएं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। पुलिस अधीक्षक कार्यालय मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार साधना देवी, पिता का नाम किशन गोंड, ये जमुआ बाजार कछवा मिर्जापुर की निवासी हैं और 12 मई 2026 की रात्रि 12:30 बजे से जमुआ बाजार से लापता हैं। साधना देवी की आयु 40 वर्ष, कद 5 फीट, रंग सांवला, चेहरा गोल है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था लाल रंग की साड़ी। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनपद मिर्जापुर को सूचना दें। पुलिस अधीक्षक कार्यालय मिर्जापुर से प्राप्त एक और सूचना। इसके अनुसार सुरेश प्रजापति, पिता का नाम पन्ना प्रजापति, ये बियरही भरतपुर भोइली खास जमालपुर चुनार मिर्जापुर के निवासी हैं और 8 मई 2026 की रात्रि से लापता हैं। सुरेश प्रजापति की आयु है 38 वर्ष, कद 5 फुट 3 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था भूरे रंग की टी शर्ट और नीले रंग की लोअर। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनपद मिर्जापुर को सूचित करें। मोबाइल नंबर आप नोट कर सकते हैं, 9454

शून्य शून्य दो नौ नौ यानी 9454400299। अगली सूचना सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर वाराणसी से प्राप्त है। इसके अनुसार शीतल, पिता का नाम राम कुमार, ये नगवा लंका वाराणसी की निवासी हैं और 8 मई 2026 को दिन में 2 बजे से अपने घर से लापता हैं। शीतल की आयु है 24 वर्ष, कद 152 सेंटीमीटर, रंग गोरा, चेहरा गोल है। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर कमिश्नरेट पुलिस वाराणसी को सूचना दें। ये थी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और अब आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। आज शाम 6:30 से आप सुनेंगे आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत ओल्ड ट्रेफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में खेले जाने वाले भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण। इसे हम दिल्ली केंद्र के माध्यम से रिले करेंगे। प्रसारण समय याद रखें शाम 6:30 से। ये कमेंट्री मैच के समापन तक प्रसारित होगी। इस मध्य आप निर्धारित समाचार बुलेटिन सुन सकते हैं। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर आज के आकर्षण है आज की बात। युवाणी गांव से यूथ डायरी में आज के शब्द, विश्व घटना चक्र, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। बाल गोपाल कार्यक्रम होगा शाम 5 बजे। इसमें वेद प्रकाश यादव की वार्ता होगी, योग और व्यायाम हमारे स्वास्थ्य जीवन के लिए आवश्यक। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में 2:30 पर आज की फिल्म होगी झनक झनक पायल बाजे, प्रस्तुति आशुतोष की। लोकरंग कार्यक्रम में व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित लोकगीत आप सुनेंगे 1:35 से और 1:15 पर। आज सुनिएगा कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद, प्रस्तुति अरुण पांडे और सना सलीम की। श्रोता, हम आपको पुनः बता दें आज शाम 6:30 से आप सुन सकते हैं आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत ओल्ड ट्रेफर्ड क्रिकेट स्टेडियम मैनचेस्टर में खेले जाने वाले भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण। इसे हम दिल्ली केंद्र के माध्यम से रिले करेंगे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:10 होने वाले हैं। इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से रिले की जाएंगी।

0: आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। योगा का 12वां आलमी दिन आज मुल्क भर में मनाया जा रहा है। इस साल का थीम है उम्र बढ़ने के असरात का मुकाबला करने के लिए योगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योगा डे की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मरकजी तकरीब आज मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता के रेड रोड पर हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस तकरीब में योगा प्रैक्टिस की क्यादत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि योगा पूरी दुनिया को जोड़ने का एक अहम जरिया है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में, बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने योगा को जिस्मानी और जहनी सुकून हासिल करने का एक बेहतरीन जरिया बताया। वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने

0: पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। सना सलीम जी आपको भी नमस्कार। अब उम्मीद है कि मानसून जल्दी आना चाहिए।
1: जी अरुण जी, आपको और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सना का नमस्कार। और वाकई मानसून अब आ ही जाना चाहिए।
0: हाँ, क्योंकि गर्मी बहुत तेज है। हालांकि इस बार ये जो मौसम था, ये वो मौसम था जब आकाशवाणी ने 90 वर्ष अपने मनाए। तमाम कार्यक्रम हम लोगों ने किए और श्रोताओं ने बड़े गहराई से, तल्लीनता से उन प्रोग्राम को सुना और इंजॉय किया है। लेकिन अब इंतजार है कि बारिश आए। लेकिन जो मेल की बारिश है वो श्रोता निरंतर बनाए रखे, कार्यक्रम सुने।
1: और आज भी बहुत बारिश आई है, बाढ़ आई है मेल्स की। तो वो जो है पढ़ना शुरू करते हैं।

0: हाँ,
1: बाढ़ से डरना नहीं है, वरना
0: डरना
1: हमारे
0: नहीं
1: जो
0: है।
1: पुराने नियमित श्रोता हैं जैसे दिलशाद जी हैं, सुरेश जायसवाल हैं, और ऐसे कई लोग हैं, अनिल गुप्ता गोंड हैं, सुनील सिंह जी हैं, वो ये कहते हैं कि चूंकि बहुत सारे श्रोता आपको मेल कर रहे हैं इसलिए हम लोग सोचते हैं कि उन्हें अवसर मिले, लेकिन हम कहें कि हर श्रोता निरंतरता बनाए रखे और सभी के मेल हम लोग यथासमय शामिल जरूर करते हैं।
0: जी, ये पहला मेल हमें मिला है, कहाँ से इन्होंने भेजा है, एड्रेस मेंशन नहीं किया है। अर्जुन
1: आजकल
0: शुक्ला,
1: ऐसे बहुत से मेल आ रहे हैं जिसमें थोड़ा सा लिखने का तौर तरीका भी
0: एक जैसा हो
1: मुख्तलिफ
0: जा
1: है। हाँ, और नाम भले ही अलग अलग रह रहे हैं लेकिन वो तरीका थोड़ा सा चैट जीपीटी वाला लग रहा है। लेकिन श्रोताओं से कहें कि पूरा नाम लिखें और पता भी लिखें, हालांकि एक दो श्रोताओं ने ये भी लिखा था बीच में कि ये लीजिए ये रहा मेरा पता, तो पूरा लिखें और सभी के कार्यक्रम सुने, सभी का जिक्र करें, ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं।
0: जी, ये लिखते हैं कि मैं वाराणसी वाइब्स कार्यक्रम नियमित रूप से देखता हूँ।
1: जी,
0: हर रोज नए नए विषयों पर आप सभी राय लेकर आते हैं जिन्हें देखकर और उससे जुड़कर अच्छा लगता है।
1: यही यही पिछले हफ्ते भी एक श्रोता ने प्रोग्राम को देखा था, सुना नहीं था।
0: जी, इस नई
1: और
0: शुरुआत
1: उनका नाम
0: से
1: अलग था लेकिन।
0: इस नई शुरुआत से देश भर के लोग जुड़ पा रहे हैं।
1: जी,
0: 27 मई को निराली निवेदिता जी द्वारा ग्रीन फॉर्मूला पर बातें काफी पसंद आई। उसी दिन फेसबुक लाइव प्रोग्राम में इंटरनेशनल डे ऑफ मार्केटिंग पर उनका शो हिट था।
1: निवेदिता जी थोड़ा सा अलग अलग कुछ, एक बार कुछ
0: हाँ,
1: फिन क्या आया था,
0: फिन इन्फ्लुएंसर।
1: हाँ,
0: सीधी साधी मंजूषा जी का भी लाइव प्रोग्राम से जुड़ा जिसमें उन्होंने छुट्टियां हिसाब मांगती हैं पर बातें की थी।
1: क्या बात है,
0: अच्छी प्रस्तुति थी वो भी। लोकगीत से संबंधित कीर्तिका जी का भी लाइव शो देखा। आप सभी लोग अपने अपने मेहनत से अच्छा करते हैं, आशा है आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। मेरे घर की महिलाओं को निराली निवेदिता जी का स्वाद का पिटारा कार्यक्रम का इंतजार रहता है।
1: जी, ये पिटारा वो शाम के ही प्रोग्राम में वो लेकर आती है
0: सेगमेंट। हाँ,
1: अच्छा सेगमेंट
0: जी, शाम को ही करती है वो। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और आभार।
1: अभी तक तो जो आप बना खा रहे हैं वो बनाते खाते रहिए और आपकी बात निवेदिता जी तक पहुंचेगी तो वो नई रेसिपी आपको लेकर के आएंगी, वो फिन रेसिपी होगी।
0: हम लोगों को भी पता चलेगा, हम लोग भी बनाएंगे।
1: जी
0: जी,
1: तो आपकी बधाई निराली निवेदिता और सीधी सादी मंजूषा जी तक, और बाकी लोगों का भी आपने जिक्र किया उन तक पहुंच रही है। आपके मेल का इंतजार रहेगा जिसमें आप बाकी भी प्रोग्राम हमारे यहाँ से, बहुत से और कार्यक्रम होते हैं, युवाणी, कृषि जगत, हिंदी वार्ता, ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे और उनका जिक्र करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। खासतौर से
0: देखने के साथ साथ
1: देखने के अलावा जो सुनने वाले प्रोग्राम होते हैं आकाशवाणी वाराणसी के, उन्हें भी सुने और कुछ लिखें, स्वागत है आपका।
0: जी, ये अगला मेल है हमारे अभिन्न श्रोता अजगर अली का।
1: ये आप बोल रही हैं या असगर जी?
0: नहीं,
1: ने कहा
0: लिखा है इन्होंने।
1: अच्छा,
0: जमीला बानो,
1: ये कभी पुन्नो भी हुआ करते थे।
0: जमीला बानो टीचर शेख सगीरा खातून,
1: अच्छा,
0: प्रोफेसर मुराद अली टीचर नियामत बानो, डायरेक्टर शेख शमशाद अली, सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहम्मद आफताब वुड बी पीएचडी,
1: अच्छा,
0: ताहिरा सिद्दीकी वुड बी पीएचडी, माहेनूर फहद अहमद, महसिन अली, प्रिंस लाइबा, जुबैरिया, साफा, माहिरा बानो एंड
1: 47 डेज ओल्ड
0: ग्रैंड बेटी थर्ड जनरेशन नूरी।
1: हाँ, हम इसलिए चुपचाप सुन रहे थे सना जी कि इस बार असगर अली जी ने अपने पूरे परिवार का नाम कुनबे का लिख दिया और पढ़े लिखे लोग हैं इससे ये तो पता चलता है। बहुत से वुड बी पीएचडी हैं, हम तो करते करते भी नहीं कर पाए।
0: जी, लिखते हैं आगे कि 13 मई का सुबह झंकार कार्यक्रम अंजना झा की प्रस्तुति उच्च कोटि की थी। गाने बहुत टॉप के थे, बहुत अच्छा लगा,
1: इसलिए इन्होंने उच्च को रोमन में लिख दिया है।
0: जी, लेकिन अब मैंने 13 पढ़ लिया, इसके बारे में आपने कुछ नहीं बोला।
1: बोले वो 13 नहीं है सना जी, वो 16 लिखा है, जब 6 उल्टा होगा तब 3 होगा, तो मेरी खामोशियों की भी वजह होती है।
0: 16
1: जी,
0: 16 मई का सुबह झंकार कार्यक्रम अंजना झा की प्रस्तुति उच्च कोटि की थी।
1: जी,
0: गाने बहुत टॉप के थे, बहुत अच्छा लगा, जितनी भी तारीफ करें कम है।
1: ये माहेनूर लिखती हैं, ये शायद उनकी ही लैंग्वेज है।
0: पहले कार्यक्रम आरोग्यम श्री अरुण भाई की,
1: असगर जी इमला बोलते हैं, आप लोगों को किसी ने इमला बोल के लिखवाया है?
0: हाँ, मैंने लिखा
1: तो
0: है।
1: इमला लिखा कि डिक्टेशन लिखा है?
0: इमला।
1: हाँ,
0: तो, पहले कार्यक्रम आरोग्यम श्री अरुण भाई की प्रस्तुति में बहुत अच्छा लगता था और लाभदायक था, अब बंद हो गया।
1: नहीं नहीं, कार्यक्रम चल रहा है और हमारे बहुत से साथी उसे कर रहे हैं, शिखा जी कर रही हैं और क्या मन्नू की मीनू हैं वो भी कर रही हैं, तो और चिकित्सक भी आते हैं, फोन भी आते हैं, तो बदलाव तो प्रकृति का नियम है, मौसम की तरह से लोग और उनकी बहुत सारी चीजें बदलती रहती हैं, तो इस बदलाव को भी स्वीकार कीजिए और कार्यक्रम सुनते रहिए, जुड़े

0: चाहिए, बहारें फिर भी आएंगी।
1: और आगे लिखते हैं कि ये आप सुनना बंद कर दिए आरोग्यम कार्यक्रम।
0: नहीं, ऐसा ना करें, हमने अभी कहा ना कि बहारें फिर भी आएंगी।
1: ये इन्होंने अब सुनना बंद कर दिया है आरोग्यम कार्यक्रम, और इसके साथ ही गुड मॉर्निंग बनारस भी इन्होंने सुनना बंद कर दिया है, इनको मजा नहीं आता ऐसा लिख रहा है।
0: अच्छा, बदल जाए अगर माली चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी, ये गाने के बोल हैं।
1: उसके पहले कहकशा कार्यक्रम में एक आरजे थी जो गजल ना सुनाकर सिर्फ फालतू गाना सुनाती थी, आधा ही कार्यक्रम पर रेडियो बंद कर दिया। भैया जी, सिर्फ बांसुरी नहीं, सभी शास्त्रीय संगीत, सरोद, वायलिन, शहनाई, गिटार के कार्यक्रम भी बड़ी दिलचस्पी से सुनते।
0: इन्होंने एक बार सिर्फ फ्लूट लिखा था तो हम लोगों ने कहा था कि आप सिर्फ फ्लूट सुनते हैं क्या?
1: दिलचस्पी से सुनते सुनते सो जाता हूँ।
0: अच्छा, तो फिर बैटरी खर्च हो जाती होगी आपके रेडियो की ना?
1: जी, लेकिन ये गुड मॉर्निंग बनारस नहीं सुनते, बाकी कोई
0: उस समय तक वो फिर बैटरी खत्म हो जाती है।
1: अच्छा,
0: इसलिए रात में बंद कर दिया करें, तब गुड मॉर्निंग में आपका रेडियो सेट चलता रहेगा।
1: ओवर एंड आउट लिख दिया इन्होंने।
0: बिल्कुल, तो आपके अगले मेल का इंतजार रहेगा और तमाम अपने परिवार के लोगों का जिनका आपने जिक्र किया उनको भी अभिवादन और स्वागत है कार्यक्रम में।

0: है कि नहीं। हालांकि गर्मियां बहुत तेज हैं और शहर तमाम बदल गए हैं, हमारा बनारस भी बदला है, लखनऊ भी बदला है, तो कभी ऐशबाग था, अभी ऐशबाग है कि नहीं बताइएगा।
1: आवाज की दुनिया के प्यारे से दोस्त अरुण जी और सना जी को खान परिवार का प्यार भरा सलाम।
0: इस बार भी अर्ज किया होगा।
1: अर्ज किया है इन्होंने,
0: जी
1: जो आंधियों के जोर से नजरें मिला सके, आज के दौर में दियों में वो दीवानगी कहाँ।
0: इस बार सना जी हंसी नहीं है, यानी समझ में नहीं आया आपका
1: नहीं
0: शेरों
1: आया।
0: में। जी
1: 31 मई का पत्र के लिए धन्यवाद सुना, कैसे 20 मिनट बीत गए पता ही नहीं चला,
0: हम लोगों की
1: अल्लाह का
0: कोशिश होती है
1: शुक्र
0: कि प्रोग्राम ऐसा हो कि लोग रेडियो बंद ना कर पाए। रेडियो के जो प्रसारण है, जो हमने आवाज का जिक्र पिछले प्रोग्राम में किया था, इसकी यही खासियत है कि आवाज में आप खो जाएं और आपके दिलों तक हम लोग उतर पाए, उतर पाते हैं, तो बहुत शुक्रिया इसके लिए आपका,
1: और अच्छा
0: अनायत
1: लगा ये
0: आपकी।
1: जान के कि इनको जबरन नहीं सुनना पड़ा।
0: हाँ, वरना बहुत से कार्यक्रम तो अभी जैसे असगर जी कह रहे
1: नहीं,
0: थे कि
1: इन्होंने एक बार लिखा था ना
0: ओवर एंड
1: कि
0: आउट भी हो जाते हैं। हाँ, एक बार आपके लिए लिखा
1: हाँ
0: था।
1: इसीलिए
0: बहुत अंतराल के बाद आई थी सना जी, और
1: जी
0: कभी कभी होता क्या, हम लोग जब रिकॉर्डिंग में आते हैं, ये प्रोग्राम हो या फोन इन वगैरह भी हो, तो आते ही बहुत सारी, जैसे मकान बनाने से पहले जमीन पर आपको काम करना पड़ता है, तो हम लोग को भी इक्विपमेंट से थोड़ा सा लगना पड़ता है।
1: जी आगे लिखते हैं कि अरुण जी और सना परवीन, अल्लाह, सना सलीम,
0: मुबारक
1: सना सलीम की बेहतरीन पेशकश थी।
0: हो।
1: 25 मई का झंकार अंजू तिवारी ने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत पर बहुत अच्छा किया था।
0: जी, वो प्रोग्राम हमने भी सुना था, और अंजू जी जब भी उन्हें अवसर मिलता है,
1: जी
0: अवसर नहीं भी होता तो वो अवसर बना लेती हैं और कार्यक्रम को कंपेयर करती हैं, अच्छा बोलती हैं, और प्रोग्राम आपको पसंद आते हैं, उन्हें अच्छा लगेगा ये जान करके।
1: जी उसी दिन आपके पत्र, आपके गीत मुझे बहुत अच्छा लगा, अनुपम जी की पेशकश थी। 26 मई का पूजा ने सुहाने तराने बहुत अच्छा किया था। आइकॉनिक सॉन्ग्स बनने की उपयोगी जानकारी पूजा ने दी।
0: जी
1: 31 मई का आज इतवार है कार्यक्रम, जिसमें झलकी छटंकी गुरु का प्रसारण हुआ। झलकी मुझे बहुत पसंद आई। उसी दिन सुगम संगीत में मनहर उदास की गजलें सुनवाई गईं, मुझे बहुत पसंद आई। 1 जून का भोजपुरी गीतों पर केंद्रित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस किरण जी ने पेश किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा।
0: हम लोग भी यही चाहते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष भाव से सभी के कार्यक्रम सुने और सबका जिक्र करें। आपने तमाम साथियों के प्रोग्राम सुने, आपकी बधाई उन तक पहुंच रही है। वारिस जी, आपके अगले शेर का और अगले मेल का इंतजार हमें रहेगा, शेर का इंतजार सना जी को।
1: जी और ये अगला मेल हमें मिला है जमानिया जिला गाजीपुर से,
0: फिर वो
1: सुरेश।
0: कहेंगे स्टूडियो में शेर आया, शेर आया। जी
1: जमानिया जिला गाजीपुर से हमें लिख रहे हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल। 6 मई को अनुपम गुप्ता द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जो ईमेल पर आधारित
0: अच्छा,
1: था।
0: उस हफ्ते मार्च था, मई अभी आ गई जबकि बारिश
1: जी
0: आने वाली है।
1: हाँ, हम लोगों को बेहद पसंद आया। बहुत सारे ईमेल शामिल करके श्रोताओं का दिल जीत लेते हैं। प्रोग्राम पेश करने का खूबसूरत अंदाज बहुत प्यारा लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए अनुपम गुप्ता को बहुत बहुत बधाई। 7 मई को किरण सिंह द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस भी बहुत प्यारा लगा। उनके भी प्रोग्राम पेश करने के अंदाज में बहुत सुधार आया है।
0: वही मैं अभी जस्ट याद आया कि किरण जी के भी कार्यक्रम आपको पसंद आने लगे। ये देखिए, आदमी परिश्रम करता है और थोड़ा सा आप भी साथ देते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो कार्यक्रम धीरे धीरे अच्छा हो ही जाता है।
1: जी आगे लिखते हैं कि 9 मई को बनारसी बाबू यानी आशुतोष द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस सुना, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक लगा। उनकी स्क्रिप्ट इतनी ज्यादा शानदार होती है कि सुनने
0: हाँ,
1: में
0: ये
1: बहुत
0: बिल्कुल
1: कुछ
0: उसी तरह से स्क्रिप्ट आने वाली थी जैसे सीधी सादी चीजें आ जाती हैं।
1: जी सुनने में बहुत कुछ जानकारी दे जाता है। उसी दिन उनके द्वारा प्रस्तुत गीतांजलि सुना, जो माँ शीर्षक पर सुना, उनके लिखे स्क्रिप्ट और गीत सुनकर आंसुओं से सराबोर हो गया। उस दिन
0: तब तो
1: मदर्स डे
0: कार्यक्रम
1: होगा।
0: ज्यादा सफल हो गया।
1: जी ऐसी शानदार प्रस्तुति के लिए मेरे पास लिखने को शब्द नहीं मिल रहे।
0: तो बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी तल्लीनता से सुना, संजीदगी से सुना। आपको आशुतोष जी तक आपकी बधाई पहुंच रही है।
1: जी 10 मई को श्यामा प्रसाद यादव द्वारा प्रस्तुत मधुरिमा बहुत ही शानदार लगा। उन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखकर हम लोगों को पेश किया अपने अलग मस्त अंदाज में, जो माँ शीर्षक पर ही था, सुनकर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। उनके प्रोग्राम पेश करने का मनमोहक अंदाज बहुत विशेष होता है, जो प्रोग्राम को सुनने पर मजबूर कर देता है। अच्छे गीत और शानदार प्रस्तुति के लिए श्यामा प्रसाद यादव को बहुत बहुत बधाई। और 10 मई को ही, आज इतवार है कार्यक्रम में, विनोद कुमार गौतम का लिखा और मधु श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत झलकी की समस्या निदान केंद्र सुना, जिसे सुनकर हंसने पर मजबूर कर दिया। इसके लिए लेखक, प्रस्तुतकर्ता और कलाकारों को भी बहुत बहुत बधाई।
0: ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये भी समस्या निदान केंद्र ही है। मातृ दिवस यानी मदर्स डे के तमाम प्रोग्राम आपने ध्यान से सुने और हमारे साथियों को अच्छा लगेगा, श्यामा जी को और आशुतोष जी को, कि उनका परिश्रम

0: खास तौर से इस खास मौके पर आपको प्रोग्राम पसंद आया, आपकी बधाई उन तक पहुंच रही है।
1: मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से ये मेल हमें मिला है दिलशाद हुसैन फातिमा सोगरा हसीना दिलशाद का। लिखते हैं कि गिनती नहीं आती यारों मेरी माँ को, जब एक रोटी मांगो तो दो लाती है।
0: ये बड़ी संजीदा बात आपने लिखी है।
1: 29 मई को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस किरण सिंह द्वारा प्रस्तुत सुना सभी गीत नए, जबरदस्ती सुना सभी गीत नए थे। अच्छा
0: नए गीत के कारण। जी।
1: सुरीले गानों का वो युग, हम जिस युग में पले बड़े वो सुरों का एक सुहाना घर था।
0: लेकिन वो आप बात सही कह रहे हैं, और धीरे धीरे हर पीढ़ी पुराने गानों की ओर ही लौटती है, लेकिन जो नए लोग हैं, नए गाने हैं, वो भी सुने जाने चाहिए। तो कभी कभी उन गानों को भी, जैसा हम हमेशा कहते हैं कि उन्हें भी सुन लिया करिए बदलाव के रूप में ही। और हर गाने, हर संगीतकार, गीतकार, गायक बहुत मेहनत से गाता है, और वैसे भी बहुत सारे श्रोता होंगे जो नए गानों का इंतजार करते होंगे, तो थोड़ा सा तालमेल बनाए रखना चाहिए श्रोताओं को भी और हम सबको भी।
1: जी, जहाँ हर गीत में मिठास थी और हर धुन में सुकून भरा असर था, रेडियो की धीमी धीमी आवाज जैसे सुबह की कोमल किरणें, गानों में बसते थे जज्बात जैसे दिल की अनकही धड़कन।
0: शायरी अच्छा कर लेते हैं।
1: जी, न था शोर ना थी जल्दी, बस सुरों का मीठा बहाव था, हर शब्द में अपनापन था, हर धुन में जीवन का चाव था।
0: ये तो स्क्रिप्ट हो गया जो हमारे श्रोता कहते हैं,
1: मुझे काम आ गया है।
0: जी,
1: आज भी जब वो गीत सुनते हैं मन कहीं दूर चला जाता है, उस शांत और प्यारे समय में जहां हर लम्हा गुनगुनाता है।
0: वाह,
1: सच है समय बदल गया है।
0: आज तो आप ChatGPT हो गए।
1: संगीत का भी रूप नया हो गया, पर उन पुराने गीतों का जादू आज भी दिल में ज्यों का त्यों रह गया है।
0: अधिकतर आप मानते होंगे कि बहुत सारे कार्यक्रमों में हम लोग पहले के जो सदाबहार गाने हैं वो ही आपको सुनवाते हैं, और वो आपको सुनने को भरपूर मिलते भी होंगे।
1: जी, आगे लिखते हैं कि 31 मई को आपके केंद्र से प्रसारित आशुतोष जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस में बहुत सारी जानकारी के साथ काशी कथा में काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में जानने को मिला, इतनी लाजवाब प्रस्तुति के लिए आशुतोष जी जिंदाबाद। 30 मई को प्रसारित गुड मॉर्निंग बनारस में आशुतोष जी की उम्दा प्रस्तुति सुनी, काशी कथा में काशी में पत्रकारिता का इतिहास जानने को मिला, आज बस इतना ही उत्तर मिला तो फिर,
0: जिसमें फिर चूहा गली का जिक्र होगा। आशुतोष जी को अच्छा लगेगा कि उनका परिश्रम सार्थक होता है और उनके प्रोग्राम आपको पसंद आते हैं, और हमें अच्छा लगेगा कि यूं ही आप कार्यक्रम सुनते रहेंगे और मेल हमें भेजते रहेंगे।
1: अगला ये मेल हमें मिला है रतिनाथ त्रिपाठी का, कोटवा कपिलधारा सराय मोहना वाराणसी से।
0: जी,
1: लिखते हैं 13 मई को कुछ बातें कुछ गीत में आशुतोष जी द्वारा यशोदा माताओं जिन्होंने दूसरों के बच्चों को सहारा दिया के बारे में दी गई जानकारी बहुत ही हृदय स्पर्शी लगी। उसी दिन रात्रि में प्रस्तुत झलकी तस्वीर एक बार और सुनी, दिनेश भारती के संवाद कितने चुटीले और मजेदार होते हैं। 13 मई को गुड मॉर्निंग बनारस में आशुतोष जी द्वारा बहुत सारी जानकारियां दी गई और काशी कथा में घुघरानी गली के बारे में जानकारी मिली। इसी कार्यक्रम में 12 मई को शुचि उपाध्याय द्वारा बिना गीतों के बहुत सारी उपयोगी जानकारी दी गई और चेत सिंह घाट के बारे में भी अच्छी जानकारी मिली।
0: बिना गीतों के जिक्र उन्होंने इसलिए किया है कि बहुत से लोग क्या होता है कि गाने ज्यादा बजाते हैं, जानकारियां कम रहती हैं।
1: जी, 14 मई को स्नेहा के कार्यक्रम में ये पता चला कि लंगड़ा आम का नाम लंगड़ा क्यों पड़ा, अगर ये गाने न सुनवाएं तो इनका कार्यक्रम और भी अच्छा हो सकता है।
0: जी बिल्कुल, आपकी बात उन तक पहुंच रही है।
1: ब्यूटीफुल सॉन्ग के नाम पर स्नेहा जी ने दो गीत सुनवाए।
0: हाँ, वो ब्यूटीफुल होंगे गाने, इसलिए उन्होंने दो सुनवा दिया।
1: इसी कार्यक्रम में 16 मई को पूजा जी द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस में जेम्स ऑफ काशी में डॉक्टर विद्या निवास मिश्र पर दी गई जानकारी अच्छी लगी। 11 मई की रात में डॉक्टर अत्रि भारद्वाज, डॉक्टर सविता सौरभ, राम नरेश अरु और डॉक्टर अशोक सिंह द्वारा आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रस्तुत काव्य पाठ बहुत अच्छा लगा।
0: राम नरेश जी राम नरेश ही हैं, अरु हैं कि नहीं ये हमें मालूम नहीं है, बाकी कवियों से तो परिचय है। ये काव्य पाठ आपको पसंद आया, आपकी बधाई इन कवियों तक और तमाम प्रोग्राम के लिए हमारे जो साथी हैं उन तक पहुंच रही है।
1: जी, 15 मई को एक ही कलाकार कार्यक्रम में माधुरी दीक्षित पर शिखा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम अच्छा लगा। 17 मई को आज इतवार है में झलकी प्रेम पत्र अच्छी लगी। 17 मई को ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम में पाकीजा को आज प्रियदर्शी ने फिर प्रस्तुत किया, जबकि कुछ दिन पहले ही इसी फिल्म पर वही जानकारी आशुतोष जी द्वारा दी
0: जी। आशुतोष जी ने पाकीजा पर अच्छा प्रोग्राम किया था और वो प्रोग्राम हमें भी याद है, तो हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि इतनी सारी फिल्में हैं, हम कोई
1: और हमारे पास रजिस्टर भी है जिसमें मेंशन रहता है, तो वो देखना एक बार जरूरी होता है। आगे लिखते हैं कि 17 मई को आरोग्यम में डॉक्टर शिव प्रसाद द्विवेदी और शिखा श्रीवास्तव द्वारा हृदय रोग से संबंधित

0: अच्छी जानकारी मिली
1: जी।
0: 11 मई को गुड मॉर्निंग बनारस में सना द्वारा प्रस्तुत रोचक कार्यक्रम तथा बात जरूरत की सेगमेंट में त्वचा से संबंधित जानकारी अच्छी लगी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 12 मई को रवि प्रसाद प्रजापति का बांसुरी वादन, निखिल बैनर्जी का गायन, अक्षय प्रताप का गायन, पंडित राजन साजन मिश्र जी का गायन, रोनू मजुमदार का बांसुरी वादन और 16 मई को अंजलि शर्मा का सितार वादन, साथ में अशेष नाथ मिश्र का तबला संगत और कमला शंकर का वादन बहुत अच्छा लगा।
1: इतनी दूर रहते हुए भी आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़े हैं और सुनते रहते हैं और सभी का जिक्र करते हैं, खासतौर से शास्त्रीय संगीत सुबह के और शाम के जो कार्यक्रम है उसे सुनते हैं, कलाकारों के नाम सहित अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते हैं, ये जानकर हमें बहुत खुशी होती है। आपको बहुत शुक्रिया, इतने तफसील से आपने प्रोग्राम सुने और उनका जिक्र इतना वक्त निकाल के ने मेल में किया, बहुत शुक्रिया। आपके अगले मेल का इंतजार हमें रहेगा।
0: और अब ओवर एंड आउट होने का ये वक्त आ गया है
1: जी।
0: तो श्रोताओं से कहें कि अपना मेल जो है वो ऐसे ही भेजते रहें हमारी ईमेल आईडी पर
1: और कार्यक्रमों को देखते रहें और सुनते भी रहें
0: जी। और श्रोताओं से यही कहेंगे कि अपने मेल्स जो है वो ऐसे ही भेजते रहें हमारी ईमेल आईडी पर pkldaarvaranasi@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा
1: और आप इंतजार करिए, हमसे आपकी मुलाकात इस कार्यक्रम में होगी अगले हफ्ते इसी समय। तब तक के लिए अरुण पांडे
0: और सना सलीम को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।

0: पत्र के लिए धन्यवाद। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। श्रोताओं के ईमेल के साथ थे अरुण पांडे और सना सलीम। श्रोता, आपको बता दें कि आगामी 5 जुलाई तक ये प्रोग्राम यानी पत्र के लिए धन्यवाद शाम को क्रिकेट मैच के कारण दिन में इसी वक्त यानी 1:15 बजे प्रसारित होगा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:35 हुए हैं। अब प्रस्तुत है लोक रंग।
1: अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है।
2: ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग,
3: आधार, ओटीपी बेस्ड ईकेवाईसी से या फिर वीडियो केवाईसी से, यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है।
4: आरबीआई कहता है, इन्हें से सुनिए,
5: जानकार बनिए,
6: सतर्क रहिए।
7: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
8: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
7: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
8: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
7: डायल कीजिए
9: 0542227658।
8: नंबर एक बार फिर नोट करें,
0: 0542227658। लोक रंग कार्यक्रम के तमाम सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। और श्रोताओं, आपको आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो आपने योग अवश्य किया होगा, इसका यकीन हमें है। और सदा सर्वदा के लिए जीवन में योग अभ्यासों का समावेश करें। और आज फादर्स डे यानी पितृ दिवस भी है, तो इस मौके की भी शुभकामनाएं। पिता की प्रत्यक्ष और परोक्ष भूमिका जीवन में जो होती है, वो हमारी निर्मिति का अभिन्न अंग हुआ करती है। ये प्रोग्राम व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित होता है। 7905519981 यानी 7905519981 ये प्रोग्राम का नंबर है। और हम आपको बता रहे हैं कार्यक्रम में आज शामिल कलाकारों के नाम, उसके बाद ही अपनी फरमाइशें हमें भेजिए। आज इस कार्यक्रम में शामिल कलाकार हैं दीपक सिंह, रश्मि चौधरी और रामदेव यादव। दीपक सिंह, रश्मि चौधरी और रामदेव यादव। सबसे पहले कलाकार का नाम लिखें ताकि आपकी फरमाइश के लोकगीत के साथ आपका नाम शामिल हो सके। वक्त रहते यानी 1:45 बजे तक संदेश भेज दें। आज यूं भी प्रोग्राम थोड़ा सा विलंब से शुरू हुआ है, तो एक बार ही संदेश भेजें और कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें।

दीपक सिंह, रश्मि चौधरी और रामदेव यादव। इन दोनों ही दिवस के बारे में अगर आप कुछ लिखना चाहें संक्षेप में, तो वो भी हम प्रयास करेंगे कार्यक्रम में शामिल हो पाए। लेकिन एक बार ही संदेश भेजें, दोबारा जैसे ही आप कुछ लिखते हैं तो फिर वो कलाकार का नाम छुप जाता है और संदेश आपका पीछे हो जाता है। आइए प्रोग्राम का आरंभ कर रहे हैं आप ही की फरमाइश के इस बिरहा के साथ। कलाकार हैं दीपक सिंह और साथी।

कला जी सूरज कबीर या तुलसी रविदास मीरा बाई। अरे नाच गाई भक्ति से पौले, नाच गाई भक्ति से गईले भगवान के उपाय, भगवान के उपाय जग में तान।

0: हरियाणा से हैं बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार, बरखा, योगेंद्र और नरेंद्र। चोचकपुर बाजार गाजीपुर के हमारे श्रोता हैं राम सकल चौधरी। गमहरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल। बबरी बाजार चंदौली से विजय और सरोज जायसवाल। रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू और देवंती जायसवाल। चकिया बाजार चंदौली से हैं सुंदर और सुमन जायसवाल। विशाल मिश्रा जुड़े हैं प्रोग्राम में बधवा बाजार माधोपुरी मिलिया जौनपुर से। फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमसुल कमर राही, बेगम रुखसार और रकीबा शाहीन, साथ में तूबा आफरीन ने। दतरे की भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना, ये जो नाम थे ये मजनू का टीला दिल्ली से थे और सतना से इसी में नाम है उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक के। गहमर गाजीपुर से हैं त्रिलोकी जायसवाल, गिरधारी जायसवाल, शांति देवी, शिवनाथ और परिवार के सदस्य। मोटाला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार। सावतपुर छत्तीसगढ़ से ऋषि सेन, रितेश सेन और हर्ष कुमार सेन। पाकुड़ झारखंड के श्रोता हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु, तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से ये फरमाइश आई है रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निमी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू की। सोनवर्षा खानपुर मिर्जापुर से हैं अनिश राजभर, मनीष राजभर और आशीष, साथ में आकर्ष राजभर। व्हाइटफील्ड बेंगलुर के श्रोता हैं भारतभूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण, संस्कृति और पौरुष। बजौनिया जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसौलिया।
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है, हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ, नंबर नोट करो
3: 0542227658।
1: ओ
0: 0542227658।
1: लो अभी फोन लगाता हूँ
0: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। और अब कार्यक्रम में पेश है ये बन्ना, कलाकार हैं रश्मि चौधरी और उनकी सखियां।

उम्मीद है गीत के बोल पर आपने गौर किया होगा। दीपक सिंह यादव और साथियों की आवाजों में ये बिरहा आप तक पहुंच रहा था और फरमाइशें पहुंची हैं आप सबकी। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही महराज जहां हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। हमारे श्रोता हैं जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल, गमहरिया जमशेदपुर से विपिन, स्वाति देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल, जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल आशुतोष और अभिनव जायसवाल, लोकू कॉलोनी लोहारू।

पटेल नगर मुगलसराय के हमारे श्रोता हैं सुनील कुमार सिंह। आपने लिखा है, पिता और योग दोनों ही जीवन में खुशियां लाते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में है, वहां से हैं डॉक्टर तस्लीम कौसर, इशिता साहनी, झुमरी तलैया से डॉक्टर सोनम, बरकाखाना से नाजनीन तबस्सुम, अफजल इब्राहिम और इफ्तखार इब्राहिम। मुंदीचक भागलपुर से हमें सुन रहे हैं दिलीप कुमार सोनी। पोफाली यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता। आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा और सौरभ शर्मा। मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश के श्रोता हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई, स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। राजेश जी ये कहें कि नाम बिल्कुल वही लिखें जो रहते हैं, कुछ भी संबोधन न लगाएं और श्रोता संघ के नाम न लिखें। कई बार हमने कहा है, हमारे यहाँ शामिल नहीं करते हैं। पठेना पाटन दुर्ग से हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और यश प्रयाण वर्मा। रतिना त्रिपाठी, राखी आर्या, इंद्री सारंग, ओमनाथ, शिवांग, अदिति और उनकी माता जी हैं निर्मला त्रिपाठी, कोटवा, कपिलधारा, सराय मोहना, वाराणसी से। आपने भी सभी को अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस, पितृ दिवस और योग दिवस की हार्दिक बधाई भेजी है। और आपने आज ऑनलाइन योग किया और विजेता बने, इसकी भी बधाई आपको। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा हैं अनारकली बाजार जगराओं से। मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी और शिवन्या गोस्वामी हैं उच्च भट्टी बिलासपुर से। नवागढ़, कटई, बेमेतरा, छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, मयंक, जीत, पुष्पांजलि वर्मा की फरमाइश आई है।

मुबारकपुर आजमगढ़ से हैं जावेद अख्तर राही, शमसुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन और तुबा आफरीन। बेंगलोर के श्रोता जिनका नाम शामिल हुआ संभवतः भी भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, उन्होंने लिखा है, पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है, पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। बहुत अच्छी कविता आपने भेजी है, शुक्रिया आपको। रामगढ़ कैंट से है महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब। चोचकपुर बाजार से भास्कर दुबे की फरमाइश आई है। अफजल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निपी सानी और अफजल मलिक हैं बरका खाना से। प्रमोद यादव, साधना यादव, अनु यादव, अनुभव यादव भिलारा सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हमें सुन रहे हैं। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अक्रम अंसारी और अल्ताफ अंसारी। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और वसीम अंसारी। सारिनपुर बक्सर से राजेश डी अंसारी, आसमा खातून, आफताब अंसारी, मेहताब मेराज और कल्लू और मल्लू अंसारी। बोझ कितना भी हो उफ तक नहीं करता, कंधा बाप का बहुत ही मजबूत होता है। बहुत शुक्रिया आपके इस विचार के लिए। और अब आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, ये कहरवा रामदेव यादव और साथियों की आवाजों में।

बेहद मकबूल कलाकार रामदेव यादव और साथ ही उनकी आवाज में कहरवा फरमाइश आप सबकी। अनिल गुप्ता गौंड, रमा गुप्ता गौंड, अग्रिम गौंड, अंकुश कुमार गुप्ता और पूजा गुप्ता गौंड की फरमाइश इसी लोकगीत के लिए आई, अशोक विहार कॉलोनी पहाड़िया फेज 2 से। आपने अभी अभी पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम सुना है, लिखा है रुचकर और चिर परिचित श्रोताओं के उत्तर सुनकर आपको आनंद आया, बहुत शुक्रिया। आप भी लिखें, आपके भी मेल का इंतजार है। हरजिंदर छिंदा जसवीर जैसी सीता और गीता नथाना पंजाब से हमें सुन रहे हैं। राजेंद्र यादव भारती, उषा देवी भारती, दीपांजलि अनुराग दीप और भगेलू यादव हैं वलितपुर मढ़ा मऊ के हमारे श्रोता। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय दुबिहा नेवादा गाजीपुर से, प्रतीक रोशनी और प्रांजल राय शेरपुर कला गाजीपुर से, अवधेश प्रीति और नवनीत राय फरासी हिसार से, राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी, पद्मा टॉकीज नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह और प्रखर शाह की फरमाइश, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया है गांव चोहलदा बागपत से, मिर्जापुर कुरुक्षेत्र से है यशपाल धीमान, कृष्णा धीमान, राहुल कोमल और शुभम, मुकेश कासलेकर, राजेश सोनी की फरमाइश, वरुण अमरावती महाराष्ट्र से आई है, भागवत वर्मा, शांति देवी लीलावती की फरमाइश है दतरेंगी से, जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमिता हुजा, सुदामा नगर अटलाई झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर, मीनाक्षी मनोहर भाई बागरी और प्रभुलाल बागरी, बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ से मनभावन शोभा कपिल नैना सत्यनारायण और पुंदी बाई बागरी, अमितेश कुमार तिवारी हमें सुन रहे हैं करनई बलिया से, वर्डिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, एडवोकेट वारिस अली खान इस्लाम

0: निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और दानिश हैं। शरीर के संतुलन के लिए योगा जरूरी, परिवार के संतुलन के लिए पिता जरूरी। बहुत अच्छा। आप हैं संजय नगर ऐशबाग लखनऊ के हमारे श्रोता। शाहकुटी मुगल सराय से सोनू जायसवाल और मंजू जायसवाल, हनुमानपुर मुगल सराय से डब्लू और माया जायसवाल। कोली नांदेड़ से हैं नारायण गायकवाड़ और दयानंद गायकवाड़। निसार सलमानी, नौशाद सलमानी और आलिया हमें सुन रहे हैं धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से। लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़ हैं पिंगावाला चौक गुरैया से। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम, अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। अशोक कुमार प्रजापति, मीना प्रजापति, अंजलि प्रजापति, आकाश प्रजापति और शिव प्रकाश प्रजापति हैं। कोरोता वाराणसी से इमृति यादव, बरठी सकलडिया से। तो श्रोताओं, ये था आज का लोक रंग कार्यक्रम। और अब ये कार्यक्रम समाप्त करने के अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार, एक बार फिर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी आप सुन रहे थे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में 2 बजे आप सुनेंगे मिड डे न्यूज, उसके बाद 2:15 पर दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes yoga's role in providing pathway from mental to physical wellness. Leads the national observance of 12th International Day of Yoga in Kolkata. Prime Minister Modi commissions 3 indigenously built Indian Navy platforms in Kolkata. Says special steps being taken to enhance domestic defense production capacity. NEET UG re-examination underway at over 5,000 centers across the country and 14 centers abroad amid tight security. U.S. Vice President J.D. Vance and Iranian Parliament Speaker M.B. Ghalibaf arrive in Switzerland to hold peace talks as Tehran closes Strait of Hormuz again. IMD forecast extremely heavy rainfall over North Bengal and Sikkim today. And in cricket, India have set a target of 378 runs for Sri Lanka in final match of Tri-Nation A series in Dambulla, where Vaibhav Suryavanshi smashes fastest half century of List A format in just 11 balls. Prime Minister Narendra Modi today emphasized yoga's role in providing pathway from mental wellness to physical wellness. The Prime Minister said this while leading the nation in observing the International Day of Yoga from Kolkata's Red Road. Participating in the Common Yoga Protocol session this morning, Mr. Modi performed yoga alongside thousands of practitioners at the iconic venue.
2: Yoga केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है।
1: Highlighting the International Yoga Day theme for the year, Yoga for Healthy Aging, Mr. Modi said that yoga is not just a physical exercise and is not restricted to any age group, but it is an expression of human spirit.
2: When we speak of yoga for healthy aging, it means that we can work to ensure that age does not reduce human potential. Yoga can help human life to aspire for constant growth. Our target must be to be more flexible at 40 than we were at 20. Our target must be to be more energetic at 50 than

0: The India Meteorological Department, IMD, has forecast extremely heavy rainfall over sub-Himalayan Bengal and Sikkim during the day. The weather agency has predicted that Gujarat, central Maharashtra, Marathwada, Saurashtra and Kutch will witness isolated to scattered rainfall till Friday. In cricket, India A have set a target of 378 runs for host Sri Lanka A in the final match of the Tri-Nation A Series 2026 in Dambulla. After being invited to bat first, India's opening pair of Priyansh Arya and Vaibhav Suryavanshi made a promising start to the innings. Meanwhile, Vaibhav Suryavanshi smashed the fastest half-century of List A format in just 11 balls. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi emphasizes yoga's role in providing pathway from mental to physical wellness, leads the nation's observance of 12th International Day of Yoga in Kolkata. Prime Minister Modi commissions three indigenously built Indian Navy platforms in Kolkata. There are special steps being taken to enhance domestic defense production capacity. NEET UG re-examination underway at over 5,000 centers across the country and 14 centers abroad amid tight security. U.S. Vice President J.D. Vance and Iranian Parliament Speaker M.B. Ghalibaf arrive in Switzerland to hold peace talks as Tehran closes Strait of Hormuz again. IMD forecasts extremely heavy rainfall over North Bengal and Sikkim today. And in cricket, India set a target of 378 for Sri Lanka in final match of Tri-Nation A Series in Dambulla. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के तीन पोत राष्ट्रों को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलीबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
2: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युग चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है, जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
3: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग

0: कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
1: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है और इसलिए तो सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है। तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के 3 पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
3: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
3: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1

0: उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपए के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री विंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरों मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है, जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालीबफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान के संसद अध्यक्ष M.B. कालीबफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

बचपन में राजकमल कला मंदिर के बैनर तले बनी निर्माता निर्देशक वी शांताराम द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म झनक झनक पायल बाजे की, जिसे वर्ष 1956 में फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ था।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र आशुतोष का नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम बातें करेंगे वर्ष 1950

आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं इस फिल्म की कहानी क्या है। शास्त्रीय नृत्य के गुरु मंगल किसी सभा में नृत्यांगना नीला यानी अभिनेत्री संध्या का नृत्य देखते हैं। फिर उनका पुत्र और शिष्य गिरधर यानी गोपी कृष्ण नृत्य करने के लिए ये कहकर मैदान में उतरता है कि जो अभी देखा गया वह लटक मटक था, नृत्य नहीं। नीला गिरधर के नृत्य से इतनी मोहित हो जाती है कि गुरुजी से अनुरोध करती है कि उसे अपनी शिष्या बना ले। पहले इनकार करने के बाद अंत में गुरु मंगल मान जाते हैं, लेकिन नीला के आगे दो शर्तें रखते हैं। पहली शर्त ये कि वह अपना समस्त जीवन कला पर न्यौछावर कर देगी और दूसरी ये कि अभी शीघ्र आने वाली एक नृत्य प्रतियोगिता में तांडव वाले प्रसंग में गिरधर के साथ युगल नृत्य करना होगा। नीला दोनों शर्तें मान लेती है और गिरधर और नीला प्रतियोगिता की तैयारी के लिए अभ्यास में लग जाते हैं।

धीरे धीरे दोनों को आपस में प्रेम होने लगता है। मणिलाल यानी मदनपुरी, जो कि एक अमीर आदमी है और नीला से शादी करने का मंसूबा बनाए हुए है, गुरुजी को समझाता है कि दोनों में आपस में प्रेम होने लगा है, लेकिन गुरुजी उसकी बात को अनसुनी कर देते हैं। इसके बाद गुरुजी जब कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं तो दोनों एक दूसरे के प्रेम प्रवाह में खो जाते हैं और अभ्यास करने की बजाय घूम टहल कर अपना समय व्यतीत करते हैं।

गुरुजी जब वापस लौटकर सारा नजारा देखते हैं तो गुस्से में आकर अपने पुत्र से नाता तोड़ने की बात करते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि अब किसी भी हाल में गिरधर नृत्य प्रतियोगिता नहीं जीत पाएगा। अपने प्रेमी का भविष्य डूबता हुआ देख नीला ये नाटक रचती है कि वह वास्तव में मणिलाल से प्रेम करती है। आहत गिरधर वापस लौट जाता है और अपने नृत्य अभ्यास में अपने को झोंक देता है। नीला नदी में डूबकर आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन एक साधु द्वारा बचा ली जाती है और उसे अपने साथ ले जाते हैं और नीला कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है।

0: एक दिन गिरधर नीला के पास आता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन नीला उसको पहचानने से भी इनकार कर देती है। क्रोधित होकर गिरधर अपने पिता के साथ वापस चला जाता है। प्रतियोगिता वाले दिन वह साधु नीला को उस मंदिर में ले जाते हैं जहां प्रतियोगिता होनी है। मणिलाल ने गिरधर को नीचा दिखाने के उद्देश्य से गिरधर की नई सह नर्तकी को प्रतियोगिता में हिस्सा न लेने के लिए पहले ही मना लिया था। नीला उस नर्तकी की जगह ले लेती है और नृत्य के दौरान ही गिरधर को यह समझाने की कोशिश करती है कि उसने तो गिरधर के भविष्य की खातिर ये सब स्वांग रचा था। गिरधर और नीला मिलकर एक अद्भुत युगल नृत्य प्रस्तुत करते हैं जिसकी वजह से भारत नटराजन का खिताब गिरधर को मिल जाता है। नीला मंच से बाहर जाने लगती है तो गुरुजी उससे अपनी गुरु दक्षिणा मांगते हैं। उसके राजी होने पर गुरुजी उसको मंच पर गिरधर के पास लेकर आते हैं और दोनों के घुंघरू आपस में बांधकर दोनों के विवाह की स्वीकृति प्रदान करते हैं।
1: सज्जनों, नटेश्वर का न्याय बड़े आदर और उत्साह के साथ गिरधर जी और नीला देवी के साझे नृत्य को मान देता है और भारत नटराज की पदवी का हकदार गिरधर महाराज को ठहराता है। बोलिए भारत नटराज।

0: नीला, तुम जा रही हो?
1: मैं जिस काम के लिए आई थी वो पूरा कर चली।
0: देखो, तुमने एक शिक्षा का धर्म भी पूरा किया, नृत्य कला की लाज भी रखी, गिरधर को पद भी दिलाई, नटेश्वर को भी प्रसन्न किया, मगर हमारी गुरुदक्षिणा?
1: जो महाराज की आज्ञा।
0: आओ। अब तुम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के जीवन साथी बन जाओ और कला की सेवा में फूलते फलते रहो।
2: तो इस तरह से फिल्म का सुखांत होता है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई नीला देवी के रूप में संध्या, मणिलाल के रूप में मदनपुरी और बदलू के रूप में भगवान। और साथ ही साथ जैसा कि हमने आपको बताया कि गोपी कृष्ण इसमें मुख्य भूमिका में थे और गोपी कृष्ण की यह पहली फिल्म थी। इस फिल्म की कहानी को लिखा था देवन शरार ने और संगीतकार थे वसंत देसाई। अब आइए श्रोताओं, हम बातें कर लेते हैं झनक झनक पायल बाजे फिल्म के कुछ कलात्मक पक्षों पर। झनक झनक पायल बाजे के साथ वी शांताराम ने एक बार फिर एक कुशल फिल्म निर्माता के रूप में अपनी क्षमता साबित की, क्योंकि उन्होंने बेहतरीन पटकथा को फिल्म के नृत्य तत्व के साथ बखूबी जोड़ा। रंगीन फिल्म में अपने पहले प्रयास के साथ वी शांताराम ने यह सिद्ध किया कि आप अपनी संस्कृति की ओर रुख करके एक शांत

शानदार, मनोरंजक, विचारोत्तेजक और एक व्यवस्थित फिल्म बना सकते हैं। झनक झनक पायल बाजे एक ऐसी फिल्म है जो ये संदेश देती है कि भारत को अपनी कलात्मक शुद्धता को संरक्षित रखना चाहिए और पश्चिमीकरण के प्रभाव में अंधाधुंध पड़कर उसकी बेकदरी नहीं करनी चाहिए। ये फिल्म वस्तुतः भारत के शास्त्रीय नृत्यों को समर्पित है।

0: फिल्म में कथक, भरतनाट्यम और मणिपुरी नृत्यों के शानदार दृश्य और भव्य संयोजन आपको देखने को मिलते हैं। शुरुआती प्रेम कहानी की शुरुआत पारंपरिक कथक शैली में प्रस्तुत राधा कृष्ण नृत्य से होती है और जैसे जैसे यह प्रेम बढ़ता है, यह दिवंगत ठक्कर बापा के वाराणसी सेवा मंडल के सहयोग से मंचित भील नृत्य की उमंग में प्रकट होता है। अंत में मैसूर के प्रसिद्ध वृंदावन उद्यान में भरतनाट्यम के उल्लास में यह प्रेम परवान चढ़ता है। ये फिल्म भारतीय नृत्यों का एक भव्य प्रदर्शन है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अपने मूल कथानक से कभी भटकती नहीं है। ये प्रेम कहानी प्रेम में परिवर्तित होती है और एक नाटकीय रूप लेते हुए लगभग त्रासदी में बदल जाती है, लेकिन अंत में सुखद अंत होता है और फिल्म समाप्त होती है।
1: मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं, झननन झननन झननन झननन कान कान कान धाता। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं, झननन झननन झननन झननन मोर मुकुट सर कानों में कुंडल कर में मुरलिया मुरलिया मुरलिया आजे हैं। ताधी थी तत कितने बेटी दिखाई राधा राधा राधा राधा सीधा दीदी सीधा दीदी सही।

0: ਆਪ ਤੇ ਬਜਨੇ ਲਹਿਜੀ ਬਜਨੇ ਲਹਿਜੀ ਬਜਨੇ ਲਹਿਜੀ।
1: यदि आप देखें तो नृत्य और नाटक को आपस में जोड़ने वाले कुछ दृश्य बेहद खूबसूरती से इस फिल्म में परिकल्पित किए गए हैं और उन्हें उतनी ही कुशलता से प्रस्तुत किया गया है, जिनमें शिव तांडव का दृश्य सबसे खास है, जहां गिरधर अपने अद्भुत नृत्य से पर्दे पर आग लगा देते हैं। गोपी कृष्ण और चौबे महाराज की जोड़ी एक सशक्त नृत्य यहाँ प्रस्तुत करती है, जिसे सूक्ष्म कैमरा एंगल और स्पॉट लाइटिंग के कुशल उपयोग से कई गुना बढ़ा दिया जाता है। जीवन और कला का यह अंतर संबंध फिल्म को अधिक गहराई देता है और फिल्म देखने का एक सुखद अनुभव देता है। दोस्तों, गोपी कृष्ण इस फिल्म की जान है।

उनका नृत्य फिल्म की ताकत है, क्योंकि वे दर्शकों को भारतीय नृत्य की समृद्धि और कलात्मकता का एहसास कराते हैं। वी शांताराम ने फिल्म शुरू करने से पहले संध्या को 2 साल नृत्य का प्रशिक्षण दिया था और संध्या ने भी कड़ी मेहनत की थी।

फिल्म के अन्य कलाकारों में केशवराव दत्ते, मनोरमा और भगवान ने बेहतरीन सहयोग दिया है। इस फिल्म की शानदार कोरियोग्राफी, सेट और वेशभूषा का उल्लेख करना जरूरी है। हालांकि यह स्वीकार करना होगा कि फिल्म रंगीन होने के कारण थोड़ी बहुत ज्यादा चटक हो गई है, और इस स्थिति में भी शांताराम ने अपने कैमरे के मूवमेंट और शॉट लेने के तरीके का इतना बेहतरीन उपयोग किया है जिससे ये पता चलता है कि निश्चित रूप से निर्देशन में उन्हें किस तरह की महारत हासिल थी। फिल्म की दूसरी सबसे बड़ी खूबी इसके गीत और संगीत हैं। हसरत जयपुरी साहब ने इस फिल्म में अपने कुछ बेहतरीन गीत लिखे हैं, लेकिन सबसे बढ़कर यह फिल्म संगीत निर्देशक वसंत देसाई के लिए एक बड़ी सफलता थी। वसंत देसाई शांताराम के साथ नियमित रूप से जुड़े रहे थे। उन्होंने वर्ष 1929 में प्रभात स्टूडियो में एक अभिनेता और स्टूडियो सहायक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी, और बाद में केशवराव भोले, मास्टर कृष्णा राव और गोविंद राव टेम्बे जैसे संगीत निर्देशकों के सहायक बने। वसंत देसाई के द्वारा दिए गए इस फिल्म के संगीत में बांसुरी की मधुर धुन और सितार की कोमल ध्वनि का ऐसा मिश्रण है जो मुख्य जोड़ी के प्रेमियों के दृश्यों को उभारता या दबाता है। एक दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में राग बिहाग का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो सदियों से बिछड़े प्रेमियों से जुड़ा हुआ है, और यहाँ भी इसका उपयोग नहीं किया गया है, जबकि प्रेमी अंत में फिर से मिलने से पहले अलग हो जाते हैं। वसंत देसाई संगीतकार नौशाद की तरह यह साबित करते हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत कितना सुलभ हो सकता है, और उन्होंने अपनी सफलता को वर्ष 1959 में आई फिल्म गूंज उठी शहनाई में दोहराया भी, जिसमें महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान साहब ने शहनाई बजाई थी।

हालांकि कुछ आलोचकों ने झनक झनक पायल बाजे को खारिज कर दिया था, लेकिन जनता ने फिल्म को बेहद पसंद किया और यह मुंबई के एक सिनेमा घर में 2 साल से अधिक समय तक चली और यहां तक कि वर्ष 1955 की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया और साथ ही साथ इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक, कला निर्देशन और ऑडियोग्राफी के लिए 4 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते। तो दोस्तों, एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज विश्व संगीत दिवस के अवसर पर भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य की गौरवशाली परंपरा पर आधारित इस उत्कृष्ट फिल्म की बातें हमने आपके साथ साझा की। आज का ये सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो मित्र आशुतोष के साथ। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: झनक झनक पायल बाजी एक ही फिल्म से कार्यक्रम आज इस फिल्म पर केंद्रित था। पेशकश आशुतोष की। फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, DTH, DRM, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेब्स OTT पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वही हमारा साथ।
1: सुन जा आ ठंडी हवा, आ ठंडी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, DTH, DRM, वेव्स OTT और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अपराह्न के 3 बजे हैं। आज की हमारी पहली ही सभा अब संपन्न होती है। शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 243.5 चार मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज रहे हैं। आरंभ होती है आज की ये सभा।

0: सभा के आरंभ में बच्चे सुने अपना पसंदीदा कार्यक्रम बाल गोपाल।
1: बच्चों जय हिंद। हाँ, मैं तो लोग के गौरी दीदी
2: और हम आप लोग का लाजो दीदी।
1: तो देखा हो बच्चा लोग, तू लोग ई जो मौसम चल रहा ला, वो गर्मी के महीना चल रहा ला, छुट्टी के सीजन चल रहा बा, खूब घूमत खेलत हवा, खूब मस्ती कर रहा हवा, और समय समय पर पिकनिक चल जात हवा, कभी वाटर पार्क जात हवा, कहे के मतलब कि खूब घूमत हवा, खूब मजा आवत है तौल के।
2: देखा हो बच्चा लोगन, अपन गौरी दीदी कितना अच्छा से बतौली ना, और देखा और सही कहली ना कि बच्चा लोगन अपन घूमे फिरे अपने नानी के यहाँ, तो मौसी के यहाँ, बुआ के यहाँ जात हैं, लेकिन देखा एकरे साथे साथे इ मौसम में अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखे के हो।
1: का मतलब भगला जो तू का कहल चाहत हो ये बतावा, तू नन्हा मुन्ना बच्चा लोग के का समझावल चाहत हो वो?
2: देखा दीदी, स्वास्थ्य हम समझाए चाहती कि देखा सब कुछ से बढ़ के हो सबसे पहले अपन स्वास्थ्य, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखल बहुत जरूरी हो, और सबसे पहले तो खुद से ही शुरू करे के चाहिए।
1: हाँ,
2: तो देखा हम इसलिए कहत है कि कहे से कि देखा आज हो विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये देखा हर साल 21 जून के मनाया जाए, लोग के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखे खातिर। तो देखा बच्चा लोगन अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा जागरूक रहें, और घर में भी बड़ बुजुर्ग लोगन हैं, अपने माई बाप लोगन के भी स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें।
1: कुल कहे का मतलब ई है कि देखा जैसे खेलल कूदल पढ़ल लिखल जरूरी है, वैसे ही योग व्यायाम भी कैल बहुत जरूरी होला। ऐसे शरीर त शरीर मन के भी बहुत शांति और सुकून मिलेला हो। और देखा वो स्कूल में भी हर तरीका से सिखावल जाता है, योग व्यायाम तरह तरह के सिखावल जाता है, पीटी भी सिखावल जाता, तो तू लोग के सीखे के चाहिए, और खेल खेल के माध्यम से भी बहुत कुछ सीखे के मिल जाला।
2: एकदम देखा बच्चा लोगन गौरी दीदी सही कहत है, लेकिन एकरे साथे साथे देखा अगर आप लोगन योग पे ध्यान देवा ना, तो आपका पढ़ाई लिखाई में भी मन बहुत तेज होई, माने दिमाग तेज होई, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होई, और आप अगर कोनो चीज एक बार में पढ़ लेवा तो ऊ चीज आप लोगन के बहुत जल्दी याद हो जी। तो कुल मिला जुला के देखा आप लोगन के खातिर योग बहुत जरूरी हो, ध्यान लगावल बहुत जरूरी हो, तो देखा योग करो और सबके अपने घर में भी योग बदे जागरूक करें।
1: देखा लाजो दीदी कितना बढ़िया बढ़िया बात बतौली है तू लोग के, और तू लोग सुन ले भी हो बा, और एकर हमके ये आशा है कि तू एक करबा लोग। लेकिन देखा हो यही योग से जुड़ल हम एगो तोहन लोग खातिर वार्ता लेके आयल हई, योग और व्यायाम हमारे स्वास्थ्य जीवन के लिए आवश्यक, आ वार्ताकार हमें वेद प्रकाश यादव, तब बच्चा तोहन लोग एक सुना।
3: मैं वेद प्रकाश यादव, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षक व सीनियर कुश्ती कोच भारतीय खेल प्राधिकरण श्री मेघू व्यायामशाला सरवनपुर कुरौत वाराणसी में कार्यरत हूँ। आज योग और व्यायाम का हमारे जीवन में क्या महत्व है? योग का इतिहास बहुत पुराना है, अधिकांश विद्वान योग को भारतवर्ष की देन मानते हैं। हमारे वेदों, उपनिषदों, रामायण और महाभारत में योगिक क्रियाओं का वर्णन मिलता है, परंतु शास्त्रीय वर्णन पतंजलि के योग सूत्र में ही मिलता है, जो लगभग 149 ईसा पूर्व में लिखा गया था। परंतु महर्षि पतंजलि के बाद योग बौद्ध धर्म का आधार पाकर काफी विकसित हुआ। महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त वृत्ति के निरोध बतलाया, वेदव्यास जी ने योग को समाधि बताया, तथा डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने योग की उपयोगिता को देखते हुए लक्षित करते हुए उसे कामधेनु का संज्ञा दिया। योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ना है, जैसे शरीर और आत्मा का, मन और प्रकृति का, विचार और ऊर्जा का। योग एक शारीरिक व्यायाम ही नहीं है, यह शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक स्तर को संतुलित करती है। यह हमारे देश की प्राचीन विधा है। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में तनाव, चिंता, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, मोटापा जैसे दर्जनों बीमारियों से मनुष्य संघर्ष कर रहा है। ऐसे में योग एक वरदान के रूप में साबित हुआ है, और अपना सुदृढ़ जीवन जीने के

0: प्रेरणा भी योग द्वारा प्राप्त हुआ है। योग से शरीर मजबूत, रोग मुक्त, ऊर्जावान व चिंता युक्त बनता है। योग मानसिक शांति जैसे मेडिटेशन के द्वारा मन शांत होता है, तनाव कम होता है तथा एकाग्रता बढ़ता है। इसमें बहुत सारी श्वसन क्रियाएं होती हैं। योग आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाता है जिससे व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण करता है। योग में विभिन्न प्रकार के आसन हैं जो इस प्रकार से हैं, जैसे प्राणायाम, सांस के माध्यम से शरीर और मन को शांत करते हैं तथा सांस लेने की तकनीक पर ध्यान देते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से उज्जाही प्राणायाम, अनुलोम विलोम और भस्या श्वसन क्रियाएं हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट सूर्य नमस्कार आसन है जो संपूर्ण शरीर को ऊर्जावान करने वाला आसन है। इसके अलावा भुजंग आसन है जो रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है और तनाव कम करता है। इसके अलावा वृक्षासन जो संतुलन और मानसिक स्थिरता को बढ़ाता है। इसके अलावा शीर्षासन रक्त संचार को बढ़ाता है और मस्तिष्क को सक्रिय करता है। इसके अलावा योग में बहुत सारे आसन हैं जिसको करके लाभ लिया जा सकता है। 21 जून विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमें गर्व है कि आज हमारे देश की इस महान परंपरा को संपूर्ण विश्व ने अपनाया। आज के नौ युवा अपने स्वास्थ्य पर कम ध्यान दे रहे हैं। मोबाइल, इंटरनेट और व्यस्त जीवन, दूषित खान पान से वे कमजोर हो रहे हैं। अगर प्रतिदिन आधा घंटा योग किया जाए, छोटे छोटे आसनों से शुरुआत किया जाए और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाया जाए। योग न ही हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि यह हमारे मन को भी स्वस्थ रखता है। और योग कुछ आसनों या व्यायाम का विषय नहीं है, यह मन आत्मा के संतुलन करने में सहायक होता है। यह शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। योग का सकारात्मक जीवन जीने की सीख भी देता है। इससे मन शांत व तनाव कम होता है। यह आत्मसंस्कार की ओर ले जाता है। योग करने से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और यह हमारे उच्च जीवन स्तर में सुधार लाता है। आज समाज में बहुत सारे बुराइयां फैली हुई हैं। आप देखिए, लोगों की दिनचर्या इतनी खराब हो गई है कि सुबह उठते ही वह अपने दिनचर्या में व्यस्त हो जा रहे हैं। शारीरिक रूप से अपने शरीर मन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप अस्पतालों में जाइए, वहाँ बहुत सारे बेड खाली नहीं पड़े हैं, सब पर पेशेंट भरे पड़े हुए हैं। इसका कारण है कि हम सुबह होते ही हमारा 9-6-13 वाला चक्कर, कहाँ से किस तरीके का कार्य करना है, पैसे कहाँ से आए, इसी पे हम व्यस्त हैं, अपने स्वास्थ्य पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण इस तरीके की बीमारियां समाज में व्याप्त हो रहे हैं। लोग हार्ट, बीपी, ब्रेन हेमरेज और मोटापे की बीमारियों से ग्रसित हो जा रहे हैं। तो हमारा यही निवेदन है कि आप योग को अपने जीवन में धारण करें और सुबह उठकर अपने दिनचर्या के हिसाब से 1 घंटे, नहीं तो आधे घंटे ही सही, आप अपने शरीर पे समय दें, मॉर्निंग वॉक करें और एक जगह बैठ के जो भी एक्सरसाइजें हैं योग में, जो भी आसन है, उसको नियमित करें और उसका लाभ लें। इसके साथ ही साथ योग बड़े बुजुर्गों के साथ साथ बच्चों को भी करना चाहिए। आज की जो नई जनरेशन है, हमारे बच्चे, वो मोबाइल या दूषित खान पान की वजह से उनका स्वास्थ्य विशेष रूप से खराब हो रहा है। हम गार्जियनों से निवेदन करते हैं कि वो अपने बच्चों को योग की क्रियाएं बताएं, आसन और जो भी श्वसन की क्रियाएं हैं जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ये श्वसन क्रियाएं जिससे इंटरनल ऑर्गन मजबूत होता है और उनका मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास होता है, तो हमें एक लंबा खुशहाल जीवन जीने में मदद मिलेगा। इसलिए योग करिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। अंत में आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं।
1: देखा बच्चा लोगन कितना निक का जानकारी देलन वेद प्रकाश यादव। देखा विषय रहल योग और व्यायाम हमारे स्वस्थ जीवन के लिए कितना आवश्यक हो। तो देखा अगर

0: ध्यान से आप लोगन सुन ले हो बात। तो वेद प्रकाश यादव जी बतैला ना, योग कैले से कौन कौन तरह का फायदा होला, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होला। बहुत ज़्यादा देरी तक नहीं, बस 10 मिनट या आधा घंटा तक आप आसन पे बैठ के योगा कर सकलन। एकरे साथे साथे देखा हो दीदी, अब नन्ना मुन्ना लोगन खातिर कुछ गीत को नहीं सुनाएगा।
1: हाँ, मैंने कहे कि मतलब ई है कि वो सोचत हुई कि अरे ई दीदी का करत है जा, बस बत कहिए करिया जा कि कुछ मनो मनसाइन करिया जा। तो देखा तो हम लोग के बदे एगो निकी का गीत ले आये हैं, तो एक तू लोग सुना।
0: सुना।

0: तो देखा, सुन के बहुत मजा आयल हुई। तू लोग के कितना निके का गीत रहला, बहुत झुमले होके बजा। आई सही बात है कि तोहन लोग के छोटा बच्चा समझ के हमनी के भूले के ना चाहिए, बहुत बड़ा बड़ा खेल कर देवे लोग। काहो लाजो, सही
1: हाँ
0: बात है
1: एकदम
0: ना।
1: दीदी सही कहा था। और साथे में देखा दीदी, हम लोगन स्वास्थ्य का बात करत रही, तो देखा जब भी बच्चा लोगन खेले जाता है बड़े, तो बीच सड़क पे ना जाएं,
0: हाँ
1: जैसे
0: ई
1: देखा कौनो तरह का दुर्घटना हो सकला।
0: हाँ खेलत समय या फिर रास्ता में जात हुआ तो रास्ता पार करत समय इस चीज का ध्यान रखे के चाहिए कि ललकी पियर की नीलकी कौन बत्ती बरत या कौन बुतल या, तब हम आगे जाई ना तो रुक जाई।
1: एकदम दीदी, एकरे साथे देखा आप हम लोगन का चले का समय हो तो चला।
0: जैसे हमनी के समय से आवे नहीं जा बच्चों, वैसे ही समय से जाए के परेला, फिर तो हम लोग से मिले आवल जाई। बच्चों जय
1: जय
0: हिंद।
1: हिंद।
2: अभी बच्चे सुन रहे

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:15 पांच बजकर 15 मिनट हो रहे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

0: गर्मी की तपेश हमें अक्सर परेशान करती है। इतना भी गर्मी क्यों ना हो।
1: रिश्तों की ठंडक और अपनों का साथ दिल को सुकून दे ही देता है।
0: जी हाँ दोस्तों, इसी मुस्कान और इसी उत्साह के साथ मैं आपकी अतरंगी दोस्त तैयबा मारूफ
1: और मैं हर्षिता,
0: आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में आप सभी अनमोल साथियों का स्वागत करने को आतुर हैं, उत्सुक हैं, बेताब हैं और बेकरार भी। तो इसी कुर्बत और इसी मोहब्बत के साथ कीजिए कबूल हमारा
1: सादर
0: सादर
1: प्रेम,
0: सप्रेम
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। वैसे हर्षिता, आज का दिन तो वैसे भी तपिश और छांव की एक बेहतरीन बेमिसाल पेश करता है ना।
1: क्या मतलब, अब तुम ये कौन सी पहेली लेकर बैठ गई हो तैयबा?
0: पहेली कहाँ भाई, यही तो सच्चाई है मेरी दोस्त। अब देखो ना, आज हम मना रहे हैं फादर्स डे, और एक पिता की मिसाल उस तपिश से दी जाती है जिनकी छांव में हम ठंडक का एहसास करते हैं।
1: ये बात तो सही है, क्योंकि भले ही हम उनकी कड़क आवाज से सहम जाएं, पर अगर वो खामोश हो जाए ना, तो घबराहट सी बढ़ जाती है।
0: यही वजह है कि जब हमें उनसे कुछ कहना भी होता है ना, तो हम बहुत हिचकते हैं। लेकिन चलो हर्षिता, आज हिम्मत और प्यार जुटाकर हम भी कह ही देते हैं, पापा हैप्पी फादर्स डे।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
6: 0542227658।
4: ओ 0542227658। लो अभी फोन लगाता हूँ। 0542227658।
7: दोस्तों आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो हर साल 21 जून को ही मनाया जाता है। साथियों ये दिन हमें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और शरीर मन और हमारी आत्मा के बीच का संतुलन बनाने की एक प्रेरणा देता है।
8: हाँ बिल्कुल दोस्तों, योग केवल कुछ शारीरिक व्यायामों का नाम नहीं है, बल्कि यह जीवन को सही दिशा देने वाली एक प्राचीन भारतीय विद्या है। हजारों वर्षों से योग हमारे देश की संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा रहा है।
7: तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी थी। इसके बाद से दुनिया के अनेक देशों में योग दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है।
8: और दोस्तों आपको पता है इसकी सबसे खास बात यह है कि योग किसी एक धर्म, वर्ग या देश तक

0: सीमित नहीं है, यह पूरी मानवता के लिए स्वास्थ्य और शांति का संदेश लेकर आता है।
1: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, चिंता और अनियमित दिनचर्या एक आम सी बात हो गई है। ऐसे में योग हमें एक मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा देता है।
0: साथ ही नियमित योगाभ्यास से शरीर लचीला बनता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और व्यक्ति खुद को अधिक ऊर्जावान महसूस करता है।
1: तो आइए मेरे दोस्तों, आज हम संकल्प लें कि योग को केवल एक दिन तक सीमित न रखकर बल्कि हम इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे।
0: हाँ बिल्कुल तैयबा, एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करता है।
1: योग बहुत जरूरी है हर्षिता। आज क्या होता है कि हम में से बहुत सारे युवा पढ़ाई, करियर और सोशल मीडिया के दबाव के बीच कई तरह के तनाव का सामना कर रहे हैं। ऐसे में

0: अद्य कृत्स्नेहि विश्व अन्ताराष्ट्रिय योग दिवस भारतीय प्रवासिनाम् अथ स्थानीय जनानां महदुल्लासेन आचरितः। अस्मिन्नेव क्रमे कतारस्य दोहा नगरे 2,000+ योग साधकाः एकत्रिताः अभवन्। ओमानस्य मस्तक नगरे स्थिते भारतीय दूतावासे एकः विशेषः कार्यक्रमः आयोजितः। बांग्लादेशस्य ढाका नगरे इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केन्द्रेण आयोजिते योग सत्रस्य बृहद आयोजने शतशः नागरिकाः सम्मिलिताः अभवन्। सऊदी अरबस्य रियाद नगरे 500+ जनाः योगं कृतवन्तः, यद्धि अस्मिन् राज्ये योगस्य वर्धमानं आकर्षणं सूचयति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य कोलकातायां स्वदेशे निर्मितानां त्रयाणां भारतीय नौसेना मञ्चानां INS दुनागिरी, INS संशोधकः, INS अग्रयश्च राष्ट्राय समर्पिताः। नौसेनायाः वॉरशिप डिजाइनर्स ब्यूरो इत्यनेन परिकल्पितं तथा गार्ड्स रीच शिल्प बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इत्यनेन निर्मिताः एताः नौकाः युद्धकार्याणि, जल ग्राफिक सर्वेक्षणं, जल निमग्न नौका विरोधी युद्धं च सुदृढं कर्तुं अभिप्रेताः सन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् अद्य भारतं स्वस्य सम्पूर्णं समुद्रीय पर्यावरण व्यवस्थां सुदृढं कुर्वदस्ति तथा च सागरमाला इत्यादयः उपक्रमाः अस्याः विशाल परिकल्पनायाः भागाः सन्ति। स्विट्जरलैंडस्य बार्गेनस्टॉक इति रमणीय नगरे ईरान अमेरिका देशयोर्मध्ये उच्चस्तरीयोपवेशनमद्य समारब्धम्। अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं उपराष्ट्रपतिः जे सी वेन सहैव ईरानी प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं संसदाध्यक्षः मोहम्मद बागेर गालिबाफ कुरुतः। उभयोर देशयोर प्रतिनिधि मध्यस्थ देशाभ्यां पाकिस्तान कतारभ्यां सह तत्र सम्प्राप्तौ स्तः। 26,000+ नीट यूजी पुनः परीक्षा अद्य सम्पूर्णे देशे कठोर सुरक्षायाम् आयोजिता, यत्र भारतस्य 150+ नगरेषु, 14 वैदेशीयेषु नगरेषु च 5,000+ केन्द्रेषु 22,00,000+ परीक्षार्थिनः परीक्षायाम् सम्मिलिताः। राष्ट्रिय परीक्षा संस्थया उक्तं यत् परीक्षा आंग्लभाषायां 12 भारतीय भाषासु च आयोजिता आसीत्, यत्र छात्रानुकूल सुविधाः यथा पेयजलम्, ORS, एम्बुलेंस यानानि, केन्द्रेषु माता पितृभ्यः छायायुक्त प्रतीक्षा केन्द्राणि च स्थापितानि आसन्। परीक्षायाः प्राक् NTA इत्यनेन राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल इत्यस्य आयोजनं कृतम्। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः अवोचत् यत् परीक्षायाः सुगमतया संचालनाय सर्वाः आवश्यकोपायाः कृताः। महिला हॉकी क्रीडायाम् अद्य ऑकलैंड नगरे आयोजितायाम् FIH महिला नेशंस कप स्पर्धायाः चरमे द्वन्द्वे भारतेन न्यूजीलैंड दलम् 2-0 अंकैः पराभूय विजेत्री पदकम् अवाप्तम्। विजयेनानेन भारतीय दलेन FIH महिला प्रो लीग मध्ये स्थानं सुरक्षितं कृतम्। इति वार्ताः।
1: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत ओल्ड ट्रैफोर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में खेले जाने वाले भारत बनाम साउथ अफ्रीका मैच के ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

तो और जरूरी है, जैसे हमारे आकाशवाणी वाइब्स के लिए पूजा जी और नैन्सी जी, मंजुषा जी जरूरी हैं। आकाशवाणी परिवार को योग दिवस और संगीत दिवस की बहुत बहुत बधाई। लास्ट मैसेज है, सबसे पहले आपको नमस्कार संदीप, हमारे लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि कभी गम में संगीत हमारे लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि कभी गम में रहता हूँ तो ऐसे गाने का आनंद लेता हूँ जो मूड फ्रेश हो जाता है और मन सेट हो जाता है। तो संगीत हमेशा सुनते रहते हैं और संगीत हर तरीके का आता है, जिस तरीके का मूड हो संगीत सुनते हैं, माँ को सुकून मिलता है संगीत और गाने सुनकर। मोहसिन अंसारी, सरताज अंसारी, शाहिद अंसारी, कोटवा बनारस, संगीत सुनकर मन को शांति मिलती है, मिजाज भी अच्छा हो जाता है। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, इतने सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस करने के लिए। और दोस्तों अब आपसे अलविदा लेना चाहेंगे, एक बार फिर से आपकी रेडियो दोस्त नैन्सी की तरफ से आप सभी को इंटरनेशनल योगा डे और वर्ल्ड म्यूजिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूं ही हमसे जुड़ते रहें, सुनते रहें विविध भारती वाराणसी। मिलेंगे किसी और दिन किसी और सवाल और आपके ढेर सारे जवाब के साथ, तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: We now bring you ball-by-ball commentary of the T20 cricket match to be played between India and South Africa of the ICC Women's T20 World Cup 2026. Before that, listen to a special program, First Ball 20.
1: First Ball 20.
2: पहले दो मैचेस जीतकर टीम इंडिया के हौसले हैं बुलंद, लेकिन आज है बड़ा मुकाबला, कड़ा मुकाबला। इट्स इंडिया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एट ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर, एंड वी आर हियर टू ब्रेक डाउन ऑल द मैचअप्स, की प्लेयर्स, टैक्टिकल।

0: FM 100.6 पर ये विविध भारती का वाराणसी केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे शो वाराणसी वाइब्स। वक्त हो चला है शो गेस्ट ऑफ द वीक का।
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
0: FM 100.6 पर ये विविध भारती का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गेस्ट ऑफ द वीक, जिसमें डॉक्टर राम अवतार पांडे से चंदन सिंह की बातचीत सुनवाई जाएगी।
3: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर राम अवतार पांडे। आप हमारे जनपद के एक वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं, साथ ही आपने लेखन संपादन समाज सेवा के साथ साथ साहित्य की भी सेवा की है और हमारे जनपद बनारस को काफी नजदीक से देखा हुआ है। हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
4: श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार, आपका भी आभार।
3: श्रोताओं को आप बताएं कि आपका बचपन कैसा था, अपने शुरुआती दिनों के बारे में बताएं।
4: मैं देहात में, वाराणसी जिले का एक गांव है अजगरा, जो आजकल विधानसभा के नाम से हो गया, अजगरा विधानसभा मेरे ही गांव के नाम पर उसका रखा गया है
3: जी।
4: मेरा जन्म वहीं हुआ और वहीं प्राथमिक पाठशाला जो थी उसी में मेरी शिक्षा हुई और वहां से फिर पास में ही भारत सेवक समाज जूनियर हाईस्कूल था, वहां से मेरी जूनियर हाईस्कूल स्तर की शिक्षा हुई और वहां से शिक्षा के बाद मैं फिर शहर आ गया और बाकी शिक्षा शहर से हुई। तो गांव का जो परिवेश था
3: जी,
4: एक तो खेतों का बैलों का साथ था, पूर्वत में जाना, उसमें स्नान करना, स्कूल जाके पढ़ना। पढ़ने के लिए मुझे याद है कि मेरे दादा ने पहले से लड़कों को तय कर रखा था। मैं पूर्वत के लिए जा रहा था, बड़ा आनंद था कि चलेंगे वहां नहाएंगे, और लड़के आए और हाथ पैर पकड़ के स्कूल में ले गए और मैं छटपटाता रहा, चला गया। लेकिन अंदर जाने के बाद आपको बताएं, जो मेरी शिक्षा हुई पहली, वहां एक अध्यापक थे जो लड़कों को ऐसे ढंग से पढ़ाते थे कि मैं उसी क्षण यह भूल गया कि पूर्वत ने जाकर के घर में, मैं यहाँ स्कूल में हूँ। वो अपना, जैसे आपको थोड़ा सा उदाहरण दे देना हूँ कैसे पढ़ाते थे
3: जी।
4: एक कबूतर उड़कर आया, हा हा हा हा, एक कबूतर और आ गया, दोनों मिलकर दो हो गए, हा हा हा हा, एक कबूतर फिर से उड़ गया। अब ये ऐसे वो एक्टिंग बच्चों से कराते थे कि वो भूल गया और शिक्षा की तरफ मेरा झुकाव हुआ और संयोग था, भगवान की दया थी कि पढ़ने में भी मैं अच्छा था। एक जो सबसे बड़ी बात आपसे बता

0: भी आपने साहित्य का नाम ले लिया
1: जी
0: मैं कहूं तो आप हंसने लगेंगे। गांव में उस समय नौटंकी होती थी
1: जी।
0: तो मैं उसका बहुत शौकीन था और पहन के जाकर के पहले आगे बैठ जाता था। और आपसे बताऊं कि कविता की तुकबंदी, कविता का लय, उसके छंद का आभास
1: जी
0: उन्हीं में से हुआ जब वो बोलते थे। और उस नाटकों में भी कविताएं आती थी या नगाड़ों के जो स्वर आते थे तो वो एक दिमाग में बैठने लगता था। और मैं आपको बता दूं कि मैं जूनियर हाई स्कूल कक्षा से ही कविताएं लिखने लगा
1: जी,
0: तब से अब तक क्रम तो हमारा चल ही रहा है
1: जी।
0: और हम समझते हैं 9-10 किताबें आ चुकी
1: जी। मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि शुरुआती दिनों में आपने बात की, जैसा कि आपने बताया कि आप गांव के परिवेश से आते हैं, आपके माता पिता क्या करते थे, कैसे थे, उनके बारे में थोड़ा बताएं।
0: मेरी माँ तो गृहिणी थी
1: जी,
0: घर का ख्याल रखना, सबका ख्याल रखना। और माँ का नाम आपने लिया, खाना बहुत अच्छा बनाती थी
1: जी।
0: और मैं क्या खाता था, मैंने मेरी किस खाने में रुचि थी, उसका उनको बहुत अच्छा आवाज था
1: जी।
0: और वो बना के उसी हिसाब से देती थी। घर के कामकाज करती थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, किसी तरह दस्तखत बना लेती थी
1: जी।
0: मेरे पिताजी
1: जी
0: कर्मकांडी विद्वान थे और वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक गए। कुछ ऐसे मोमेंट आए जिस पर उनकी वॉयस सारी दुनिया में सुनी गई। यज्ञ जो होता है आप सुनते हैं, यज्ञशाला के जो यज्ञ कुंड बनता है उसकी जो गणित है, क्योंकि अगर उसकी शुद्धता में कमी होगी तो परिणाम में भी कमी होगी
1: जी।
0: तो सबका उनको बहुत अच्छा ज्ञान था, बहुत अच्छा ज्ञान था
1: जी।
0: और मैं तो समझता हूँ शायद उनके अच्छा मैं पढ़ा होता तो मैं और ऊपर जाता, क्योंकि मैं ये देखता था कि मैं सोया रहता था और मेरे पिताजी सवेरे उठ के उसी धोती को आधा पहने आधा कंधे पर ओढ़े और वो इस तरह से छंदों के आरोह अवरोह को लेकर ऐसे अभ्यास करते थे कि पूरी की पूरी संगीता उनकी जबान पर थी
1: जी, जी।
0: ये मास्टरी थी और बाद में तो आकर के बड़े बड़े लोगों के वो आचार्य बने
1: जी।
0: देवराव बाबा ने उनको सम्मान दिया, चंदबली ब्रह्मचारी ने उनको सम्मान दिया
1: जी।
0: बहुत बड़े बड़े राजनेताओं ने उनको सम्मान दिया, मैंने उनका पैर छूते हुए देखा
1: जी।
0: और शहर में मेरे दादा भी कर्मकांड के विद्वान थे तो शहर में रहते थे, जब मैं शहर में पढ़ने आया तो पिताजी के साथ हुआ, फिर कुछ घर के और कुछ कामकाज, कुछ ननिहाल के कामकाज उसमें वो लगे। लेकिन मेरे पिताजी बहुत, जिसको कह दूं कि साधक आदमी थे और बहुत सरल थे, बहुत सहज थे
1: जी।
0: एक बाहीदार गंजी पर पूरा बनारस टहलाते थे
1: जी, जी।
0: तो बहुत उनकी सादगी ने बहुत प्रभावित हमको किया
1: जी।
0: उनकी स्पष्टता ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया
1: जी।
0: और वो कहीं न कहीं से उतर के हमारे अंदर जरूर आए
1: जी। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आपके जो पिताजी हैं, दादाजी हैं, वो कर्मकांडी रहे हैं, साथ ही आप जो है जब ग्रेजुएशन में थे, हमें लगता
0: जी,
1: है
0: जी।
1: कि उस समय तक जो है आप साहित्य से संबंधित जो है विषयों को आप अध्ययन भी कर रहे थे
0: जी जी
1: तो आगे चल करके बनारस के आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी रहे
0: जी, जी।
1: तो ये बदलाव, ये जो है रूट का कैसे हुआ?
0: देखो ऐसा है
1: जी
0: कि मैं शिक्षा के स्तर पर 1971 में मैंने MSc केमिस्ट्री से किया
1: जी,
0: फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ग्रुप से मैं था और मैं MSc केमिस्ट्री से किया और मेरे दो अपॉइंटमेंट हुए, एक लेक्चर का हुआ केमिस्ट्री का और एक इंडस्ट्री थी उसमें हुआ केमिस्ट ऑफ प्रोडक्शन चार्ज। तो थोड़ा सा मन में तो कुछ दूसरा था, मन में यह था कि या तो मैं अध्यापक बनूं ताकि छात्रों को पढ़ाने, उनके जीवन को निखारने, उनको किसी स्तर तक पहुंचाने और योग्य बनाने का हमको मौका मिले
1: जी,
0: हम देश के इस काम आ सके, एक दिमाग में ये बात था
1: जी।
0: दूसरे दिमाग था कि अगर वो न बनूं, मान लो कि नहीं अध्यापकी मिली ही नहीं
1: जी,
0: तो मैं वकील बनूं, इससे व्यापक स्तर पर लोगों के दुख में सहायक बनने का मुझे मौका मिलेगा और उन्हें अपनी योग्यता से राहत दिलाने का काम करूंगा, ये दो बातें दिमाग में थी। लेकिन फिर जब हमारी नियुक्ति कारखाने में हुई, केमिस्ट ऑफ प्रोडक्शन।

0: आखिर में, तो मुझे ये लगा कि मैं इस अनुभव के आधार पर एक कारखाने का मालिक भी बन सकता हूं, तो मुझे करना चाहिए, और मैंने वहां किया
1: जी।
0: लेकिन मेरा दायरा 100-150 लोगों के बीच में ही था, चाहे उनके लिए मैं अधिकारी हूं, चाहे उसके लिए जो भी हूं, लेकिन कुल मिला के 150 के अंदर ही था। तो जो व्यापक पैमाने पर अपनी उपयोगिता के बारे में मैंने सोचा था, वो कहीं से प्रभावित हो रहा था, इसलिए मैंने 78 में रिजाइन कर दिया नौकरी से
1: जी।
0: और इस बीच मैंने LLB की सायंकालीन परीक्षा किया। मैंने नौकरी करते हुए जब नौकरी से लौटता था तो मैं क्लास में जाता था, एकाध दो क्लास हमारा छूट जाता था, और वहां शायद वही वकालत की बुद्धि वहां थी कि मैं शुक्रवार को कारखाना बंद होता था तो शुक्रवार को जाता था, जिस कक्षाओं में मैं नहीं गया रहता था उसमें शुक्रवार को पहले पहुंच जाता था, और दो चार ऐसे सवाल पूछता था कि गुरुजी हमको पहचाने कि हमारा विद्यार्थी है
1: जी,
0: ताकि हमारी अटेंडेंस 60 न हो और मैं परीक्षा दे लूं। और मैंने LLB पास किया
1: जी।
0: और पास करने के बाद 75 में जब LLB हमारी पूरी हुई तब मेरा मन बढ़ने लगा कि मुझे इस परिधि के बाहर निकलना चाहिए
1: जी।
0: और फिर अंत में मैंने 78 में वहां से रिजाइन किया, और रिजाइन करने के बाद इनरोल करके मैं बार के रोल पर आ गया
1: जी।
0: और तब से मैं वकालत करना शुरू किया। शुरू में जैसे सारे वकील हैं उनकी मैंने वहां च्वाइस नहीं होता कि हम किधर
1: जा रहे हैं। यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा आपको कि आपने वकालत जो है वो करना आपने आरंभ कर दिया, तो अधिवक्ता के तौर पर आपको कौन कौन से पदभार, कौन कौन से कार्य करने का अवसर मिला, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
0: जब मैं गया तो 2 साल की वकालत में मैं पहली बार के चुनाव में आया तो लाइब्रेरी सेक्रेटरी का एक पद होता है
1: जी,
0: तो मैं लड़ा, और सीनियरों ने मुझे पता नहीं क्यों वो बच्चे की तरह मानने लगे, बहुत पसंद किया, मैंने मेरे चुनाव का प्रचार सीनियर हमारे करने लगे और मैं जीता
1: जी।
0: तो पहली बार मैं उस बार में पुस्तकालय सचिव चुना गया। उसके बाद फिर मैं लगातार प्रबंध समिति में बार के कई बार और मैक्सिमम वोट पा करके 10-11 बार मैं प्रबंध समिति में चुना गया। फिर टेचरा कोषाध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ा, उसमें भी विजय श्री भगवान ने दिलाई, और मैं तब वो स्टेज वो पहुंच गई कि जब लोग ये समझने लगे कि ये हमारा बार का पदाधिकारी है, मैंने एक रिकग्निशन आने लगी। फिर जनरल सेक्रेटरी बना, वहां काम भी किया, हाल ऊपर बना हुआ है, आज जहां मीटिंग होती है लोग जाते हैं, वो हाल महामंत्री जब थे जनरल सेक्रेटरी उस समय हमने बनवाया था उस हाल को, बल्कि उसमें मैं गिर गया था, मेरे दोनों पैर टूट गए थे, अस्पताल में भर्ती था, लेकिन फिर अस्पताल से निकल के आया तो उस निर्माण को जो मैंने शुरू किया था पूरा किया, आज वो निर्माण है और उसमें बैठकें होती हैं, मैं भी बैठकों में शामिल होता हूं, तो वो कार्य मैंने किया। उसके बाद फिर अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, अध्यक्ष के चुनाव में मैं अध्यक्ष चुना गया, बहुत सारे काम उस समय के किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं, और मेरी कार्यशैली कहीं न कहीं से प्रभावित थे, चाहे डिस्ट्रिक्ट जज के जरिए चाहे जिसके जरिए, तो चीफ जस्टिस ने भी मुझे बुलाया था, कई जैसे वकीलों की छुट्टियां कट गई थी और वकीलों ने 2-2 रिट दाखिल किया, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिट खारिज हो गई।
1: अच्छा जी,
0: अब सवाल है कि हमारी जो गर्मी में 1 महीने छुट्टी होती है, दीवानी बंद रहती है ना
1: जी,
0: वो खत्म थी, विंटर वेकेशन खत्म था, त्योहार आधे छट चुके थे
1: जी,
0: सायंकालीन अदालतों के चलने का फरमान आ गया था
1: जी,
0: माने दिन भर हम काम करें
1: फिर शाम को,
0: फिर रात को भी काम करें
1: जी,
0: तो ये सारी चीजें उठी थी, उसको लेके स्ट्राइक हुई जिसका हमने नेतृत्व किया
1: जी,
0: तो वो सब के बाद कहीं से चीफ जस्टिस साहब को सेंट्रल बार के प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया, तो उन्होंने बुलाया
1: जी,
0: और आपसे बताऊं कि जब मैंने पहले तो सायंकालीन पर मैंने कहा कि श्रीमन सायंकालीन कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन उस महिला की सोचे जो 40 किलोमीटर से दूर 8 बजे रात को उसके मुकदमे में तारीख पड़ जाएगी तो कहां जाएगी वो, तब उन्होंने उसको माना और वो सायंकालीन का प्रस्ताव

0: चला गया। फिर मैंने छुट्टियों पर बात किया, उन्होंने कहा कि आप लोगों की दो रिट सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है, तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो हूं नहीं
1: जी।
0: हमने कहा साहब यही बात बताऊं, एक रूलिंग मैंने बचपन में सुना था, वही रूलिंग मैंने किशोरावस्था में सुना, वही जवानी में भी सुना, वही अधेड़ावस्था में सुना, वही अब मैं वृद्धावस्था में सुना, वो रूलिंग आज तक ऊपर हुई नहीं। तो बड़ा क्यूरियोसिटी थी उनके और उनके साथ के कंपेनियन है जो बड़ी क्यूरियोसिटी थी वो रूप कौन सी रूलिंग है, बार बार उन्होंने पूछा बताइए, और हम उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ाते जा रहे थे
1: जी।
0: लेकिन अंत में मैंने कहा साहब बहुत छोटी रूलिंग है, व्हेन देयर इज विल देयर इज वे, जहां चाह वहां राह, अगर आप चाह जाएंगे तो रास्ते निकल जाएंगे। हंसते उन्होंने कहा हम ही चाहेंगे कि आप भी, हमने कहा हम भी चाहेंगे। तो हम लेकर के सब सारे विभागों की छुट्टियां, सबकी छुट्टियों का कंपेरिजन किया था और एक लेख लिखा था, चूंकि मैं लेखक था ही तो मैं एक लेख लिखा था, 17-18 पेज का लेख था कि छुट्टियां आखिर दी क्यों जाती हैं, इनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है और ये कब से क्यों आई। तो उससे प्रभावित हुए और इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि यहां हमारे यहां अधिकारियों को छुट्टी मिलती है परिवार के साथ कहीं जाने आने के लिए 12 दिन की, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने स्टाफ को भी दिया, हमने कहा था कि वो भी अपनी बेटी की शादी खोजेगा
1: जी,
0: वो भी अपने लड़के का नाम लिखाएगा, अरे उस पर भी दया करिए, अगर काम बेहतर लेना है तो उसके बारे में भी बेहतर सुनिए। बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर छुट्टियों के दिन रविवार या इस तरह की छुट्टी पड़ जाती है तो एक दिन बाद वो छुट्टी दी जाएगी बदले की भी छुट्टी का। तो ये सारा काम किया है। आपको एक और बात बताऊं कि कानपुर में एक बड़ा बवाल हुआ था डिस्ट्रिक्ट जज के ट्रांसफर को लेके, वहां आगजनी हुई, गाड़ियां जलाई गई, सब गई और सारे हड़ताल हुए, सब कुछ हुआ, डेलीगेशन गया, हाईकोर्ट गया और कोई सुनने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि सब अपनी सुनाने वाले थे, कोई किसी की सुनने वाला नहीं था, इसलिए कोई हल नहीं निकला
1: जी।
0: संजोग से मुझे वो मौका मिला, सारे जितने प्रदेश के 1200 सेशन थे उनके अध्यक्ष और महामंत्रियों की बैठकी मेरी अध्यक्षता में हुई
1: जी।
0: और जो सुझाव मैंने दिया सर्वसम्मत स्वीकार होकर के वहां का आंदोलन ही नहीं समाप्त हुआ बल्कि वकीलों की वहां की मांग पूरी हुई, जितनी गाड़ियां जलाई गई उनके कंपनसेशन मिले, ये सब हुआ। तो ईश्वर ने जो मुझसे कराया मैंने अपनी योग्यता से करने की कोशिश की है
1: जी। निसंदेह ही अधिवक्ता के तौर पर आपने पूरी जिम्मेदारियों को अपने निभाया है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आप साहित्य संबंधित जो कार्य किया है उसमें मैं जानना चाहूंगा कि आप एक अधिवक्ता रहे हैं तो ये साहित्य में आप आए इसके बारे में, इसके पीछे क्या कारण रहा?
0: देखो एक बात बताए आप
1: जी,
0: मैंने भी कहा कि
1: जी
0: आखिर गलत काम करने वालों के लिए गलत काम करने का समय कहां से मिलता है? आपकी वकालत एक अलग चीज है लेकिन अगर आपकी इच्छा है वकालत से या मुकदमों से मन थोड़ा बगल होता था तो साहित्य की तरफ झांकने लगता था
1: जी।
0: और चूंकि वो अभिरुचि थी इसलिए वो आगे बढ़ती गई। मेरी पहली किताब आई थी नई कविताओं पर, उस पर अखिल भारतीय स्तर पर जबलपुर में कार्यक्रम हुआ था, मुझे सम्मानित भी किया गया था, स्वर्गीय शकुंतला देवी नई कविता सम्मान और कैश अवार्ड भी हमको मिला था, वो मेरी पहली किताब थी
1: जी।
0: और बाद में उस किताब की कविताओं से यहाँ एक बहुत बड़ी विदुषी हैं, आपने भी जाना होगा उनका नाम, और उन्होंने अनुराधा जी ने हमसे पूछा कि क्या मैं इन कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद कर दूं,
1: अंग्रेजी में अनुवाद,
0: और हमारे लिए नए आदमी के लिए मेरी कविता अंग्रेजी में आ रही है तो वो कैसे गए मन में तो फूटने लगे। हमने कहा जी हाँ कर दीजिए और वो कविता भी, वो किताब भी छपी
1: जी।
0: मैंने उसके बाद एक किताब लिखा, वो रचनाएं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, चूंकि गांव से मेरा संबंध था, वहां औरतें गाती थी और जो वो गाती थी वो लय उनके टोन ने मुझे प्रभावित किया था, तो मैंने उन टोन पर गीत
1: जी,
0: लिखे
1: जी,
0: देवी गीत लिखे, होली गीत लिखे, कजरी लिखे, सोहर लिखे, बधावा लिखे
1: जी,
0: और मैंने जितनी भी इस तरह की कविताएं थी वो गीत गांव में गाए जाते थे उनको लिया। कुछ तो ऐसे भी थे

0: जो टोन जिसका दूसरा वो था उसको देवी गीत के रूप में कन्वर्ट करके वो लिखा, किताब छपी, वो सारे यहाँ के गायक और गायिकाओं ने लिया और उससे वो गाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में अपने मंच पर इन सारे गानों को गाते हुए सुना। एक रचनाकार की इच्छा होती कि मेरा गीत कोई गावे, हम भी सुने कि मेरा गीत गाया गया। और ये गीत हमारे तो अनेक मंचों पर, और यहाँ की कोई ऐसी नहीं है, चाहे आपके आकाशवाणी दूरदर्शन की जो ए श्रेणी की भी है, सबने उन गानों को गाया है और उसके जरिए यश पाया है। हमारा तो यश अपनी जगह है, उनको भी यश मिला है।
1: जी, और किसी फिल्मों में भी आपके गीतों को लिखा गया है, फिल्मों से भी इसका कोई संबंध रहा है क्या?
0: एक मिनट, हाँ बता रहा हूँ, थोड़ी सी और यहाँ ऐड करूँ। इसके बाद मैंने बच्चों के लिए एक किताब लिखी
1: जी,
0: उसमें 3 साल से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए रचनाएं हैं। और उन रचनाओं की विशेषता ये है कि उनकी हर पंक्ति में जीवन संदेश है
1: जी।
0: अब उसके बाद आप आ रहे हैं, एक निर्माता ने पहले सीरियल आया है आपके दूरदर्शन पर चला है
1: जी,
0: से चिली चला बनारस,
1: अच्छा जी,
0: उसमें भी मैंने उसके डायलॉग भी कुछ मेरे लिखे हुए हैं, उसके अलावा गीत उसमें भी रहे हैं
1: जी।
0: वह फिर बाद में फीचर फिल्म बनी
1: जी,
0: जो दूरदर्शन से धारावाहिक आया उसमें भी मेरा रोल, और जो फिल्म बनी केवल सिक्सिली नाम से यहाँ बनारस में चली भी थी
1: जी,
0: उसमें भी मेरा रोल है, उसके सारे गीत हमारे
1: जी, जी,
0: और वो पसंद भी किए गए। उसमें एक गंगा गीत जो गंगा प्रदूषण से संबंधित था, जटवा से तोहरे एली धरतिया पर जटवा में फिर से बुलाओ भोले बाबा, ये गीत बहुत चला, बहुत मशहूर हुआ।
1: थोड़ा इस गीत को आप गुनगुनाएंगे अगर आप, अगर आपकी इच्छा हो तो?
0: अब 2 लाइन तो केवल बोल देंगे,
1: अच्छा
0: बाकी तो पूरा गीत सामने नहीं है
1: जी। जी जी,
0: जटवा से तोहरे ऐली धरतिया पे जटवा में फिर से बुलावा भोले बाबा, लोगवा के तरली आशीषवा से भरली अपना आशीष दे जाला भोले बाबा।
1: क्या बात है।
0: और उसमें आगे गंगा कहती है कि लोग कचरा डाल रहे हैं, नाले डाल रहे हैं, और वही जल लोग ले जाके आपको चढ़ाते हैं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि वह दूसरी जल आपके ऊपर चढ़े, ये पूरा गीत है उसमें
1: जी, जी।
0: तो इस तरह से वो था
1: जी।
0: अच्छा। और इसके अलावा साहित्य की किताब है, हास्य की किताब, देशभक्ति से संबंधित रचनाओं की मेरी पुस्तक छपी, और गजलों का, गीतों का वो संग्रह आया।
1: निसंदेह ही साहित्य में आपने तमाम आयामों को छुआ है, और लगभग हर विषय पर आपकी कुछ न कुछ रचनाएं रही हैं।
0: मेरी कुंडलियों का संग्रह है साहब, 1008 कुंडलियों का, मैं 50,000 के ऊपर कुंडलियां लिख चुका हूँ, ये रिकॉर्ड है बनारस के लिए
1: जी।
0: लेकिन उसमें 1008 की कुंडलियों की किताब छप चुकी है
1: जी, और इसमें कई किताबें जो है आपकी छप चुकी है जो आपने बताया है। अच्छा, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और मैं यह जानना चाहूंगा कि आपके व्यक्तित्व का एक और जो अंश है उसमें समाज सेवा भी है, तो समाज सेवा संबंधित आपने जो कुछ कार्य किया है हमारे श्रोताओं को बताएं संक्षेप में।
0: शुरू से ये तो मेरा स्वभाव था
1: जी,
0: और मैं ये मानता हूँ कि आदमी बढ़ेगा तभी जब उसमें श्रम और सेवा का भाव होगा, उसके प्रति उसकी निष्ठा होगी
1: जी।
0: यश उसको उसी से मिलना है, जितने लोगों का आप यशस्वी है नाम दिए वो सभी ने सेवाएं दी है तब उनको नतमस्तक लोग होते हैं
1: जी।
0: तो मैंने भी शुरू से ही समाज के, मैं तो आपसे कहूं कि मुझे ये भी नहीं मालूम है कि मैं कितनी संस्थाओं में पदाधिकारी हूं
1: जी,
0: 10-20 आप कहेंगे गिना दूंगा लेकिन उसके बाद नहीं गिना पाऊंगा। लोगों ने चाहा, लोगों ने मेरे श्रम को, मेरी निष्ठा को, मेरी सच्चाई को सराहा और अपने साथ लिए, इसलिए सब काम किया। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने 1914 में प्रयाग सेवा समिति बनाई
1: जी,
0: और जून 1918 को बनारस में उन्होंने काशी सेवा समिति बनाई
1: जी,
0: और

0: उसके पहले अध्यक्ष जो थे वो राजा सरमोती चंद थे।
1: अच्छा जी,
0: जिनको पद्मभूषण बाद में सरकार ने दिया
1: जी,
0: वो उसके पहले अध्यक्ष थे। श्री प्रकाश जी जो गवर्नर थे वो उसके पहले मंत्री थे
1: जी।
0: पंडित कमलापति जी भी उसके अध्यक्ष रहे हैं
1: जी।
0: संपूर्णानंद जी उपाध्यक्ष रहे हैं। राजा भारत रत्न भगवान दास उसके फाउंडर रहे हैं। तो ये सारे लोगों ने उसकी स्थापना की और पिछले 25 सालों से मैं उस संस्था का अध्यक्ष हूँ, सभापति हूँ, जहाँ कमलापति जी थे
1: जी।
0: कुंजू बाबू हमारे नगर के पहले मेयर रहे हैं, वो भी उसके अध्यक्ष थे। कुंजू बाबू के मरने के बाद मेरा चयन हुआ। 25 साल से मैं हूँ और आपको बता दूं कि वहाँ ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप उन्हें खिला नहीं सकते, पिला नहीं सकते, शिक्षा नहीं दिला सकते, पढ़ा नहीं सकते, लिखा नहीं सकते, उनकी दवाई दर्पण नहीं कर सकते, ऐसे बच्चों को वहां रख करके और उनको रात को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए 7 वर्ष तक हमने घर छोड़ दिया था, घर गया ही नहीं
1: जी।
0: और ऐसे भी अवसर आए हैं जब उनकी हालत बिगड़ी, 2 बजे खून की उल्टी हो रही है, उनको लेके अस्पताल भागा हूं, उनको हाई ग्रेड फीवर हुआ, उनको लेके दौड़ा हूं। तो ऐसे काम वो भी किया है। समाज में रामलीलाएं हैं, कई रामलीला कमेटी का मैं अध्यक्ष हूं, मैं उसमें भाग लेता हूं
1: जी।
0: आपको बताऊं 68-69 में नगर की सबसे ख्यातिलब्ध दुर्गा पूजा है टाउन हॉल की, आपके यहाँ आकाशवाणी से भी उसके कार्यक्रम बहुत प्रसारित हुए हैं
1: जी।
0: तो सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति मैं उसका भी सभापति रहा हूँ और उसका संस्थापक सदस्य रहा हूँ 8-9 लोगों के साथ। उस समय में बीएससी में पढ़ रहा था, उसकी स्थापना की थी और वो शहर की सबसे बड़ी दुर्गा पूजा हुई। और 78-79 के बाद जितनी दुर्गा पूजाएं शहर की हैं, पहले 2 दिन तो मोहड़ा राम अवतार पाणी ने ही संभाला है प्रशासनिक अड़ंगेबाजी के खिलाफ, और आज वो सारी दुर्गा पूजाएं वो मंत्रों के स्वर गूंजते हैं, लोग दर्शन करते हैं, लोग आध्यात्मिक लाभ लेते हैं, भगवती की कृपा का लाभ लेते हैं। वो सारा मैंने वो सब भगवान ने मेरे मुझसे कराया और 2 मंदिरों में शिव स्थापना भी ईश्वर ने मेरे हाथ से प्रेरणा देके कराई। हमारे यहाँ काशी सेवा समिति में भी 100 साल पूरा हुआ, मैंने सोचा क्या करूं, तब तक वो इस बात के लिए मोटिवेट करने लगे कि खुदवाओ खुदवाओ, और जब मैंने खुदवाया तो 4.5 फीट की के नीचे भगवान शिव अर्घा सहित प्रकट दिखाई पड़े और आज वहाँ मंदिर बना हुआ है। तो ईश्वर ने जो कराया आपने, हमने किया है, उम्र जितनी दी उसे हमने जिया है, यही हमारी अभी तक की स्थिति रही है
1: जी। जी डॉक्टर राम अवतार पांडे जी, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है, चाहे वो साहित्य की सेवा हो, चाहे वो समाज की सेवा हो, चाहे वो अधिवक्ता रहते हुए आपने जो कार्य किया है वो भी बहुत ही सराहनीय है। आपके जीवन कई लोगों को प्रेरणा देगी, तो आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे इतनी सारी जानकारी आपने अपने बारे में साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत अभिनंदन हमारे उन सभी श्रोताओं का जिन्होंने समय निकाल करके मेरी बातों को सुना, और मैं समझता हूँ कुछ उस पर विचार करेंगे। और जिंदगी का उद्देश्य क्या है, जीवन को सफल बनाना सीखें, आदर्शों की पृष्ठभूमि पर अपना जीवन लगाना सीखें, हम तो यही चाहेंगे।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गेस्ट ऑफ द वीक, जिसमें डॉक्टर राम अवतार पांडे से चंदन सिंह की बातचीत सुनवाई गई। FM 100.6 पर यह विविध भारती का वाराणसी केंद्र है। अगला प्रसारण आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से।
3: बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें अब पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया। कहने लगे, बरखुरदार, अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
4: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।
5: जय माला।

0: آزادی ذرا یاد کرو قربانی.
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा. फौजी साथियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा का नमस्कार. साल के दो चार दिनों में देशभक्ति गीतों को सुनने मात्र को देश प्रेम नहीं कहा जाता. देश प्रेम एक ऐसी भावना है जो दिल में गहरे बैठती है. देश की माटी के लिए अपना सर्वस्व लुटाने का जज्बा, हर खतरे को भांपते हुए भी उसकी ओर कदम बढ़ाने का साहस और निडरता हमारे सैनिकों की निशानी है. अपने परिवार को सिर्फ चंद लोगों में सीमित ना करके संपूर्ण देशवासियों को अपना परिवार मानने का हौसला हमारे सैनिक करते हैं. न सिर्फ वो ये मानते हैं बल्कि इस परिवार को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें दुश्मन की कितनी ही गोलियों का सामना करना पड़े, चाहे तोप के सामने ही क्यों ना खड़ा होना पड़े. हमारे जांबाज सैनिक वो अदम्य साहस दिखा जाते हैं जिन्हें पढ़कर, सुनकर और जानकर हम आश्चर्य, जोश और कृतज्ञता से भर जाते हैं. ऐसी ही अदम्य साहस, जांबाजी और निडरता की कहानी रचने वाले एक वीर सैनिक की शौर्य गाथा आज हम लिए आए हैं. आप हैं देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे.

बचपन के बाद जीवन के खूबसूरत दिनों में किशोरावस्था को शामिल किया जाता है। ये एक ऐसा समय होता है जब व्यक्ति जितना साहसी होता है उतना ही भ्रमित भी। उसे अपने जीवन के प्रति एक अलग उत्साह होता है, साथ ही भविष्य की अनिश्चितताएं भी सामने होती हैं। शायद इसीलिए किशोरावस्था को अल्हड़ता का दूसरा नाम भी कहा जाता है। लेकिन ये स्थिति सभी के साथ नहीं होती। कुछ ऐसे युवा भी होते हैं जो कम उम्र में ही अपना भविष्य तय कर लेते हैं, बना लेते हैं एक ऐसा नाम जो साल दर साल लोगों की जुबान को पवित्र करता है। ऐसा ही व्यक्तित्व रहा सिपाही पांडुरंग सालुंखे का। महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक गांव में 1 मई 1950 को बालकृष्ण सालुंखे के घर जन्मे सुपुत्र पांडुरंग सालुंखे। आप मात्र 19 वर्ष की आयु में ही देश प्रेम की राह पर चल निकले और बन गए मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की 15वीं बटालियन का हिस्सा और कहलाने लगे सिपाही पांडुरंग सालुंखे। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट भारतीय सेना की एक ऐसी पैदल सेना रेजिमेंट है जो हल्के हथियारों के साथ युद्ध के मैदान में उतरती है। इस सेना के पास भले ही हथियारों के रूप में भार कम हो, लेकिन वो शत्रुओं पर हमेशा भारी पड़ती है, क्योंकि हल्के हथियारों के साथ भारी जोखिम उठाते हुए तीव्र गति से युद्ध मैदान में घुसकर शत्रुओं को परास्त करना इनका गुण है। 1768 में बनी ये रेजिमेंट सबसे पुरानी लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट ने स्वतंत्रता के पहले और बाद में कई युद्धों में अपना योगदान दिया है और तकरीबन 56 से भी अधिक युद्ध सम्मान इस रेजिमेंट के नाम हैं। अप्रैल 1952 में इसे सेकंड पैरा ट्रूप्स में बदला गया है। पैरा ट्रूप्स ऐसी सेना होती है जिन्हें पैराशूट्स की मदद से युद्ध क्षेत्र में उतारा जाता है, जो सीधे शत्रु सेना से भिड़ने को तैयार रहती है। आपको ये भी बता दें कि मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का युद्ध घोष है, बोला छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। यही युद्ध घोष करते हुए सिपाही पांडुरंग सालुंखे ने साहस की परिभाषा बदल दी।

1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध 3 से 16 दिसंबर तक लड़ा गया था। इस दौरान हमारे तीनों सेना के सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। तकरीबन 4090 भारतीय सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। 600 सैनिकों को विभिन्न सैन्य सम्मानों से नवाजा गया, जिनमें 4 परमवीर चक्र, 76 महावीर चक्र और 513 वीर चक्र शामिल हैं। इन महावीर चक्र विजेताओं में से ही एक हैं हमारी आज की शौर्य गाथा के नायक सिपाही पांडुरंग सालुंखे, जो शामिल थे उस 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री में, जिसे इस युद्ध में बैटल ऑनर बुर्ज और द थिएटर ऑनर पंजाब का सम्मान भी मिला।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे की शौर्य गाथा। '71 में पाकिस्तान की ओर से युद्ध का आभास होते ही संभावित हमलों को रोकने के लिए रक्षात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई। इसके तहत 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री को मध के पास साकी नाले पर फतेहपुर लोपोक का भार सौंपा गया। इस इन्फेंट्री में ही शामिल थे सिपाही पांडुरंग सालुंखे। इस इन्फेंट्री ने छनकला, तुर और भिंडी औलक गाँवों में निगरानी रखने के साथ ही

0: वेरा में भी लड़ाकू दस्ता स्थापित कर दिया। मराठा लाइट इन्फेंट्री के इस कदम से फतेहपुर, बुर्ज और घोगा इलाके की सीमा सुरक्षा बल पोस्ट को भी मजबूती मिली। यूं भी मराठा लाइट इन्फेंट्री अकेली नहीं थी, उनके साथ एक फील्ड रेजिमेंट और 66वीं आर्मर्ड रेजिमेंट की विजयंत टैंक स्क्वाड्रन भी थी। वहीं अमृतसर के दिशा में शत्रुओं को रोकने के लिए दूसरी बटालियन तैनात थी और तीसरी बटालियन को गुरदासपुर सेक्टर में मोर्चा दिया गया। इस तरह हम शत्रुओं के लिए पूरी तरह से तैयार थे।
1: बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, सिंह के दहाड़ के जुल्म के पहाड़ पे चढ़े चलो, बढ़े चलो बहादुर, बढ़े चलो,
2: बढ़े चलो, बढ़े चलो,
1: पत्थर जो आ

0: अनुमान के अनुसार पाकिस्तान ने 3 और 4 दिसंबर की रात अपनी 2 बटालियन के साथ हमला बोला। 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री का मुकाबला 43वीं बलूच के साथ हुआ। देर रात शुरू हुए इस हमले में पाकिस्तान को बढ़त मिली और उसने घोगा, बहलोल, गुलगढ़ के साथ पूरे धुस्सी बंद पर कब्जा कर लिया, जिसमें दक्षिण छनकला से लेकर दक्षिण भिंडी औलक भी शामिल थे। सुरक्षा सीमा बल की फतेहपुर पोस्ट पर भी दुश्मनों का कब्जा था। भारतीय सेना के हाथ में गांव बने रहे, लेकिन एक बड़ा क्षेत्र दुश्मनों के कब्जे में था। युद्ध के मैदान में हार जीत बनी रहती है, लेकिन सबसे जरूरी होता है अपने हौसले और धैर्य को बनाए रखना। यहाँ हम ये नहीं देखते कि दुश्मन के हाथों में क्या है, बल्कि इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि हमारे पास मौजूद संसाधनों का उपयोग किस तरह किया जाए। यही वो गुण है जो हमारी भारतीय सेना के जवानों के अंदर मौजूद है।
1: प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन वान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड

सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है।

0: है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।
1: आरंभ है प्रचंड वो

गया का भाव या किशोर का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या किशोर का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। पूरे फाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो।

0: जयमाला, सैनिकों की शौर्य गाथा में समय है एक अंतराल का।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला, सैनिकों की शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे की शौर्य गाथा। पाकिस्तान की ओर से युद्ध आरंभ हो चुका था और एक बड़ा क्षेत्र भी उनके कब्जे में था। हमारे आज की शौर्य गाथा के नायक सिपाही पांडुरंग सालुंखे अपनी रेजिमेंट के साथ युद्ध मैदान में डटे हुए थे। आगे की रणनीति पर विचार हो रहा था तो 5 दिसंबर को 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री ने अपना प्रयास जारी रखा और एक छोटी ही सही लेकिन महत्वपूर्ण घटना हुई। दुग और औलख में ईस्ट बंगाल राइफल्स के करीब 150 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। वो अपने साथ पाकिस्तानी सेना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी भी ले आए थे। सेना ने यह तय किया कि पाकिस्तान के कब्जे से धुस्सी बंद को वापस लेना है, किसी भी हार से तुरंत बौखलाकर वार न करना बल्कि कुछ

15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट युद्ध के मैदान में डटी थी। इसका नेतृत्व कर रहे थे मेजर रणबीर सिंह, जो सेकंड इन कमांडर थे और कंपनी कमांडर का दायित्व भी निभा रहे थे। वो अपनी सेना के साथ बुर्ज की ओर आगे बढ़ने लगे। शत्रुओं को इसकी भनक लगते ही 6 दिसंबर को बुर्ज पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना की ओर से दिन के उजाले में ही हमला होने लगा। ऐसे में मराठा लाइट इन्फेंट्री ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। इसकी उम्मीद शत्रु सेना को नहीं थी, वो इस हमले से सकते में आ गए। पीछे हटने के सिवा उनके पास कोई चारा ही नहीं था। मेजर रणबीर सिंह ने निर्णय लिया कि अब बुर्ज पर अधिकार करने में ज्यादा समय लगाना उचित नहीं होगा। अगर जरा सी भी देर की गई तो शत्रु एक बार फिर तैयार हो सकते हैं। एक ओर जहां शत्रु सेना एक छोटी सी जीत के जश्न में ही डूब गई थी, वहीं हमारी सेना के निर्णय से आप समझ सकते हैं कि अगर शत्रुओं को खदेड़ना हो तो एक छोटी जीत को अपने दूसरे प्रयास से बड़ी जीत में बदलने के बाद ही जश्न मनाया जा सकता है। पाकिस्तानी सेना को बुर्ज में मुंह तोड़ जवाब देने के बाद सिपाही पांडुरंग सालूंखे अपनी मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के साथियों के साथ अगले आदेश का इंतजार कर रहे थे। उनकी रेजिमेंट का नेतृत्व मेजर रणबीर सिंह के हाथ में था। मेजर रणबीर सिंह ने ये तय किया कि अब दुश्मन सेना को ज्यादा समय देना उचित नहीं है। अपनी अन्य साथी सेनाओं के साथ उन्होंने एक ऐसी रणनीति अपनाने का फैसला किया जो दुश्मन के लिए भ्रम की स्थिति पैदा करे। बिना देर करते हुए एक योजनाबद्ध हमला करने का फैसला किया गया, जहां दुश्मन को दोनों ओर से घेरने की योजना बनाते हुए टैंक टुकड़ी को पीछे से और बाकी आगे से हमला करने निकल चले। इससे शत्रु के आगे बढ़ने का रास्ता तो बंद होता ही था, साथ ही वो पीछे हटने लायक भी नहीं रह पाता। शत्रु की कल्पना से परे एक ऐसा रास्ता निकल

बेहतरीन नेतृत्व तभी सफल हो पाता है जब उसके पास एक साहसी और निडर सेना मौजूद हो। मेजर रणबीर सिंह 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट और अन्य रेजिमेंट्स के साथ बुर्ज पर दुश्मनों को दोनों ओर से घेरने की योजना बना चुके थे। ऐसे में उन्हें अपने साथ मौजूद सभी सैनिकों पर पूरा भरोसा था। रेजिमेंट्स भी अपने साहस, पराक्रम और जज्बे का एक एक कतरा न्यूछावर करने को तैयार थे। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट जिनकी रग रग में दौड़ता है कर्तव्य, सम्मान और साहस, जो हर बार शत्रुओं को ये याद दिलाते हैं कि वो भारत की सबसे पुरानी लाइट इन्फेंट्री हैं, जिनके युद्ध घोष से ही शत्रु के हृदय में भय की झंकार होती है। उसी 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल थे हमारी आज की शौर्य गाथा के नायक सिपाही पांडुरंग सालुंखे, जो अपने साथियों के साथ मेजर रणबीर सिंह के नेतृत्व में पूरी तरह तैयार थे शत्रुओं पर हमला बोलने के लिए। 6 दिसंबर को बुर्ज पर हमला शुरू हुआ। बंकरों में छुपी शत्रु सेना के साथ मराठा पैदल सेना ने आमने सामने की लड़ाई की। यहाँ तक कि हमारी सेना ने कुछ स्थितियों में शत्रुओं से सीधे हथियार छीन दिए और उन्हें हराया। ये एक बेहद क्रूर और मुश्किलों से भरी लड़ाई थी, क्योंकि हमारे सैनिक शत्रुओं के मोर्चे पर जाकर उनसे सीधे लड़ रहे थे। इस बीच पीछे से टैंक और पैदल सैनिक भी उनकी मदद के लिए आ रहे थे। शत्रु बुरी तरह से बौखलाया हुआ था। एक ओर उस पर सीधा हमला जारी था और दूसरी ओर उसे अपनी हार नजर आने लगी थी। ऐसी बौखलाहट में अक्सर आक्रामकता बढ़ती जाती है। सिपाही पांडुरंग सालुंखे भी यहाँ शत्रुओं से दो दो हाथ कर रहे थे। तभी उनकी नजर शत्रुओं के एक ऐसी चाल पर पड़ी जिससे हमारी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। शत्रु ने एक रॉकेट लॉन्चर पैदल सेना के साथ आ रहे भारतीय टैंकों की ओर मोड़ दिया था। अनहोनी किसी भी वक्त हो सकती थी। सिपाही पांडुरंग सालुंखे शत्रु सेना से बुर्ज पर अपने साथियों के साथ भिड़ रहे थे। इसी बीच दुश्मनों ने रॉकेट लॉन्चर पीछे से आती पैदल सेना और भारतीय टैंक की ओर मोड़ दिया। एक पल में ही बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। जैसे ही सिपाही पांडुरंग ने रॉकेट लॉन्चर को देखा, बिना वक्त गवाए वो उस ओर दौड़ पड़े। सिपाही पांडुरंग सालुंखे ने शत्रु सैनिक के हाथ से रॉकेट लॉन्चर छीन लिया और उस शत्रु सैनिक को मार गिराया। लेकिन शत्रु उनके इस कारनामे से बौखला गया और सिपाही पांडुरंग सालुंखे पर स्टेन गन से धुआंधार वार किया। गोलियों की इस बौछार से सिपाही पांडुरंग सालुंखे वहीं शहीद हो गए। लेकिन उन्होंने अपने इस बलिदान से अपने कई साथियों की जान बचा ली। यही नहीं, उनके इस बलिदान के कारण ही बुर्ज पर भारतीय सेना का कब्जा हो सका।

सिपाही पांडुरंग सालुंखे ने जब बलिदान दिया तब वो मात्र 22 वर्ष के थे। इस छोटी सी उम्र में ही उन्होंने वो बड़ा काम किया जिनसे उनका नाम अमर हो गया। सिपाही पांडुरंग सालुंखे को उनकी इस असाधारण बहादुरी, अदम्य साहस और कर्तव्य निभाते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए मरणोपरांत देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

हम इस जांबाज सिपाही को नमन करते हैं। विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर निहाल शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: पर विविध भारती वाराणसी से प्रतिदिन रात्रि 10 बजे सुनिए फिल्म संगीत का लोकप्रिय कार्यक्रम छाया गीत। प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आइए सुनते हैं अब इस गीत को फिल्म सनम तेरी कसम से, आवाज किशोर कुमार की, गीत के बोल गुलशन बावरा के और संगीत आर डी बर्मन का।

0: हवा महल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं झलकी मोटी मछली। लेखक हैं वी एम आनंद और निर्देशक जयदेव शर्मा कमल।
1: मिस्टर भैरवीलाल, मिस्टर बीलाल,
2: यस सर।
1: जब से हमने ये वन टू ऑल डिपार्टमेंटल स्टोर खोला है, यहाँ पर मक्खियाँ ही मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। मक्खियाँ ही मक्खियाँ, मक्खियाँ ही मक्खियाँ,
2: मक्खियाँ मोमो मक्खियाँ। सर मैं आपको मतलब नहीं समझ।
1: मतलब तुम उस दिन समझोगे भैरवीलाल, जब इस स्टोर में ताले लग जाएंगे।
2: ऐसा ना करिएगा सर, ऐसा ना करिएगा।
1: बजाय इसके कि तुम लोग किसी कस्टमर से बात करो, किसी मोटे ग्राहक को भांसो, सारे दिन मक्खियां मारते रहते हो।
2: क्या करें सर, यहाँ पर कोई खास कस्टमर तो आता नहीं।
1: कस्टमर आता नहीं? अरे जब आता है तब तुम कौन सी तोप मार लेते हो। कस्टमर खाली हाथ चला जाता है, और खरीदता भी है तो 10-5 रुपए का। ऐसे कैसे काम चलेगा? क्यों मिस पाउडर वाला?
3: यस बॉस।
1: तुम सारा दिन अपना मेकअप और हेयर स्टाइल ठीक किया करती हो, कभी किसी कस्टमर को अटेंड करती हो?

0: सब कस्टमर अटेंड करता है सर, पर इधर कौन सा बड़ा कस्टमर आने ही मांगता है।
1: मिस पाउडर वाला कस्टमर वही बड़ा होता है जिसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, समझी तुम?
2: सर, जब से आपने हमें ये सिखाया है कि हर ग्राहक को अपना बाप समझो, तब से मैं हर ग्राहक को अपना बाप समझ रहा हूँ।
0: Yes sir, I also treat my every customer like my daddy.
1: लेकिन जिस डैडी की जेब न साफ की जाए वो डैडी कैसा? मेरा मतलब है अब से तुम हर ग्राहक को मछली समझो।
2: मछली?
0: You mean a fish?
1: Yes, हर ग्राहक को मछली समझो।
2: अच्छा।
1: और अपने आप को बगुला, जो ही मछली स्टोर में घुसे उस पर
2: झपट पड़ो।
1: राइट,
3: हम तो कहीं तक कसके पे पहुंच ले जाएंगे लोग पावर।
2: चुप सर, वेरी गुड आइडिया।
1: देखो, कस्टमर के सामने अपने माल की तारीफों के पुल बांधो और कस्टमर को किसी चीज की प्राइस डिस्कस करने का मौका मत दो, बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि उसको बोलने का मौका मत दो, उसको इंटरटेन करो, और फिर देखो कस्टमर कितना बड़ा ऑर्डर देता है तुमको।
0: रियली सर, इट इज अ वंडरफुल आइडिया। अब तो कोई भी कस्टमर इधर से बच के जाएगा ही नहीं सर।
3: जाए कैसे मैं
2: सर? Really, you are a brain.
0: Really, sir, you are a genius.
1: Customer, quiet. Customer, aaya hai.
0: Customer, na kahiye sir.
4: Wonderful. आपने बाहर बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ सुई से लेकर कार तक अच्छी मिलती है।
1: देखो भाई, आज इस ग्राहक से बड़ा ऑर्डर लेना है, आप लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में जाइए। आइए सर, आइए। खुशामदेद, वेलकम, स्वागतम। 1-2-all स्टोर हमने आपके लिए ही खोला है सर, यहाँ पर हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज मिलती है।
4: वेरी गुड। ऐसा पूछिए तो मुझे ऐसी ही दुकान की यानी ऐसे स्टोर की तलाश थी।
0: हाँ,
4: मुझे काफी चैन मिला। हाँ, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
1: सर आप फिक्र न करें, जो चीज आपको शहर में किसी दुकान पर नहीं मिलेगी वो आपको यहाँ मिलेगी, यानी कि सुई से लेके कार तक सर। और सर आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं सर, आप यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। सुनो, मछली फंस गई।
0: मोटी मछली?
1: जी, मेरा मतलब है मोटी मछली। वो आप देख रहे हैं सर, वो हमारे खिलौनों का डिपार्टमेंट, टॉयज डिपार्टमेंट।
4: योर मेन टॉयज डिपार्टमेंट?
1: जी हाँ सर, वहाँ पर हर तरह के खिलौने मौजूद है सर, और वहाँ पर एक मोटी मछली भी है।
4: You mean fat fish?
1: जी हाँ सर, फैट फिश। आइए ना, आपको हर डिपार्टमेंट की सैर कराई जाए। चलिए सबसे पहले हम वहीं चलते हैं, मिस पाउडर वाला।
0: Yes, good.
1: सबसे पहले हम वहीं चलते हैं।
0: Sure.
1: ये देखिए सर, ये है हमारा टॉयज डिपार्टमेंट। ये देखिए सर, ये भालू, भालू देखिए, भालू कितना सुंदर है। और ये कुत्ता देखिए सर, और ये सर कबूतर, और ये सर ये देखिए मोटी मछली है।
4: मोटी मछली? आई सी, इट्स अ रियली लवली फैट फिश।
1: सर ये मछली कितनी हैंडसम है, कितनी इनोसेंट है, बिल्कुल
2: आप की तरह।
1: सर ये देखिए,
4: आई लाइक इट वेरी मच।
1: थैंक यू। आपकी चॉइस बेमिसाल है सर। क्या मैं पूछ सकता हूँ सर कि आपके छोटे बच्चे की एज क्या है?
4: मेरा छोटा बच्चा?
0: Yes.
4: Oh, he is only 5 months old.
0: Oh, good.
1: Very good sir. तो फिर आप ये बच्चा गाड़ी जरूर पसंद करेंगे। सर हमारे पास बच्चा गाड़ी का नया स्टॉक आया है, ये देखिए, लेटेस्ट मॉडल, लेटेस्ट डिजाइन। क्या मैं पूछ सकता हूँ सर कि इन बच्चा गाड़ियों में से आपको कौन सी गाड़ी पसंद है?
4: अगर मुझसे पूछा जाए तो ये गाड़ी सबसे बढ़िया है।
1: वंडरफुल सर, वंडरफुल, योर चॉइस इज वंडरफुल। सर ये बच्चा गाड़ी ऑटोमेटिक है।
4: ऑटोमेटिक?
1: जी हाँ, यू समझिए कि जब आप और मेम साहब शाम को घूमने निकलेंगे तो साथ साथ ये बच्चा गाड़ी आप ही आप चलती जाएगी सर।
4: Wonderful. यानी कि अपने आप चलती जाएगी?
1: हाँ सर, देखिए वो बात यूँ है कि कभी आप बच्चा गाड़ी पकड़ेंगे तो मेम साहब साथ चलेंगी, कभी मेम साहब साथ चलेंगी तो आप बच्चा गाड़ी पकड़ेंगे, बस इस तरह से गाड़ी अपने आप

0: दी जाएगी सर।
1: ओ आई सी आई सी।
0: और ये देखिए सर, इस बच्चा गाड़ी में एक निपुल लटका हुआ है, जब भी बच्चा रोने लगे आप ये निपुल चूस सकते हैं। जी जी जी जी, मेरा मतलब है सर, ये बच्चे को निपुल चूसा सकते हैं सर।
1: ओ आई सी, वेरी गुड।
0: आइए साहब इस तरफ आइए। जी हाँ जी हाँ, यहाँ पर ये देखिए सर, ये हमारा कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट है सर, और इनसे मिलिए सर, ये हमारे कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट की इंचार्ज है, मिस पाउडर वाला।
2: गुड इवनिंग सर।
1: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
0: पाउडर वाला बी टैक्टफुल, ये बहुत बड़ा कस्टमर है। मोटी मछली,
1: मछली।
2: ओके बॉस। सर आप जरा हाथ आके देंगे?
1: यू मीन मैं अपना हाथ बढ़ाऊं?
2: यस सर, ये सेंट लगा रही हूँ आपके हाथ में, जरा सुनकर देखिए कैसा खुशबू है।
1: बहुत बढ़िया खुशबू है इसका।
2: सर ये सेंट काटा माटा जैस्मिन सेंट का है।
1: काटा माटा जैस्मिन सेंट?
2: यस सर, काटा माटा जैस्मिन सेंट का खुशबू है। सर जो भी कोई इस सेंट को लगाकर बाजार में जाएगा ना, सारी दुनिया उसके पीछे पीछे पागलों की तरह भागेगा। और सर ये देखिए, रॉक एंड रोल फॉक्स ट्रॉट पाउडर। सर ये पाउडर कोई ऑर्डिनरी पाउडर नहीं है, इस पाउडर को लगाकर सारा फिल्म इंडस्ट्री महकता है सर। फिल्म का डायरेक्टर, हीरो, हीरोइन, साइड हीरो, साइड हीरोइन, सब लगाता है सर, वन टू ऑल सब लगाता है, पता सर? नॉट ओनली दैट, इधर देखिए सर, ये पाउडर जो है ना, फिल्म का डायरेक्टर तो डायरेक्टर, ड्रामा डायरेक्टर, स्टेज डायरेक्टर, यहाँ तक कि रेडियो का डायरेक्टर भी इस्तेमाल करता है सर। फिर आप क्यों नहीं यूज करेगा? करेगा ना। और सर ये देखिए, ओडो कॉमन शैम्पू, इस शैम्पू से आपका सर का बाल एकदम मुलायम हो जाएगा सर।
1: लेकिन ये शैम्पू,
2: समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया, आप ये शैम्पू लेकर क्या करेगा? आई एम सॉरी सर, ये शैम्पू आपके लिए नहीं है, आपका मेम साहब के लिए है। आई नो सर, आप तो सिर का गंजा है।
0: ओ मिस पाउडर वाला, तुम साहब को गंजा कहती हो? डोंट यू नो ए कस्टमर इज नेवर गंजा।
2: आई एम सॉरी सर।
0: इट्स ऑल राइट सर, आई एम वेरी सॉरी सर, वो मुझे बड़ा अफसोस है कि इसने आपको गंजा कहा सर।
1: डजंट मैटर, डजंट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
0: बात क्यों नहीं सर, बात क्यों नहीं है? अगर देखा जाए सर तो आप गंजे नहीं है सर, मेरा मतलब आप गंजे लगते जरूर है मगर आप गंजे है या नहीं, लेकिन फिर भी आपके सर पे बाल है, मतलब बाल नहीं है लेकिन फिर भी बाल है, लेकिन नहीं है लेकिन है, मेरा मतलब आपके सर पर थोड़े थोड़े बाल है। आई थिंक नाउ यू नीड दिस शैम्पू।
1: व्हाई नॉट, व्हाई
0: नॉट। और सर इनसे मिलिए, ये हमारे म्यूजिकल डिपार्टमेंट के इंचार्ज है, मिस्टर भैरवी लाल, यानी कि मिस्टर बी लाल।
3: गुड इवनिंग सर।
1: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
3: ये देखिए सर, हमारे पास तरह तरह के नए से नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी हर साज यहाँ मौजूद है, हर साज यहाँ पर बिकता है। हुजूर आप कौन सा साज बजाने का शौक रखते हैं? मेरा मतलब है बेंजो, गिटार, सारंगी, तानपुरा, तबला, ढोलक।
1: मुझे आई मीन हर साज बजाने का शौक है, इट्स माय हॉबी।
3: वंडरफुल सर, वंडरफुल। वो तो हुजूर के चेहरे से नजर आ रहा है कि हुजूर को हर साज बजाने का शौक है। और हुजूर को रिकॉर्ड सुनने का भी तो शौक होगा।
1: व्हाई नॉट, व्हाई नॉट।
3: तो सर आप ताल, कहरवा, भैरवी, पाड़ी ख्याल, मैदानी ख्याल, तीन ताल, चार ताल, नैनीताल, मल्ली ताल पसंद करेंगे, या दादरा ठुमरी गजल के रिकॉर्ड पसंद करेंगे, या फिर आप फिल्मी गाने?
1: झुमका गिरा रे पप्पा रे
3: चौक, जैसा कि कल जो मेरा चौपाटी पर
1: आग मटका होई गवा हो,
2: अखिया मिला के जिया भर मा के चले नहीं जाना, चले नहीं जाना, चले नहीं जाना।
1: चुप रहिए,

0: मुझे आई मीन सिर्फ कथकली के रिकॉर्ड पसंद है।
1: कथकली? लेकिन सर कथकली तो नाच का नाम है, किसी गवैये का नाम तो नहीं सर।
2: भी लाल, डोंट यू नो ए कस्टमर इज ऑलवेज राइट, कस्टमर जो कहता है ठीक कहता है।
1: नो सर, नो सर, आई मीन यस सर, आप ठीक कहते हैं। कथकली हमारे देश की एक मशहूर गायिका है। कथकली ने सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब नाम कमाया है। उसके गले में क्या दर्द है, मेरा मतलब है गले में क्या आवाज है, आवाज में क्या दर्द है, दर्द में क्या कसक है, कसक में क्या जादू है। कथकली का गाना सुनते ही आंखों में पसीना और माथे पर आंसू, मेरा मतलब है आंखों में आंसू और माथे पर पसीना आ जाता है।
2: मिस्टर भैरवीलाल साहब हमारे स्टोर में पहली बार तशरीफ लाए हैं, इनके लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक लाओ। आप तशरीफ रखिए सर, मैं भी मंगवाता हूँ
1: कोल्ड ड्रिंक।
2: सुनो सुनो सुनो,
3: इनके लिए मैंगो
1: जूस,
2: मैंगो जूस लाओ।
1: मैंगो जूस, जाओ जल्दी, जाओ जल्दी
2: सर। ये लिए सर, आप मैंगो जूस पीजिए सर।
0: मैंगो जूस,
2: आप तो शर्मिंदा करते हैं सर। आप जैसे वैल्यूबल कस्टमर्स को एंटरटेन करना हमारी ड्यूटी है सर। आपकी ये सेब खाइए सर, आप ये नाशपाती खाइए, नाशपाती।
0: भाई आप मजबूर का तो खाना ही पाएगा।
2: इट्स अ प्लेजर सर। देखा भैरवी लाल कितना बड़ा ग्राहक फंसा है आज।
1: ग्राहक ना कहिए सर, मोटी मछली।
2: भैरवी लाल आज उस ग्राहक से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है।
1: ये सब आपके टैग का नतीजा है सर।
2: सर तो फिर आप अपना ऑर्डर नोट करा दीजिए सर।
4: ये सर
0: बात ये है कि मैंने अभी तो आपका सारा स्टोर देखा था। आपने बाहर बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ सुई से कार तक।
2: यस सर, यू आर राइट, सुई से कार तक।
0: हाँ तो आपका वो सुइयों का डिपार्टमेंट किधर है?
4: व्हाट,
2: सुइयों का डिपार्टमेंट? सर वो तो हमने यही लिख रखा था, सुइयां हमारे पास नहीं है सर। आप तो मजाक कर रहे हैं।
0: लेकिन मुझे तो सिर्फ एक पैकेट सुइयों का चाहिए।
2: जी, एक पैकेट सुइयों का चाहिए, सुइयों का पैकेट।
0: आपने बेकार मेरा टाइम वेस्ट कर दिया।
2: अच्छा मैं चला।
4: अरे लेकिन सर सुनो, चले गए, चले गए।
5: मोटी मछली, वीएम आनंद की लिखी ये झलकी अभी आप सुन रहे थे हवा महल कार्यक्रम में। इसके निर्देशक थे जयदेव शर्मा कमल। ये थी आकाशवाणी इलाहाबाद की भेंट।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म धुरंधर द रिवेंज से, आवाजें खान साहब और शासत सचदेव की थी। गीत के बोल नुसरत फतेह अली खान के और संगीत शासत सचदेव और नुसरत फतेह अली खान का।

गीत आपने सुना फिल्म सितारे ज़मीन पर से, आवाज़ें अरिजीत सिंह और शरीबा पारुलकर की थी, गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म धड़क 2 से, आवाज अरिजीत सिंह की थी। गीत के बोल सिद्धार्थ गरिमा के और संगीत श्रेयस पुराणिक का।

श्रोता गीत आपने सुना फिल्म बागी 4 से, आवाज जोश ब्रार की थी। गीत के बोल परंपरा टंडन के, संगीत कुमार और जोश ब्रार का था।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: थोड़ी देर में समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल हैं।
6: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है।

0: नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
0: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए
2: भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
2: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
2: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
3: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: Daily Law के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दो स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7,00,000 पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार का

0: से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, सबके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या शून्य सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने के 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्किन ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई 6 अरब डॉलर की धनराशि ईरान को वापस कर दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय

ये आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: also mark their return to the Pro League next season. Lalrem Siami was awarded the player of the match, while Deepika finished as the joint top scorer with 6 goals to her name. Prime Minister Narendra Modi has congratulated the Indian team on their win and praised them for their exceptional performance throughout the tournament. Hockey India has announced a cash award of 3 lakh rupees for each player and 1.5 lakh rupees for each member of the support staff. In cricket, India A defeated host Sri Lanka by 66 runs in the summit clash of the Tri-Nation A series in Dambulla today. Put into bat, India A posted 377 runs for the loss of 9 wickets in the stipulated 50 overs. Indian teenage sensation Vaibhav Suryavanshi smashed a half century in just 11 balls before striking 94 in just 29 balls. In reply, Sri Lanka were bowled out for 311 in 47.1 overs. And in women's cricket, India were 19 for no loss in 4 overs against South Africa in a Group A match of the ICC T20 World Cup in Manchester when reports last came in. India won the toss and opted to bat first. This match marked a major milestone for Captain Harmanpreet Kaur, who became the first cricketer, male or female, to play 200 T20 internationals. The 19th Mumbai International Film Festival 2026 concluded today, bringing down the curtains on a 7-day celebration of non-fiction cinema. The closing ceremony was held at Mumbai's Ravindra Natya Mandir in the presence of Maharashtra Governor Jishnu Dev Verma, Additional Secretary in the Ministry of Information and Broadcasting, Prabhat, and other dignitaries. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi asserts strong maritime capabilities key to country's economic and strategic influence, commissions 3 indigenous naval warships in Kolkata. NEET re-examination for admission to undergraduate medical courses conducted amid tight security arrangements. In Tamil Nadu, 7 people killed and over 70 affected in ammonia gas leak at a seafood export company in Periyapalayam. US-Iran talks underway in Switzerland to strengthen the interim government and consolidate efforts to end the West Asia conflict. IMD forecasts extremely heavy rainfall in Arunachal Pradesh, Assam, Sikkim and sub-Himalayan West Bengal till Saturday. Indian women hockey team lift FIH Nations Cup, defeating host New Zealand 2-0 in final. And in cricket, India lift the Tri-Nation A series, beating host Sri Lanka by 66 runs in the final. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मजबूत बहरी सलाहियतें मुल्क के इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक असर और रसूख के लिए निहायत अहम हैं। उन्होंने कोलकाता में मुल्क में ही तैयार किए गए 3 बहरी जंगी जहाजों को पानी में उतारा। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट का दोबारा इम्तिहान आज सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान मुनक्किद किया गया। तमिलनाडु के पेरियापलायम में समुद्री खुराक फराहम करने वाली एक कंपनी में अमोनिया गैस के अखराज के 22 7 अफराद हलाक और 70 से ज्यादा जख्मी हो गए। अमरीका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में मुजाकरात जारी है, जिसका मकसद अबूरी मुआहदे को मजबूत बनाना और मगरबी एशिया के तनाजे के खात्मे की कोशिशों को मुस्तहकम करना है। भारतीय महकमे मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम और मगरबी बंगाल के जेली हिमालयी खित्ते में हफ्ते तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने फाइनल में मेजबान न्यूजीलैंड को 0 के मुकाबले 2 गोल से हराकर FIH नेशंस कप जीत लिया है। और क्रिकेट में भारत ने फाइनल में मेजबान श्रीलंका को 66 रन से हराकर 3 मुल्कों की ए सीरीज जीत ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जदीद दुनिया में समुद्री ताकत की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि मजबूत बहरी सलाहियतें किसी भी मुल्क की इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक असर और रसूख का फैसला कुन उंसुर होती हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस हकीकत को बखूबी समझता है और इसी के मुताबिक वो अपनी तैयारी कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर मुल्क में ही डिजाइन और तैयार करदा भारतीय बहरिया के 3 जंगी जहाजों को पानी में उतारा। इनमें जदीद स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, अहम सर्वे जहाज INS संशोधक और आबदोज शिकन जंगी सलाहियत से लैस कम गहरे पानी का जहाज INS

0: अग्र शामिल हैं। वजीर आज़म ने कहा कि इन जहाजों की तैयारी में 200 से ज्यादा एमएसएमईज ने हिस्सा लिया, जिससे मुल्क भर में रोजगार के मौके पैदा हुए और माशी सरगर्मियों को फरोग मिला।
1: आईएनएस विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। आज आईएनएस अग्रय, आईएनएस दुनागिरी और आईएनएस संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं। ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं।
0: अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए अहलियत और दाखिले से मुतालिक कौमी इम्तिहान नीट यूजी 2026 आज सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान दोबारा मुनाकिद किया गया। इम्तिहानात का इनेकाद करने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने कहा है कि मुल्क भर के 5,440 इम्तिहानी मराकज और बैरून मुल्क के 14 मराकज पर होने वाले दोबारा इम्तिहान में 20 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की। अंग्रेजी और हिंदी समेत 13 जबानों में मजकूरा इम्तिहान का इनेकाद किया गया। एनटीए ने कहा कि 10,000 से ज्यादा माजूर अफराद समेत तमाम उम्मीदवारों के लिए वसी इंतजाम किए गए थे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: इम्तिहानात के तमाम मराकिस पर आधार पर मबनी बायोमेट्रिक और चेहरे की शिनाख्त, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर्स और रियासती पुलिस की मदद से दो सतही जांच जैसे सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए। सीसीटीवी निगरानी के लिए एनटीए हेडक्वार्टरों, वजारत तालीम, महकमे आला तालीम के तहत मरकज की मुआवनत से चलने वाले 34 इदारों के साथ साथ तमाम रियासतों और जिला कलेक्ट्रेट में कमान और कंट्रोल सेंटर कायम किए गए थे। इम्तिहानात का इनेकाद मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्स, उमूर खारजा की वजारत, महकमे डाक, भारतीय फिजाइया और वजारत दाखिला समेत दीगर इदारों की मदद से किया गया। मुख्तलिफ रियासती हुकूमतों ने भी तलबा और वालदेन के लिए इंतजाम किए। इनमें इम्तिहान के मराकज पर धूप से बचने के लिए इंतजाम, पीने का पानी, खाना, एम्बुलेंस और जरूरी तिब्बी सहूलियात शामिल थी। आकाशवाणी से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: सीबीएसई ने 12वीं जमात की तस्दीक और दोबारा जांच के नतीजे मरहलावार जारी करना शुरू कर दिए हैं। आज मौसूल होने वाली दरखास्त में से 87% से ज्यादा नतीजे का ऐलान कर दिया। बोर्ड ने कहा कि बाकी नतीजे भी जल्द अज जल्द जारी दिए जाएंगे और तलबा से अपील की है कि ताज़ा मालूमात के लिए सिर्फ सीबीएसई के सरकारी ज़राए और डिजी लॉकर से ही राब्ता करें। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में आज समुद्री खुराक बरामद करने वाली एक कंपनी में अमोनिया गैस के अखराज के 22 कम से कम 7 अफराद हलाक और 70 से ज्यादा वर्कर्स जख्मी हो गए। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हिलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है क्योंकि इमदादी और तिब्बी कार्रवाइयां जारी हैं। आफात की सूरत में काम करने वाली कौमी फोर्स एनडीआरएफ और केमिकल हयातियाती और न्यूक्लियाई खतरात से निमटने वाली खसूसी टीमों ने फौरी तौर पर बचाव की कार्रवाई शुरू की और सख्त हिफाजती जवाबित के तहत गैस के अखराज पर काबू पाने की कोशिश की। वजीर आला सी जोसेफ विजय ने हादसे की आला सतही तहकीकात का हुक्म दिया है और 3 रुकनी कमेटी को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि मजकूरा वाकये की जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर आला ने महलुकीन के अहले खाना के लिए 2-2 लाख रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में समुद्री खुराक की बरामदाती इकाई में अमोनिया गैस लीक होने के वाकये में जानी नुकसान पर ताजियत का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब राधा कृष्णन और जनाब मोदी ने मुतासरा खानदानों के तई अपनी ताजियत का इजहार किया और जेर इलाज जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। योग का बैन अवी दिन आज दुनिया भर में मनाया गया। इसकी मरकजी तकरीब वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में कोलकाता के रेड रोड में मुनद हुई। वजीर आजम ने इस तारीखी तकरीब गाह पर हजारों शोरका के साथ योग किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम ने जोर दिया कि योग जहन को तंदुरुस्त रखने से लेकर जिस्म को सेहतमंद बनाने तक की राहें हमवार करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका

0: बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है।
1: इस साल के योग के बैनुल अक्वामी दिन के मौजू सेहतमंद बुढ़ापे के लिए योग पर रोशनी डालते हुए वजीर आजम ने कहा कि योग महज जिस्मानी वर्जिश नहीं है और न ही ये उम्र के किसी तबके तक महदूद है, बल्कि ये एक इंसानी जज्बे का इजहार है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में गैरिसन ग्राउंड में योग किया। उन्होंने कहा कि योग भारत की अजीम रिवायत का जश्न है और इसने इंसानियत को सेहतमंद, मुतवाजिन और बावानी जिंदगी का रास्ता दिखाया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत 2026 की ब्रिक्स की अपनी सदारत के तहत इस महीने की 25 और 26 तारीख को हरियाणा के गुरुग्राम में ब्रिक्स मुल्कों के तवानाई के वजीरों की 11वीं मीटिंग की मेजबानी करेगा। मीटिंग में तीन अहम तरजीहात, तवानाई की यकीनी फराहमी और पायदारी, तवानाई तक मसावी रसाई, नीज टेक्नोलॉजी और इख्तरा पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ब्रिक्स के तमाम 11 रुकन मुल्कों के तवानाई के वजरा और सीनियर हुकाम इस मीटिंग में शिरकत करेंगे ताकि तवानाई की यकीनी फराहमी, पायदारी और जिद्दत तराजी के शोबों में बाहमी तआवुन को मजीद मुस्तहकम किया जा सके। ये मीटिंग भारत को आलमी खित्ते जनूब की तरजीहात को आगे बढ़ाने और एक जामे आलमी तवानाई मुस्तकबिल की तश्कील में अहम रोल अदा करने का मौका फराहम करेगा। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजाद तिजारती मुआहदा इस साल के दिसंबर तक होने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि मुआहदे के अगले बरस फरवरी और मार्च के दरमियान नाफिज होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इस मुआहदे से भारतीय कारोबारियों को यूरोपीय बाजार तक तकरीबन सिफर दरामदी ड्यूटी के साथ रसाई हासिल होगी। मगरबी एशिया तनाजे को खत्म करने की कोशिशों को आगे बढ़ाने और अबूरी मुआहदे को मजबूत बनाने की खातिर आज स्विट्जरलैंड के बर्गिन स्टॉक में अमरीका और ईरान के दरमियान मुजाकरात शुरू हो गए। अमरीकी वफद की क्यादत अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरानी वफद की क्यादत स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ और वजीर खारजा अब्बास इराकची कर रहे हैं। इस मुजाकरात में कतर और पाकिस्तान सालसी का रोल अदा कर रहे हैं। ये बातचीत ऐसे वक्त हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइली हमलों के जारी रहने के बायस दोबारा आबनए हुरमुज को बंद करने का ऐलान किया था। ताहम अमरीकी फौज के मुताबिक ये अहम आबी गुजरगाह अब भी तमाम बहरी जहाजों के लिए खुली हुई है। ईरानी हुकूमत के मुताबिक अमरीका, कतर और पाकिस्तान के साथ मुजवजा चार फरीकी मुश्तरका मुजाकरात से कबल बातचीत करने वाली टीम ने बर्गिन स्टॉक में कतर के सालसों के साथ बातचीत की। चार फरीकी मुजाकरात से पहले अमरीकी वक्त ने भी पाकिस्तान की सालसी टीम से मुलाकात की। गुज़श्ता हफ्ते जारी किए गए 14 निकाती समझौते की पहली शिक तमाम महाजों पर जंगबंदी का मुतालबा करती है, जिसमें लेबनान भी शामिल है, जहां इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान लड़ाई में हालिया दिनों में शिद्दत आ गई है। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा ने आज जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को जयपुर से झंडी दिखाकर रवाना किया और खाटीपुरा में अहम कोचिंग टर्मिनल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नया टर्मिनल रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजीद मजबूत बनाएगा और मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात फराहम करेगा। भारत के महकमे मौसमियात आईएमडी ने इस महीने की 27 तारीख को आसाम और मेघालय में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल के हिमालयी इलाकों और सिक्किम में भी इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु और तेलंगाना समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी अगले 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। आईएमडी ने दिल्ली और दीगर रियासतों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की भी पेशगोई की है, जबकि मध्य प्रदेश, शुमाली उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और विदर्भ के अलग अलग इलाकों में इस महीने की 25 तारीख तक शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। हॉकी में भारत ने FIH खवातीन के नेशंस कप में न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर खिताब जीत लिया और खवातीन की प्रो लीग में अपनी जगह यकीनी बना ली। नवनीत कौर और सुनीलिता टोप्पो ने भारत की तरफ से गोल किया। पूरे टूर्नामेंट में भारत नाकाबिले शिकस्त रहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये जीत नौजवान खिलाड़ियों को हॉकी को अपनाने की तरगीब देगी। क्रिकेट में श्रीलंका

के दामबोला में तीन मुल्कों की सीरीज में आज भारतीय ने मेजबान श्रीलंका को 66 रन से शिकस्त दी। भारतीय ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्रर 50 ओवर में 9 विकेट पर 377 रन बनाए। भारतीय ने पहले विकेट की शराकतदारी में शानदार 130 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 11 गेंदों में हाफ सेंचुरी बनाई और सिर्फ 29 गेंदों में 94 रन बनाए। श्रीलंका ए के लिए कोगाथास मेथुलन, रविंद्र फर्नांडो और वनुजा सहान ने दो दो विकेट हासिल किए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 47 ओवर्स एक गेंद में 311 रन बनाकर आउट हो गई। दौड़ते मुश्तरका खेलों के लिए मुंतखब भारतीय मुक्केबाजों ने चेक जमहूरिया के उस्ती नाथ लाभेम शहर में मुनक़िदा 56वें ग्रां प्री में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसी बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: वैसे आपको बता दें, टॉम ऑल्टर ने हाल ही में एक लेख में बताया था कि उनके जो परदादा थे वो ओहायो यूनाइटेड स्टेट्स से सन 1916 के जमाने में भारत में आए थे और उसके बाद भारत में उनका परिवार अलग अलग जगहों पर रहा। टॉम ऑल्टर के पिता इलाहाबाद के इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाया करते थे। इसके बाद वो सहारनपुर की एक सेमिनरी में पढ़ाने लगे थे। बाद में उनके माता पिता ने राजपुर में एक आश्रम शुरू किया था जिसका नाम था मसीही ध्यान केंद्र। फिर जबलपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर राजपुर में रहने के बाद देहरादून और फिर वो मसूरी में जाकर बस गए।
1: मैं जल्दी से एक बात बताता हूँ, अमर प्रेम दिल्ली में लगी थी, हम मसूरी में थे उस टाइम, तो मसूरी में फिल्में बहुत बाद में लगती हैं, पहले देहरादून आती है फिर धीरे धीरे मसूरी आ जाती है। तो हम लोग रात की बस पकड़ के मसूरी से रात का सफर करके दिल्ली गए थे ये फिल्म देखने के लिए, अमर प्रेम, मुझको याद है। 3 बजे का शो देखकर फिर थोड़ा सा खाना वाना खा के वापस आकर हमने ये 6 बजे का शो देखा, फिर रात वाली बस से हम वापस आए मसूरी। तो ये अमर प्रेम से इतना हमारा अमर प्रेम था उस टाइम। तो इस फिल्म के भी गाने मतलब एक के बाद एक सब सुपरहिट थे और बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन एक जो गाना है जो जिसका इस फिल्मी दुनिया से एक खास ताल्लुक है वो मैं पेश करना चाहूंगा। उस गाने का नाम है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान।
1: सदमा न पहुंचे कोई मेरे जिस्म-ए-ज़ार पर, आहिस्ता फूल डालना मेरे मजार पर। हर चंद खाक में था मगर ता फलक गया, धोखा है आसमान का मेरे गुबार पर।
0: ये थे थॉमस बीच ऑल्टर, जिनका जन्म 22 जून 1950 को मसूरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। दरअसल टॉम ऑल्टर एक अमेरिकन क्रिश्चियन मिशनरीज के बेटे थे। बचपन का उनका समय हिमालयन हिल स्टेशन लैंडोर में बीता था।

बचपन से ही चूंकि उत्तर प्रदेश के इलाकों में रहना हुआ तो उनकी हिंदी बहुत ही अच्छी थी। मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल में अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद टॉम अमेरिका चले गए थे, तब उनकी उम्र 18 साल की थी। एक साल तक वो येल यूनिवर्सिटी में रहे। 19 बरस की उम्र में टॉम टीचर बनकर आ गए जगाधरी हरियाणा में। ये वो दिन थे जब वो टीचर तो थे ही एक स्कूल में जिसका नाम सेंट थॉमस स्कूल था, लेकिन चूंकि स्पोर्ट्स से उनका गहरा लगाव था तो वो वहां बच्चों को क्रिकेट भी सिखाया करते थे। 2.5 बरस तक टॉम ऑल्टर जगाधरी में रहे। इसके बाद वो उसी स्कूल में चले गए जहां उनकी खुद पढ़ाई लिखाई हुई थी, यानी मसूरी का वुडस्टॉक स्कूल। यहां भी उन्होंने थोड़े दिन पढ़ाया। जब वो जगाधरी में रह रहे थे तब हिंदी फिल्मों से उनका ज्यादा लगाव हुआ। इसी दौरान उन्होंने आराधना फिल्म देखी।

0: ये फिल्म उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने एक हफ्ते में 3 बार इसे देख डाला। यहां से टॉम ऑल्टर की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उन्होंने सोचा कि वो फिल्मों में काम करेंगे। इसके तकरीबन 2 बरस के बाद टॉम ऑल्टर फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी पुणे में एक्टिंग का डिप्लोमा लेने के लिए आ गए। सन 1972 से 1974 तक वो पुणे में रहे।
1: मैंने सन 72 में फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और एक्चुअली इस जगत का सफर तब शुरू हुआ था सन 72 से। 2 साल वहां रहा मैं पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में, बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा लिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर 74 में मैं यहाँ आया था, मेरे ख्याल से मई का महीना था, और मैं अपनी मोटरसाइकिल पर पुणे से बम्बई आया था। मुझको याद है, अच्छी तरह याद है, जेब में 44 रुपए थे और एक पुरानी मोटरसाइकिल थी मेरे पास, उसके अलावा सपनों के अलावा कुछ नहीं था मेरे पास। ये सपनों का सफर तब शुरू हुआ था। काफी तकलीफें भी झेलनी पड़ी, आज भी झेल रहा हूँ, बट एक संघर्ष जो है ना, ये बहुत जरूरी है हर आदमी के जीवन में, और संघर्ष आज भी जारी है और एक मजेदार संघर्ष है।
0: टॉम ऑल्टर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो राजेश खन्ना बनना चाहते थे, वो एक रोमांटिक हीरो बनना चाहते थे। हालांकि फिल्मों में उनका जो करियर रहा वो बतौर हीरो नहीं बल्कि बतौर चरित्र अभिनेता रहा। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी।
1: राज कपूर की एक बहुत ही मशहूर फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, फिल्म मैंने मंदाकिनी के ब्रदर का रोल किया था, एक पहाड़ी आदमी है, वो भी हिंदुस्तानी रोल, और ये जुनून से बहुत पहले। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, लोग जल्दी भूल जाते हैं, खैर कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं है। वो रोल मुझे बहुत बहुत पसंद आया क्योंकि वो अपनी जान की कुर्बानी देता है अपनी बहन के लिए, तो वो एक रोल था। फिर एक फिल्म आई थी शतरंज के खिलाड़ी, मिस्टर सत्यजीत रे की, उसमें मैंने अंग्रेज का रोल किया था जरूर, लेकिन उस अंग्रेज को शेरो शायरी में दिलचस्पी थी और हिंदुस्तान से बेहद प्यार था और उर्दू में बात करता था वो, तो वो बहुत ही एक दिलचस्प किरदार था शतरंज के खिलाड़ी में।
2: वी आर मोस्ट ग्रेटफुल टू हिज मैजेस्टी फॉर ग्रांटिंग अस दिस इंटरव्यू।
3: इस मुलाकात के लिए हम सुल्तान आलम के बेहद शुक्रगुजार।
2: We also appreciate his gesture in disarming his soldiers.
3: हम फौजियों की उनकी अच्छी कदर करते हैं।
2: We regard it, we hope rightly, as evidence of his concern to negotiate a peaceful conclusion for the treaty.
3: हम समझते हैं अली जा अहदनामे के बारे में दोस्ताना बातचीत के लिए तैयार है।
2: I would like, if I may, to add a personal request to His Majesty that he please sign this treaty and formalize his abdication.
3: हमारी दरखास्त है सुल्तान आलम अहदनामे पर दस्तखत फरमा के अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो जाएं।
2: His Majesty shall have a maximum of 3 days for deliberation.
3: इस मसले पर फरमाने के लिए सुल्तान आलम को ज्यादा से ज्यादा 3 दिन की मोहलत मिलेगी।

0: after which the company will assume the administration of Oud.
1: बाद इस मुद्दत के कंपनी बहादुर अवध का सारा इंतजाम अपने हाथ में ले लेगी.
0: I hope the king has understood what I've said.
1: हमने जो कुछ कहा है उम्मीद है सुल्तान आलम समझ गए होंगे.
0: What is this? You please tell His Majesty that I have no use for that.
1: ये रेजिडेंट साहब की किसी काम की नहीं है.
2: आप हमारी दस्तार तो ले सकते हैं रेजिडेंट साहब, दस्तखत नहीं ले सकते.
3: और अब जहां तक हिंदी या हिंदुस्तानी का सवाल है, मैं तो मेरी पैदाइश तो मसूरी के है, यूपी की है. जिस जमाने में मेरी पैदाइश हुई यूपी के उस इलाके में लोग या तो हिंदुस्तानी में बात करते थे या तो उर्दू में. हिंदी तो उस इलाके में बाद में आई. मैं वेस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूँ, मसूरी देहरादून की बात कर रहा हूँ. बचपन में मेरे वालिद साहब उर्दू लिखते भी थे, पढ़ते भी थे, बात भी करते थे उर्दू में. तो शुरू से मेरे अंदर एक बहुत ही एक दिलचस्पी रही, एक शौक रहा उर्दू सीखने का. हिंदी तो हमने स्कूल में सीखी थी. तो मैं जब पूना आया था सन 72 में फिल्म इंस्टीट्यूट में, मैंने कहा मैं इस शौक को अब मतलब उसको एक अंजाम भी दूं. मेरे एक दोस्त वहां बने मोहम्मद रफीक, तो उन्होंने मुझको उर्दू सिखाना शुरू किया पूना में दो साल तक. फिर मैं यहाँ आया तो मेरी खुशनसीबी ये रही कि उस्ताद जालिब साहब से मेरी एक मुलाकात हुई. बहुत जाने माने उस्ताद थे उर्दू के, उनका इंतकाल हुआ कुछ 6-7 साल पहले. तो 5 या 6 साल तक मुसलसल मैं जालिब साहब के साथ उर्दू सीखता रहा. और जालिब साहब के बारे में इस वक्त कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ही जज्बाती मामला है, लेकिन अगर कुछ हद तक मुझको उर्दू आती है वो सिर्फ जालिब साहब की वजह से. लेकिन उर्दू का शौक मेरे अंदर इसलिए आया क्योंकि मेरे फादर बोलते थे, लिखते थे, पढ़ते थे उर्दू.
4: अच्छा.
3: और उस जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि यूपी के उस इलाके में जहां मेरी परवरिश हुई उस जमाने में उर्दू या हिंदुस्तानी जबाने चलती थी, हिंदी बाद में आई. शकील बदाउनी एक शेर है, अगर वो बहुत ही जाने माने शायर थे, उन्होंने लिखा कि शकील दिल हूं मैं हूं मोहब्बतों का राजदान, मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं. यानी कि शायरी और जिंदगी अगर जुदा यानी कि अलग अलग रहे तो तब आदमी शायरी नहीं कर पाता. शायद शायरी लिख पाता लेकिन कर नहीं पाता.
5: आज के इस कार्यक्रम में आप टॉम ऑल्टर की जो रिकॉर्डिंग सुन रही हैं वो बहुत बरस पहले विविध भारती के एक इंटरव्यू के दौरान कही गई बातें हैं.
3: उस तरह से एक और फिल्म का नाम लूंगा मैं जरूर, उसका नाम था चमेली मेम साहब, जिसमें मेरा हीरो का रोल था. वो भी बहुत ही सिंपथेटिक रोमांटिक बहादुर इंसान था वो. तो मुझे वो रोल शायद सबसे ज्यादा पसंद है. वो फिल्म भी पसंद है लेकिन वो रोल मुझे बहुत पसंद है. और वो जो हीरो का रोल था वो मुझको उस फिल्म के अलावा बस और एक फिल्म में मिला था हीरो का रोल, जो कभी कंप्लीट नहीं हुई थी फिल्म. तो मेरी जो तमन्ना थी ना, जो एक मसूरी से लेकर जो मैं तमन्ना लेकर यहाँ बम्बई आया था, उस फिल्म में जाकर वो तमन्ना जो है वो पूरी.
5: फिल्म क्रांति में उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर का रोल किया था.

0: सिर्फ इस मुल्क ही पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर होगा। इसलिए मौजूदा हालात को देखते हुए और आप सब लीडरों के साथ बात करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द सौंप दी जानी चाहिए आपके हाथ में। हमें पूरी उम्मीद है कि आपके इन फैसलों से पैदा होने वाले हालात को संभालने के लिए आप सब तैयार होंगे।
1: टॉम ऑल्टर न केवल फिल्मों में सक्रिय थे बल्कि बरसों बरस तक वो टेलीविजन के लिए भी काम करते रहे।
2: प्रोफेशनली मैं सबसे पहले सिनेमा से जुड़ गया था क्योंकि उस टाइम में टेलीविजन था लेकिन बस उसको ज्यादा उसकी ज्यादा अहमियत नहीं थी। तो और हम आए थे बंबई में फिल्मों में काम करने के लिए, टेलीविजन में काम करने के लिए नहीं, या नहीं तो थिएटर में काम करने के लिए। तो सिनेमा से मैं जुड़ गया था और एक सपना था हीरो बनने का फिल्मों में, और कुछ एक छोटी सी हद तक वो सपना साकार भी हुआ। लेकिन आज भी, हालांकि टीवी में बहुत काम करता हूं मैं और टीवी से मुझे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन आज भी मैं अपने आप को फिल्म आर्टिस्ट मानता हूं। प्रेफरेंस में रखना बहुत मुश्किल है। प्रोफेशनल तौर पे तो टीवी को मैं ज्यादा पसंद इसलिए करता हूं कि टीवी में एक मुसलसल आपको काम मिलता रहता है, और अगर आपकी सीरियल हिट हो गई तो जिस तरह जुनून हिट हो गया है, 5 या 5.5 साल तक लगातार आप एक ही किरदार को निभा रहे हैं तो बहुत उसमें मजा आता है। तो प्रोफेशनली आजकल मैं टीवी को ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन जो एक मजा आता है काम करने में, या जब आपकी पिक्चर हिट होके रिलीज हो जाती है या रिलीज होके हिट हो जाती है, वो जो मजा है जब आपकी पिक्चर हिट हो जाती है और लोग, मतलब बेशुमार लोग थिएटर हॉल में जाते हैं आपकी फिल्म देखने के लिए, तो वो जो मजा है वो सिर्फ सिनेमा में है, वो टीवी में नहीं है। तो उसका एक अलग मजा है फिल्मों का। और जहां तक थिएटर का सवाल है, वो एक नॉन प्रोफेशनल तौर पे मुझे थिएटर बेहद पसंद है क्योंकि थिएटर में आराम है, फुर्सत है, कोई जल्दी नहीं है, और एक चीज को आप बाकायदा 3-4 महीने तक रिहर्सल कर सकते हैं, उसके बाद आप पेश कर सकते हैं, ऑडियंस भी सामने बैठे हैं। तो हर चीज का एक अलग पहलू है, हर एक अलग मजा है। तो प्रोफेशनली जिस तरह मैंने कहा, शायद प्रेफरेंस में टीवी को दूं, और जहां तक मजे का सवाल है तो शायद प्रेफरेंस को मैं सिनेमा को दूं, और जहां तक पर्सनल एक तसल्ली या सेटिस्फेक्शन का सवाल है तब मैं शायद प्रेफरेंस दूं थिएटर को।
3: तो आपने उसे अपने ही साये के घटने बढ़ने से परेशान कर दिया।
0: अब और क्या करते हुजूर, क्या है कि वहां से निकलने का रास्ता में और कोई मिल नहीं रहा था, और वो बेचारा इतना परेशान था कि उसके दिमाग में इतनी सी भी बात नहीं आ रही थी कि हम उस लाइट को कभी आगे खिसका रहे थे तो कभी पीछे, जिससे उसका साया कभी बढ़ रहा था तो कभी घट रहा था।
4: आपने कभी अपने साये को घटते बढ़ते देखा है?
0: मैडम, हम दूसरों के सायों को नापते रहते हैं, अपनी फिक्र कहाँ। मिस्टर धनाज, आप इतने खामोश क्यों हो गए?
5: नहीं नहीं कुछ नहीं, बस
6: आप ये सोच रहे होंगे कि इस केशव कलसी से पहले आपकी मुलाकात क्यों नहीं हुई, क्योंकि अगर होती तो वो जमीन का टुकड़ा आपके हाथों से नहीं जाता।
7: मेरे दोस्त मुझे प्यार से के कहते हैं, काम का कलसी। आप भी मुझे के कहें तो बहुत मुसर्रफ हो।
2: और शुरू में मैं ये कहूं कि मेरी मदर को ये रोल बिल्कुल पसंद नहीं आया कि वो अपने बेटे को ऐसे रूप में देखना पसंद नहीं करती थी। तो उससे मुझको एक अंदाजा मिला कि हाँ, शायद ऐसा हो सकता है कि कैरेक्टर या किरदार जो है वो अपने अपनी निजी जिंदगी के ऊपर हावी हो जाए। लेकिन अंत में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये जरूर है कि आदमी जब कोई किरदार निभाता है तो वो अपनी निजी जिंदगी से कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसी बातें निकाल कर उस किरदार के अंदर डालने की कोशिश करता है। तो ये जरूर है कि केशव कलसी का जो किरदार है, मेरे अंदर जब मैंने वो शुरू किया था कैरेक्टर, तो मेरे अंदर कुछ थोड़ा सा गुस्सा था और एक जिद थी मेरे अंदर दिखाने की कि मैं इस तरह का रोल कर सकता हूं। तो ये थोड़ा सा गुस्सा था, थोड़ी सी जिद थी, तो मैंने अपनी जिंदगी से ये चीजें निकाल कर उस कैरेक्टर के अंदर डाल दी। लेकिन मेरे ख्याल से वो जो कैरेक्टर है वो मेरी निजी जिंदगी के ऊपर हावी नहीं हुआ, बल्कि 5.5 साल तक इस कैरेक्टर को निभाते बीच में कभी कभार ये मुश्किल हुआ कि उस कैरेक्टर के अंदर वही गुस्सा, वही जिद, उसको बरकरार रखना मुश्किल हो गया था मेरे लिए 5.5 साल तक। तो बीच में एक बार मैंने उसको थोड़ा सा ढीला भी छोड़ दिया था जानबूझकर, और मुझको लगा कि कोई नोट करेगा नहीं, लेकिन 2-3 लोग मेरे पास आए थे पब्लिक में से, और उनने बाकायदा मुझको गालियां दी कि ये तुमने क्या किया, अचानक तुमने नरम क्यों बना दिया। तब वापस मुझे अपने आप को बिल्कुल कस के रखना पड़ा। तो बहुत ही दिलचस्प रहा यह सफर केशव कलसी के साथ, और मेरे ख्याल से

0: सफर से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझको।
1: चीलों से टॉम ऑल्टर का बड़ा गहरा लगाव रहा। जैसे कि हमने आपको बताया, टॉम ऑल्टर जब जगाधरी के एक स्कूल में पढ़ाया करते थे, उन दिनों में बच्चों को वो क्रिकेट भी सिखाया करते थे। अगर आप YouTube पर खोजें तो आपको महान सचिन तेंदुलकर का एक बहुत पुराना, लगभग शुरुआती दौर का इंटरव्यू नजर आएगा। वो टॉम ऑल्टर ने ही लिया था। खेलों से अपने जुड़ाव के बारे में टॉम ने हमें बताया था।
0: एक्चुअली खिलाड़ी बनना चाह रहा था, खासकर क्रिकेट का, तो मैं उतना अच्छा खिलाड़ी नहीं था, तो मैं बन नहीं पाया। स्पोर्ट्स में, मतलब शुरू से, बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। यूं कहना चाहिए कि एक जुनून सवार रहा मेरे ऊपर स्पोर्ट, आज भी है। स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स की दुनिया से, खिलाड़ियों से बहुत गहरा है मेरा एक रिश्ता रहा है शुरू से, बचपन से। क्रिकेट के साथ धीरे धीरे जो है मेरा रिश्ता और गहरा होता जा रहा है। और लेकिन स्कूल में ऐसा कोई खेल, ऐसा कोई स्पोर्ट था ही नहीं जिसमें मैंने हिस्सा नहीं लिया, स्कूल और कॉलेज में दोनों। और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैंने बास्केटबॉल में भी हिस्सा लिया। तो बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, क्रॉस कंट्री, इन सारे जो खेल हैं, इन सब में मैंने हिस्सा लिया। आजकल मैं खेलता हूँ क्रिकेट और थोड़ी बहुत रनिंग भी करता हूँ। मैं लिखता भी हूँ स्पोर्ट्स के बारे में, पेपर्स में, मैगजीन्स में, स्पोर्ट्स के मैंने कई प्रोग्राम्स भी बनाए हैं टीवी के लिए, और कॉमेंट्री भी मैंने दी है। तो मालूम नहीं, स्पोर्ट्स से मुझे एक हमेशा एक प्रेरणा मिलती रहती है कि स्पोर्ट्स जो है हमको बहुत कुछ सिखा सकता है जिंदगी के बारे में। जिंदगी का संघर्ष जो है, किस तरह लड़ना चाहिए, वो आदमी स्पोर्ट्स से सीख सकता है। तो इसलिए स्पोर्ट्स ने शुरू से लेके आज तक मुझको बहुत सहारा दिया है, सुकून भी दिया है, राहत भी दी है, और मुझको सिखाया बहुत कुछ है स्पोर्ट्स ने।
1: टॉम ऑल्टर का थिएटर से गहरा लगाव रहा है, इस बारे में उन्होंने बताया।
0: थिएटर में इसलिए मैं करता हूँ, ज्यादातर पैसे के लिए तो मैं करता नहीं हूँ थिएटर। पूरा जो सिलसिला है थिएटर का, एक आपने पहले दोस्तों के साथ प्ले को आपने जांचा, फिर आपने पढ़ा, फिर उसके बाद आपने रिहर्सलें की, रिहर्सलों के अंदर इतनी तब्दीलियां आ जाती हैं हर चीज में, फिर आखिरकार एक परफॉर्मेंस भी होता है, वो भी ऑडियंस के सामने। तो एक लंबा एक सफर है ये थिएटर का, तो मुझे वो सफर बेहद पसंद है। वो सफर आपको थिएटर, इसमें सिनेमा और टीवी में नहीं मिलता है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। लोगों के साथ दोस्ती कायम करना, नए रिश्ते पैदा हो जाते हैं रिहर्सल करते करते परफॉर्मेंसेस का, और हर परफॉर्मेंस में कुछ नए रंग आ जाते हैं। तो ये मजा है थिएटर का कि आपको फुर्सत मिलती है, एक टाइम मिलता है आपको, एक अरसा पूरा आपको मिल जाता है। मैंने मेरे ख्याल से 15-20 प्लेस किए हैं बॉम्बे में आके। एक प्ले है जो मैं अपने दो बहुत ही अजीज दोस्तों के साथ किया करता था, नसीरुद्दीन शाह और बेंजामिन गिलानी के साथ। उस प्ले का नाम है वेटिंग फॉर गॉडो। इंग्लिश का प्ले है, बहुत ही कठिन प्ले है समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी, लेकिन हम लोगों ने कम से कम 50-60 उसके शोज किए हैं, और वो प्ले मुझको बेहद पसंद है, वेटिंग फॉर गॉडो।
1: संगीत में अपनी दिलचस्पी के बारे में टॉम ऑल्टर ने विविध भारती को अपने एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी।
0: क्लासिकल संगीत से कोई खास मेरा रिश्ता नहीं रहा है, ना तो हिंदुस्तानी क्लासिकल, ना तो इंग्लिश क्लासिकल, लेकिन हाँ, पुराने, अब तो खैर पुराने हैं, उस टाइम तो नए थे हमारे लिए, पुराने फिल्मी गीत मुझे बेहद पसंद है। और जहां तक इंग्लिश म्यूजिक का संबंध है, तो बीटल्स के गाने, फिर ईगल्स के गाने, उससे पहले एक और फोक ग्रुप था पीटर पॉल एंड मैरी, उनके गाने, ये मुझे आज तक मतलब बेहद पसंद है। इंडियन म्यूजिक में हाल ही में, कुछ पिछले मैं देख रहा हूँ, 1-2 साल से कहीं से, मालूम नहीं कहाँ से, मेरे अंदर एक क्लासिकल म्यूजिक में एक दिलचस्पी पैदा हुई है जो पहले बिल्कुल नहीं थी मेरे अंदर। अभी हाल ही में मैं भोपाल में था, तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का एक वहां पर कार्यक्रम था, तो फर्स्ट टाइम जिंदगी में मैंने ध्यान से बैठकर किसी एक इस तरह के प्रोग्राम को सुना, और मेरी आंखों में तो आंसू आ गए सुनते सुनते। तो शायद इस बुढ़ापे में क्लासिकल म्यूजिक में भी एक दिलचस्पी मेरे अंदर पैदा हो रही है, लेकिन अब तक जो है मेरी इंटरेस्ट रहा है या तो फोक म्यूजिक में या तो पॉपुलर म्यूजिक में, रॉक में उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो फिल्मी गाने बस वही हमारे तीन जो सितारे हैं, किशोर जी, रफी साहब और मुकेश जी, उनके गाने तो घंटों तक, क्या मैं दिनों महीनों तक सुन सकता हूँ। मैं सच बताऊं, कुछ इसका कारण क्या है मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन आजकल जब गाने मैं सुनता हूं तो मुझको 10 बार सोचना पड़ता कि आवाज किसकी है। शायद मेरे अंदर दिलचस्पी कम हो गई, या शायद कुछ आवाजें जो हैं वो सेम टू सेम होती जा रही हैं। मुश्किल है। मुझको याद है हम आशिकी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसमें फर्स्ट टाइम कुमार शानू ने कुछ गाने

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: पिंपल, टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चिल, नेचुरल है।
2: इसका सोल्यूशन
1: वो भी नेचुरल है, वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ। ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैकहेड्स दूर रखने में मदद करे। वाओ, सो ब्यूटीफुल,
2: नेचुरल है।
1: नेचुरल ब्यूटी वॉश।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। अच्छा लगता है जब कोई अपना पुकारता है नाम लेकर, अपना ही नाम खास हो जाता है हमारे लिए। इंतजार करना पड़ता है उस मासूम लम्हे के लिए, पर वो लम्हा जब आता है जिंदगी में तो बीतता नहीं, वो ठहर जाता है, वो लम्हा बर्फ हो जाता है हमेशा के लिए। उस लम्हे की खुशबू महका देती है जिंदगी को। अभी तक हम उस लम्हे में जी रहे हैं जब पहली बार तुमने हमें नाम लेकर पुकारा था।

चंद लम्हों में सारी जिंदगी जी लेते हैं हम, जैसे खिड़की से बारिश देखते हैं जब, और बूंदों को महसूस करते हैं अपने चेहरे पर, जैसे समंदर के किनारे बैठकर जब बतियाते हैं लहरों से, जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर होता है एहसास कि कितना विराट है ये संसार और कितने छोटे हैं हम इन चंद लम्हों में, जैसे हम जी लेते हैं सारा जीवन चंद लम्हों वाला ये जीवन।

0: तस्वीरों के रंग धुंधले पड़ जाते हैं, पर लम्हों के रंग कायम रहते हैं। काली सफेद तस्वीरों के रंग भले भूरे या धूसर पड़ जाएं, पर ये तस्वीरें जब आती हैं सामने तो छपाक से हम डुबकी लगा लेते हैं बीते हुए वक्त में। पुराने एल्बमों से इसीलिए तो प्यार होता है हम सबको। किसी फुर्सत के दिन जब खोलते हैं पुराना कोई एल्बम, तो बीते वक्त के गलियारों में खूब टहलना होता है। यूं आती है बीते हुए दिनों की याद, जैसे अभी कल ही तो जिया था हमने ये सब।
1: फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम, इनकार का

खाता बल खाता वो झूमता बल खाता।

0: अभी हाजिर हुए।
1: टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चिल, नेचुरल है।
2: इसका सोल्यूशन
1: वो भी नेचुरल है। वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैकहेड्स दूर रखने में मदद करे। वाओ, सो ब्यूटीफुल,
2: नेचुरल है।
1: नेचुरल ब्यूटी वॉश।

जो काम पुरानी तस्वीरें करती हैं, वही काम करते हैं पुरानी गाने। कोई एक गीत, कोई एक सुर, कोई एक पंक्ति हमें ले जाती है कई बरस पीछे। अंताक्षरी वाला वो दिन, वो तुमसे चुपके से नजरें मिलाना, वो फिल्मी गानों के बहाने सबके सामने अपनी बातें कहना। कितने शरारती थे ना हम हमेशा से, अब देखो ना ये बजा पुराना गाना और ये चल पड़े हम बीते वक्त की यादों के रास्ते पर।

लोग जमा करते हैं जाने कौन कौन सी महंगी चीजें, जेवर। लोग परदेश जाते हैं खूबसूरत जगहों पर। दुनिया चीजों के प्यार में मुब्तिला हो जाती है। जिंदगी वो है जिसमें चीजें नहीं जज्बात जमा किए जाएं। जिंदगी वो है जिसमें हो प्यार की रोशनी। जिंदगी वो है जिसमें दो दिल एक ही लय और ताल पर धड़कते हों, जिसमें हम एक दूसरे के लिए जीते हों।

तुम्हारे देख भर लेने से दुनिया खूबसूरत लगने लगती है हमें। जरा सोचो, एक निगाह, एक मुस्कान भी बदल सकती है किसी की दुनिया। प्यार हो जाना दुनिया की सबसे खूबसूरत घटना है, और प्यार में जीना सबसे खूबसूरत बना देता है जिंदगी को। आओ हम इस संदिल दुनिया में प्यार के नर्म फूल खिलाएं।

0: खबर मिल।
1: फिल्म भूल न जाना, संगीतकार दान सिंह।
2: एक चमेली के मंडवे तले, एक चमेली के मंडवे।
1: फिल्म चा चा चा, संगीतकार इकबाल कुरैशी।
3: फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम।
1: फिल्म ये दिल किसको दूं, संगीतकार इकबाल कुरैशी।

0: फिल्म माय लव, संगीतकार दान सिंह। फिल्म ठाकुर जरनैल सिंह, संगीतकार गणेश।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार।
0: फिल्म सखी रॉबिन, संगीतकार रॉबिन बनर्जी। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।

0: कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: पिंपल, टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चिल, नेचुरल है।
2: इसका सोल्यूशन
1: वो भी नेचुरल है, वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ। ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैक हेड्स दूर रखने में मदद करे। वाओ, सो ब्यूटीफुल,
2: नेचुरल है।
1: नेचुरल ब्यूटी वॉश।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट UG पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति JD Vance कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर मालिक गली